हम आकाशवाणी के बिलासपुर केंद्र से बोल रहे हैं, FM 103.2 MHz पर। आज शनिवार है, शक संवत 1948 के ज्येष्ठ मास की 16वीं तिथि, तदनुसार 6 जून 2026। इस समय प्रातः के 5:57 होने वाले हैं। हमारा आज का प्रसारण आरंभ होता है।

आकाशवाणी का ये बिलासपुर केंद्र है, एफएम 103.2 MHz पर 6 बजने वाले हैं और अब समाचार हम आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से रिले करेंगे।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं मुकेश कुमार बल। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि भारतीय अर्थव्यवस्था की नींव बहुत मजबूत है। वैश्विक आर्थिक संकट के बावजूद देश ने वित्त वर्ष 2025-26 में 7.7% की विकास दर दर्ज की है। दमन में 2,970 करोड़ रुपए से अधिक की विकास परियोजनाओं की शुरुआत करने के बाद कल प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्थाओं में से एक बना हुआ है। इससे पहले प्रधानमंत्री ने गुजरात के सूरत में 18,000 करोड़ रुपए से अधिक की विभिन्न विकास परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास किया। इस अवसर पर श्री मोदी ने कहा कि दुनिया हरित भविष्य की ओर बढ़ रही है और भारत आर्थिक विकास तथा पर्यावरण संरक्षण के बीच संतुलन बनाकर इस दिशा में अग्रणी भूमिका निभा रहा है।
1: आज भारत प्रकृति के साथ प्रगति का मंत्र लेकर विकास कर रहा है। इकोनॉमी भी, इकोलॉजी भी। सूरत में तो ये प्रत्यक्ष दिखता है। आजकल सूरत की सर्कुलर वाटर इकोनॉमी की बहुत चर्चा होती है। यहाँ शहर के वेस्ट वाटर को ट्रीट करके इंडस्ट्री को सप्लाई किया जाता है। इससे गंदे पानी का मैनेजमेंट भी हो जाता है और पानी से कमाई भी होती है।
0: श्री मोदी ने बताया कि भारत की कुल 250 गीगावाट नवीकरणीय ऊर्जा क्षमता में से 50 गीगावाट क्षमता अकेले गुजरात की है। अर्थव्यवस्था ने वित्त वर्ष 2025-26 में भी अपनी मजबूत गति बनाए रखी है। वास्तविक सकल घरेलू उत्पाद में 2024-25 के 7.1% की तुलना में 2025-26 में 7.7% की वृद्धि का अनुमान है। 2025-26 में वास्तविक सकल घरेलू उत्पाद 323 लाख करोड़ रुपए से अधिक होने का अनुमान है, जबकि 2024-25 के लिए इसका संशोधित अनुमान 299 लाख करोड़ रुपए से अधिक था। भारतीय रिजर्व बैंक ने विदेशी पोर्टफोलियो निवेशकों एफपीआई द्वारा सरकारी प्रतिभूतियों में निवेश से जुड़े नियमों में महत्वपूर्ण बदलाव किए हैं। नए प्रावधानों के तहत सामान्य मार्ग से निवेश करने वाले विदेशी निवेशकों को अब कई तरह के निवेश सीमाओं का पालन नहीं करना होगा। विदेश मंत्रालय ने कहा है कि वर्ष 2026 में अब तक कुल 1076 भारतीय नागरिकों को अमेरिका से भारत वापस भेजा जा चुका है। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने बताया कि वर्ष 2025 में अमेरिका से 3,567 भारतीय नागरिकों को वापस भेजा गया था। उन्होंने कहा कि दोनों देशों के बीच प्रवासन और आवागमन को लेकर बातचीत जारी है। श्री जायसवाल ने बताया कि अवैध रूप से रह रहे बांग्लादेशी नागरिकों को वापस भेजने के संबंध में एक द्विपक्षीय व्यवस्था अपनाई गई है। भारत ने तथाकथित गिलगित बाल्टिस्तान असेंबली के लिए आम चुनाव कराने की पाकिस्तान की योजना पर कड़ा विरोध दर्ज किया है। इस क्षेत्र पर पाकिस्तान ने अवैध रूप से कब्जा कर रखा है। ये चुनाव कल होने वाले हैं। भारत ने अपने इस पुराने रुख को दोहराया है कि वर्ष 1947 से जम्मू कश्मीर के भारत में पूर्ण कानूनी और अपरिवर्तनीय विलय के परिणाम स्वरूप गिलगित बाल्टिस्तान सहित जम्मू कश्मीर और लद्दाख के संपूर्ण केंद्र शासित प्रदेश भारत के अभिन्न अंग हैं। इंडोनेशिया के विदेश मंत्री सुगियोनो 3 दिन की भारत यात्रा पर आज नई दिल्ली पहुंचेंगे। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर और श्री सुगियोनो कल नई दिल्ली में भारत इंडोनेशिया संयुक्त आयोग की बैठक की सह अध्यक्षता करेंगे। कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय ने बताया है कि जून 2026 तक देश भर में 9,42,000 से अधिक किसान खेत बचाओ अभियान से जुड़ चुके हैं। संतुलित खाद के इस्तेमाल का यह अभियान एक देशव्यापी जन आंदोलन बन गया है। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड CBSE ने अंक सत्यापन और पुनर्मूल्यांकन के लिए आवेदन जमा करने की अंतिम तिथि बढ़ाकर 7 जून कर दी है। CBSE ने सोशल मीडिया पोस्ट में बताया कि छात्र अब रविवार मध्यरात्रि तक अपने आवेदन जमा कर सकेंगे। एशिया कप अंडर 18 हॉकी टूर्नामेंट के फाइनल में आज भारत का सामना जापान से होगा। जापान के काका मिघहारा में खेले गए सेमीफाइनल में भारत ने पाकिस्तान को 5-3 से हराया। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: समाचार अभी हम आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से प्रसारित कर रहे थे। ये आकाशवाणी

मणिका बिलासपुर केंद्र है FM 103.2 MHz पर 6:05 हुए हैं और अब आइए शुरू करते हैं आज की आराधना। सबसे पहले करें वंदना इस पावन मातृभूमि की।

महिमानस्य चन्त यत्र पूर्वे साध्यास्सन्ति देवाः ॐ राजाधिराजाय प्रसंयसाहिने नमो वयं वैश्रवणाय कुर्महे समे कामां कामकामाय मह्यं कामेश्वरो वैश्रवणो दधातु।

भगवान भोलेनाथ को समर्पित इस भजन के बाद आइए सुनते हैं प्रभु श्री कृष्ण को समर्पित ये भजन।

प्रभु श्री कृष्ण को समर्पित मीरा के इस भजन के बाद आइए सुनते हैं प्रभु श्री राम को समर्पित ये मधुर भजन।

0: और प्रभु श्री राम को समर्पित इस मधुर भजन के साथ आज की आराधना संपन्न हुई। आकाशवाणी का ये बिलासपुर केंद्र है, FM 103.2 MHz पर 6:30 हुए हैं। और अब आइए सुनते हैं खेती की बात। आज का विषय है वर्षाकालीन भिंडी लगाएं, वाचन स्वर अभिनव गौरहा का।
1: किसान भाई हो, राम राम, जय

0: जोहार। आनी बानी के साग हमर किसान भाई मन लगाते हैं, फिर बरसात के दिन मा रमकेरिया के खेती भी बढ़िया ढंग से करे जा सकत है। काबर जेन ओ समय के जिन 4-5 महीना होते अगर साग सब्जी निकले लगाते तो उस समय बढ़िया मुनाफा किसान भाई मन ला मिल सकत है, खासकर रमकेरिया के उत्पादन करत है। तो सामान्य सब्जी मन मा रमकेरिया के भिंडी के प्रमुख स्थान है, इला वर्षाकालीन फसल के रूप में भी उगा सकत है। त हमन भूमि के चुनाव के बात करबो तो भिंडी वैसे तो हर प्रकार के भूमि में उगाए जा सकत है, फिर जिमा ज्यादा जीवांश रहे जल धारण क्षमता वाले दोमट भूमि ज्यादा उपयुक्त होते है। भूमि के तैयारी की बात करी, 2 पैत गहरा जोताई करे के बाद 2 से 3 पैत बखर से भुयाला भुरभुरा करे के बाद पाटा लगा के समतल कर सकत हन। उन्नत किस्म के बात करी, पंजाब पद्मिनी परभनी क्रांति P7 अर्का अनामिका अर्का अभय VRO4 VRO6 VRO10 पूसा सावनी पूसा मखमली वर्षा उपहार हिसार उन्नत। आजकल और आनी बानी की किस्म आगे है, क्षेत्र के अनुसार भी लोकल जैन किस्म आनी बानी के निकले लगे होला देख के हम ले सकत हन। आजकल छोटे और बड़े साइज के भी आनी बानी के भिंडी के किस्म आगे है, वर्षा विशाल विजय शंकर भिंडी नंबर 7 शंकर भिंडी नंबर 8 शंकर भिंडी नंबर 10 ये सब भी बढ़िया उन्नत किस्म है। बीज के मात्रा की बात करी, ग्रीष्मकालीन फसल पर 18 से 20 किलो और वर्षाकालीन फसल पर 8 से 10 किलो बीज प्रति हेक्टेयर की दर से बोना चाहिए किसान भाई मनला। ज्यादा उत्पादन और अंकरण पर बीज ला बुआई के पहली 24 से 36 घंटा पानी में भिगो के रखे जाते, ओकर बाद छाया में सुखाए के बाद फूले हुए बीज ला कार्बेंडा जिम 12% और मैंगो जिम 63% मिश्रित फफूंद नाशी दवा के 3 ग्राम प्रति किलो बीज के दर से होला उपचारित करना है। बुआई के समय और विधि के बात करी, वर्षाकालीन जून के आसपास बुआई हमन ला कर देना चाहिए, कतार से कतार 30 सेंटीमीटर और पौधा से पौधा की दूरी 20 सेंटीमीटर की दूरी रखना चाहिए। वर्षाकालीन फसल में 30x45 सेंटीमीटर पौध अंतराल रखना है। खाद और उर्वरक की बात करें तो खाद ला तो भाई जतका जैसन जेखर शक्ति जेखर तीर जतका पूरा उतका डाल सकत हन बढ़िया सरे हुए गोबर खाद। उर्वरक की बात करबो तो एमा 80 किलो नत्रजन जिला यूरिया के माध्यम से देथन, 60 किलो स्फुर DAP के माध्यम से और 60 किलो पोटास प्रति हेक्टेयर के हिसाब से देना चाहिए। गोबर के खाद स्फुर और पोटास के पूरा मात्रा और नत्रजन के 1/3 मात्रा खेत की अंतिम तैयारी के समय हमन ला माटी में बढ़िया ढंग से मिलाना है। नत्रजन के 1/3 मात्रा बीज बोए के 20 दिन बाद और बाचे मात्रा ला 40 दिन बाद कतार में देना है। फसल के प्रारंभिक अवस्था में 30 से 45 दिन में फसल ला खरपतवार से संघर्ष ले गुजरे पड़ते, खर बार 2 से 3 बार निंदाई गुराई करके क्षेत्र ला सफा रखना बड़ लाभकारी होते। अगर पैरा बाचे है तो पैरा ला हमन ओला पलवार का स्तोप सकत हन जेकर से हवा के आवागमन रुकी त खर पतवार नहीं जामे। सिंचाई की बात करी, ग्रीष्मकालीन फसल में 4 से 5 दिन के अंतराल में सिंचाई करत रहे, वर्षाकालीन फसल के जैसन पानी के स्थिति देखत हन खेत की स्थिति ओकर हिसाब से हमन सिंचाई करना है। ग्रीष्मकालीन जेन हम फसल लेत हन 80 से 100 क्विंटल और वर्षाकालीन 100 से 125 क्विंटल प्रति हेक्टेयर हमन मिल जाते। बीमारी की बात करी, भिंडी के पौधा में आद्र गलन के समस्या देखेल मिलते, पौधा के प्रारंभिक अवस्था में सतह के ऊपर तना में सड़न गलन होए से पौधा मर जाते। रोकथाम पर बुआई से पहले थायरम 3 ग्राम प्रति किलो बीज दर से बीजोपचार जरूरी है करना। खेत में पानी निकास के उचित प्रबंधन करना है। पीत सीरा की बात करी, विषाणु जनक रोग होते एकर कारण पत्ती और तना पीवरा पड़ जाते। रोकथाम पर बीमारी फैलाए वाले कीट जैसे सफेद मक्खी और लिफाफर की रोकथाम करना है। रोग ग्रस्त पौधा ला उखाड़ के नष्ट करना है, ये रोग सफेद मक्खी के द्वारा फैलते। एकरे बारे कीट की रोकथाम पर कोनो भी सिस्टमिक कीटनाशक जैसे एसिडामेप्रिड 0.5 ग्राम प्रति लीटर पानी की दर से छिड़काव करना है। ये हुई रमकेरिया के खेती के जानकारी। राम राम, जय जोहार।
1: खेती के बाद में अभी आप सुन रहे थे वर्षाकालीन भिंडी लगाएं, इस विषय पर जानकारी वाचन स्वर अभिनव गौरहा का था। आकाशवाणी का ये बिलासपुर केंद्र है FM 103.2 MHz पर, और अब प्रस्तुत है श्रीराम चरित मानस गान।

श्री राम के विनय भरे मधुर वचन सुनकर भी ऋषि परशुराम का क्रोध शांत नहीं हुआ। उन्हें लगा कि शिव का धनुष तोड़ने का अपराधी होकर भी वो उन्हें ही ज्ञान सिखा रहे हैं। उनकी ये धारणा भी पक्की हो गई कि राम की सहमति से ही उनका छोटा भाई कटु वचन बोल रहा है। श्री राम ने मन ही मन में सोचा कि दोष तो लक्ष्मण का है और मुनि का क्रोध अब उनकी ओर बढ़ रहा है। सच ही तो है कि कभी कभी सीधापन भी भ्रामक होता है, तभी तो लोग टेढ़े लोगों की वंदना करते हैं। किंतु प्रकट रूप में राम ने परशुराम के कुठार के आगे अपना सिर झुका दिया। बोले, स्वामी, जिस प्रकार भी आपका क्रोध शांत हो आप वही कीजिए। भला स्वामी और सेवक में युद्ध कैसा? सच तो यह है कि मुनिवर का वीरों का सा वेश देखकर लक्ष्मण ने कुछ कह डाला। वैसे वास्तव में दोष लक्ष्मण का भी नहीं, उसने उनका नाम तो सुना था किंतु पहचानने में भूल हो गई। यदि वो मुनि के वेश में आते तो लक्ष्मण ने उनकी चरण धूली ले ली होती।

राम के कुठार के आगे अपना सिर झुका दिया। बोले, स्वामी, जिस प्रकार भी आपका क्रोध शांत हो, आप वही कीजिए। भला स्वामी और सेवक में युद्ध कैसा? सच तो ये है कि मुनिवर का वीरों का सा वेश देखकर लक्ष्मण ने कुछ कह डाला। वैसे वास्तव में दोष लक्ष्मण का भी नहीं, उसने उनका नाम तो सुना था किंतु पहचानने में भूल हो गई। यदि वो मुनि के वेश में आते तो लक्ष्मण ने उनकी चरण धूली ले ली होती।

श्री रामचरितमानस गान अभी आप सुन रहे थे। आकाशवाणी का ये बिलासपुर केंद्र है FM 103.2 MHz पर। 6:45 हुए हैं और अब आइए सुनते हैं आज का चिंतन आलेख डॉक्टर सुरेश कुमार शर्मा का।

मनुष्यों का चाक्षुष ज्ञान ही सत्य है। अभिव्यक्ति के दो ही रूप हैं, सत्य और असत्य। इसका कोई तीसरा रूप नहीं है। सत्य ही ब्रह्म है, प्राण ही सत्य है। इसीलिए भारतीय आचार पद्धति में सत्य की प्रतिष्ठा सर्वोच्च रही है। ऋत अथवा सत अथवा सत्य एक ही नाम है। चराचर लोक की सृष्टि, संवर्धन और संहार का नियामक ऋत ही है। ऋत प्रकृति का वो धर्म माना जा सकता है जिसके द्वारा प्रकृति के सारे कार्य व्यापार चलते हैं। ऋतुओं का आगमन, सूर्योदय, दिन और रात्रि आदि सारे प्राकृतिक विधानों की क्रमबद्धता के मूल में ऋत ही है। इस प्रकार विश्व की संतुलित गति के लिए

0: रीति की आवश्यकता है। वैदिक समाज ने रीति की प्रतिष्ठा सामाजिक जीवन में की। प्राकृतिक रीति को आदर्श मानकर उन्होंने अपने जीवन में क्रमबद्धता और व्यवस्था को प्रथम स्थान दिया। ऋग्वेद के अनुसार सृष्टि उत्पत्ति के पहले सत्य उत्पन्न हुआ और उससे ही आकाश, पृथ्वी, वायु आदि तत्व स्थिर हैं। सत्य के सामने असत्य की प्रतिष्ठा नहीं हो सकती। सत्य पुण्य है और असत्य पाप। अथर्ववेद में पाप का मानवीकरण करते हुए एक ऋषि ने अपने हृदय की आंतरिक वेदना को दाक्षिण्य पूर्वक व्यक्त किया है। हे मन के पाप, दूर चले जाइए, क्योंकि आप ऐसी बातें करते हैं जो कहने योग्य नहीं। दूर जाइए, मैं आपको नहीं चाहता। वृक्षों के ऊपर चले जाइए, वन में चले जाइए, मेरा मन पशुओं और घरों में आसवत हो, आप में नहीं। हे पाप मन, यदि आप मुझे नहीं छोड़ते तो मैं ही आपको छोड़ दूंगा। आप किसी दूसरे के पीछे पड़िए। पाप से डरने की भावना मानव को सदाचारी बनाकर सच्चरित्रा के मार्ग पर लगा देती है। शतपथ ब्राह्मण में सत्य को सर्वोच्च गुण बतलाया गया है। असत्य बोलने वाला मनुष्य अपवित्र हो जाता है। सत्य के माध्यम से तेजस्विता और नित्य अभ्युदय की सिद्धि प्राप्त होती है। जो व्यक्ति सत्यभाषी होता है उसका प्रकाश नित्य बढ़ता है, वो प्रतिदिन अच्छा होता जाता है। इसके प्रतिकूल असत्य संभाषण करने वाले का प्रकाश क्षीण होता जाता है, वो प्रतिदिन दुष्ट बनता जाता है। उस युग की मान्यता थी कि प्रारंभ में भले ही सत्यवादी की पराजय हो, पर अंत में उसी की विजय होती है। सत्य के द्वारा पाप को दूर करने का भी विधान बना था। यदि मनुष्य से कोई पाप हो ही गया हो तो उसके प्रभाव को कम करने के लिए उस पाप को सबके समक्ष स्वीकार कर लेना पर्याप्त था। बृहदारण्यक उपनिषद में सत्य को धर्म का स्वरूप माना गया है और उसे सर्वश्रेष्ठ प्रतिष्ठा दी गई है। सत्य के बल पर दुर्बल भी बलवान को पराजित कर सकता है। आशय ये कि सत्य ही दुर्बल का सबसे बड़ा बल है। महाभारत में सत्य से स्वर्ग और असत्य से नरक गति की संभावना बतलाई गई। साथ ही कहा गया कि असत्य के कारण लोग नाना प्रकार के रोग, व्याधि और ताप से दुखी रहते हैं। उन्हें भांति भांति के मानसिक शोक से ग्रस्त होना पड़ता है। रामायण के अनुसार सत्य में लोक की प्रतिष्ठा है। ऋषियों और देवताओं ने सत्य का सम्मान किया है। सत्यवादी को ही परलोक में सुगति मिलती है। लोग जिस प्रकार सांप से डरते हैं वैसे ही असत्यवादी से डरते हैं। सबका मूल सत्य में ही है। सत्य से ऊंचा कुछ नहीं है। देवता और पितर भी मिथ्यावादी के अन्न को नहीं ग्रहण करते। मनु ने असत्य बोलने वाले को महान चोर माना है और कारण बताया है कि अन्य चोर तो किसी अन्य व्यक्ति का धन चुराता है, असत्यवादी अपनी आत्मा का अपहरण करता है। सज्जनों के बीच किसी बात को अन्यथा बतलाना असत्य है। इसलिए सदा सत्यम वदेत।
1: चिंतन अभी आप सुन रहे थे आकाशवाणी का। ये बिलासपुर केंद्र है, FM 103.2 MHz पर। 6:50 होने वाले हैं और अब कार्यक्रम में आइए हम आपको जानकारी दे दें आज प्रसारित होने वाले प्रमुख कार्यक्रमों के विषय में।

श्रोताओ, आज सुबह 8:30 पर आप सुनेंगे रायपुर केंद्र से रिले समन्वित कार्यक्रम डॉक्टर की सलाह। सुबह 9:00 आप सुनेंगे रायपुर केंद्र से ही रिले कार्यक्रम बातों बातों में। सुबह 10:00 का समय होगा हमारे केंद्र से कार्यक्रम अमराई का, जिसमें आप सुनेंगे नकुल शैलजीत साथी और महादेव हिरवानी व साथियों के गीत। सुबह 7:30 पर आप आनंद लेंगे सदाबहार नगमे का। सूचनात्मक कार्यक्रम आज सुबह का समय होगा रोज की तरह सुबह 7:05 पर। सुबह 10:30 पर आप आनंद लेंगे नए तरानों का और 11:00 हम जुड़ेंगे विविध भारती प्रसारण सेवा के कार्यक्रमों से। 11:55 पर रायपुर केंद्र से प्रादेशिक समाचार के बाद दोपहर 12:00 हम दोबारा जुड़ेंगे विविध भारती प्रसारण सेवा के।

श्रोताओं, आज शाम 7:10 पर आप सुनेंगे दिल्ली केंद्र से केंद्र सरकार के 12 साल पूरे होने के उपलक्ष्य में विशेष श्रृंखला। आज का विषय होगा युवा शक्ति। आज शाम 5:05 पर आप सुनेंगे किसानवाणी कार्यक्रम, जिसमें आज की बात का विषय होगा बीजोपचार का महत्व। भेंटवार्ता सुनवाई जाएगी बहुवर्षीय फसलों की उन्नत खेती विषय पर श्री सतीश वर्मा से, वरिष्ठ वैज्ञानिक एवं प्रमुख कृषि विज्ञान केंद्र मुंगेली होंगे और भेंटकर्ता होंगे नंदू भैया। इसके साथ ही क्रम होगा गीत, मौसम, मंडी भाव और सामायिक सुझाव का। शाम 5:35 पर आप सुनेंगे ईमेल पर आधारित फरमाशी फिल्मी गीतों का कार्यक्रम, ईमेल करें गीत सुनें। छत्तीसगढ़ी में प्रादेशिक समाचार आप सुनेंगे रायपुर केंद्र से शाम 6:10 पर और शाम 6:20 पर आप सुनेंगे ईमेल करें गीत सुनें का शेष भाग। शाम 7:10 पर हम आपको दोबारा बता दें, शाम 7:10 पर आज आप सुनेंगे दिल्ली केंद्र से केंद्र सरकार के 12 साल पूरे होने के उपलक्ष्य में विशेष श्रृंखला। विषय होगा युवा शक्ति।

7:45 पर आप आनंद लेंगे चित्रपट संगीत का, और रात 8 बजे सुगम संगीत में आप सुनेंगे राधिका चोपड़ा की गीत। रजनीगंधा की महक लेकर हम हाजिर होंगे आपके साथ रात 8:15 पर। दिल्ली केंद्र से 8:45 पर आप सुनेंगे समाचार संध्या, और रात 9 बजे अंग्रेजी में समाचार। विविध भारती प्रसारण सेवा से हम जुड़ेंगे रात 9:15 पर।

रात 11 बजे आप सुनेंगे दिल्ली केंद्र से समाचार हिंदी में और 11:05 पर समाचार अंग्रेजी में। एक बार आपको फिर बता दें, आज शाम 7:10 पर आप सुनेंगे दिल्ली केंद्र से केंद्र सरकार के 12 साल पूरे होने के उपलक्ष्य में विशेष श्रृंखला, विषय होगा युवा शक्ति।

कार्यक्रम विवरण समाप्त हुआ। आकाशवाणी का ये बिलासपुर केंद्र है, FM 103.2 MHz पर 6:55 होने वाले हैं। और अब समाचारों के लिए हम जुड़ेंगे आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से।

0: अवधेयास्पदं वर्तते यत् एताभिः परियोजनाभिः क्षेत्रस्य विकासः आजीविकानिर्माणानि तथा जनसुविधानां वृद्धयः च भविष्यन्ति। सीबीएसई इति केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा परिषदा अंक सत्यापनार्थं सहैव पुनर्मूल्यांकनार्थं आवेदन प्रस्तुतेः अन्तिमा तिथिः जून मासस्य सप्त दिनांक पर्यन्तं वर्धिता। सामाजिक अंतर्जालीय पटले एकेन संदेशेन परिषदा प्रख्यापितं यत् छात्राः इदानीं रविवासरस्य मध्य रात्रिं यावत् स्व आवेदनानि प्रस्तोतुं शक्नुवन्ति। सीबीएसई परिषदा प्रोदीरितं यत् छात्रहितं मनसि निधाय आवेदन प्रक्रियां पूरयितुं छात्रेभ्यः अतिरिक्त समय प्रदानाय एषः निर्णयः स्वीकृतः। एतस्मात् पूर्वम् आवेदनस्य अन्तिमा तिथिः अस्य मासस्य षड् दिनांकं यावदासीत्। परिषदा सर्वेभ्यः योग्य छात्रेभ्यः परामृष्टं यत् ते निर्धारित समये एव स्व आवेदन प्रक्रियां सम्पादयन्तु। केन्द्रीय पेट्रोलियम तथा प्राकृतिक गैस मंत्री हरदीप सिंह पुरी अघोषयत् यत् अंडमान द्वीप समूहस्य पूर्व समुद्रीय तटात् प्रायः 15 किलोमीटर दूरे श्री विजयपुरम त्रिक्षेत्रे प्राकृतिक गैस भंडारः अन्विष्टः। एकस्मिन् सामाजिक अंतर्जालीय पटले एकेन संदेशेन श्री पुरी प्रख्यापितवान् यत् एतत् अन्वेषणम् अंडमान समुद्रस्य विशाल ऊर्जा क्षमतां पुनः प्रमाणीकरोति। सहैव अस्मिन् क्षेत्रे प्रचल्यमानस्य गवेषणाभियानस्य एकाम् अपरां सफलतां च सूचयति। सः अकथयत् यत् ऑयल इंडिया इति संस्था सम्प्रति गैस द्रव्यस्य संरचनां तथा च तस्य ऊष्मीयमानं मूल्यांकितुं गैस सैम्पलिंग इति प्रतिचयनस्य कार्यं करोति। अन्ताराष्ट्रिय पर्यावरण दिवसावसरे श्रीपुरी महोदयेन नवदिल्ल्यां फ्लेक्स इंधन वाहनेभ्यः E85 इंधनस्य शुभारम्भो विहितः। केन्द्रीय गृहमन्त्री अमितशाहः ह्यः अब्रवीत् यत् प्रधानमन्त्रिणः नरेन्द्रमोदिनः आर्थिक परिष्काराणां लक्ष्यस्य अन्तर्गतं भारतस्य विकासयात्रा देशस्य आर्थिक समृद्धिम् अविरतं वर्धयति। अस्मिन् आर्थिक वर्षे पञ्जीकृतं 7.7% जीडीपी विकासं निर्दिश्य श्रीशाहः प्रावोचत् यत् एषा उपलब्धिः गत 12 वर्षेषु भारतस्य अर्थव्यवस्थया सुदृढतां प्रकटयति। अथ च क्रिकेट क्रीडायां भारत अफगानिस्तान दलयोर्मध्ये स्पर्धा अद्य न्यू चंडीगढ़स्य मुलानपुर स्थिते महाराजा यादवेन्द्र सिंह अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट क्रीडांगणे आरप्स्यते। अस्यां स्पर्धायां शुभमन गिलः भारतीय दलस्य नेतृत्वं विधास्यति। क्रीडेयं भारतीय समयानुसारं प्रातः 9:30 आरप्स्यते। पुरुषाणाम् अंडर 18 इति आ 18 एशिया कप हॉकी प्रतियोगितायाः उपांत्य स्पर्धायां भारतेन पाकिस्तान दलं 5-3 अंतरालेन पराजितम्। अपरतः महिलानां आ 18 एशिया कप प्रतियोगितायाः उपांत्य स्पर्धायां चीन देशेन भारतीय दलं पराजितम्। इति वार्ताः।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं मुकेश कुमार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि भारतीय अर्थव्यवस्था की नींव बहुत मजबूत है। उन्होंने कहा कि वैश्विक आर्थिक संकट के बावजूद देश की अर्थव्यवस्था वित्त वर्ष 2025-26 में 7.7% की दर से बढ़ी है। दमण में कल 2,970 करोड़ रुपए से अधिक की विकास परियोजनाओं का लोकार्पण करने के बाद प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्थाओं में से एक बना हुआ है। इससे पहले प्रधानमंत्री ने गुजरात के सूरत में 18,000 करोड़ रुपए से अधिक की विभिन्न विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया। श्री मोदी ने कहा कि दुनिया हरित भविष्य की ओर आगे बढ़ रही है और भारत आर्थिक विकास तथा पर्यावरण संरक्षण के बीच संतुलन बनाकर इस दिशा में

0: अग्रणी भूमिका निभा रहा है।
1: आज भारत प्रकृति के साथ प्रगति का मंत्र लेकर विकास कर रहा है, इकोनॉमी भी इकोलॉजी भी। सूरत में तो ये प्रत्यक्ष दिखता है। आजकल सूरत की सर्कुलर वाटर इकोनॉमी की बहुत चर्चा होती है। यहाँ शहर के वेस्ट वाटर को ट्रीट करके इंडस्ट्री को सप्लाई किया जाता है, इससे गंदे पानी का मैनेजमेंट भी हो जाता है और पानी से कमाई भी होती है।
0: श्री मोदी ने बताया कि भारत की कुल 250 गीगावाट नवीकरणीय ऊर्जा क्षमता में 50 गीगावाट अकेले गुजरात की है। वित्त वर्ष 2025-26 में भी देश की अर्थव्यवस्था की मजबूत गति बरकरार है। वास्तविक सकल घरेलू उत्पाद में 2024-25 के 7.1% की तुलना में 2025-26 में 7.7% की वृद्धि का अनुमान है। 2025-26 में वास्तविक सकल घरेलू उत्पाद 323 लाख करोड़ रुपए से अधिक होने की संभावना है, जबकि 2024-25 के लिए इसका संशोधित अनुमान 299 लाख करोड़ रुपए से अधिक था। भारतीय रिजर्व बैंक ने विदेशी निवेशकों के सरकारी प्रतिभूतियों में निवेश से जुड़े नियमों में महत्वपूर्ण बदलाव किए हैं। नए प्रावधानों के अंतर्गत सामान्य निवेश करने वाले विदेशी निवेशकों को अब कई तरह की निवेश सीमाओं से छूट दी गई है। विदेश मंत्रालय ने कहा है कि 2026 में अब तक 1076 भारतीय नागरिकों को अमेरिका से भारत वापस भेजा जा चुका है। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने बताया कि 2025 में अमेरिका से 3567 भारतीय नागरिक वापस भेजे गए थे। उन्होंने कहा कि दोनों देशों के बीच प्रवासन और आवागमन को लेकर बातचीत जारी है। श्री जायसवाल ने बताया कि अवैध बांग्लादेशी नागरिकों को वापस भेजने के संबंध में एक द्विपक्षीय व्यवस्था अपनाई गई है। भारत ने तथाकथित गिलगित बाल्टिस्तान असेंबली का आम चुनाव कराने की पाकिस्तान की योजना का कड़ा विरोध किया है। इस क्षेत्र पर पाकिस्तान का अवैध कब्जा है। ये चुनाव कल होने वाले हैं। भारत ने अपने इस पुराने रुख को दोहराया है कि गिलगित बाल्टिस्तान सहित जम्मू कश्मीर और लद्दाख के संपूर्ण केंद्र शासित प्रदेश भारत के अभिन्न अंग हैं। इंडोनेशिया की विदेश मंत्री सुयोनो 3 दिन की भारत यात्रा पर आज नई दिल्ली पहुंचेंगे। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर और श्री सुगियोनो कल नई दिल्ली में भारत इंडोनेशिया संयुक्त आयोग की बैठक की सह अध्यक्षता करेंगे। कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय ने कहा है कि देश भर में अब तक 9,42,000 से अधिक किसान खेत बचाओ अभियान से जुड़ चुके हैं। संतुलित उर्वरक उपयोग को बढ़ावा देने के लिए शुरू किया गया यह अभियान अब जन आंदोलन का रूप ले रहा है। मंत्रालय के अनुसार अभियान के अंतर्गत अब तक 17,800 से अधिक जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किए गए हैं, जिनसे लगभग 7 लाख किसान लाभान्वित हुए हैं। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने भारत में 5वीं पीढ़ी के लड़ाकू विमान सुखोई SU-57 के संयुक्त उत्पादन का प्रस्ताव दिया है। सेंट पीटर्सबर्ग अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक मंच के दौरान उन्होंने कहा कि रूस SU-57 कार्यक्रम में भारत की भागीदारी का इच्छुक है। श्री पुतिन ने एकीकृत वायु रक्षा प्रणालियों और अन्य रक्षा उपकरणों के क्षेत्र में भी भारत के साथ सहयोग की इच्छा जताई है। एशिया कप अंडर 18 हॉकी टूर्नामेंट के फाइनल में आज भारत का सामना जापान से होगा। जापान के काका मिगाहारा में कल सेमीफाइनल में भारत ने पाकिस्तान को 5-3 से हराया। भारत की अंडर 18 लड़कियों की टीम सेमीफाइनल में चीन से हार गई थी। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: समाचारों का अनुप्रसारण हम आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से कर रहे थे। ये आकाशवाणी का बिलासपुर केंद्र है, FM 103.2 MHz पर। 7:05 हुए हैं और अब प्रस्तुत है कार्यक्रम आज सुबह।

श्रोताओं नमस्कार। श्रोताओं, इन दिनों आपने ये महसूस किया होगा कि मौसम में अचानक बदलाव लगातार हो रहे हैं। कभी तेज चिलचिलाती धूप, फिर उसके बाद बादल और बारिश। श्रोताओं, मौसम का बदलना प्रकृति का नियम है, लेकिन यह बदलाव हमारे स्वास्थ्य पर भी गहरा प्रभाव डालता है, जिस पर हमें ध्यान देने की ज़रूरत है। कभी तेज़ धूप, कभी बारिश, तो कभी अचानक ठंडक। ऐसे मौसम में शरीर को वातावरण के अनुरूप ढलने में समय लगता है। इसी कारण सर्दी जुकाम, वायरल बुखार, एलर्जी, गले में संक्रमण और अन्य बहुत सारी स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं बढ़ने लगती हैं। स्वास्थ्य विशेषज्ञों के अनुसार बदलते मौसम में सबसे पहले हमारी रोग प्रतिरोधक क्षमता प्रभावित होती है। इसलिए ये ज़रूरी है कि खान पान और दिनचर्या पर विशेष ध्यान दें। भोजन में ताजे फल, हरी सब्जियां, दालें और पर्याप्त मात्रा में पानी शामिल करें। बाहर का खुला और बासी भोजन खाने से हमेशा परहेज करें। मौसम चाहे कोई भी हो, शरीर को पर्याप्त पानी की आवश्यकता होती है। पानी शरीर को हाइड्रेट रखने के साथ साथ संक्रमण से लड़ने में भी मदद करता है। सुबह की हल्की कसरत, योग और नियमित सैर भी शरीर को स्वस्थ बनाए रखने में सहायक होता है। बदलते मौसम में ये ज़रूरी है कि कपड़ों का चयन भी सोच समझ कर किया जाए। सुबह और शाम के तापमान में अंतर होने पर और तेज़ धूप और गर्मी के मौसम में ये ज़रूरी है कि हम हल्के कपड़े पहनें। बारिश के मौसम में भीगने के बाद यदि बारिश हो जाती है तो इस पर भी ध्यान दें, और बारिश में भीगने के बाद तुरंत सूखे कपड़े ज़रूर पहनें, ताकि संक्रमण का खतरा कम हो सके। बच्चों, बुज़ुर्गों और पहले से बीमार लोगों को विशेष सावधानी बरतनी चाहिए। किसी भी तरह की स्वास्थ्य संबंधी समस्या होने पर या गंभीर लक्षण दिखाई देने पर तुरंत ही अपने डॉक्टर से चिकित्सकीय परामर्श के लिए ज़रूर संपर्क करें। श्रोताओं, स्वस्थ रहने का सबसे सरल उपाय है संतुलित आहार, नियमित व्यायाम, पर्याप्त नींद और स्वच्छता का पालन। थोड़ी सी सावधानी हमें बदलते मौसम में होने वाली बहुत सारी बीमारियों से बचा सकती है। और श्रोताओं, चलिए कार्यक्रम में सुन लेते हैं एक सुंदर सा गीत।

0: सुबह सुहानी हो, इस खूबसूरत से गीत के बाद आइए सुन लेते हैं आज का ट्रैफिक अपडेट। इसके बाद एक और महत्वपूर्ण विषय पर हम आपसे चर्चा करेंगे।
1: बिलासपुर जिले की यातायात व्यवस्था संबंधी दैनिक कार्यक्रम ट्रैफिक अपडेट्स ऑफ बिलासपुर के साथ मैं हूं उमाशंकर पांडे। कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत है। नगर पालिक निगम की प्रत्येक सड़कों से लेकर बिलासपुर जिले के कोने कोने तक सभी ग्रामीण क्षेत्रों की सभी सड़कों में सभी प्रकार के वाहनों का स्वतंत्र आवागमन हो रहा है। इन्हीं सड़कों के माध्यम से बिलासपुर का सभी स्थानों से संपर्क बना हुआ है, जिसमें यात्री परिवहन के साथ साथ माल परिवहन भी आसानी से हो रहा है। अर्थात संपूर्ण बिलासपुर जिले की यातायात व्यवस्था बिल्कुल सामान्य है। मित्रों, आज से ही लगातार 4 दिनों तक छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग की मुख्य परीक्षा जिले के 5 परीक्षा केंद्रों में हो रही है। यह परीक्षा 2 पालियों में होगी, जिसमें पहली प्रातः 9 बजे से दोपहर 12 बजे तक तथा दूसरी दोपहर 2 बजे से शाम 5 बजे तक होगी। इस महत्वपूर्ण एवं असाधारण परीक्षा में 1948 परीक्षार्थी शामिल होंगे। सभी को बिलासपुर पुलिस की शुभकामनाएं। साथ ही सभी परीक्षार्थियों से अनुरोध है, आपके निवास से परीक्षा केंद्र तक आने में लगने वाले अनुमानित समय से कुछ जल्दी ही घर से निकलें, ताकि सड़क में कोई विषम स्थिति आने पर

0: आप समय पर परीक्षा केंद्र पहुंच सकें। साथियों, ये सभी जानते हैं कि समूचा बिलासपुर शहर, हर चौक चौराहे, सभी सड़क अति आधुनिक कैमरे की नजर में है। तनिक भी चूक करते ही चालान तत्काल संबंधित के पास आ रहा है, किंतु कैमरे को धोखा देने एवं यातायात नियमों के उल्लंघन करने या आपराधिक गतिविधियों में शामिल होने के आशय से कुछ असामाजिक एवं आपराधिक प्रवृत्ति के लोग अपनी उपस्थिति छिपाने के लिए अपने वाहनों के रजिस्ट्रेशन नंबर के साथ छेड़छाड़ कर रहे हैं। कोई रजिस्ट्रेशन नंबर को मोड़ देता है, कोई हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट न लगाकर रजिस्ट्रेशन नंबर घुमावदार गोलमोल अमानक ढंग से लिखाकर चल रहा है। वहीं कुछ लोग नंबर प्लेट पर काला टेप चिपका रहे हैं तो कोई चुंबक ही चिपका रहा है। वाहन के रजिस्ट्रेशन नंबर छिपाने का प्रयास कर रहे हैं, जो सर्वथा विधि विरुद्ध है। ऐसे लोगों के विरुद्ध मोटर व्हीकल एक्ट के साथ साथ आपराधिक प्रकरण भी दर्ज किए जा रहे हैं। अतः ऐसी गलती से बचें, हमेशा यातायात नियमों का पालन करें। आपकी यात्रा शुभ हो।
1: ट्रैफिक अपडेट ऑफ बिलासपुर अभी आप ने सुना, और हम आपसे चर्चा कर रहे थे कि एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय पर हम आपसे चर्चा करेंगे। और श्रोताओं, ये विषय है बच्चों की इंटरनेट के लत से बचाओ और अभिभावकों की भूमिका। श्रोताओं, आज का दौर डिजिटल युग का दौर है। इंटरनेट ने शिक्षा, मनोरंजन, संचार और ज्ञान के नए द्वार खोल दिए हैं। बच्चे ऑनलाइन पढ़ाई करते हैं, नई चीज़ें सीखते हैं और दुनिया भर की जानकारी इसके माध्यम से प्राप्त करते हैं। लेकिन जहां इंटरनेट के बहुत सारे लाभ हैं, वहीं इसका अधिक और अनियंत्रित उपयोग बच्चों के लिए गंभीर समस्या भी बनता जा रहा है। आज बहुत से बच्चे घंटों मोबाइल फोन, टैबलेट, लैपटॉप और वीडियो गेम में व्यस्त रहते हैं। धीरे धीरे उनकी यह आदत लत का रूप ले लेती है। जब बच्चा इंटरनेट या मोबाइल से दूर होने पर बेचैनी महसूस करे, पढ़ाई और खेलकूद में रुचि कम हो जाए, परिवार और दोस्तों से दूरी बनाने लगे, तो यह इंटरनेट की लत का संकेत हो सकता है। इंटरनेट की यह लत बच्चों के शारीरिक, मानसिक और सामाजिक विकास पर नकारात्मक प्रभाव डालती है। लगातार स्क्रीन देखने से आंखों पर दबाव पड़ता है, सिर दर्द, नींद की समस्या और शारीरिक गतिविधियों में कमी आती है। इसके साथ साथ बच्चों में चिड़चिड़ापन, तनाव, ध्यान की कमी और अकेलेपन की भावना भी विकसित हो सकती है। कई बार वे वास्तविक दुनिया की बजाय आभासी दुनिया में अधिक समय बिताने लगते हैं, जिससे उनका सामाजिक विकास भी प्रभावित होता है। श्रोताओं, इन दिनों बच्चों को इंटरनेट से पूरी तरह दूर रखना संभव ही नहीं है और न ही उचित है। ज़रूरत इस बात की है कि इंटरनेट का उपयोग संतुलित और सुरक्षित तरीके से हो। इसमें सबसे महत्वपूर्ण भूमिका अभिभावकों की है। सबसे पहले माता पिता को स्वयं बच्चों के सामने अच्छा उदाहरण प्रस्तुत करना चाहिए। यदि घर के बड़े हर समय मोबाइल फोन में व्यस्त रहेंगे तो बच्चों से अलग व्यवहार की अपेक्षा करना मुश्किल होगा। बच्चे वही सीखते हैं जो वे अपने आसपास देखते हैं। दूसरी महत्वपूर्ण बात है बच्चों के लिए स्क्रीन टाइम निर्धारित करना। विशेषज्ञों के अनुसार बच्चों के लिए उम्र के अनुसार सीमित और नियंत्रित स्क्रीन उपयोग बेहतर माना जाता है। माता पिता को स्पष्ट नियम बनाने चाहिए कि पढ़ाई के अतिरिक्त मनोरंजन के लिए मोबाइल या इंटरनेट का उपयोग कितनी देर तक किया जा सकता है। एक और बात, बच्चों को वैकल्पिक गतिविधियों की ओर प्रेरित करना है। खेलकूद, किताबें पढ़ना, चित्रकला, संगीत, बागवानी और पारिवारिक गतिविधियों में बच्चों की रुचि, बच्चों का ध्यान स्क्रीन से हटाने में ये मदद करती है। जब बच्चे रचनात्मक और शारीरिक गतिविधियों में व्यस्त रहते हैं तो इंटरनेट पर उनकी निर्भरता अपने आप कम हो सकती है। अभिभावकों को अपने बच्चों के साथ संवाद बढ़ाने की ज़रूरत है। बहुत बार बच्चे अकेलेपन, तनाव या जिज्ञासा के कारण इंटरनेट की ओर अधिक आकर्षित होते हैं। यदि माता पिता बच्चों की बातें ध्यान से सुने, उनकी समस्याओं को समझें और मित्रवत व्यवहार करें तो बच्चे वास्तविक संबंधों को अधिक महत्व दें।

इसके साथ ही इंटरनेट सुरक्षा के बारे में बच्चों को जागरूक करना भी बेहद जरूरी है। उन्हें यह समझाने की जरूरत है कि ऑनलाइन दुनिया में हर जानकारी सही नहीं होती। अजनबियों से बातचीत, निजी जानकारी साझा करना, फर्जी वेबसाइटों और भ्रामक सामग्री से बचना जरूरी है। अभिभावकों को समय समय पर इसकी जानकारी अपने बच्चों को देनी चाहिए। आज कई डिजिटल उपकरणों में पेरेंटल कंट्रोल की सुविधा भी उपलब्ध है। अभिभावक इन सुविधाओं का उपयोग कर बच्चों की ऑनलाइन गतिविधियों पर निगरानी रख सकते हैं। हालांकि निगरानी का अर्थ अविश्वास नहीं होना चाहिए, बल्कि बच्चों की सुरक्षा सुनिश्चित करना होना चाहिए। श्रोताओं, यह ध्यान रखने की भी जरूरत है कि इंटरनेट बच्चों के जीवन का हिस्सा है, लेकिन पूरा जीवन नहीं। बच्चों को यह समझाने की जरूरत है कि वास्तविक जीवन के अनुभव, परिवार के साथ बिताया गया समय, मित्रों के साथ खेलना, प्रकृति से जुड़ना और नई चीजें सीखना भी उतना ही महत्वपूर्ण है। यदि किसी बच्चे में इंटरनेट की लत के गंभीर लक्षण दिखाई दें, जैसे पढ़ाई में लगातार गिरावट, सामाजिक अलगाव, बहुत अधिक गुस्सा या मोबाइल न मिलने पर असामान्य व्यवहार, तो अभिभावकों को विशेषज्ञों से परामर्श लेने में संकोच नहीं करना चाहिए। यही कहा जा सकता है कि इंटरनेट एक उपयोगी साधन है, लेकिन उसका संतुलित उपयोग ही लाभकारी है। बच्चों को डिजिटल दुनिया के लाभ मिले, लेकिन वे इसकी गिरफ्त में न आए, यह सुनिश्चित करने की जिम्मेदारी परिवार और अभिभावकों की है। प्रेम, संवाद, अनुशासन और सही मार्गदर्शन के जरिए बच्चों को इंटरनेट की लत से बचाया जा सकता है और उनके स्वस्थ, सुरक्षित और उज्ज्वल भविष्य का निर्माण किया जा सकता है।

और श्रोताओं, चलते चलते एक छोटी सी चर्चा। जैसा कि कल हम सभी ने विश्व पर्यावरण दिवस मनाया, अपने आसपास बहुत सारे लोगों ने पौधे लगाए, सरकारी संस्थाएं, विद्यालय, सामाजिक संगठन और आम नागरिकों ने उत्साह के साथ वृक्षारोपण अभियान में हिस्सा लिया। हजारों लाखों पौधे पूरे देश भर में लगाए गए। श्रोताओं, पौधे लगाए गए, लेकिन क्या केवल पौधे लगाना ही महत्वपूर्ण है? पौधों का संरक्षण, उसकी नियमित देखभाल और उसे एक मजबूत वृक्ष बनने तक सुरक्षित रखना ही वास्तविक पर्यावरण सेवा है। यदि लगाए गए पौधों की उचित देखभाल नहीं की जाए तो उनका जीवित रहना कठिन है और वृक्षारोपण का उद्देश्य अधूरा रह जाएगा। श्रोताओं, जिस तरह से एक पौधे को देखभाल की ज़रूरत होती है, ठीक उसी तरह जैसे एक छोटे बच्चे को, उसे समय समय पर पानी, सुरक्षा और पोषण की ज़रूरत होती है। खासकर गर्मी के मौसम में पौधों को नियमित सिंचाई की ज़रूरत होती है। पौधे के आसपास की मिट्टी को नम बनाए रखना ज़रूरी है ताकि उसकी जड़ें मजबूत हो सके। पौधों की सुरक्षा भी उतनी ही ज़रूरी है। खुले स्थानों में लगाए गए पौधों को पशुओं, तेज हवा या अन्य नुकसान से बचाने के लिए ट्री गार्ड या बांस की घेराबंदी की व्यवस्था की जानी चाहिए। इससे पौधे सुरक्षित रहते हैं और उनका बेहतर विकास हो पाता है। इसके साथ ही पौधों के आसपास उगने वाले खरपतवार को समय समय पर हटाना चाहिए। खरपतवार मिट्टी के पोषक तत्वों और पानी का बड़ा हिस्सा स्वयं ग्रहण कर लेते हैं, जिससे पौधों की बढ़ोतरी प्रभावित होती है। पौधे के आसपास की मिट्टी को समय समय पर ढीला करने से हवा और पानी जड़ों तक आसानी से पहुंच पाती है। पौधे लगाने के बाद कम से कम 2 से 3 वर्षों तक नियमित देखभाल जरूरी होती है। यही वह अवधि होती है जब पौधा धीरे धीरे एक मजबूत वृक्ष का रूप ले लेता है। यदि इस दौरान पर्याप्त ध्यान दिया जाए तो उसके जीवित रहने की संभावना कई गुना बढ़ जाती है। श्रोताओं, आज पर्यावरण संरक्षण केवल सरकारों या संस्थाओं की जिम्मेदारी नहीं है, यह समाज के हर व्यक्ति का दायित्व है। यदि हर नागरिक अपने द्वारा लगाए गए एक एक पौधे की जिम्मेदारी ले तो आने वाले वर्षों में हमारे शहर, गांव और आसपास का वातावरण अधिक हरित और स्वच्छ बन सकता है। और इसी के साथ कार्यक्रम आज सुबह से हमें दीजिए अनुमति। आपका दिन शुभ और मंगलमय हो, इसी कामना के साथ।

सूचनात्मक कार्यक्रम आज सुबह अभी आप सुन रहे थे आकाशवाणी का ये बिलासपुर केंद्र है FM 103.2 MHz पर। और अब आइए आनंद लेते हैं।

सदाबहार नगमों का। श्रोताओं, सदाबहार नगमे के इस क्रम में हम याद कर रहे हैं हिंदी फिल्म संगीत के उस महान गीतकार को जिसके शब्दों में प्रेम, विरह, समर्पण, हास्य और जीवन दर्शन के अनगिनत रंगों को अमर बना दिया है। हम बात कर रहे हैं गीतकार राजेंद्र कृष्ण की, जिनका जन्म दिन आज 6 जून को हम मना रहे हैं। राजेंद्र कृष्ण का जन्म 6 जून 1919 को हुआ। हिंदी सिनेमा के स्वर्णिम दौर में जब गीत केवल मनोरंजन का साधन नहीं बल्कि भावनाओं की अभिव्यक्ति हुआ करते थे, तब राजेंद्र कृष्ण ने अपनी लेखनी से लाखों दिलों को छुआ। उनकी भाषा सरल थी लेकिन भावनाएं गहरी थी। यही कारण है कि उनके गीत आज भी उतने ही लोकप्रिय हैं जितने दशकों पहले थे।

फिल्म ब्लैकमेल का यह गीत आज भी प्रेम का पर्याय माना जाता है। हर पीढ़ी ने इसे अपने अंदाज में महसूस किया है। यह गीत बताता है कि राजेंद्र कृष्ण भावनाओं को कितनी सहजता से शब्दों में ढाल देते थे। प्रेम और समर्पण की इसी भावना को उन्होंने एक और अमर गीत में व्यक्त किया है।

फिल्म खानदान का यह गीत भारतीय नारी के प्रेम, विश्वास और समर्पण का ऐसा चित्र प्रस्तुत करता है जो आज भी लोगों की आंखें नम कर देता है। इस गीत के लिए राजेंद्र कृष्ण को फिल्म फेयर पुरस्कार मिला था। राजेंद्र कृष्ण केवल प्रेम के गीतकार नहीं थे, वे जीवन की संवेदनाओं को भी उतनी ही खूबसूरती से व्यक्त करते थे।

यह गीत आज भी प्रेम की गहराइयों और त्याग की भावना को अभिव्यक्त करने वाला एक कालजयी गीत माना जाता है। उनकी लेखनी का एक और अनमोल गीत सुनिए।

Okay.

नार बड़ी होशियार।

Thank you.

ಚತುರ ನಾರ ಅಮ ಚೋರೆಗಳೇ.

राजेंद्र कृष्ण की रचनात्मकता का एक अलग रंग हमें लोकप्रिय गीत ईना मीना टीका में दिखाई देता है, जिसने अपने दौर में युवाओं को झूमने पर मजबूर कर दिया था।

साल 1987 में राजेंद्र कृष्ण इस दुनिया से विदा हो गए, लेकिन उनके लिखे गीत आज भी करोड़ों लोगों के दिलों में जिंदा हैं। उनके शब्दों में प्रेम है, संवेदना है, जीवन का दर्शन है और भारतीय संस्कृति की आत्मा भी।

0: राजेंद्र कृष्ण की जयंती पर आज हम उन्हें नमन करते हैं और उनके अमर गीतों को याद करते हुए यही कहेंगे कि महान कलाकार कभी विदा नहीं होते, वे अपनी रचनाओं में अपने गीतों में हमेशा जीवित रहते हैं।
1: कौन कहां पर मिल जाए और कौन कहां।
0: और इसी के साथ सदाबहार नगमे कार्यक्रम से हमें दीजिए विदा। आकाशवाणी का ये बिलासपुर केंद्र है, FM 103.2 MHz पर 8 बजने वाले हैं और अब समाचारों के लिए हम जुड़ेंगे आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से।

0: आजकल भारत के गांव-गांव में छतों का रूप बदल गया है। जहां पहले छतों पर सिर्फ पापड़ और कपड़े सूखते थे, वहां पर अब बिजली बिल जीरो हो रहे हैं। गांव-गांव में लोग सोलर पैनल लगवा रहे हैं। आप भी लगवा लीजिए। 70,000 की सब्सिडी दे रही है भारत सरकार। 30,00,000 से अधिक परिवार तो इसका लाभ उठा चुके हैं। पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना से जुड़ने के लिए रजिस्टर करें pmsuryaghar.gov.in पर। हर घर
1: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार प्रभात के साथ मैं मुकेश कुमार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, वैश्विक आर्थिक संकट के बावजूद भारत की अर्थव्यवस्था विशेष रूप से मजबूत बनी हुई है। रिजर्व बैंक ने निवेश के लिए विदेशी निवेशकों को नियमों में छूट दी। कृषि मंत्रालय ने कहा, संतुलित उर्वरक उपयोग और कृषि के लिए 9,42,000 से अधिक किसान खेत बचाओ अभियान में शामिल हुए। भारत ने जम्मू कश्मीर मामले में संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के अस्थायी सदस्यता का दुरुपयोग करने के लिए पाकिस्तान की निंदा की। मौसम विभाग ने 9 जून तक केरल के उत्तरी जिलों में मूसलाधार वर्षा का अनुमान व्यक्त किया और भारतीय ग्रैंड मास्टर आर प्रज्ञानानंद नॉर्वे शतरंज खिताब जीतने वाले पहले भारतीय बने। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि वैश्विक आर्थिक संकट के बावजूद भारतीय अर्थव्यवस्था की नींव असाधारण रूप से मजबूत बनी हुई है। उन्होंने कहा कि देश ने वित्त वर्ष 2025-26 में

0: 7.7% की मजबूत वृद्धि दर्ज की है। श्री मोदी ने में कल लगभग 2,970 करोड़ रुपए की विकास परियोजनाओं का शुभारंभ किया। इस अवसर पर विशाल जनसभा को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत विश्व की सबसे तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्थाओं में से एक है।
1: वर्ष 2025-26 में भारत ने 7.7% की ग्रोथ रेट हासिल की है और पिछला क्वार्टर जो 31 मार्च को खत्म हुआ उसमें भी भारत की ग्रोथ 7.8% रही है और ये दुनिया में तेज गति से आगे बढ़ने वाली बड़ी इकोनॉमी है।
0: प्रधानमंत्री ने ऊर्जा क्षेत्र में आत्मनिर्भरता पर हुए कहा कि विश्व हरित भविष्य की ओर बढ़ रहा है। उन्होंने कहा कि भारत आर्थिक विकास और पर्यावरण संरक्षण के बीच संतुलन बनाकर इस दिशा में अग्रणी भूमिका निभा रहा है।
1: ये जो वैश्विक संकट चल रहा है ये दिखाता है कि एनर्जी के मामले में आत्मनिर्भरता कितनी जरूरी है और बीते 12 वर्षों में देश ने जो कैपेसिटी तैयार की है कितना बड़ा महत्व है। 12 वर्ष पहले भारत में सौर ऊर्जा का उत्पादन नाम मात्र का था, आज हम दुनिया के टॉप 5 देशों में से एक हैं।
0: इससे पहले श्री मोदी ने सूरत में 18,000 करोड़ रुपए से अधिक की विभिन्न विकास परियोजनाओं का शुभारंभ किया। प्रधानमंत्री ने बताया कि भारत की कुल नवीकरणीय ऊर्जा क्षमता 250 गीगावाट में गुजरात का 50 गीगावाट है। भारतीय रिजर्व बैंक ने विदेशी निवेशकों के सरकारी प्रतिभूतियों में निवेश से जुड़े नियमों में महत्वपूर्ण बदलाव किए हैं। नए प्रावधानों के अंतर्गत सामान्य निवेश करने वाले विदेशी निवेशकों को अब कई तरह की निवेश सीमाओं से छूट दी गई है। एक रिपोर्ट।
2: नई व्यवस्था के तहत जनरल रूट से निवेश करने वाले FPI को अधिक लापन मिलेगा क्योंकि कुछ निवेश संबंधी प्रतिबंध हटाए गए हैं। रिजर्व बैंक ने सरकारी प्रतिभूतियों और राज्य विकास ऋणों में निवेश के लिए लागू जनरल और लॉन्ग टर्म श्रेणियों को मिलाकर एक एकीकृत निवेश सीमा भी निर्धारित की है। वित्त वर्ष 2026-27 की पहली छमाही के लिए केंद्र सरकार की प्रतिभूतियों में निवेश सीमा 4,62,490 करोड़ और दूसरी छमाही के लिए 4,77,006 करोड़ तय की गई है। राज्य विकास ऋणों के लिए ये सीमा पहली छमाही में 1,53,043 करोड़ और दूसरी छमाही में 1,64,242 करोड़ निर्धारित की गई है। अंकिता आपटे, आकाशवाणी समाचार, मुंबई।
0: वित्त वर्ष 2025-26 में भी अर्थव्यवस्था की मजबूती बरकरार है। वास्तविक सकल घरेलू उत्पाद में 2024-25 के 7.1% की तुलना में 2025-26 में 7.7% की वृद्धि का अनुमान है। 2025-26 में वास्तविक सकल घरेलू उत्पाद 323 लाख करोड़ रुपए से अधिक होने की संभावना है। कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय ने कहा है कि देश भर में अब तक 9,42,000 से अधिक किसान खेत बचाओ अभियान से जुड़ चुके हैं। हमारे संवाददाता ने बताया है कि संतुलित उर्वरक उपयोग को बढ़ावा देने के लिए शुरू किया गया ये अभियान अब जन आंदोलन का रूप ले रहा है।
3: अनुसार अभियान के अंतर्गत अब तक 17,800 से अधिक जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किए गए हैं जिनसे लगभग 7 लाख किसान लाभान्वित हुए हैं। इसके अलावा 3,700 से अधिक प्रशिक्षण कार्यक्रमों में 1.5 लाख से अधिक प्रतिभागियों को उपयोग, मृदा स्वास्थ्य प्रबंधन और वैज्ञानिक खेती की जानकारी दी गई है। मंत्रालय ने ये भी बताया कि किसानों को जैविक और वैकल्पिक पोषक उपयोग की जानकारी देने के लिए 8,850 से अधिक व्यावहारिक प्रदर्शन भी आयोजित किए गए हैं। अभियान का उद्देश्य मिट्टी की उर्वरता बनाए रखना, रासायनिक उर्वरकों पर निर्भरता कम करना और टिकाऊ खेती को बढ़ावा देना है। अक्षत की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से अमीशा।
0: विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर आज नई दिल्ली में नेपाल के विदेश मंत्री शिशिर खनाल के साथ वार्ता करेंगे। बैठक में व्यापार, निवेश, ऊर्जा और लोगों के बीच आपसी संपर्क सहित विभिन्न मुद्दों पर चर्चा होगी। 3 दिन की भारत यात्रा पर कल श्री खनाल ने नई दिल्ली में राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल से मुलाकात। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने बताया कि ये यात्रा भारत और नेपाल के विशेष साझेदारी संबंधों को और प्रगाढ़ बनाने में सहायक होगी।
4: With Nepal, we have an expansive agenda.
5: नेपाल के साथ हमारा एजेंडा बहुत व्यापक है। इसमें विकास के लिए सहयोग से लोगों के बीच आपसी संबंध और व्यापार तथा निवेश शामिल हैं। इसलिए जब दोनों देशों के विदेश

0: प्रधानमंत्री मिलेंगे तो इन सभी संबंधों पर चर्चा होगी। हम नेपाल के साथ अपनी इस बहुआयामी साझेदारी को और मजबूत करने के इच्छुक हैं।
1: पार्टनरशिप दैट वी हैव विद नेपाल।
2: ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं।
3: माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र जी का देश के सभी एग्जाम वॉरियर्स के लिए विशेष संदेश।
4: जिंदगी परीक्षा के लिए नहीं है, हमारे जीवन को बनाने के लिए शिक्षा एक माध्यम है।
3: परीक्षा से जुड़े किसी भी प्रश्न या समस्या के समाधान हेतु NCPCR द्वारा आयोजित लाइव स्ट्रीमिंग सेशन में विशेषज्ञों से सीधे बातचीत करें, जो कि 23 अप्रैल से लगातार चल रहे हैं। अधिक जानकारी के लिए www.ncpcr.gov.in पर लॉगिन करें।
2: समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। भारत ने कहा है कि पाकिस्तान संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की अपनी अस्थायी सदस्यता का दुरुपयोग जम्मू कश्मीर के बारे में झूठे दावे फैलाने के कर रहा है। भारत ने चेतावनी दी है कि पाकिस्तान को अपनी जिम्मेदारियों का ध्यान रखना चाहिए। भारत के स्थायी प्रतिनिधि पी हरीश ने कहा कि जम्मू कश्मीर भारत का अभिन्न और अविभाज्य अंग था, है और हम पाकिस्तान के खोखले बयान और झूठे दावे इस मूलभूत वास्तविकता को नहीं बदल सकते।
5: I'd like to remind Pakistan that being a member of the...
6: मैं पाकिस्तान को याद दिलाना चाहता हूं कि संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद का सदस्य होना एक बड़ी जिम्मेदारी है। यह पक्षपाती और झूठी बातें फैलाने का मंच नहीं है। मैं ये बात साफ साफ कहना चाहता हूं। जम्मू कश्मीर भारत का अभिन्न और अटूट हिस्सा था, है और हमेशा रहेगा। पाकिस्तान की खोखली बयानबाजी और झूठे दावों से ये बुनियादी सच्चाई नहीं बदलेगी।
5: Claims by Pakistan would not change this fundamental reality.
2: विदेश मंत्रालय ने कहा है कि 2026 में अब तक 1076 भारतीय नागरिकों को अमेरिका से भारत वापस भेजा जा चुका है। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने बताया कि 2025 में अमेरिका से 3567 भारतीय नागरिक वापस भेजे गए थे। उन्होंने कहा कि दोनों देशों के बीच प्रवासन और आवागमन को लेकर बातचीत जारी है। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने भारत में पीढ़ी के लड़ाकू विमान सुखोई SU-57 के संयुक्त उत्पादन का प्रस्ताव दिया है। सेंट पीटर्सबर्ग अंतरराष्ट्रीय आर्थिक मंच के दौरान उन्होंने कहा कि रूस SU-57 कार्यक्रम में भारत की भागीदारी का इच्छुक है। श्री पुतिन ने एकीकृत वायु रक्षा प्रणालियों और अन्य रक्षाओं के क्षेत्र में भी भारत के साथ सहयोग की इच्छा जताई है। भारतीय शांतिदूत मेजर अभिलाषा बराक को संयुक्त राष्ट्र महासचिव अंतोनियो गुतरश ने प्रतिष्ठित 2025 संयुक्त राष्ट्र सैन्य लैंगिक समानता समर्थक पुरस्कार से सम्मानित किया है। लेबनान में संयुक्त राष्ट्र अंतरिम बल में भारतीय बटालियन के साथ सेवारत मेजर बराक को संयुक्त राष्ट्र शांतिदूतों के अंतर्राष्ट्रीय दिवस के अवसर पर सम्मानित किया गया। अमरीका की सेना ने हॉर्मुज जलडमरू मध्य के पास ईरान के तटीय निगरानी रडार ठिकानों पर हमला किया है। अमरीका ने कहा है कि क्षेत्रीय समुद्री यातायात को निशाना बनाने वाले ईरान के 4 ड्रोन मार गिराए जाने के बाद ये कार्रवाई की गई। इससे अमरीका और ईरान के बीच रुकी हुई शांति वार्ताओं पर और दबाव बढ़ गया है। एक रिपोर्ट।
7: ये हमला ऐसे समय में हुआ है जब अमेरिका और ईरान के बीच कूटनीतिक बातचीत रुकी हुई है। ईरान विदेशों में अपनी अरबों डॉलर की परिसंपत्तियों पर लगे प्रतिबंध को हटाने की मांग कर रहा है। ईरान के अधिकारी किसी भी अंतरिम समझौते की प्रगति को इन प्रतिबंधों से जोड़ रहे हैं। इस बीच लेबनान में हिजबुल्ला ने अमेरिका की मध्यस्थता वाले इसराइल और लेबनान सरकार द्वारा स्वीकार किए युद्ध विराम प्रस्ताव को ठुकरा दिया है। हिजबुल्ला के अनुसार किसी भी समझौते में दक्षिणी लेबनान से इसराइल की सेना की वापसी की बात शामिल होनी चाहिए। हिजबुल्ला ने ब्यूफोर्ट किले के पास इसराइल की सेना पर हमले किए हैं। इस किले को इसराइल की सेना ने हालिया हमले के बाद अपने अधिकार में ले लिया था। ईरान ने हिजबुल्ला के लिए अपने समर्थन की बात दोहराई है। समाचार कक्ष से विनोद की रिपोर्ट के साथ मैं राजेश कुमार मीणा।
2: केरलम में दक्षिण पश्चिम मानसून के तीव्र होने के साथ ही मौसम विभाग ने राज्य के उत्तरी जिलों में 9 जून तक तेज वर्षा का अनुमान व्यक्त किया है। मलप्पुरम, कोझिकोड, वायनाड, कन्नूर और कासरगोड जिलों के लिए आज रेड अलर्ट जारी किया गया है, जबकि मलप्पुरम, कोझिकोड और वायनाड में कल भी रेड अलर्ट रहेगा। अन्य 6 जिलों के लिए आज ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। भारतीय ग्रैंड मास्टर आर प्रज्ञानानंद ने ओस्लो में नॉर्वे शतरंज खिताब जीतकर इतिहास रच दिया है। प्रज्ञानानंद ने अंतिम दौर में जर्मनी की विंसेंट क्रीमर को हराया। ये खिताब जीतने वाले पहले भारतीय बन गए हैं। नॉर्वे शतरंज में प्रज्ञानानंद ने विश्व के नंबर एक खिलाड़ी मैग्नस कार्लसन को हराया था। भारत और अफगानिस्तान के बीच आज से शुरू हो रहा क्रिकेट टेस्ट मैच चंडीगढ़ में खेला जाएगा। इससे पहले 2018 में

0: अफगानिस्तान ने भारत के साथ पहला टेस्ट मैच खेला था। सैफ महिला फुटबॉल चैंपियनशिप के फाइनल में आज भारत का मुकाबला बांग्लादेश से होगा। गोवा के मडगांव में मैच 6:30 बजे से खेला जाएगा। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन एआईआर मोबाइल ऐप पर भी उपलब्ध हैं। और अब आज के पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं मुकेश कुमार बल।
1: भारत की आर्थिक वृद्धि में बढ़त की खबर सभी अखबारों में प्रमुखता से है। हिंदुस्तान की सुर्खी है, संकट के बीच भारत की जीडीपी में उछाल, चौथी तिमाही में 7.8% रही। पत्र के अनुसार मजबूत मांग और उत्पादन के कारण रफ्तार तेज रही। नवभारत टाइम्स के अनुसार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बोले, ये 140 करोड़ भारतीयों की मेहनत और आर्थिक सुधारों का नतीजा है। पत्र के अनुसार विदेशी पूंजी के लिए टैक्स फ्री राहत तैयार, आरबीआई ने बिना सीमा विदेशी निवेश का दायरा बढ़ाया। देशबंधु के अनुसार लोन होंगे और ईएमआई भी नहीं बढ़ेगी। दैनिक भास्कर ने ऐतिहासिक शीर्षक से लिखा है, एआई का ग्लोबल हब बनेंगे हम। ऑस्ट्रेलियाई कंपनी देश में 3 लाख करोड़ रुपए निवेश करेगी, 5 गीगावाट क्षमता का डेटा सेंटर बनाएगी एयर ट्रंक। जनसत्ता ने अध्ययन शीर्षक से लिखा है, अमरीका के 96 यूनिकॉर्न में भारतीय मूल के उद्यमियों का योगदान, इनमें कृत्रिम मेधा आधारित सर्च इंजन परप्लेक्सिटी भी शामिल। पत्र के अनुसार नव उद्यमों में 59% की स्थापना प्रवासी उद्यमियों ने। वीर अर्जुन ने अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के हवाले से लिखा है, मेरे मोदी अच्छे मित्र हैं, व्यापार समझौता हो जाएगा। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा, व्यापार समझौता का पहला चरण जुलाई तक संभव। दैनिक जागरण लिखता है, भारत संग SU-57 बनाने को रूस तैयार, रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने की 5 ही का अत्याधुनिक लड़ाकू विमान देने की पेशकश। दिल्ली के मालवीय नगर अग्निकांड पर पंजाब केसरी की सुर्खी है, लापरवाह अफसरों पर सीधे FIR। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कहा, जिला मजिस्ट्रेट की शक्तियों को और प्रभावी बनाने का ऐतिहासिक फैसला किया गया। जनसत्ता ने अनदेखी की आग शीर्षक से संपादकीय में लिखा है कि कोई हादसा एक मामूली कोताही का नतीजा हो सकता है, लेकिन अगर वो गलती बनी रही तो उन्हें आपराधिक लापरवाही से कम नहीं माना जा सकता।
0: और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा, वैश्विक आर्थिक संकट के बावजूद भारतीय अर्थव्यवस्था विशेष रूप से मजबूत बनी हुई है। रिजर्व बैंक ने सरकारी प्रतिभूतियों में निवेश के लिए विदेशी निवेशकों को नियमों में छूट दी। कृषि मंत्रालय ने कहा, संतुलित उर्वरक उपयोग, 42,000 से अधिक किसान खेत बचाओ अभियान में शामिल हुए। भारत ने जम्मू कश्मीर मामले में संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की अस्थायी सदस्यता का दुरुपयोग करने के लिए पाकिस्तान की निंदा की। और भारतीय ग्रैंड मास्टर आर प्रज्ञानानंद नॉर्वे शतरंज खिताब जीतने वाले पहले भारतीय बने। इसके साथ ही समाचार प्रभात का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
2: आकाशवाणी प्रेजेंट्स मॉर्निंग न्यूज। गुड मॉर्निंग, आई एम शगुन चोपड़ा। द हेडलाइंस। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी सर, economy remains exceptionally strong despite global economic crisis. Reserve Bank of India eases regulatory norms for foreign portfolio investors in government securities to attract investment. More than 9.42 lakh farmers to join Khet Bachao Abhiyan for balanced fertilizer use and sustainable farming. India slams Pakistan for abusing its temporary membership of UN Security Council to peddle false narratives about Jammu and Kashmir. IMD forecasts extremely heavy northern districts of Keralam until June 9th. And Indian Grandmaster R. Pragyanan scripts history, becomes first Indian to win Norway chess title. And now the news in detail. Prime Minister Narendra Modi has asserted that the foundation of the Indian economy remains exceptionally strong, with the nation recording a robust 7.7% growth in the fiscal year 2025-26 despite a global economic crisis. Addressing a large gathering after launching a series of developmental projects worth around 2,970 crore rupees in Daman last evening, the Prime Minister noted that India continues to be among the fastest growing economies in the world. He assured the citizens that the country will forge ahead with its reform express while prioritizing massive infrastructure development and welfare schemes for the poor.
3: वर्ष 2025-26 में

0: श्रोताओं नमस्कार, डॉक्टर की सलाह कार्यक्रम में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। श्रोताओं, जब हम अपने शरीर के अंगों की बात करते हैं तो हमारा जो सिर होता है वो काफी महत्वपूर्ण होता है। इसमें लगने वाले आघात कभी कभी हमें काफी तकलीफ होती है और सभी लोगों को सलाह है कि अपने सिर पे लगने वाले चोटों से हमेशा सावधान रहें। श्रोताओं, कुछ बीमारियों का कभी सामना करना पड़ता है जिनका संबंध किया हमारे सिर से होता है, और कुछ बीमारियां बाहरी तौर पे होती हैं, कुछ अंदरूनी तौर पे। तो मस्तिष्क से संबंधित कौन कौन सी बीमारियां होती हैं, उनके क्या कारण हो सकते हैं, उनके लक्षण क्या है और उनके क्या उपचार हो सकते हैं, इस बारे में जानकारी के लिए आज हमने अपने स्टूडियो में आमंत्रित किया है डॉक्टर उमेश कुमार चंद्रा जी को, जो एक मस्तिष्क रोग विशेषज्ञ हैं। तो डॉक्टर उमेश जी, कार्यक्रम में आपका बहुत बहुत स्वागत है।
1: जी धन्यवाद। मैं डॉक्टर उमेश कुमार चंद्रा

0: फिश रोग विशेषज्ञ रायपुर।
1: तो डॉक्टर साहब, सबसे पहले तो कार्यक्रम में हम ये जानना चाहेंगे कि जब हम अपने मस्तिष्क की बात करते हैं तो इनमें कौन कौन सी बीमारी जो है प्रमुख तौर पर देखी जा सकती हैं।
0: जहाँ तक मस्तिष्क की बात है, बहुत ही वृहद संरचना होती है शरीर की, बहुत बड़ा अंग होता है मस्तिष्क, लेके पूरा स्पाइन तक, साथ में हाथ और पैरों में फैले हुए नसों तक का पूरी बीमारी मस्तिष्क रोग विशेषज्ञ के अंदर कवर होती है। मस्तिष्क रोग में मुख्य मुख्य रूप से सबसे कॉमन सामान्य रूप से जो समाज में फैली है बीमारी, उसमें से एक है लकवा या स्ट्रोक। दूसरा प्रमुख बीमारी इसके अंदर आता है फिट्स या एपिलेप्सी, या जिसको दूसरी भाषा में मिर्गी बोला जाता है। तीसरा प्रमुख कारण है सिर दर्द या
1: जी
0: मस्तिष्क के अंदर दर्द। इसके अंदर बहुत कॉमनली है माइग्रेन हेडेक है मुख्य बीमारी के रूप में। तो हाथ पैर में सुन्नता या झुनझुनी, सर्वाइकल या गले में दर्द, और उसके बाद अगला है कमर दर्द। मुख्य मुख्य रूप से समस्याएं हैं जो मस्तिष्क रोग के अंदर आती हैं, और बहुत सारे टाइप से होते हैं समस्याएं, लेकिन ये जो 5-6 हैं ये मुख्य रूप से समाज में बृहद रूप से फैला हुआ है।
1: जी, डॉक्टर साहब, तो डॉक्टर साहब, एक बहुत ही वृहद रूप में पाया जाने वाला मस्तिष्क से संबंधित रोग है मिर्गी,
0: जी
1: तो इसके बारे में बताइए कि मिर्गी के दौरे क्या होते हैं।
0: मिर्गी समाज में मतलब प्रमुख रूप से फैला हुआ बीमारी है। ऑलमोस्ट हम बोला जाए कि 600-700 लोगों में एक किसी को मिर्गी या एपिलेप्सी की समस्या हो सकती है। यह बहुत ही कॉमन है, खासकर हमारे इंडिया और छत्तीसगढ़ बेल्ट में बहुत ही कॉमन है। मतलब ये मिर्गी ऐसा समस्या है कि हर गांव जाओ तो कम से कम आपको 8-10 मरीज मिल ही जाएंगे। और इसमें मुख्य रूप से ये होता है, जैसे अचानक से पैर में अकड़न आना, हाथ पैर का मुड़ जाना, चेहरे का ऊपर की ओर जाना, आगे चले जाना, मुंह को चबा देना, और साथ साथ मुंह से खर्राटे की आवाज आना और मुंह से झाग आना। ये सब स्थिति होने के बाद मरीज को कुछ टाइम के लिए बेहोशी आता है, और बेहोश होने के बाद मरीज गिर जाता है। ये स्थिति लगभग लगभग 1 से 2, 4 मिनट, 5 मिनट तक ही बनी रह सकती है। ये समाज में जो फैला मुख्य रूप से जो अपन देख पाते हैं, ये वो समस्याएं हैं। इसके और दूसरी समस्याएं भी होती हैं जो मिर्गी का ही रूप है, लेकिन इतना वृहद रूप से शरीर में सिम्टम नहीं दिखाता। उनमें एक है कि अचानक से कुछ क्षण के लिए कोई एक हाथ पैर कमजोर हो जाना, या फिर उस हाथ या पैर में कुछ टाइम के लिए एबनॉर्मल मोमेंट्स होना, अपने आप हिलना। और तीसरा एक टाइप होता है जिसमें कि कुछ टाइम के लिए अपन अपने रिश्तेदार या फिर दोस्त यार किसी को पहचान नहीं पाते। ये कुछ होता है ओनली 10-15 सेकेंड्स के लिए। अचानक से हम जिस इन्वायरमेंट में हैं, जिस माहौल में हैं, उससे अपन कट ऑफ हो जाते हैं।
1: जी
0: ये कुछ कॉमन कॉमन समस्याएं हैं एपिलेप्सी, जो एपिलेप्सी के अंदर एपिलेप्सी के प्रकार हैं।
1: जी, तो डॉक्टर साहब, जब हम मिर्गी की बात करते हैं तो इसके क्या प्रमुख कारण हो सकते हैं।
0: मिर्गी के लगभग लगभग बहुत सारे कारण हो सकते हैं। इनमें से एक तो है, जैसे किसी मरीज को लकवा हो गया, लकवा होने के बाद ब्रेन रिकवर कर रहा है तो सीजर आ सकता है या फिर मिर्गी आ सकता है। दूसरा, एक्सीडेंट के बाद में जो चोट लगती है सिर में, उसके बाद वो स्कार बनता है, वहाँ से मिर्गी के दौरे आ सकते हैं। और जैसे ब्रेन में टीबी हो गया, इन्फेक्शन हो गया, ये एक प्रमुख कारण है उसका भी। कुछ कंडीशन में जेनेटिक्स में होता है, जेनेटिकल कंडीशन में फैमिली में चलती आती रहती है। ये बच्चों में ज़्यादातर होता है, और वयस्क लोगों में खासकर एक्वायर्ड या फिर जो हम बाद में प्राप्त करते हैं वो कॉमन कारण होता है। बताया, इस लकवा हो गया, कोई चोट लग गया। और आजकल प्रमुख रूप से देखा जा रहा है, जैसे यंगस्टर्स में देखते हैं खासकर, कि नशे का प्रचलन बढ़ रहा है,
1: जी
0: अल्कोहल कंजप्शन बढ़ रहा है, सिगरेट स्मोकिंग बढ़ रहा है। इन सब से भी मिर्गी के आने के चांसेस बढ़ जाते हैं। जैसे जो मरीज, जो इंसान अल्कोहल के प्रति डिपेंडेंट हो गया है, उसको लंबे टाइम तक अल्कोहल का सेवन कर रहा है, लंबे टाइम तक स्मोकिंग या फिर टोबैको का सेवन कर रहा है, तो

0: बॉडी उसके अभ्यस्त हो गया, हमारा शरीर उसके अभ्यस्त हो चुका है। जब हम अचानक से कुछ दिन के लिए अधिक मात्रा में लिए, फिर अचानक से एक दिन कम कर दिए, तो ये एकदम से दौरा आने का कारण बन सकता है। तो खासकर यंगस्टर्स में जो अधिकतम जो कंजप्शन कर रहे हैं अल्कोहल का, निकोटीन, स्मोकिंग कर रहे हैं, उनमें मिर्गी आने के चांसेस और ज़्यादा हो जाती हैं।
1: जी, तो डॉक्टर साहब ये

0: जब पैदा हुआ तब ऑक्सीजन की कमी हो गई, ग्लूकोज कम हो गया, या फिर ब्रेन का इन्फेक्शन हो गया, तो या फिर बच्चों में कॉमनली देखा जाता है कि बुखार आया, तेज बुखार आया, 103-104 डिग्री फीवर आया है, उसके बाद में उसको झटका आ गया, तो बच्चों में ये बहुत कॉमन रहता है और उसको बोलते हैं अपन फेब्राइल सीजर।
1: जी
0: तो बच्चों में बिना कुछ स्ट्रक्चर एबनॉर्मलिटी के भी सीजर या दौरे आ सकते हैं। कुछ कारण रहते हैं जो जन्मजात ब्रेन में बनावट के कारण भी नॉर्मल बनावट है या फिर थोड़ा डिफेक्ट है, तो उस कारण से भी वो सीजर का एक कारण बन सकता है।
1: जी
0: लेकिन मुख्य रूप से बच्चों में या फिर एज के लोगों में इसका कारण अधिकांश समय पता नहीं चल पाता,
1: जी
0: लेकिन फिर भी हमको उसको आगे इन्वेस्टिगेशन करना है, आगे जांच करना है, इसके लिए हम उनको प्रमोट करते हैं।
1: डॉक्टर साहब, बहुत अच्छी जानकारी थी ये। और समाज में मिर्गी के लिए कई कई तरह की बातें होती हैं, इसके बारे में हम बात करेंगे। उससे पहले हम चाहेंगे कि आपकी पसंद का एक गीत हम इस कार्यक्रम में सुने।
0: जैसे मेरे फेवरेट सॉन्ग तो आशा ताई द्वारा गाया हुआ गाना है, उनमें से एक मुझे बहुत ही पसंद आता है, वो है इन आँखों की मस्ती।
1: तो बहुत अच्छा गीत है। तो श्रोताओं, कार्यक्रम में आइए सुनते हैं डॉक्टर साहब की पसंद का ये गीत।

0: श्रोताओं, डॉक्टर की सलाह कार्यक्रम में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। और इस गीत के पहले हम बात कर रहे थे डॉक्टर उमेश कुमार चंद्रा जी से, जो एक मस्तिष्क रोग विशेषज्ञ हैं, और बात कर रहे थे मस्तिष्क के संबंधी कुछ विकारों के बारे में। तो डॉक्टर साहब, कार्यक्रम में आपका स्वागत है। और जैसा कि हम इस गीत के पहले बात कर रहे थे, मस्तिष्क में होने वाली एक जो बीमारी है मिर्गी, जिसे एपिलेप्सी कहते हैं, उसके कारण उनके लक्षण क्या होते हैं? तो डॉक्टर साहब, जब हम देखते हैं किसी व्यक्ति को मिर्गी होता है, तो समाज क्या क्या तथ्य हो सकते हैं?
1: मुख्य रूप से जो जादू टोना वाला पहले भी भ्रांतियाँ फैली हुई हैं, उनके अंदर भी ये अभी भी आता है। अधिकांश लोग को लगता है कि ये कोई बीमारी ना होगी, कोई जादू टोना का प्रभाव है क्या, ऐसा लगता है। और लोग मिर्गी के दौरा आते हुए भी उनको बीमारी को अनदेखा करते हैं, मरीज के साथ दुर्व्यवहार करते हैं। कहीं पर देखा जाता है कि उनको अननेसेसरी टॉर्चर या फिर झाड़ फूंक के लिए ले जाया जाता है, जहाँ पे उनको फिजिकली टॉर्चर भी किया जाता है। और मुख्य देखा जाता है कि जैसे मरीज को किसी और के सामने दौरा आ गया, तो उनका जो प्रचलित तरीका है इलाज करने का या प्रचलित तरीका है कंट्रोल करने का, उसके अंदर वो लोग उसको लाइक चम्मच है, सॉलिड चीज़ें उसको मुंह में डाल देते हैं, जिस कारण मरीज को फिजिकल ट्रॉमा या फिर उनके दांतों को चोट लगना, जीभ पे चोट लगना बहुत कॉमन हो जाता है। और एक और होता है इसमें, जब मिर्गी से जो आदमी प्रभावित है उसका जब शादी उम्र आता है, तो सबसे यहाँ पे चीज़ों को झेलना पड़ता है या फिर सामना करना पड़ता है बोलूँगा। जैसे शादी के टाइम आया, शादी में उसको सामने वाले को उसने बीमारी के बारे में बताया, तो सब लोग को ये लगता है कि ये लाइलाज बीमारी है और ये पता नहीं कब से प्रभावित है, ठीक होगा कि नहीं होगा, आगे जीवन में क्या और प्रभाव पड़ेगा नहीं पड़ेगा, ये सबको देखते हुए उसके लिए बहुत सारा चीज़ों का सामना करना पड़ता है। ऐसे मरीज जो मिर्गी से प्रभावित हैं उनको, तो ऐसे जो मरीज मिर्गी से प्रभावित हैं उनको, वो हमारी तरह नॉर्मल आदमी है, कुछ टाइम के लिए उनके ब्रेन में करंट पैदा हो रहा है और वो उसको दौरे आ रहे हैं, कोई लंबी बीमारी है नहीं उसके लिए, कुछ फ्यू मिनट्स या सेकंड्स के लिए आएगा, वो ठीक हो जाएगा ऐसा। तो उनके साथ दुर्व्यवहार नहीं करना चाहिए, ये एक टाइप से भ्रांति है जो प्रमुख रूप से समाज में है।
0: यदि कोई व्यक्ति एपिलेप्सी या मिर्गी की बीमारी से पीड़ित है, तो हमें किन चीजों से उन्हें दूर रखना चाहिए?
1: जैसे अपन देखते हैं कोई मरीज एक रास्ते में चल रहा है, अपना दैनिक कार्य कर रहा है, उस दौरान उसको कभी भी सीजर आ सकते हैं, उसमें कोई दो मत की बात नहीं है। तो मेरा पहला दायित्व तो बनता है उसको प्लेन जगह पे, सुरक्षित जगह पे, जहाँ पे कोई धारदार चीज ना हो, कोई उबड़ खाबड़ जगह ना हो, वहाँ पे तुरंत स्विच करना। वहाँ पे ले जाते ही मुझे उनको एक तरफ करवट लेके लेटाना रहता है, लेफ्ट साइड या राइट साइड, ताकि जो मुंह में लार बन रहा या फिर जो अधिकतम आ रहा है मुंह में, वो फेफड़े में ना जाए, तो उससे उसका सांस लेने का तरीका ठीक हो जाएगा। एस्पिरेशन, जो अपन लार बनता है, वो फेफड़े में जाने की संभावनाएं रहती हैं वो कम हो जाती हैं, ऑक्सीजन लेवल ड्रॉप होने का चांस रहता है वो भी बहुत हद तक कम हो जाता है। और जो भी दौरे आते हैं वो लगभग लगभग 80-90% केसेस में कुछ आधा मिनट एक मिनट के अंदर ही शांत हो जाते हैं अपने आप। तो हमको ऐसे मरीजों को बाहर के तौर पे, कि उसको बाहर कोई नुकीली चीज़ से चोट ना लगे, उसके लिए उनको सेफ जगह पे ले जाना रहता है। जैसे कोई पानी वाली जगह पे आ गया किसी को, तो मेरा पहला दायित्व है कि उसको तुरंत मैं पानी की जगह से थोड़ा दूर ले जाऊँ, जहाँ पे प्लेन जगह हो, जहाँ पे चोट लगी संभावनाएं कम हो। आग वाली जगह पे आ गया तो वहां से थोड़ा दूर ले जाऊँ, बिकॉज ऐसे मरीज कुछ टाइम के लिए अपना पूरी तरह कंट्रोल खो देते हैं, उनका खुद के बॉडी पे कंट्रोल नहीं रहता, तो उनको पहले अपने सेफ जगह पे शिफ्ट करें।
0: तो डॉक्टर साहब, इसमें जो एक सबसे ज़रूरी बात होती है कि जब कोई रोग होता है तो उसके कुछ ट्रिगर्स होते हैं, इसके जो उसे बढ़ा सकते हैं, तो क्या मिर्गी के भी ऐसे कुछ ट्रिगर्स?

0: से
1: हाँ
0: कुछ
1: जी
0: ऐसे
1: जी
0: कारक होते हैं जिनसे इस रोग के बढ़ने की संभावना होती है?
1: मिर्गी के रोग में ट्रिगरिंग फैक्टर बहुत ज़्यादा है, और सबसे इम्पॉर्टेंट यह है कि हम उनको थोड़ा सावधानी बरत के अवॉइड कर सकते हैं। इनमें मुख्य कारण रहता है, डॉक्टर द्वारा जो दवाई एडवाइस किया गया है उसको आप फिक्स टाइम पे लीजिए, जिस डोज में बोला गया है उस डोज में लीजिए और फिक्स टाइम पे लीजिए। उससे क्या है, बॉडी में दवाई का लेवल बना रहता है, तो आगे मिर्गी आने की संभावना रहती हैं। और दूसरा चीज़ ये कि एक ट्रिगरिंग फैक्टर रहता है नींद का कम होना। जो नॉर्मल एडवाइस किया गया नींद है कि अपन रात को टाइम से सोएं और टाइम से उठें, उसमें लगभग 7-8 घंटे का प्रॉपर निद्रा का टाइम रहता है, रात में साउंड स्लीप बोलते हैं। तो अपन 7-8 घंटा प्रॉपर स्लीप लें, दिन में 1 घंटा नैप ले सकते हैं, ये कॉमन। उसके बाद जनरली अपन जो मिर्गी के पेशेंट हैं उनको सलाह देते हैं कि फास्टिंग अवॉइड करें, खाली पेट ज़्यादा टाइम तक ना रहें, उससे भी मिर्गी ट्रिगर हो सकता है। और तीसरा, आपने पहले ही बात करी, अल्कोहल या फिर स्मोकिंग से भी इसका ट्रिगर होता है।
0: जी डॉक्टर साहब,
1: किसी भी तरह से स्ट्रेस लेते हैं उससे भी अपना हो सकता है, तो स्ट्रेसफुल कंडीशंस को अवॉइड करना बेहतर रहता है।
0: जी, तो डॉक्टर साहब अगर हम इसके इलाज की बात करें
1: जी,
0: तो इसके क्या इलाज हो सकते हैं और कितने कारगर होते हैं?
1: मिर्गी अभी के समय में लगभग लगभग पूर्ण रूप से मिर्गी को ठीक कर सकते हैं। हमें बेसिक अपने को चाहिए तो मरीज को दवाई के प्रति एडहेरेंट रहना पड़ेगा, प्रॉपर दवाई को टाइम से लेना पड़ेगा। और इसमें मेन इलाज के तौर पे होता है, प्रारंभिक तौर पे होता है मस्तिष्क होता है, सीटी स्कैन या फिर एमआरआई करा के अपन देख सकते हैं पहले कि ब्रेन में कोई घाव तो नहीं है, कोई इन्फेक्शन तो नहीं है, कुछ और कारण तो नहीं बन रहा जिस कारण से ये दौरे का एक कारण बना हुआ है। ईजी नाम की जांच होती है जिसमें अपन मस्तिष्क की तरंगों का जांच करते हैं, कहाँ से दौरा आ रहा है, कहाँ से ये करंट की एक्टिविटी हो रही है, तो ये प्रारंभिक जांच होता है। और बाकी अदर कारण में शुगर हो गया, रूटीन ब्लड टेस्ट हो गया, इनका टेस्ट कर सकते हैं। ये सब आजकल लगभग सभी जगह पे अवेलेबल है। और दूसरी बात है कि अपन इसमें इलाज की बात करते हैं, तो आजकल लगभग लगभग मेरी पूरी तरह ठीक किया जा सकता है अभी कंडीशन में। तो इतनी सारी दवाइयाँ अवेलेबल हैं मार्केट में, लगभग 50-60 तरीके की दवाइयाँ हैं, पुराने ज़माने से लेकर नए ज़माने तक की पूरी दवाइयाँ उपलब्ध हैं। और अभी की दवाइयाँ बहुत ही पोटेंट हैं मिर्गी को ठीक करने के लिए। अपन टाइम से लें उन दवाइयों को और डॉक्टर की सलाह माने तो मिर्गी से पूर्णतः बचा जा सकता है।
0: जी डॉक्टर साहब, बहुत अच्छी बात अभी आपने बताई है। तो डॉक्टर साहब, हम जानना चाहेंगे कि ये गर्भवती है और उस समय उस महिला को जो है एपिलेप्सी और मिर्गी की संभावना या बीमारी पहले, तो उन्हें क्या क्या सावधानी रखनी चाहिए और इसका क्या कोई इफेक्ट बच्चे पर भी पड़ सकता है क्या?
1: ये बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है अभी के समय में। जैसा मैंने पहले बताया, एपिलेप्सी जनरली यंगस्टर्स को ज़्यादा इफेक्ट करती है, स्टार्टिंग लगभग इसी उम्र में होता है। तो इसका ज़्यादा बात है जब शादी की उम्र में लड़कियां आती हैं तो उनको उसके शादी के पहले भी काउंसलिंग की जाती है, शादी के बाद भी। उस जैसे गर्भावस्था की बात आती है कि उस दौरान सीजर आ गया या फिर उससे पहले ही उनको मिर्गी के लक्षण हैं, दवाई चल रहा है, तो मैं क्या करूं क्या ना करूं, तो सबसे पहले मैं बोलना चाहूँगा कि यदि आप पहले से ही मिर्गी या फिट्स की समस्या है, आप दवाई ले रहे हैं, तो डॉक्टर आपके उस कंडीशन को जानते हैं, आप यंग हो, शादी होने वाला है, या फिर आप मैरिड हो तो प्रेगनेंसी हो सकता है, तो उसके लिए आपको दवाई उस तरह ही चुनी जाती है पहले से ही, जो कि आपके हेल्थ को और आने वाले बच्चे के हेल्थ को प्रभावित ना करे या फिर कम प्रभावित करे। तो अभी जो मॉडर्न मेडिसिन में जो दवाइयां हैं एपिलेप्सी या फिट की, वो काफ़ी हद तक सुरक्षित हैं और होने वाले बच्चे के लिए ऑलमोस्ट सुटेबल कंडीशन में होती हैं दवाइयाँ। तो आपको घबराने की बात नहीं, बस आपको इतना मानना, डॉक्टर ने जो आपको जिस डोज में किया है दवाइयाँ उस डोज में प्रॉपर तरीके से लेना है और दवाइयों के प्रति लापरवाही नहीं बरतना है। और यदि इसका प्रभाव ऐसा हो सकता है कि आप कोई प्रेग्नेंट हैं या प्रेग्नेंट होने वाली हैं और अचानक से दवाई बंद कर देते हैं, उस दौरान झटका आता है, तो एबॉर्शन का रिस्क ज़्यादा हो जाता है और मदर और बच्चे दोनों को खतरा होने की संभावनाएं बढ़ जाती हैं। इसलिए मैं सलाह दूंगा कि अभी की दवाइयां जो मॉडर्न मेडिसिन में झटके की दवाइयां हैं वो काफ़ी हद तक सुरक्षित हैं और होने वाले बच्चे को और उनकी मदर

0: को कोई प्रभाव नहीं डालती। तो आपके चिकित्सक जो हैं ऐसे दवाइयों को ही सजेस्ट करेंगे आपको, जो कि आपके हेल्थ और बच्चे के हेल्थ को प्रभावित ना करें। इसलिए दवाइयाँ पूर्ण तरह सुरक्षित हैं, तो टाइम से जैसे आपके डॉक्टर ने सलाह दिया है वैसे लेंगे तो ज़्यादा बेहतर, ज़्यादा बेनिफिट रहेगा।
1: जी जी जी
0: जी
1: जी डॉक्टर साहब, डॉक्टर साहब, जब एपिलेप्सी अमेरिकी की बात होती है तो इसमें दवाइयाँ जो लिखी जाती हैं, तो क्या जो पेशेंट है दवाइयों को रेगुलर खाए और दवाइयों को इस्तेमाल करे तो क्या वो पूरी तरह से स्वस्थ हो सकता है?
0: बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है। जनरली हमारे पास जो भी मरीज आते हैं मिर्गी के, उनका एक सवाल ये रहता है कि मुझे दवाई कब तक चलेगी, या फिर मैं दवाई कब तक खाना पड़ेगा। तो ये कंडीशन निर्भर करता है ब्रेन के कोई बनावटी स्ट्रक्चर एबनॉर्मलिटीज तो नहीं है, ब्रेन में कोई पुरातन घाव तो नहीं है। जनरली जिन मरीजों को अपन इमेजिंग या सीटी एमआरआई में कुछ बड़ा घाव नहीं दिखता है या फिर कुछ ग्रॉस एबनॉर्मलिटीज नहीं है, उनमें 2 से 3 दवाइयाँ चलती हैं और ये लगभग लगभग 3 से 5 साल में ऐसे मरीज जनरली ठीक हो जाते हैं। हमको बस एक काम करना है, जो प्रॉपर डोजिंग एडवाइस की गई है उसको टाइम से लेना है, और जो स्ट्रेस फैक्टर्स हैं, जो ट्रिगर हैं, उनको अवॉइड करना है। और कुछ ही केसेस रहते हैं जिनमें ग्रॉस स्ट्रक्चर एबनॉर्मलिटी है ब्रेन में, या फिर पुराना चोट है, स्कार है, 2, 3, 4 दवाइयों के बाद भी झटका कंट्रोल नहीं आ रहा है। कुछ ऐसे ही मरीज होते हैं जिनकी जो फिट या झटका आने की संभावना है उसको कंट्रोल करने में दिक्कत होती है, लेकिन ऐसे मरीज भी दवाइयों के साथ, जैसे मैंने बताया, दवाइयाँ पूरी तरह सुरक्षित हैं आज के समय की, और आगे हमारे हेल्थ पे साइड इफेक्ट या फिर उनका बहुत ज़्यादा एडवर्स इफेक्ट नहीं रहता है, तो हम इन दवाइयों को लंबे टाइम तक ले सकते हैं। दवाई पूरी तरह सुरक्षित है। तो दवाई के डोज या फिर दवाई की जो नंबर ऑफ टेबलेट्स हैं, कितना टेबलेट चल रहा है, दिन में कितनी बार खा रहे हैं, ये हम डिसाइड ना करें कि दिन में 4-5 दवाई चल रही है, इतना हीवी डोज में हो रहा है। तो डोजिंग डॉक्टर डिसाइड करते हैं, तो वो जानते हैं आपके हेल्थ के बारे में, आपके लिए कितनी दवाइयाँ कितनी मात्रा में सेफ हैं, तो हम उसका कैलकुलेशन ना करें कि दवाई हमारे लिए ज़्यादा हो रहा है। तो ऐसे मरीज कुछ मान चलो 10 से 15% के हैं जो रिफ्रैक्टरी सीजर्स पेशेंट रहते हैं, लेकिन जो बोलूंगा 70-80% केसेस हैं ऐसे, एक या दो दवाई से कंट्रोल हो जाता है, और मैं अधिकांश केसेस जो हैं वो 5 साल के अंदर में उनको ठीक किया जा सकता है।
1: तो बहुत अच्छी जानकारी है डॉक्टर साहब ये। और जिन भी लोगों को इस तरह की समस्याएं हैं एपिलेप्सी से संबंधित, वो डॉक्टर साहब की बताई बातों पे ज़रूर गौर करेंगे, ये बहुत ही महत्वपूर्ण बातें हैं। तो डॉक्टर साहब, जब हम एपिलेप्सी के पेशेंट की बात करते हैं तो उन्हें अधिकतर हिदायत दी जाती है कि उन्हें गाड़ी चलाना जो है, कभी कभी लोग मना कर देते हैं कि आप गाड़ी ना चलाएं, आपका जहाँ पे कार्य होता है वहाँ ना जाएं, पानी जहाँ पे होता है वहाँ ना जाएं, क्योंकि
0: हाँ, जैसे मरीज जो इस शुरुआती अवस्था में है, जिनका दौरा कंट्रोल नहीं है और जिनको फ्रीक्वेंट सीजर आ रहे हैं, हम ऐसे मरीजों को जनरली एडवाइस करते हैं ताकि गाड़ी ना चलाएं। दूसरा चीज है, कोई तैराकी जगह है, तालाब है, स्विमिंग पूल है, ऐसे जगह पे ना जाएं, और आग वाली जगह, ऊंचाइयों वाली जगह से बचें। ऐसा हम सलाह इसलिए देते हैं ताकि ये मरीज दौरे के दौरान अपने होश कुछ टाइम के लिए खो देते हैं। पानी के अंदर यदि दौरे आते हैं उनको, आग के आसपास दौरे आते हैं, तो जनरली उनको खतरा ऐसे ही बढ़ जाता है। पानी के अंदर दौरे आ गए तो सांस की दिक्कत, अचानक समूह में पानी जाने, सब समस्याएं आ जाती हैं। आग के पास आग खतरा रहेगा, हाइट से गिरने का डर रहेगा, ये सब है। और जनरली जब तक दौरा कंट्रोल नहीं है तो अपन इनको गाड़ी चलाने की सलाह, स्विमिंग की सलाह ऐसे नहीं देते हैं। सबसे ज़्यादा रिस्क रहता है पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन में, जहाँ एक ड्राइवर है जो बहुत सारे लोग को एक साथ ले जा रहा है। बस का ड्राइवर हो गया, कार ड्राइवर हो गया, ट्रेन ड्राइवर, तो ऐसे लोगों में ज़्यादा रिस्क रहता है, तो उसको डेफिनेटली अवॉइड करते हैं। लेकिन जैसे 2 व्हीलर चलाना है, सिंगल ड्राइविंग है, तो दौरा जो है 2 से 3 साल तक पूरी तरह कंट्रोल है, दवाई पे आप पूरी तरह विश्वास करते हैं, दवाई पूरी तरह ले रहे हैं, आपको दवाई लेने के बाद दौरे नहीं आ रहे हैं 2 से 3 साल तक, तो आप सिंगल हैंड गाड़ी चला सकते हैं, जैसे खुद अपना एक 2 व्हीलर हो गया। और लेकिन आपको सके सावधानी रखनी चाहिए, पीछे में एक सहायता के लिए किसी को रख सकते हैं आप। यदि जब आपको लगता है आप प्रॉपर नींद नहीं ले पाए हैं या फिर आपने कोई दवाई डोज मिस कर दी है, तो उस कंडीशन में सलाह दूंगा कि डेफिनेटली आप गाड़ी ना चलाएं, क्योंकि उस दौरान आपको दौरे आने का रिस्क बढ़ जाता है।
1: जी डॉक्टर साहब, कई ऐसे भी पेशेंट होते हैं एपिलेप्सी से संबंधित जो नशा भी करते हैं।

0: आते हैं, तो ये नशा कितना हानिकारक हो सकता है ऐसे पेशेंट्स के लिए?
1: आजकल जो एपिलेप्सी की दवाइयाँ हैं काफ़ी हद तक सेफ़ हैं और इनसे कोई बड़ा साइड इफ़ेक्ट एडवर्स इफ़ेक्ट नहीं होता है। लेकिन यदि कोई मरीज ऑलरेडी एडिक्टेड है दूसरे चीज़ों का, जैसे अल्कोहल हो गया, निकोटीन हो गया या फिर दूसरे तरह के मादक पदार्थ का, तो यदि ऐसे मरीज जो दवाइयाँ लेते हैं और साथ में बैड हैबिट्स या फिर जो मद्य पदार्थों का यूज़ भी करते हैं, तो इस दौरान उनको दवाइयों का साइड इफेक्ट होने का भी चांस बढ़ जाता है। इसमें आता है कि आप गहरी बेहोशी आना, एबनॉर्मल बिहेवियर आना, लीवर किडनी पे असर आना, ये सब का रिस्क थोड़ा बढ़ जाता है। मरीज़ जो ऑलरेडी एल्कोहल पे हैं, कई बार उनको नशे के दौरान या फिर जो स्मोकिंग करते हैं उनको उस दौरान में दवाइयों को डोज का रिक्वायरमेंट बढ़ जाता है। यदि सेम डोज वो दवाई ले रहे हैं तो ऊपर नहीं हो पाता, या फिर नशे के दौरान वो दवाई मिस करते हैं तो उनको फिट आने के चांसेस ज़्यादा हो जाते हैं और साथ में उनके फिर लाइफ को रिस्क बढ़ जाता है। तो ऐसे कंडीशन में मैं यंगस्टर्स या यूथ को सलाह दूंगा कि नशे से बचें ताकि इसका इफेक्ट जो आपके बॉडी पे कम हो, साथ में आपकी जो मेडिसिन भी रेगुलर चलते रहें और आपका जो एपिलेप्सी बीमारी है वो आपके कंट्रोल में रहे। जैसे जैसे अपन अल्कोहल या फिर निकोटिन के सेवन को बढ़ाते जाते हैं, बॉडी उसका अभ्यस्त होते जाता है, साथ ही साथ जो एपिलेप्सी की दवाइयों का इफेक्ट भी कम होते जाता है, तो हो सके आपकी दवाइयाँ और बढ़ जाएं फ्यूचर में, आपके हेल्थ को और नुकसान होने का खतरा हो, तो सलाह दूंगा कि नशे से जहाँ जिस हद तक हो सके बचें।
0: और श्रोताओं, डॉक्टर के सलाहकार का मैं आज मस्तिष्क से संबंधित जो एक बहुत ही वृहद बीमारी है मिर्गी, जिसे एपिलेप्सी कहते हैं, इसके बारे में डॉक्टर साहब ने बताया। तो हमारे श्रोताओं से हमारी यही उम्मीद होगी कि डॉक्टर साहब की बताई गई बातों को ज़रूर ध्यान देंगे और जो भी व्यक्ति इस बीमारी से पीड़ित हैं वे सावधानी बरतें और डॉक्टर के पास अवश्य जाएँ और डॉक्टर की बताई गई दवाइयों के अनुसार ही अपना डोज सुनिश्चित करें। तो डॉक्टर उमेश कुमार चंद्रा जी, कार्यक्रम में आप आए और मस्तिष्क संबंधित जो एक खास बीमारी है एपिलेप्सी मिर्गी, इसके बारे में आपने जो जानकारी दी, इसके लिए बहुत बहुत है।
1: धन्यवाद
0: डॉक्टर की सलाह कार्यक्रम से आज हमें यही अनुमति। नमस्कार।

0: समन्वित कार्यक्रम डॉक्टर की सलाह में अभी रहे थे मस्तिष्क से संबंधित रोग मिर्गी कारण लक्षण एवं उपचार। इस विषय डॉक्टर उमेश कुमार चंद्रा से ली गई भेंट वार्ता। भेंट करता थे रमा शंकर। ये आकाशवाणी का रायपुर केंद्र है। लीजिए सुनिए कार्यक्रम बातों बातों में। इसमें सुनते हैं विश्व पर्यावरण दिवस पर अंबिकापुर में संचालित गार्बेज कैफे के संचालक रितेश सैनी से भेंट वार्ता। प्रस्तुति विकल्प रंजन शुक्ला की है।
1: श्रोताओं नमस्कार। समसामयिक विषयों पर आधारित हमारे साप्ताहिक कार्यक्रम बातों बातों में के आज के अंक के साथ मैं शुभ्रा भट्टाचार्य। श्रोताओं कल 5 जून को विश्व भर में पर्यावरण दिवस मनाया गया। प्लास्टिक का कचरा इस समय दुनिया और पर्यावरण के लिए एक चुनौती बना हुआ है। इस समस्या के समाधान के लिए अंबिकापुर के कैफे ने अनूठी पहल की है। इस गार्बेज कैफे में प्लास्टिक कचरे के बदले लोगों को भोजन और नाश्ता उपलब्ध कराया जाता है। हमारे सरगुजा संवाददाता आलोक शुक्ल ने इस कैफे के संचालक रितेश सैनी से बातचीत की है। पेश है इस भेंटवार्ता के मुख्य अंश।
2: श्रोताओं नमस्कार। आकाशवाणी समाचार के इस विशेष कार्यक्रम के साथ मैं आलोक। प्लास्टिक की बोतलें कचड़े इन सब को डिस्पोजल करने के लिए हमेशा समस्या आती है कि इनका नष्टीकरण कहां जाए। क्योंकि ये पर्यावरण को जो है प्रदूषित करते हैं। प्लास्टिक के चाहे कचरे हो, प्लास्टिक के सामान हो, प्लास्टिक की बोतल, क्योंकि आजकल हर चीज में, चाहे मिनरल वाटर लेना हो, पानी की बोतल लेना हो, या कोई भी अन्य पदार्थ लेने हो, तो प्लास्टिक की बोतलों में होते हैं। इससे होने वाला प्रदूषण जो है वो बड़ी समस्या है। लेकिन भारत देश के एक छोटे से शहर अंबिका

0: कोल्हापुर में इस प्रदूषण से निपटने के लिए एक अनोखा उपाय किया गया। इस उपाय में एक अपील की गई कि जो भी यहां पे आए, हम उनके लिए रेस्टोरेंट खोल रहे हैं, प्लास्टिक के जो कचरे हैं जिससे प्रदूषण फैलता है वो उसे अंबिकापुर के बस स्टैंड में, जो सरकारी बस स्टैंड है, वहां पे लाएं, गौरव पथ पे जो बना हुआ है, और यदि वो कचरा लाते हैं तो उसके बदले उन्हें भरपेट खाना मिलेगा। तो इस प्रकार से यहाँ पे की गई एक पहल है जो पूरे देश में प्रचारित हुई, और सबसे बड़ी बात यह है कि इसका उल्लेख हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी मन की बात में किया। तो इस प्रेरक कहानी के पीछे जिनका हाथ है या जो यहाँ संचालन कर रहे हैं, हम उनसे बात करेंगे, नगर निगम के ही रितेश सैनी जी से। नगर निगम में जिस तरीके से ये हुआ, इसके पीछे की अवधारणा क्या थी, कैसे ये दिशा आया?
1: जी देखिए, अंबिकापुर नगर निगम में हम लोग वर्ष 2014 से ही सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट पे कार्य कर रहे थे। इसके अंतर्गत अंबिकापुर नगर निगम में हम लोगों ने डिसेंट्रलाइज मॉडल अपनाया, मतलब शहर में जो कचरा उत्पन्न हो रहा है उसको किसी एक स्थान पे ला करके प्रोसेसिंग करना एक कठिन काम था, तो अलग अलग छोटे छोटे टुकड़ों में हम इस काम को करें। इसके तहत ऐसा अंबिकापुर में लगाया गया, हर वार्डों में लगभग अंबिकापुर में 20 ऐसा अलार्म सेंटर काम कर रहे हैं। उन वार्डों में दीदियां जो है वो घरों से डोर टू डोर कचरा संग्रहण करती हैं। कचरा को संग्रहण करने के बाद ऐसा अलार्म सेंटर में आता है जहां पे कचरे का अलग अलग श्रेणी में पृथक्करण करते हैं, चाहे वो प्लास्टिक हो, पेपर हो, कार्ड, इलेक्ट्रॉनिक आइटम हो या जार्डियस वेस्ट हो, तो सबका वहां सेग्रीगेशन होता है, और सेग्रीगेशन होने के बाद उसकी प्रॉपर रिसाइकलिंग के लिए उसको वेंडर्स को सेल किया जाता है। प्लास्टिक वेस्ट एक जो बहुत बड़ी समस्या थी, तो अंबिकापुर नगर निगम में जो एसएलआरएम सेंटर है उनसे जो प्लास्टिक संग्रहित होकर के आ रहा है उसको हम लोग प्रॉपरली अलग अलग जो श्रेणी होती है प्लास्टिक की उसमें पृथक्करण करते हैं। पृथक्करण करने के बाद उसकी वॉशिंग होती है, वॉशिंग होने के बाद बनाने की मशीन जो प्लास्टिक का ग्रेनुल्स बनता है ताकि हम उस प्लास्टिक को रिसाइकल कर सकें। प्लास्टिक को जितना ज्यादा अपन रिसाइकल कर पाएंगे वो सर्कुलर इकोनॉमी की ओर एक हमारा अच्छा कंट्रीब्यूशन होगा। दाना बनने के बाद जो प्लास्टिक के उत्पाद बनाने वाली जो कंपनियां हैं वो हमसे उस दाने को खरीद रही हैं। तो इतनी व्यवस्था जब बन गई तो उस प्लास्टिक की एक वैल्यू आई, जो लोकल वेंडर्स थे भी तो उनके पास बहुत ज्यादा रेट नहीं मिलता, किलो 4 रुपए किलो में ही वो खरीदते थे। जैसे ही हमने दाना बनाना शुरू किया, दाना बनाने के बाद जो मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है उनसे जब रेट्स मिलना शुरू हुए, तब हमको ये समझ में आया कि इस प्लास्टिक को दाना में कन्वर्ट करने के बाद 30 रुपए से लेकर 60-70 रुपए किलो तक बेचा जा सकता है। तो वो प्लास्टिक जो 5-6 रुपए किलो में जा रही थी उसकी वैल्यू हमारे पास आ गई। अब यहां पर जो सबसे महत्वपूर्ण पहलू होता है प्लास्टिक रिसाइकलिंग का, कि प्लास्टिक की गुणवत्ता अच्छी होनी चाहिए। प्लास्टिक यदि नालियों में चला गया, मिट्टी में चला गया या खाद्य पदार्थ के साथ मिक्स हो गया तो उसकी रिसाइकलिंग करना कठिन हो जाती है। गार्बेज कैफे में यह होता है कि लोग अपने घरों में या दुकानों में जो काम करने वाले वर्कर हैं या जो रैक पिकर्स हैं वो अच्छी साफ क्वालिटी की प्लास्टिक इकट्ठा करके ला रहे हैं, तो साफ सुथरी अलग की हुई प्लास्टिक हमको मिल गई। चूंकि हमारे पास प्लास्टिक पे एंड पॉइंट तक का मैकेनिज्म है, वो प्लास्टिक को हमने सीधे रिसाइकलिंग इंडस्ट्री, हमारा जो दाना बनाने की फैक्ट्री है वहां पर डाल दिया, जो दीदियां काम करती हैं, दाना बन गया। अब हमने अंबिकापुर में ये गार्बेज कैफे स्टार्ट किया, क्योंकि ये बस स्टैंड परिसर में गार्बेज कैफे है। बस स्टैंड परिसर में गार्बेज कैफे होने के कारण क्या होगा कि अधिकतर लोगों के अप्रोच में है, क्योंकि प्लास्टिक घरों से लाया हुआ है या सड़कों से लाया हुआ है, गंदा हो सकता है, रेस्टोरेंट में हाइजीन को भी मेंटेन करना है तो प्लास्टिक लेके रेस्टोरेंट में नहीं आना होता है। जस्ट रेस्टोरेंट के सामने में रोड के उस साइड हमारा एसएलआरएम सेंटर है, वहां पे जाते हैं, वो प्लास्टिक को डिपॉजिट करते हैं, उसका वजन होता है, वजन होने के बाद उनको दीदियां टोकन इशू कर देती हैं, उस टोकन को लेकर के आपको गार्बेज कैफे में आना है। ये जो टोकन है उसकी वैलिडिटी 7 दिन की होती है, ऐसा नहीं कि आप आज लिए तो आज ही आपको उसको खाना ही है, आप 7 दिन के अंदर कभी भी आकर के उस टोकन को यहां जमा करिए और यहां पे जो रेस्टोरेंट जो चला रहे हैं वो उसके बदले में उनको भरपेट भोजन कराएंगे।
0: गार्बेज कैफे शुरुआत हुई वो हुई 2019 में। Yes. उस समय कुछ दिक्कतें आई शुरू करने में या लोगों के जो विचार थे वो कैसे थे?
1: 2019 में इसका जो शुरुआत करने का प्रक्रिया हुआ था, तो एक हम लोग एक आईसी एक्टिविटी के अंतर्गत बस स्टैंड परिसर में ही साफ सफाई का एक महाअभियान का आयोजन हम लोगों ने उस दिन किया था। तो जब साफ सफाई का महाअभियान किया गया तो उसमें हमारे महापौर हो गए, नगर निगम के अधिकारी गण हो गए, सारे लोग यहाँ पे थे, और सफाई कर्मचारी लोग उसमें स्वीपिंग करके प्लास्टिक के कचरे को, अन्य सभी कचरों को इकट्ठा कर रहे थे। बात आई कि क्या इस कचरे के बदले में हम लोगों को कुछ इंसेंटिव मिल सकता है क्या, तो उस समय जो अधिकारी गण थे उन लोगों ने कहा जो सबसे अच्छा प्लास्टिक इकट्ठा किया उसको आज मेरी ओर से खाना। तो इस तरह से एक चीज समझ में आई कि नहीं, ऐसा भी कुछ किया जा सकता है। फिर दूसरा, इसको आगे बढ़ने का हमने इसलिए उम्मीद किया क्योंकि प्लास्टिक की वैल्यू हमको ये समझ में आ गई कि जब अगर प्लास्टिक का प्रॉपर आपके पास सेग्रीगेशन है, आपके पास दाना बनाने की मशीनें हैं और आपके पास वेंडर हैं, आप प्लास्टिक को कहाँ बेच सकते हैं, सही मूल्य अगर अपने को मिल रहा है तो हम इसको सस्टेन कर सकते हैं। कि अगर मान लीजिए 1 किलो प्लास्टिक जो सामान्य रूप से कोई 2 रुपए किलो में बेच रहा होगा, हमारे पास आके प्रोसेस होकर वो 28-30-40 रुपए किलो में जा रही है, सारे खर्चों को काट करके अगर 1 किलो प्लास्टिक में 20 रुपए भी मेरा बच रहा है तो उस 20 रुपए मैं इस रेस्टोरेंट वाले को दूंगा। रेस्टोरेंट प्राइम लोकेशन पे है, यहाँ पे गार्बेज कैफे में जो खाने आते हैं उनके अलावा अन्य जो यात्रीगण आते हैं उनको भी ये खिला सकें, इसलिए उनकी ओर से भी क्या कंट्रीब्यूशन हो सकता है, ऐसा हम लोगों ने टेंडर किया।

0: ये ऐसा नहीं है कि खाली जो कचरा लेके आ रहे हैं उनके लिए है,
1: यस
0: ये सभी के लिए है।
1: जी बिल्कुल,
0: बाकी जो आते हैं तो उसके लिए भी एक रेट है।
1: उसके लिए भी रेट है, उसके लिए यहाँ पर रेट है, आप पैसा देके भी खा सकते हैं और जो गार्बेज कैफे में जो प्लास्टिक जमा करके टोकन ला रहे हैं वो भी खा सकते हैं। अब यहाँ पे टोकन वालों के साथ कोई भेदभाव ना हो इसके लिए हम लोगों ने एक साथ एग्रीमेंट में ही लिखा हुआ है कि दो सीट हमेशा, दो टेबल मतलब 8 व्यक्तियों के बैठने की जो अरेंजमेंट है वो हमेशा रिजर्व रहेगा। जो टोकन लेकर के आ रहे हैं वो या तो सड़क से कचरा बीनने वाले होंगे या कुछ होंगे, भेदभाव हो ऐसी स्थिति ना बने, कहा गया कि आपको दो टेबल रिजर्व रखना है, आप कभी भी मतलब उनको वापस नहीं भेजोगे।
0: आप ये बताइए कि इसमें से प्रतिदिन कितना आय हो जाता है यहाँ पे?
1: जब देखिए हमने इस गार्बेज कैफे की शुरुआत की थी तो शुरुआत के एक दो महीने में तो दो तीन लोग आ रहे थे, उसके बाद फिर काफी 15-20 टोकन, 30 टोकन, 40-50 टोकन तक पर डे जाना शुरू हुआ। जब कोविड आया, कोविड के पीरियड में एक गाइडलाइन जारी हुई थी कि रेस्टोरेंट को अपन को खोलना नहीं है, तो उस पीरियड में जो 1.5-2 साल का पीरियड था उस पीरियड बस में इस गार्बेज कैफे को बंद करके रखना पड़ा, उसके बाद फिर हम लोगों ने रिस्टार्ट कर दिया। अभी भी मतलब हर दिन लगभग 8-10 टोकन कंटिन्यूअसली आते जाते हैं। कई बहुत अच्छे इसमें आप एग्जाम्पल भी देखेंगे, कई लोगों की स्टोरी भी, रैक पिकर है जो दुकानों से, मार्केट जब बंद होता है तो प्लास्टिक इकट्ठा करता है, वो प्लास्टिक इकट्ठा करके आता है यहाँ पे जमा करता है जैसे 1 किलो 2 किलो 3 किलो और टोकन इकट्ठा करता है। तो उसने एक बार रिक्वेस्ट, सर एक टोकन मिलता है मान लीजिए मेरे को तो मैं अकेले खाना चाहता हूँ, क्या मैं 3-4 दिन इकट्ठा करके 5-7 टोकन कर लूँ और अपने परिवार के बच्चे लोगों को लेकर के आ जाऊँ, तो मेरे बच्चे लोगों को मैं कभी रेस्टोरेंट नहीं ले जा पाता, तो ऐसा क्या मैं कर सकता हूँ? बिल्कुल आप ऐसा कर सकते हैं। 7 दिन टोकन की वैलिडिटी वाला जो कॉन्सेप्ट आया, पहले तो एक ही दिन था कि आज आप लोग जाओ खाओ चले जाओ, फिर उसमें उन्होंने कहा कि नहीं 7 दिन तक आपका टोकन वैलिड रहेगा। तो ये हो गया कि मतलब वो भी अब अपने फैमिली को रेस्टोरेंट लेकर के आ सकते हैं। ऑलरेडी हम लोग घरों से भी प्लास्टिक कलेक्ट करते हैं, डोर टू डोर कलेक्शन में प्लास्टिक मिल रही, सारे की प्रोसेसिंग कर रहे हैं। एक मोड ये भी है कि इसके माध्यम से प्लास्टिक भी हमको मिल जा रहा है और साफ सुथरी प्लास्टिक जहां प्लास्टिक को जाना चाहिए, जो उसका वैधानिक प्रक्रिया है उस प्रक्रिया में हम डिस्पोजल कर पा रहे हैं।
0: ये जो पानी भी आप देते हैं तो स्वच्छ पानी
1: जी
0: वो लोगों को उपलब्ध कर,
1: स्वच्छ पानी उपलब्ध कराते हैं, यहाँ पे आरओ भी लगा हुआ है इनके पास।
0: सनी जी एक महत्वपूर्ण प्रश्न उठता है कि इस पहल को प्रधानमंत्री मोदी ने मन की बात में पूरे देश के समक्ष किया, प्रभाव ये पड़ा कि विदेशों में भी इसकी चर्चा हुई, और कोई शहर महानगर इस अवधारणा को स्वीकार करते हैं और आपसे सहयोग चाहते हैं?
1: बिल्कुल,
0: ऐसा कोई मामला सामने आया, ऐसा कोई विषय सामने आया कि जो और कोई शहर के भी लोग आपसे कांटेक्ट किए हैं?
1: जी बिल्कुल,
0: संपर्क किए।
1: दिल्ली जो है भारत की राजधानी है और दिल्ली में शायद 27 या 28 गार्बेज कैफे आज के डेट में हो चुके हैं। तो 2019 में जब हम लोगों ने ये इनिशिएटिव लिया था, दिल्ली से यहाँ एक्सपोजर विजिट के लिए भी आए थे, वहां पे दिल्ली में भी उन्होंने गार्बेज कैफे चालू किया है। इसके अलावा और भी कुछ कुछ ऐसे शहर हैं जो गार्बेज कैफे के बारे में बहुत सारी डिटेल्स हमसे ली, यहाँ तक कि जो हमारे सीएजी होता है, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल, जब इस डिपार्टमेंट को पता चला कि ऐसा कोई इनिशिएटिव चल रहा है तो फाइनेंशियल इसके क्या सिचुएशन है, क्या ये सस्टेन हो पाएगा कि या इसको सब्सिडाइज करके करना है और जगहों पर लागू करना, तो सीएजी ने भी इसमें विस्तृत हम लोगों से पूरा जानकारी लिया और पूरा ऑडिट किया इन सारे चीजों का कि कैसे कैसे होता है, कैसे टेंडर किया गया, क्या टर्म्स एंड कंडीशंस थे। तो सीएजी ने भी इन सब चीजों को ऑडिट करके आगे लोगों के लिए एक मॉडल के रूप में, गाइडलाइन के रूप में गार्बेज कैफे का दिया हुआ।
0: गार्बेज कैफे का जो सबसे अधिक लाभ, या कहें कि ये जो पहल आपने की, सबसे अधिक लाभ किस वर्ग को मिला, किसे मिला?
1: समाज के उस तबके को मिला जो ऑलरेडी प्लास्टिक पे काम कर रहे हैं, अब पहले भी करते थे, रैक पिकर लोग अभी भी दुकानों से ले रहे हैं, बेच रहे हैं, लेकिन उनको ये समझ में आया कि मैं दिन भर इकट्ठा करके, क्योंकि 1 किलो बोलने में बहुत हमको हल्का लगता है लेकिन जब आप प्लास्टिक की बात करेंगे, 1 किलो लोहा और 1 किलो प्लास्टिक में बहुत अंतर होता है। 1 किलो प्लास्टिक जब हम इकट्ठा करने जाएंगे तो पता चलेगा आधा बोरा भर गया, और साफ सुथरी प्लास्टिक लानी है। हमारा ये इनिशिएटिव है कि सड़कों से उठाना या नालियों से उठाना वो नहीं है, प्लास्टिक को आप फेंके ना, आप प्लास्टिक का यूज किए, आप प्लास्टिक को स्टोर कीजिए, 1 किलो हो गया गार्बेज कैफे में डिपॉजिट कीजिए, टोकन लीजिए, खाना खाइए।
0: जैसे 1 किलो का हो गया, आधा किलो का हो गया, क्या क्या चीज आप यहाँ पे देते हैं?
1: यहाँ पे गार्बेज कैफे में जो आते हैं उनके साथ साथ जो पब्लिक बस स्टैंड में आ रहे हैं यात्रीगण, उन यात्रीगणों के लिए भी यहाँ पे सुविधा है। तो यात्रीगणों के आधार पे वेंडर को जो लगता है कि यहाँ पे जैसे गर्मी का सीजन है तो लस्सी होना चाहिए, कोल्ड ड्रिंक होना चाहिए, या लंच में और कुछ कुछ आइटम है तो सारे आइटम ये बनाते हैं। तो जो गार्बेज कैफे का मेनू है तो फिक्स है कि उसमें आपको खाने में क्या क्या देना है, नाश्ते में क्या क्या देना है, उसके अलावा जो अलग से आ रहे हैं यात्रीगण वो जो यहाँ अवेलेबल है उसको ऑर्डर देकर के ले सकते हैं।
0: मन की बात में जब प्रधानमंत्री मोदी जी ने इसका उल्लेख किया
1: जी,
0: उसके बाद क्या प्रभाव पड़ा गार्बेज कैफे में?
1: उसके बाद ये प्रभाव पड़ा कि एक तो इतने बड़े प्लेटफॉर्म पे अंबिकापुर का नाम आना, उससे बहुत सारे लोग थे जो गार्बेज कैफे के बारे में जान पाए। मन की बात में आने के बाद और लोगों को पता चला,
0: असर पड़ा,
1: बिल्कुल असर,
0: वृद्धि हुई है,
1: वृद्धि हुई है, उससे भी वृद्धि हुई है। दूसरा इनके प्रति सपोर्ट भी बढ़ा कि एक हमारे शहर की का जो एक सम्मान की बात है कि शहर के बारे में प्रधानमंत्री जी अगर चर्चा कर रहे हैं तो उससे लोगों के मन में भी एक आया कि नहीं ये अच्छी इनिशिएटिव, इसको और बढ़ाना चाहिए। ये भी बात आई कि शहर के और दूसरे हिस्सों में भी हम चाहें तो अगर स्पेस अवेलेबल हो तो चालू कर सकते हैं इसको।
0: तो क्या क्या आइटम रहता है यहाँ पे, क्या देते हैं?
1: रोटी, चावल, 2 प्रकार की सब्जी, अचार, पापड़, खाने का हो गया। नाश्ते में जैसे अगर आज समोसा बनाया तो समोसा, अगर आज ये इडली बना दिए तो इडली, अगर किसी दिन बड़ा बना दिए तो बड़ा।

0: तो उसमें वेरिएशन होता रहता है, सब्जियों में वेरिएशन होता है कि आज किसकी सब्जी बनी है, जिसकी सब्जी
1: कि अगल बगल भी होटल हैं, कई जो पुराने होटल हैं, बड़े होटल वो स्थापित हैं, उसके बाद भी आपका ये अच्छे से चल रहा है होटल, तो जनता का जो भरोसा है, मेहनत कश लोग हैं, मजदूर लोग हैं, उन्हें भी एक भरपेट भोजन मिल जाता है कि या कहें कि ऐसे शहर में आके कि कचरा इकट्ठे कर लो, तो उन्हें खाने के कम से कम दिक्कत नहीं होती।
0: सबसे बड़ी बात यह होती है कि उनके मन में एक तो जो हेजिटेशन रहता है ये रेस्टोरेंट में कैसे जाएंगे या क्या करेंगे, जब उनको पता चला कि ये रेस्टोरेंट हमारे ही लिए बना है, गार्बेज लाना है, गार्बेज देकर करना है, तो एक उनका भी हेजिटेशन भी वो हो रहा है। दूसरा चीज, रेस्टोरेंट को ये मेंटेन रख रहे हैं वेंडर, नगर निगम से भी निरीक्षण हो रही है, हाइजीन मेंटेन रख, सफाई मेंटेन रखना है सारा चीज, तो यहाँ पे खाने में किसी को कोई ऑब्जेक्शन नहीं हो रहा है कि किसी प्रकार की कोई गंदगी है,
1: पूरा साफ सुथरा है, पीछे ये पानी की बोतल लगी हुई है, खाद्य सामग्री पैक करने के लिए इको फ्रेंडली पैकेजिंग को प्राथमिकता देने की बात भी कही गई है, तो जो छोटे छोटे ये जो पोस्टर हैं के माध्यम से भी एक बृहद संदेश देने की जो है ये कोशिशें हो रही है, और ये जो बता रहे हैं सैनी जी, ये इसके इंचार्ज है, यहाँ पे पूरा देख रेख करते हैं, और ये बता रहे हैं कि दिनों दिन ये लगातार बढ़ते ही जा रहा है। इससे सबसे बड़ा जो लाभान्वित वर्ग है वो गरीबों का है, जो दिन भर मेहनत कश, जो मजदूर श्रम करते हैं, और जो अपने परिवार को भी लेके जाना चाहते थे होटलों में, लेकिन उनकी कल्पना साकार नहीं हो पाती थी। तो सबसे बड़ी बात है कि देखिए, गार्बेज कैफे से उनके उनके परिवार को भी एक बैठने का, एक जो उचित वातावरण में, स्वच्छ वातावरण में, जो बड़े बड़े शहरों पे वो देखा करते थे, तो वो भी उनकी कल्पना साकार हुई। श्रोताओं, आज एक बहुत अच्छा विषय रहा, और ये जो गार्बेज कैफे की यात्रा है, उस यात्रा के ये सबसे प्रमुख एक जो व्यक्ति हैं, इनकी देख रेख पे ये कुशलतापूर्वक चल रहा है, आगे और उन्नत रूप देने के लिए और क्या क्या योजनाएं हैं आपकी?
0: अभी हम लोग इसमें जैसे जैसे रिसाइकलिंग बढ़ती जा रही है, हम लोग वेस्ट मैनेजमेंट पे इतने साल से काम कर रहे हैं, तो अंबिकापुर एक अनुभवी नगर निगम हो गया है वेस्ट मैनेजमेंट को लेके, और सबसे बड़ी बात जो है यहाँ की स्वच्छता दीदियां हैं, उनका जो योगदान है, मतलब वो घर घर जाकर डोर टू डोर कलेक्शन कर रही हैं और इस गुणवत्ता के कचरा को लेकर के आ रही हैं कि एकदम साफ सुथरा, तो उस स्तर का कचरा अब हमारे पास आ रहा है दीदियों के माध्यम से। तो अब हम लोग ये एक्सप्लोर करना चाह रहे हैं कि क्या और ऐसा कचरा क्या है जिसकी वैल्यू अच्छी हमको मिल सकती है, तो हम सिटीजन्स के लिए भी कुछ ऐसा और ला सकते हैं कि अगर इस कचरे को आप स्टोर करके साफ सुथरा अगर हमको दे रहे हैं, तो हम आपको उसके बदले में कुछ इंसेंटिव दे सकते हैं, न केवल खाना ही, कुछ और भी इंसेंटिव दे सकते हैं, कुछ हम कूपन इशू कर सकते हैं, कुछ टोकन इशू कर सकते हैं, जिसके माध्यम से आप कोई यदि सरकारी योजना का लाभ लेना चाहें, या हम ऐसा टोकन इशू कर दें कि आप टॉकीज में जाकर के फिल्म देख सकें, या उनको कुछ उनके एजुकेशन से रिलेटेड अपन कॉपी देना चाहें,
1: तो उसे कई अच्छे परिवार के भी जो बच्चे हैं वो भी जुड़ेंगे, मध्यम वर्गीय हैं वो भी जुड़ेंगे, तो एक तरीके से देखा जाए तो ये जो पहल है ये हर वर्ग के लिए अनुकरणीय हो सकती है। जो छोटी सी पहल इस शहर से निकली और देश और विदेश में चर्चा का विषय बनी। दोस्तों, आज इस महत्वपूर्ण विषय के साथ एक जो यहाँ से यात्रा शुरू हुई गार्बेज कैफे की, और कई अनछुए पहलुओं का भी इन्होंने विवरण दिया जो काफी रोचक है, तो आज मुझे यानी आलोक शुक्ल को अनुमति दीजिए। जय हिंद।
2: तो श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे अंबिकापुर के गार्बेज कैफे के संचालक रितेश सैनी से हमारे सरगुजा संवाददाता आलोक शुक्ल की ये भेंट वार्ता। अब हम आपसे विदा लेते हैं, नमस्कार। बातों बातों में इस कार्यक्रम में अभी आप सुन रहे थे विश्व पर्यावरण दिवस पर कापुर में संचालित गार्बेज कैफे के संचालक रितेश सैनी से ली गई भेंटवार्ता। प्रस्तुति विकल्प रंजन शुक्ला की थी।
3: विविध भारती प्रसारण सेवा के कार्यक्रमों से।

दोस्तों, अभी आप सुन रहे थे भैया जी सुपरहिट इस फिल्म का गाना। यसिर देसाई और पवनी पांडे की आवाज़ों में अमजद नदीम थे गीतकार और संगीतकार भी। लीजिए अब सुनिए आज के इस प्रोग्राम की आखिरी पेशकश। जावेद अली और सुनिधि चौहान की आवाज़ों में कौसिर मुनीर हैं गीतकार और संगीतकार हैं साजिद वाजिद, और फिल्म का नाम है दावत-ए-इश्क।

0: विविध भारती के पास है बेमिसाल हस्तियों का अनमोल खजाना। जरा सुनिए कैसे बना ये गाना।
1: घुंघरू की तरह बजता ही रहा हूं।
2: किसने कहा है? जोधन एक लड़का आया है कलकत्ते से, गाना सुन लो उसका, अगर तुमको ठीक लगे तो गा ले।
0: संगीतकार रविंद्र जैन।
2: शोधा ने कहा मैं गाना नहीं सुनूंगा, उसको बोला रिकॉर्डिंग रख लेगा। 9 बजे की शोधा आ गई सुबह सुबह, मुझे गाने का मुखड़ा सुना दे। पहले मैं कहता था, अब मेरे लिए कहते हैं लोग ये वही है कि जो बजता रहा घुंघरू की तरह।
3: कभी इस पग में

ऐसी अनमोल यादें आपको मिलेंगी सिर्फ विविध भारती पर। विविध भारती, आपका जीवन संगी।

राजेंद्र कृष्ण साहब का शुमार फिल्म जगत के बेहतरीन गीतकारों में होता है। उनकी कविता में नजाकत है, जज्बात की गहराई है और दिल को छू लेने वाला फन है।

वो चाहे अलसाई सी दोपहर हो, कोई हसीन शाम हो, या फिर कोई उदास अकेली रात। राजेंद्र कृष्ण के बोल उन पलों में कभी प्यार, कभी इकरार, कभी रुसवाई और कभी जिंदगी का कोई और दर्द इस तरह भर देते हैं कि उस दर्द से भी मोहब्बत हो जाए।

6 जून 1919 को शिमला में जन्म हुआ था अपने कलम से दिलकश नगमों को जन्म देने वाली इस गीतकार का। बहुत कम उम्र में ही राजेंद्र कृष्ण मोहित हो गए थे कविता पर। रोजी रोटी की जद्दोजहद में 1940 तक म्यूनिसिपल ऑफिस में क्लर्क की नौकरी की। उनकी इस नीरस नौकरी को रसीला बनाती रही फिराक गोरखपुरी, एहसान दानिश, सुमित्रा नंदन पंत और निराला जी की रचनाएं। 1940 के मध्य में राजेंद्र कृष्ण मुंबई आ गए। फिल्मों की दुनिया में बतौर लेखक और गीतकार अपनी प्रतिभा को आजमाने। संघर्ष की जंजीरें टूटी 1947 में जब फिल्म जंजीर के लिए उन्होंने लिखा अपना पहला गीत। 1947 में राजेंद्र कृष्ण ने लिखी फिल्म जनता की स्क्रिप्ट, लेकिन कामयाबी मिली 1948 में बनी फिल्म आज की रात से। निराशा भरी रातें ढल चुकी थीं और राजेंद्र कृष्ण लगातार काम पाने लगे। 1949 में श्याम सुंदर के संगीत से सजी फिल्म लाहौर में उनके गीतों को बहुत लोकप्रियता मिली। उन्हीं में से एक था ये गीत।

लगभग तभी एक और फिल्म आई, बड़ी बहन, जिसके संगीतकार थे हुस्नलाल भगतराम। राजेंद्र कृष्ण के गीत एक बार फिर संगीत रसिकों के होठों पर थे।

तमिल के जानकार राजेंद्र कृष्ण उन दिनों के मद्रास के मशहूर बैनर एवीएम की पहली पसंद बन गए। वहां के अन्य निर्माताओं ने भी राजेंद्र कृष्ण की रचनात्मक प्रतिभा की कद्र की। एवीएम की लगभग सभी हिंदी फिल्मों की स्क्रिप्ट के अलावा उनके गीत लिखे राजेंद्र कृष्ण ने।

राजेंद्र कृष्ण ने अपने समकालीन लगभग सभी नामचीन संगीतकारों के लिए गीतों की रचना की। राजेंद्र कृष्ण ने करीब 100 फिल्मों की पटकथाएं लिखी और कोई 300 फिल्मों के लिए लिखे अपने अनूठे अलबेले गीत। सर्वश्रेष्ठ गीतकार के रूप में उन्हें फिल्म फेयर अवार्ड बहुत देर बाद मिला 1965 में फिल्म खानदान के इस गीत के लिए।

सन 1988 में शब्दों का ये चितेरा हमारे होठों पर अपने गीतों की गुनगुनाहट छोड़कर शब्द ब्रह्म में ही विलीन हो गया।

मैं शुभ्रा भाई। और अब पेश है आज के मुख्य समाचार। छत्तीसगढ़ की जल प्रबंधन पहल को राष्ट्रीय स्तर पर मिली सराहना। भारतीय जनता पार्टी द्वारा पौधारोपण अभियान के तहत प्रदेश में 21 लाख पौधे रोपे जाएंगे और छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग की मुख्य परीक्षा आज से शुरू हो गई है। अब समाचार विस्तार से। छत्तीसगढ़ की जल प्रबंधन पहल को राष्ट्रीय स्तर पर सराहना मिली है। भारत सरकार के जल शक्ति मंत्रालय ने सिंचाई दक्षता बढ़ाने और जल संसाधनों के बेहतर उपयोग के लिए राज्य में लागू कमान क्षेत्र विकास और जल प्रबंधन आधुनिकीकरण यानी MCAD मॉडल की प्रशंसा की है। मंत्रालय ने राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को भी छत्तीसगढ़ की तर्ज पर इस मॉडल को अपनाने की सलाह दी है। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने इसे किसानों, जल संसाधन विभाग और सुशासन के प्रति राज्य की प्रतिबद्धता का सम्मान बताया है। विश्व पर्यावरण दिवस पर मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने कल रायपुर के राजीव स्मृति वन में एक पेड़ माँ के नाम अभियान का शुभारंभ किया। उन्होंने बरगद का पौधा लगाकर पर्यावरण संरक्षण का संदेश दिया। मुख्यमंत्री ने कहा कि पर्यावरण संरक्षण जन भागीदारी से ही सफल हो सकता है और प्रत्येक नागरिक को अपनी माता के नाम एक पौधा लगाना चाहिए। उन्होंने बताया कि पिछले वर्ष प्रदेश में 3.5 करोड़ से अधिक पौधे लगाए गए थे। वन मंत्री केदार कश्यप भी इस कार्यक्रम में शामिल हुए। भारतीय पार्टी द्वारा पर्यावरण संरक्षण और संवर्धन के लिए एक वृहद पौधारोपण अभियान की शुरुआत की जा रही है। इसके तहत पूरे प्रदेश में 21 लाख पौधे रोपने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। भाजपा प्रदेश महामंत्री अखिलेश सोनी ने बताया कि प्रदेश के सभी बूथों में अनिवार्य रूप से पौधारोपण का कार्य किया जाएगा। विश्व पर्यावरण दिवस पर आयोजित कार्यक्रम में आवास और पर्यावरण मंत्री ओपी चौधरी ने पर्यावरण संरक्षण को जन आंदोलन बनाने का आह्वान किया। उन्होंने कहा कि प्रकृति का संरक्षण भारतीय संस्कृति का मूल मंत्र है और पर्यावरण की रक्षा सभी की जिम्मेदारी है। श्री चौधरी ने बताया कि प्रदूषण नियंत्रण के लिए औद्योगिक उत्सर्जन की और फ्लाई ऐश प्रबंधन की व्यवस्था को मजबूत किया गया है। उन्होंने बताया कि नवा रायपुर में 20,000 से अधिक पीपल के पेड़ लगाकर इसे पीपल सिटी के रूप में विकसित करने का लक्ष्य रखा गया है। उप मुख्यमंत्री अरुण साव ने अपने 4 दिवसीय बस्तर प्रवास के पहले दिन कल कांकेर जिले में विभिन्न विकास कार्यों का निरीक्षण किया। उन्होंने बड़े गौरी में जल जीवन मिशन के कार्यों का जायजा लिया और निर्माणाधीन नालंदा परिसर तथा अमोड़ा नरहरपुर सड़क का निरीक्षण किया। सड़क निर्माण की धीमी प्रगति पर उन्होंने नाराजगी जताते हुए कार्य में तेजी लाने के निर्देश दिए। श्री साव ने कहा कि गुणवत्ता और समय सीमा सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है। वे 4 दिन बस्तर संभाग में योजनाओं के क्रियान्वयन और निर्माण कार्यों की

0: समीक्षा करेंगे। सुशासन तिहार के तहत उप मुख्यमंत्री विजय शर्मा कल कबीरधाम जिले के बोड़ला नगर पंचायत में आयोजित जन समस्या निवारण शिविर में शामिल हुए। इस मौके पर उन्होंने लोगों की समस्याएं सुनी और अधिकारियों को इसके निराकरण के निर्देश दिए। इस अवसर पर उन्होंने तरेगांव में 2.5 करोड़ रुपए की लागत, सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र और राजा नवागांव में 75 लाख रुपए की लागत से उप स्वास्थ्य केंद्र के उन्नयन की स्वीकृति दी। छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग की मुख्य परीक्षा हो गई है। ये परीक्षा 9 जून तक चलेगी। परीक्षा 2 पालियों में हो रही है। पहली पाली सुबह 9 बजे से दोपहर 12 बजे तक और दूसरी पाली दोपहर 2 बजे से शाम 5 बजे तक होगी। मौसम विभाग ने आज प्रदेश में एक दो स्थानों पर हल्की से मध्यम वर्षा होने की संभावना जताई है। वहीं कुछ स्थानों पर गरज चमक के साथ आकाशीय बिजली गिरने और अंधड़ चलने की चेतावनी दी है। मौसम विभाग ने दक्षिण पश्चिम मानसून के बाद तक छत्तीसगढ़ पहुंचने की संभावना जताई है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। छत्तीसगढ़ की जल प्रबंधन पहल को राष्ट्रीय स्तर पर मिली सराहना। भारतीय जनता पार्टी द्वारा पौधारोपण अभियान के तहत प्रदेश में 21 लाख पौधे रोपे जाएंगे। और छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग की मुख्य परीक्षा आज से शुरू हो गई है। इसी के साथ प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। हमारा अगला प्रादेशिक हिंदी समाचार बुलेटिन 11:55 पर सुना जा सकता है। नमस्कार।
1: प्रादेशिक समाचार आप रायपुर केंद्र से सुन रहे थे। ये आकाशवाणी का बिलासपुर केंद्र है। FM 103.2 MHz पर 10 बजे हैं और अब लीजिए सुनिए छत्तीसगढ़ी लोकगीतों का कार्यक्रम अमराई। अमराई के इस क्रम में हम आपको सुनवा रहे हैं पहला गीत नकुल शैलजीत और साथियों के स्वर में।

और इस गीत के साथ ही कार्यक्रम अमराई का ये क्रम समाप्त होता है। अमराई में आपने सुने नकुल शैलजीत साथियों और महादेव हिरवानी व साथियों के स्वर में गीत। आकाशवाणी का ये बिलासपुर केंद्र है, FM 103.2 MHz पर 10:30 हुए हैं और अब आइए सुनते हैं नए तराने।

फिल्म छपाक का ये गीत अरिजीत सिंह की आवाज। अगला गीत सुनिए फिल्म कलंक से।

0: हेलो
1: राजेश जी, मैं पुलिस थाने से बोल रहा हूँ।
0: फिर से
2: आप डिजिटल अरेस्ट में हो, दूसरे कमरे में जाइए अकेले। आपके पार्सल में ड्रग्स मिले हैं, लंबे जाएंगे।
3: 10 लाख दीजिए, बच जाएंगे।
0: सर इतने कहाँ से?
3: एक लिंक भेजा है, अभी प्रोसेसिंग के लिए
2: 2 लाख भेजिए, बाकी बाद में।
0: 2 लाख
4: क्या हुआ पापा?
0: बेटा ये कह रहे हैं कि मेरे पार्सल में से ड्रग्स मिले हैं।
2: अरे
0: काट दिया।
4: पैनिक मत कीजिए पापा, डिजिटल अरेस्ट जैसा कुछ नहीं होता है, ये सब फ्रॉड है।
0: फ्रॉड?
4: पुलिस, बैंक, RBI इत्यादि के नाम से आने वाले साइबर अपराधियों के फोन या वीडियो कॉल से सावधान रहें, उन्हें कोई पैसे ना भेजें और तुरंत पुलिस में रिपोर्ट करें। अगर समझदारी नहीं दिखाओगे
0: तो पैसे गवाओगे।
5: RBI कहता है
6: जानकार बनिए।

और इस गीत के साथ ही नए तराने का ये क्रम समाप्त होता है। आकाशवाणी का ये बिलासपुर केंद्र है, FM 103.2 MHz पर 11 बजे हैं और अब हम जुड़ेंगे विविध भारती प्रसारण सेवा के कार्यक्रमों से।

अभी आप सुन रहे थे लता मंगेशकर की आवाज, फिल्म का नाम था मौसम। गीतकार थे गुलजार साहब और संगीत दिया था मदन मोहन ने। आइए सुनते हैं कार्यक्रम का ये अगला गीत।

0: यह आवाज थी आशा भोसले की और फिल्म का नाम था उमराव जान। इसे लिखा था शहरयार ने और धुन बनाई थी खयाम साहब ने।
1: वो इलाहाबाद से पहुंचे दिल्ली, बचपन से उन्हें छपे हुए शब्दों से प्यार था।
2: राम कुमार वर्मा, उनकी एकांकी हमने कक्षा 6 में पढ़ी, तो मैं इलाहाबाद में बंद रोड की जगह है जहां उनके किनारे उनका घर था, तो जब मैं साइकिल से उधर से गुजरता था तो मैं उनके गेट के बाहर खड़ा होकर इंतजार करता था कि वो निकले, एक झलक में देख लूं, जैसे मुंबई में लोग फिल्म स्टार के लिए खड़े होते हैं।
1: लेखन के साथ साथ लेखकों से भी उन्हें बहुत प्यार था।
2: आगे देखो तो रघुपति साहब फिराक रहते थे, दाएं देखो तो अकबर इलाहाबादी रहते थे, बाएं देखो तो सीवाई चिंतामणि जैसा पत्रकार था।
1: वो हैं जाने माने लेखक पत्रकार प्रताप सोमवंशी।
2: पहले लिखा तुम्हें प्यार है और आगे भाभी बीमार है, छुटकी को आया बुखार है, आंखें जैसी की तैसी है, गठिया की हालत वैसी है, अब तो बिटवा है ये लगता, मौत ही जैसे अंतिम हल है, शेष कुशल है।
1: तो सुनिए आज के मेहमान 10 जून शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
0: कार्यक्रम में अब सुनिए जयदेव के संगीत निर्देशन में मखदूम मोहिउद्दीन की लिखी ये रचना। गायिका है छाया गांगुली और फिल्म का नाम है गमन।

विविध भारती से इस समय आप सुन रहे हैं कार्यक्रम चित्रपट संगीत। आइए सुनते हैं अगला गीत। जगजीत सिंह की आवाज में हम आपको सुनवा रहे हैं फिल्म साथ साथ की ये गजल। इसे जावेद अख्तर ने लिखा है और संगीत दिया है कुलदीप सिंह ने।

0: पता है, अब हम आपकी चिट्ठियों के इंतजार में हैं।
1: क्यों?
0: क्योंकि वो जमाना वापस आ रहा है जब आपकी फरमाइशी चिट्ठियाँ आती थी विविध भारती में।
2: चिट्ठी आई है चिट्ठी आई है,
0: और हम सुनवाते थे आपके मनचाहे गीत।
2: पल पल दिल के
0: विविध भारती पर वापस आ रहा है आपका पसंदीदा कार्यक्रम मनचाहे गीत। 2 मई से हर शनिवार और रविवार दोपहर 3 बजे
1: हम इंतजार करेंगे।
0: तो फटाफट पोस्ट कार्ड लीजिए, लिखिए अपनी फरमाइश और भेज दीजिए इस पते पर। मनचाहे गीत कार्यक्रम विविध भारती राष्ट्रीय सेवा, पोस्ट बॉक्स नंबर 19750, मुंबई 400091। मनचाहे गीत विविध भारती राष्ट्रीय सेवा, पोस्ट बॉक्स नंबर 19750, मुंबई 400091। आपकी चिट्ठियों का हमें इंतजार है।
3: लीजिए अब सुनिए हृदयनाथ मंगेशकर के संगीत निर्देशन में गुलजार साहब की रचना, आवाजें हैं आशा भोसले और सत्यशील देशपांडे की। ये फिल्म है लेकिन।

0: अगर आपका पेट स्वस्थ नहीं है तो बहुत सारी बीमारियों का आगमन आपके शरीर में होता है।
1: परेशान हूँ मैं।
0: फैटी लिवर, इन्फेक्शन, एसिडिटी जैसी पेट की समस्याएं इन दिनों बहुत कॉमन है।
2: वेरी इंपॉर्टेंट पिलर ऑफ एनी जीआई प्रॉब्लम इज एजुकेशन, न्यूट्रिशन, एक्सरसाइज एंड व्हेन डू यू गेट सेल्फ टेस्टेड एंड सी अ डॉक्टर। ये तीन चीज अगर हम कर पाए ना तो काफी हद तक हमारी बीमारियां कम हो जाएंगी।
0: पेट की बहुत

0: सारी बीमारियों पर प्रकाश डाला है हेपेटोलॉजिस्ट और गैस्ट्रो एंट्रियोलॉजिस्ट डॉक्टर गौरव मेहता ने।
1: अगर आप टाइम पे नहीं सो खा के तुरंत सो गए तो एसिडिटी की संभावना ही काफी ज्यादा होती है, और अगर हम टाइम पे ना सोए, 7 से 8 घंटे नींद पूरी ना करें, तो हमको शुगर होने के चांसेस भी होते हैं ज्यादा, फैटी लिवर के चांसेस भी ज्यादा होते हैं।
0: तो सुनिए डॉक्टर गौरव मेहता की बातें 8 जून शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
2: और अब आज का चित्रपट संगीत का ये कार्यक्रम समाप्त हुआ।

हम विविध भारती से बोल रहे हैं। ये है राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन। लीजिए अब सुनिए मैटिनी शो।

मैटिनी शो में आप सभी सुनने वालों का तहे दिल से स्वागत है। मैं हूँ आपके साथ मंदाकिनी जोशी। आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। दोस्तों, आज इस कार्यक्रम में हम आपके लिए लेकर आए हैं फिल्म थ्री इडियट्स के कुछ गीत। जी हाँ, फिल्म थ्री इडियट्स, जिसे आपने भी देखा होगा, इसी पर आज हम कुछ बातचीत कर लेंगे। क्यों, ठीक है ना? तो आप सभी जानते हैं कि फिल्म थ्री इडियट्स बहुत ही फेमस फिल्म है और ये फिल्म कई विषयों की पड़ताल के लिए जानी जाती है, खासतौर से शिक्षा प्रणाली की जो मुद्दे हैं, शिक्षा प्रणाली के मुद्दे हैं, उनसे जुड़ी जो आलोचनाएं हैं और शिक्षा से जुड़े जो सामाजिक दबाव हैं बच्चों पर, परिवार पर, उस पर केंद्रित रही ये फिल्म थ्री इडियट्स। तो चलिए सुनते हैं कार्यक्रम का पहला गीत। आवाजें सोनू निगम, शान और स्वानंद किरकिरे की। गीत को स्वानंद किरकिरे ने ही लिखा है और धुन शांतनु।

कुछ किता ये होटों को करके गोल सीटी बजा के बोल कुछ किता कुछ किता कुछ किता ये लाइफ हो आउट ऑफ कंट्रोल होटों को करके गोल होटों को करके गोल सीटी बजा के बोल

0: जी हाँ, हम बात कर रहे हैं फिल्म थ्री इडियट्स की। इसमें ये फिल्म 2009 में आई थी और आमिर खान के अलावा आर माधवन, शर्मन जोशी, करीना कपूर, बोमिन ईरानी और ओमी वैद्य मुख्य भूमिकाओं में थे। और इस फिल्म का निर्देशन राजकुमार हिरानी ने किया था। गीत स्वानंद किरकिरे ने लिखे थे और संगीत था शांतनु मोहित्रा का। और हाँ, हम सभी जानते हैं कि इस फिल्म में आमिर खान ने फुनसुक वांगड़ू के रूप में भूमिका निभाई थी रेंचो की, जिसे रेंचो के नाम से हम जान रहे थे। शर्मन जोशी जो हैं राजू रस्तोगी के रूप में बहुत ही अच्छा किरदार निभा रहे थे और आर माधवन फरहान कुरैशी के रूप में थे। करीना कपूर ने पिया के रूप में अपनी बहुत ही खास भूमिका निभाई और इस फिल्म का केंद्र बिंदु थे बोमन ईरानी, जिन्होंने प्रोफेसर वीरू वायरस सहस्त्र बुद्धे के रूप में अपनी भूमिका निभाई। ओमी वैद्य ने चतुर रामलिंगम जो साइलेंसर के रूप में थे अपनी काफी अच्छी भूमिका निभाई और मोना सिंह मोनिका के रूप में थी। राहुल कुमार को मिलीमीटर के रूप में फिल्म में दर्शाया गया था। तो कुल मिलाकर ये फिल्म जो थी बहुत ही शानदार तरीके से एक शानदार विषय पर फिल्माई गई। निर्माता विधु विनोद चोपड़ा थे जिन्होंने बहुत ही सुंदर विषय उठाया। और कहते हैं कि फिल्म जो है चेतन भगत के उपन्यास 5.1 पर आधारित थी और इस फिल्म की पटकथा यानी स्क्रीन प्ले राजकुमार हिरानी और अभिजात जोशी ने लिखा था। और जैसा कि हमने बताया, शांतनु मोहित्रा ने संगीत दिया था और स्वानंद किरकिरे ने अपने गीतों से इस फिल्म में चार चांद लगा दिए थे।
1: सारी उम्र हम मर मर के जी लिए, एक पल तो अब हमें जीने दो, जीने दो।
0: ये स्वर है सूरज जगन और शर्मन जोशी के।

0: तो मैटिनी शो में आज हम बात कर रही हैं फिल्म थ्री इडियट्स की। थ्री इडियट्स फिल्म भारतीय हिंदी फिल्मों की अगर हम बात करें तो मील का पत्थर माने जाने वाली फिल्म है और ये फिल्म शिक्षा प्रणाली की कमियों और सामाजिक दबाव, जिस पर मैंने अभी बात कही थी आपसे, उस पर एक तीखा व्यंग्य है जो दर्शकों को अपने जुनून को चुनने की एक सलाह देता है, संदेश देता है और जीवन को सरलता से जीने का भी संदेश देती है ये फिल्म। क्योंकि जिंदगी में हम आज इतने तनावग्रस्त हैं, हमारे बच्चे जो कैरियर चुनना चाहते हैं अच्छा मनपसंद, लेकिन इतना बोझ है शिक्षा का कि वे समझ नहीं पाते कि क्या किया जाए। तो ये फिल्म स्पष्ट रूप से दिखाती है कि कैसे हमारे जो शिक्षण संस्थान हैं, जो एजुकेशन है, वो सिर्फ रटने वाली विद्या पर बढ़ावा देती है, यानी नवाचार, जो कहा जाता है कि नवाचार कीजिए, उस पर इतना नहीं जोर देती है जितना कि रटने जैसी विद्या पर, ताकि बच्चे किसी पोस्ट पर जब जाते भी हैं, किसी कैरियर को चुनते भी हैं, तो कई बार उनका पढ़ावा कहीं काम ही नहीं आता है। तो ये फिल्म ये भी दर्शाती है कि जो माता पिता हैं वो बच्चों पर कैरियर का विकल्प थोपे नहीं कि आपको इंजीनियर ही बनना है, आपको डॉक्टर ही बनना है, यानी आपको काबिल बनना है, कामयाबी की राह पर चलना है और इसके लिए आपको अपने सपने देखने हैं, अपने सपनों के पीछे भागना है। ये फिल्म साफ संदेश देती है कि काबिल बनो और कामयाबी तो आपके पीछे झक मार कर आएगी, बस तुम्हें सिर्फ मेहनत करनी है।
1: जाने नहीं।
0: और मेहनत भी ऐसी जो आपके सपने हैं, जो आपके ख्वाब हैं, जो आपकी कल्पना में हैं।

जी, तो आप सभी ने फिल्म थ्री इडियट्स देखी होगी, जो कि जन्म से लेकर मृत्यु तक जो इंसानी जीवन का संघर्ष है उसकी एक शानदार कहानी है। और ये फिल्म दर्शाती है कि हमें अपने अस्तित्व के लिए बचपन से ये लड़ाई लड़नी शुरू करनी होती है, क्योंकि बच्चा जब दुनिया में आता है तो अपने माता पिता की आशाओं से भरी निगाहों को देखता है, जो चाहते हैं कि उनका बच्चा इंजीनियर बने, डॉक्टर बने, आईएएस बने या कोई बड़ा अधिकारी बनकर परिवार का नाम रोशन करे। माता पिता इस बात से पूरी तरह अनभिज्ञ होते हैं कि उनकी अपेक्षाएं वास्तव में उनके बच्चों को लाभ पहुंचा रही हैं या उनके मानसिक दबाव को बढ़ा रही हैं। और ऐसा नहीं है कि माता पिता अपने बच्चों के दुश्मन होते हैं, बल्कि या ऐसा कि उनका कोई निजी स्वार्थ होता हो, लेकिन हाँ, माता पिता भी कई बार जरूरत से ज्यादा बच्चों पर जब बोझ लाद देते हैं तो फिर एक अलग कहानी पैदा हो जाती है। माता पिता की अपेक्षाओं का दबाव और बच्चे को और ज्यादा गंभीर बना देता है, तनावग्रस्त बना देता है, और वो अपनी जिंदगी में जो बचपन की दुनिया है उसे भूलकर एक मानसिक दबाव की जिंदगी जीने लगता है। तो ये फिल्म एक ऐसे पिता की कहानी बताती है जो अपने बेटे को, जिसे वन्य जीव फोटोग्राफी का बहुत शौक था, इंजीनियरिंग करने के लिए मजबूर करने की अपनी गलती को अंततः स्वीकार करता है और उसे अपने दिल की बात मानने की अनुमति देता है, जो कि हर माता पिता को चाहिए कि अपने बच्चे से बात करें और पूछे कि आखिर उनका बच्चा क्या बनना चाहता है और उस दिशा में क्या वो सच में मेहनत करेगा या खाली ख्वाब देख रहा है या सपने देख रहा है। ये बातचीत करने की आज परिवार में बेहद जरूरत है, ना कि अपने विचारों को, अपनी इच्छाओं को, अपनी आकांक्षाओं को बच्चों पर लादने की। फिल्म थ्री इडियट्स यही कहती है संदेश।

ये आवाजें सोनू निगम और श्रेया घोषाल की थी। तो आज हम बात कर रहे हैं फिल्म थ्री इडियट्स की, और आप सभी ने अगर ये फिल्म देखी है तो निश्चित रूप से आप इस फिल्म को पसंद किया होगा। और इस फिल्म में शायद पहली बार शहरी कॉलेज जाने वाले छात्रों को एक सही रूप से बोलते हुए या कपड़े पहने हुए दिखाया गया है। जैसे कि कई बार क्या होता है कि बहुत ही बड़े रूप में, एक अलग रूप में कॉलेज का दृश्य दिखाई देता है, जो आम कॉलेजों से बिल्कुल अलग होता है, लेकिन इस फिल्म में वैसा ही दृश्य दिखाया गया है जैसा फिल्मों में हमारे जीवन में भी वैसा ही दृश्य हमें कॉलेज का मिलता है। और दोस्ती की एक दिल को छू लेने वाली और दिल को उत्साहित कर देने वाली कहानी है, और जहां इस फिल्म ने दर्शकों के दिलों को छू लिया। और हमें लगता है कि इस तरह की फिल्में अगर बनाई जाए

ये आकाशवाणी रायपुर है। प्रादेशिक समाचार बुलेटिन के साथ मैं शुभ्रा भट्टाचार्य। और अब पेश है आज के मुख्य समाचार। छत्तीसगढ़ के 7 जिलों में ग्रामीण परिवारों की आय बढ़ाने के लिए एकीकृत आजीविका कार्यक्रम शुरू किया जाएगा। उत्तराखंड के हल्द्वानी में हुई नेशनल यूथ म्यूथाई चैंपियनशिप में छत्तीसगढ़ ने 7 स्वर्ण पदक सहित 17 मेडल जीते। और मौसम विभाग ने अगले 4-5 दिन प्रदेश के कुछ जिलों में तेज हवाएं चलने और हल्की से मध्यम बारिश होने की संभावना जताई। अब विस्तार से छत्तीसगढ़ के 7 जिलों में ग्रामीण परिवारों की आय बढ़ाने के लिए एकीकृत आजीविका कार्यक्रम शुरू किया जाएगा। मुख्य सचिव विकासशील ने इस संबंध में अधिकारियों को विस्तृत कार्य योजना तैयार करने के निर्देश दिए हैं। ये कार्यक्रम बस्तर, कांकेर, दंतेवाड़ा, सुकमा, बीजापुर, नारायणपुर और मोहला, मानपुर, अंबागढ़, चौकी जिलों में शुरू किया जाएगा। नगरीय प्रशासन और विकास विभाग ने राज्य के सभी 194 नगरीय निकायों में शहरी विकास योजनाओं की निगरानी और सशक्त करने का निर्णय लिया है। विभाग की सचिव संगीता आर ने प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी, स्वच्छ भारत मिशन और अमृत मिशन सहित विभिन्न योजनाओं की समीक्षा करते हुए समय सीमा में कार्य पूर्ण करने के निर्देश दिए। उन्होंने बताया कि आज 6 जून को सभी राज्य स्तरीय नोडल अधिकारी अपने अपने जिलों में पहुंचकर योजनाओं की प्रगति और निर्माण कार्यों की गुणवत्ता का स्थलीय निरीक्षण करेंगे। भारतीय जनता पार्टी द्वारा पर्यावरण संरक्षण और संवर्धन के लिए एक वृहद पौधारोपण अभियान की शुरुआत की जा रही है। इसके तहत पूरे प्रदेश में 21 लाख पौधे रोपने का निर्धारित किया गया है। भाजपा प्रदेश महामंत्री अखिलेश सोनी ने बताया कि प्रदेश के सभी बूथों में अनिवार्य रूप से पौधारोपण का कार्य किया जाएगा। दुर्ग जिले में अफ्रीकी देशों से आए 4 अंतर्राष्ट्रीय यात्रियों को एहतियात के तौर पर 21 दिन के लिए होम आइसोलेशन में रखा गया है। इनमें कांगो, इथोपिया, युगांडा और सूडान से आए यात्री शामिल हैं। मुख्य चिकित्सा और स्वास्थ्य अधिकारी डॉक्टर मनोज दानी ने बताया कि यात्रियों की प्रतिदिन स्वास्थ्य निगरानी की जा रही है। फिलहाल यात्री पूरी तरह स्वस्थ हैं और उनमें किन्हीं किसी प्रकार के लक्षण नहीं पाए गए हैं। स्वास्थ्य विभाग स्थिति पर लगातार नजर रखे। उत्तराखंड के हल्द्वानी में हुई नेशनल यूथ म्यूथाई चैंपियनशिप में छत्तीसगढ़ ने 7 स्वर्ण पदक सहित 17 मेडल जीते हैं। इस चैंपियनशिप में 26 राज्यों और 5 केंद्र शासित प्रदेशों के लगभग 900 खिलाड़ियों ने हिस्सा लिया। छत्तीसगढ़ से 36 सदस्यीय दल इस चैंपियनशिप में शामिल हुआ। छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग की मुख्य परीक्षा आज से शुरू हो गई है। ये परीक्षा 9 जून तक चलेगी। परीक्षा 2 पालियों में हो रही है। पहली पाली सुबह 9 बजे से दोपहर 12 बजे तक और दूसरी पाली दोपहर 2 बजे से शाम 5 बजे तक होगी। मौसम विभाग ने अगले 4-5 दिन प्रदेश के कुछ जिलों में तेज हवाएं और हल्की से मध्यम बारिश होने की संभावना जताई है। आज प्रदेश में कुछ स्थानों पर वर्षा हो सकती है, वहीं कुछ स्थानों पर चमक के साथ आकाशीय बिजली गिरने और अंधड़ चलने की चेतावनी दी गई है। सरकार की राष्ट्रीय अप्रेंटिसशिप प्रोत्साहन योजना के अंतर्गत प्रधानमंत्री राष्ट्रीय अप्रेंटिसशिप मेले का आयोजन दंतेवाड़ा स्थित शासकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान आईटीआई में 8 जून को सुबह 10 बजे से किया जाएगा। मेले में जिले के समस्त आईटीआई के वर्तमान प्रशिक्षणार्थियों, पूर्व प्रशिक्षणार्थियों और अन्य इच्छुक युवाओं को आमंत्रित किया गया है। गौरेला पिंड और मरवाही जिले के कोटमीकला साप्ताहिक हाट बाजार में ज्वेलरी व्यवसायी की हत्या और लूट मामले में पुलिस ने मुख्य आरोपी राहुल उर्फ मनीष मंडल को झारखंड के देवघर से गिरफ्तार कर लिया है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। छत्तीसगढ़ के 7 जिलों में ग्रामीण परिवारों की आय बढ़ाने के एकीकृत आजीविका कार्यक्रम शुरू किया जाएगा। उत्तराखंड के हल्द्वानी में हुई नेशनल यूथ चैंपियनशिप में छत्तीसगढ़ ने 7 स्वर्ण पदक सहित 17 मेडल जीते। और मौसम विभाग ने अगले 4-5 दिन प्रदेश के कुछ जिलों में तेज हवाएं चलने और हल्की से मध्यम बारिश होने की संभावना जताई। इसी के साथ प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। हमारा अगला प्रादेशिक समाचार बुलेटिन छत्तीसगढ़ी में होगा, जिसे शाम 6

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं लवलीन निगम। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि वैश्विक आर्थिक संकट के बावजूद भारतीय अर्थव्यवस्था की नींव असाधारण रूप से मजबूत बनी हुई है। श्री मोदी ने दमण में कल लगभग 2,970 करोड़ रुपए के विकास परियोजनाओं का शुभारंभ किया। इस अवसर पर प्रधानमंत्री ने एक जनसभा में कहा कि भारत विश्व की सबसे तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्थाओं में से एक है।
1: वर्ष 2025-26 में भारत ने 7.7% की ग्रोथ रेट हासिल की है और पिछला क्वार्टर जो 31 मार्च को खत्म हुआ उसमें भी भारत की ग्रोथ 7.8% रही है और ये दुनिया में तेज गति से आगे बढ़ने वाली बड़ी इकोनॉमी है।
0: प्रधानमंत्री ने ऊर्जा क्षेत्र में आत्मनिर्भरता पर बल देते हुए कहा कि विश्व हरित भविष्य की ओर अग्रसर हो रहा है। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर आज नई दिल्ली में नेपाल के विदेश मंत्री शिशिर खनाल के साथ वार्ता करेंगे। बैठक में व्यापार, निवेश, ऊर्जा और लोगों के बीच आपसी संपर्क सहित विभिन्न मुद्दों पर चर्चा होगी। श्री खनाल ने कल नई दिल्ली में राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल से मुलाकात की। वे 3 दिन की भारत यात्रा पर हैं। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने बताया कि यात्रा भारत और नेपाल के विशेष साझेदारी संबंधों को और प्रगाढ़ बनाने में सहायक होगी। भारत लैटिन अमेरिका और कैरेबियन व्यापार तथा निवेश मंच का आयोजन आज मध्य प्रदेश के इंदौर में किया जा रहा है। इसमें 15 लैटिन अमेरिकी और कैरेबियन देशों के राजदूत और राजनयिक प्रतिनिधि भाग लेंगे। उद्योग जगत के अग्रणी और बड़े निवेशक भी आयोजन में हिस्सा लेंगे। इसका मुख्य उद्देश्य भारत और इन देशों के बीच व्यापार तथा निवेश के नए अवसर खोजना है। मुख्यमंत्री डॉ मोहन यादव कार्यक्रम का उद्घाटन करेंगे। कार्यक्रम के दौरान विनिर्माण और सेवा क्षेत्र के लिए सत्र आयोजित होंगे। आंध्र प्रदेश में जनसेना पार्टी के अध्यक्ष पवन कल्याण ने आगामी राज्यसभा चुनाव के लिए लिंगमनेनी रमेश को पार्टी का उम्मीदवार घोषित किया है। पार्टी के आधिकारिक बयान में ये घोषणा की गई। लिंगमनेनी रमेश आज अपना नामांकन पत्र दाखिल करेंगे। भारत ने कहा है कि पाकिस्तान संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की अपनी अस्थायी सदस्यता का दुरुपयोग जम्मू कश्मीर के बारे में झूठे दावे फैलाने के लिए कर रहा है। भारत के स्थायी प्रतिनिधि पी हरीश ने चेतावनी दी कि पाकिस्तान को अपनी जिम्मेदारियों का ध्यान रखना चाहिए।
2: I'd like to remind Pakistan that being a member of the...
3: मैं पाकिस्तान को याद दिलाना चाहता हूं कि संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद का सदस्य होना एक बड़ी जिम्मेदारी है। यह पक्षपाती और झूठी बातें फैलाने का मंच नहीं है। मैं ये बात साफ साफ कहना चाहता हूं। जम्मू कश्मीर भारत का अभिन्न और अटूट हिस्सा था, है और हमेशा रहेगा। पाकिस्तान की खोखली बयानबाजी और झूठे दावों से ये बुनियादी सच्चाई नहीं बदलेगी।
0: भारत अमेरिका सेना ने अधिकारियों की वार्ता का 29वां चरण हवाई में आयोजित किया गया। इसकी सह अध्यक्षता सेना प्रमुख रणनीति लेफ्टिनेंट जनरल राजीव घई और अमेरिकी सेना के उप कमांड जनरल लेफ्टिनेंट जनरल जोएल वेवन ने की। चर्चा में द्विपक्षीय रक्षा सहयोग को मजबूत करने, अंतर संचालनीयता बढ़ाने, पेशेवर आदान प्रदान का विस्तार करने और साझा सुरक्षा हितों के समर्थन में सैन्य सहयोग को सुदृढ़ करने पर ध्यान केंद्रित किया गया। दोनों देशों ने सहभागिता के बढ़ते दायरे की सराहना की और भारत अमेरिका रणनीतिक साझेदारी को और मजबूत करने की प्रतिबद्धता की पुष्टि की। मॉरिशस ने पिछले 21 दिनों में कांगो, युगांडा या दक्षिण सूडान की यात्रा करने वाले या वहां से गुजरने वाले विदेशी नागरिकों के प्रवेश पर अस्थायी प्रतिबंध लगा दिया है। ये कदम इबोला वायरस के प्रकोप को देखते हुए उठाया गया है। स्थानीय नागरिकों और व्यवसाय करने वाले या छात्र परमिट धारक विदेशी नागरिकों को देश में प्रवेश की अनुमति होगी। हालांकि यदि उन्होंने पिछले 3 हफ्तों में इन देशों में से किसी का भी दौरा किया है तो उन्हें 21 दिन के लिए क्वारंटीन में रहना होगा। भारत और अफगानिस्तान के बीच एकमात्र क्रिकेट टेस्ट मैच न्यू चंडीगढ़ के मुल्तानपुर में खेला जा रहा है। भारतीय कप्तान शुभमन गिल ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी का फैसला किया। भोजनावकाश तक भारत ने 1 विकेट के नुकसान पर 96 रन बना लिए हैं। भारत की ओर से राजस्थान के ऑलराउंडर मानव सुथार टेस्ट क्रिकेट में पहली बार खेल रहे हैं।

0: भारत आज पुरुष अंडर 18 एशिया कप हॉकी टूर्नामेंट के फाइनल में मेजबान जापान से खेलेगा। ये मुकाबला जापान के काकामेगाहारा में भारतीय समयानुसार दोपहर 3:30 बजे से शुरू होगा। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: आप सुन रहे हैं विविध भारती, राष्ट्रीय सेवा, देश की सुरीली धड़कन। यादों की महफिल कार्यक्रम बस कुछ ही पलों में।

प्रस्तुत है कार्यक्रम यादों की महफिल। दोस्तों, आज इस कार्यक्रम में हमने राजेंद्र कृष्ण जी के लिखे गीतों को शामिल किया है। आज उनका जन्मदिन है, तो आइए सुनते हैं यादों की महफिल कार्यक्रम में गीतकार राजेंद्र कृष्ण की रचनाएं।

श्री रामचंद्र के संगीत निर्देशन में हम आपको राजेंद्र कृष्ण की लिखी गीत रचना सुनवा रहे हैं। युगल स्वर आशा भोसले और मोहम्मद रफी के, फिल्म का नाम है अमरदीप।

0: अगर आपका पेट स्वस्थ नहीं है तो बहुत सारी बीमारियों का आगमन आपके शरीर में होता है।
1: परेशान हूँ मैं।
0: फैटी लिवर, इन्फेक्शन, एसिडिटी जैसी पेट की समस्याएं इन दिनों बहुत कॉमन हैं।
2: वेरी इंपॉर्टेंट पिलर ऑफ एनी जीआई प्रॉब्लम इज एजुकेशन, न्यूट्रिशन, एक्सरसाइज एंड व्हेन डू यू गेट सेल्फ टेस्टेड एंड सी अ डॉक्टर। ये तीन चीजें अगर हम कर पाए ना तो काफी हद तक हमारी बीमारियां कम हो जाएंगी।
0: पेट की बहुत सारी बीमारियों पर प्रकाश डाला है हेपेटोलॉजिस्ट और गैस्ट्रोएंट्रियोलॉजिस्ट डॉक्टर गौरव मेहता ने।
2: अगर आप टाइम पे नहीं सो खा के तुरंत सो

0: गए तो एसिडिटी की संभावना ही काफी ज्यादा होती है। और अगर हम टाइम पे ना सोए, 7 से 8 घंटे नींद पूरी ना करें, तो हमको शुगर होने के चांसेस भी होते हैं ज्यादा, फैटी लिवर के चांसेस भी ज्यादा होते हैं।
1: तो सुनिए डॉक्टर गौरव मेहता की बातें 8 जून शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
2: कार्यक्रम का अगला गीत लता मंगेशकर और सी रामचंद्र का गाया हुआ, फिल्म का नाम है आजाद। गीत रचना राजेंद्र कृष्ण की और संगीत सी रामचंद्र यानी चितलकर का।

कार्यक्रम में अब सुनिए कल्याण जी आनंद जी के संगीत निर्देशन में राजेंद्र कृष्ण के बोल, आवाज लता मंगेशकर की, और फिल्म का नाम है ब्लैकमेल।

0: राष्ट्रीय गीत की 150वीं वर्षगांठ। आ सेतु हिमाचल गूंजता स्वर।
1: वंदे मातरम सुजला।
0: हम मना रहे हैं स्मृति उत्सव।
1: शस्य श्यामला मातरम वंदे।
0: सुनना न भूलिए लघु रूपक श्रृंखला वंदे मातरम एक जय घोष। वंदे मातरम एक जय घोष। प्रसारण प्रति शुक्रवार सुबह 8:15 पर, पुनः प्रसारण उसी दिन दोपहर 2 बजे। लघु रूपक श्रृंखला वंदे मातरम एक जय घोष।
2: विविध भारती से इस समय आप सुन रहे हैं कार्यक्रम यादों की महफिल। आइए सुनते हैं कल्याण जी आनंद जी के संगीत निर्देशन में राजेंद्र कृष्ण के बोल, आवाजें मोहम्मद रफी और साथियों की, फिल्म का नाम गोपी।

0: इलाहाबाद से पहुँचे दिल्ली। बचपन से उन्हें छपे हुए शब्दों से प्यार था।
1: राम कुमार वर्मा, उनकी एकांकी हमने कक्षा 6 में पढ़ी, तो मैं इलाहाबाद में बंद रोड की जगह है जहाँ उनके किनारे उनका घर था, तो जब मैं साइकिल से उधर से गुजरता था तो मैं उनके गेट के बाहर खड़ा होकर इंतजार करता था कि वो निकले, एक झलक में देख लूं,
0: क्या
1: जैसे
0: बात है।
1: मुंबई में लोग फिल्म स्टार के लिए खड़े होते हैं।
0: लेखन के साथ साथ लेखकों से भी उन्हें बहुत प्यार था।
1: आगे देखो तो रघुपति साहब फिराक रहते थे, दाएं देखो तो अकबर इलाहाबादी रहते थे, बाएं देखो तो सीवाई चिंतामणि जैसा पत्रकार था।
0: वो हैं जाने माने लेखक पत्रकार प्रताप सोमवंशी।
1: पहले लिखा तुम्हें प्यार है और आगे भाभी बीमार है, छुटकी को आया बुखार है, आंखें जैसी की तैसी है, गठिया की हालत वैसी है, अब तो बिटवा है ये लगता, मौत ही जैसे अंतिम हल है, शेष कुशल है।
0: तो सुनिए आज के मेहमान 10 जून शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
2: लीजिए अब सुनिए लता मंगेशकर और किशोर कुमार को फिल्म ब्लैकमेल में।

कार्यक्रम का अगला गीत मदन मोहन के संगीत निर्देशन में है। गीतकार राजेंद्र कृष्ण तो है ही, आवाज लता मंगेशकर की। फिल्म का नाम है मन मौजी।

0: पता है, अब हम आपकी चिट्ठियों के इंतजार में हैं।
1: क्यों?
0: क्योंकि वो जमाना वापस आ रहा है जब आपकी फरमाइशी चिट्ठियाँ आती थी विविध भारती में।
2: चिट्ठी आई है चिट्ठी आई है,
0: और हम सुनवाते थे आपके मनचाहे गीत।
2: पल पल दिल के
0: विविध भारती पर वापस आ रहा है आपका पसंदीदा कार्यक्रम मनचाहे गीत। 2 मई से हर शनिवार और रविवार दोपहर 3 बजे
1: हम इंतजार करेंगे।
0: तो फटाफट पोस्ट कार्ड लीजिए, लिखिए अपनी फरमाइश और भेज दीजिए इस पते पर। मनचाहे गीत कार्यक्रम विविध भारतीय राष्ट्रीय सेवा, पोस्ट बॉक्स नंबर 19750, मुंबई 400091। मनचाहे गीत विविध भारतीय राष्ट्रीय सेवा, पोस्ट बॉक्स नंबर 19750, मुंबई 400091। आपकी चिट्ठियों का हमें इंतजार है।
3: राजेंद्र कृष्ण के बोल, रवि का संगीत, मोहम्मद रफी और आशा भोंसले की आवाजें फिल्म शहनाई के लिए।

0: अगर आपका पेट स्वस्थ नहीं है तो बहुत सारी बीमारियों का आगमन आपके शरीर में होता है।
1: परेशान हूँ मैं।
0: फैटी लिवर, इन्फेक्शन, एसिडिटी जैसी पेट की समस्याएं इन दिनों बहुत कॉमन है।
2: वेरी इंपॉर्टेंट पिलर ऑफ एनी GI प्रॉब्लम इज एजुकेशन, न्यूट्रिशन, एक्सरसाइज एंड व्हेन डू यू गेट सेल्फ टेस्टेड एंड सी अ डॉक्टर। ये तीन चीज अगर हम कर पाए ना तो काफी हद तक हमारी बीमारियां कम हो जाएंगी।
0: पेट की बहुत सारी बीमारियों पर प्रकाश डाला है हेपेटोलॉजिस्ट और गैस्ट्रोएंट्रियोलॉजिस्ट डॉक्टर गौरव मेहता ने।
2: अगर आप टाइम पे नहीं सो खा के तुरंत सो गए तो एसिडिटी की संभावना ही काफी ज्यादा होती है। और अगर हम टाइम पे ना सोए, 7 से 8 घंटे नींद पूरी ना करें तो हमको शुगर होने के चांसेस भी होते हैं ज्यादा, फैटी लिवर के चांसेस भी ज्यादा होते हैं।
0: तो सुनिए डॉक्टर गौरव मेहता की बातें 8 जून शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
3: कार्यक्रम का अगला गीत हमने फिल्म शारदा से आपके लिए चुना है। गाने वाले कलाकार लता मंगेशकर और आशा भोंसले, राजेंद्र कृष्ण के बोल तुम्हें ही और सी रामचंद्र का संगीत है।

0: लता मंगेशकर और आशा भोंसले की आवाज थी फिल्म शारदा के लिए।
1: राष्ट्रीय गीत की 150वीं वर्षगांठ, आ सेतु हिमाचल गूंजता स्वर।
2: वंदे मातरम सुजला।
1: हम मना रहे हैं स्मृति उत्सव।
2: शस्य श्यामला मातरम वंदे मातरम।
1: सुनना न भूलिए लघु रूपक श्रृंखला वंदे मातरम एक जय घोष। वंदे मातरम एक जय घोष, प्रसारण प्रति शुक्रवार सुबह 8:15 पर, पुनः प्रसारण उसी दिन दोपहर 2 बजे। लघु रूपक श्रृंखला वंदे मातरम एक जय घोष।
0: और अब आज का यादों की महफिल कार्यक्रम अब समाप्त होता है। आज इस कार्यक्रम में हमने गीतकार राजेंद्र कृष्ण को याद किया।

हम विविध भारती से बोल रहे हैं। ये है राष्ट्रीय सेवा, देश की सुरीली धड़कन, सुरीला सफर। ये कार्यक्रम आप सुनेंगे बस कुछ ही पलों में।

सुरीला सफर कार्यक्रम सुनने वाले सभी श्रोताओं को मंदाकिनी जोशी का प्यार भरा नमस्कार। जी बताइए कैसे हैं आप लोग। हम उम्मीद करते हैं आप बहुत अच्छे हैं और हमारे कार्यक्रम का इंतजार कर रहे हैं, और आपकी टिप्पणियां आपके संदेश पढ़कर हमें पता लगा कि आप बेसब्री से इंतजार कर रहे थे और थोड़ा सा परेशान भी हो गए थे कि क्या बात है, आज सुरीला सफर में हम सफर करेंगे कि नहीं। अरे भाई ऐसे कैसे हो सकता है, ये कार्यक्रम आपका अपना है और हम हर दिन आपके साथ, या यूं कहें कि आप हमारे साथ सफर करते रहेंगे। हाँ थोड़ा कभी कभी आगे कभी कभी पीछे हम हो सकते हैं, होना नहीं चाहिए पर ऐसा कभी कभी हो जाता है। तभी तो जब ऐसा होता है, यानी कभी समय ज्यादा हो जाता है कभी समय से पहले कुछ हो जाता है, तो हमारा ये मन व्यथित हो जाता है। और आज इसीलिए हमने कुछ ऐसे गीत चुने हैं जो आपके मन को प्रभावित जरूर करेंगे। और हमने हमारी इबारत बहुत छोटी रखी, कई श्रोताओं ने लिखा है कि अरे इतनी छोटी इबारत, जब हम बहुत बड़ी इबारत रखते हैं तो आप कहते हैं माशाल्लाह कितनी बड़ी इबारत रखी है। तो ऐसा नहीं है, जब मन में जो विचार आते हैं जिस गीत को लेकर या आज इस कार्यक्रम को लेकर, हम वैसा ही लिखने की कोशिश करते हैं, लेकिन हमसे अच्छा तो आप लिख देते हैं जनाब, जिसे हम पढ़ते हैं आप सभी के साथ साझा करते हैं। तो आज हमारी छोटी सी इबारत है कि कभी कभी मन का रेगिस्तान सूख जाता है, या यूं कहें कि कभी कभी मन जो है रेगिस्तान सा हो जाता है, मन प्यासा हो जाता है। इस भागती दौड़ती दुनिया में हर कोई, आप हम, किसी न किसी चीज का प्यासा है ना। उदास मन को बस एक अदृश्य मीठी सी बूंद की तलाश होती है। अगर आज यूं कहें कि आपका मन जब भी उदास हो तो रुकिए, खुद को कोसिए मत, कोसना बंद कीजिए, आसमान की ओर देखिए, सूरज खुद जलकर औरों को ऊर्जा और प्रकाश दे रहा है। बस यही जीवन दर्शन है, इसलिए इस जीवन दर्शन को लेकर आज हमने इबारत रची। तो छोटी सी इबारत थी, क्योंकि जब दर्शन की बात हो गई तो क्या कहना चाहिए, कम से कम शब्दों में ज्यादा से ज्यादा बात है ना। तो आपने मन के बारे में, सूरज के बारे में बहुत कुछ लिखा है, लेकिन हाँ हमने आपको लिखा था कि इस इबारत में आज के चुनिंदा गीतों से संबंधित कोई शब्द नहीं रखे गए हैं, जिसे लेकर आप अक्सर परेशान हो जाते हैं कि भाई इस शब्द पर तो बहुत सारे गीत हैं। आज हमने आपको इतना बड़ा क्लू

दे दिया और उसको जानकर आपने देखिए कितने कम समय में कितने सारे गीत चुन लिए हैं जो हमारी हमारी पसंद के गीतों से मेल खा रहे हैं, यानी यूं कहें कि अब हमारी पसंद मिलने लगी है। यही तो होता है संगत का असर। हमें आपकी संगत का असर हो गया है, या यूं कहें कि आपको हमारे साथ रहने का असर है कि हमारी पसंद मिलने लग गई है। तो बस आज के गीतों में रे शब्द का इस्तेमाल किया गया है। बताइए कौन से गीत हो सकते हैं वो? आपने बहुत सारे गीतों को बताया भी है और उसका जिक्र हम करने भी वाले हैं, लेकिन हाँ, हम आपको ये कहना चाहते हैं कि फिल्मी गानों में हमारे गीतकारों ने अलग अलग प्रयोग किए हैं और ये प्रयोग बहुत सफल भी हुए हैं। आज के सभी गीतों में रे का संबोधन है ना? कहते हैं कि हिंदी और उर्दू साहित्य का एक बहुत ही काव्यात्मक और भावनात्मक तरीका है ये, जिसमें हम किसी निर्जीव वस्तु, विचार या खुद के मन को सीधे पुकारते हैं तो उसमें संवाद करते हैं और कहते हैं सुन रे, है ना? बस इन्हीं गीतों को आज हमने चुना है जहां गीतकारों ने उसमें खुद से, किसी वस्तु से, किसी विचार से या किसी अपने से सीधे संवाद किया है रे के माध्यम से, जैसे कि सूरज रे जलते रहना। तो सुनिए आज का ये पहला गीत।

जी, तो देखा आपने, सूरज रे जलते रहना, कितना खूबसूरत गीत। हेमंत कुमार की आवाज थी, हरिश्चंद्र तारामती फिल्म का नाम था, कवि प्रदीप की रचना थी ये, और लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का संगीत था। आपने सुना इस गीत को और

महसूस किया होगा कि यहाँ कवि प्रदीप प्रकृति के सबसे तेजस्वी तत्व सूरज से बात कर रहे हैं और उसे उसकी जिम्मेदारी याद दिला रहे हैं। सूरज रे, जलते रहना, बुझना मत, जलते रहना। कितना खूबसूरत तरीके से गीतकार ने इस गीत को लिखा है ना? हमारी श्रोता लिखती है कि कोई चीज खो जाए और ना मिले तो मन कैसा उदास हो जाता है। मन का रेगिस्तान उसी पल सूख जाता है। लोग कहते हैं कि वक्त हर जख्म को भर देता है, पर ऐसा नहीं होता। इंसान नियति के आगे झुककर जीने को बाध्य है और जब हम जानते हैं कि हाल कैसा भी हो जीना तो पड़ेगा ही, तो क्यों ना ये जीवन थोड़ा हंसकर और थोड़ा भूल कर जिया जाए। जीवन को जितनी गंभीरता से लिया जाएगा उतनी ही पीड़ा होगी। इसे कुछ इस तरह से जियो कि यह उम्र एक सड़क है और हम सिर्फ चलने वाले हैं, हमें सिर्फ चलते जाना है। बहुत सुंदर। वही एक श्रोता लिखते हैं कि जीवन की इस आपाधापी में अक्सर मन का सागर उथला और शांत हो जाता है, उम्मीदों का किनारा छूटता सा लगता है और आत्मा एक सुकून भरी छांव की प्यासी हो जाती है। ऐसे में खुद को दोष देने के बजाय जरा उस वृक्ष को देखिए जो खुद तेज धूप सहकर पथिकों को शीतल छाया देता है। यही इस नश्वर जीवन का सबसे बड़ा सत्य और सार है, दूसरों के जीवन में प्रेम और प्रकाश को बांटना। वहीं एक श्रोता ने बहुत ही खूबसूरत तरीके से अपनी बात कही है कि अगर कोई ये पता लगा ले कि मन की उत्पत्ति कैसे हुई तो मैं उसे वैज्ञानिक कहूंगी। सब कहते हैं मन मेरा है, मन मेरा है, लेकिन मन क्या है, इसकी उत्पत्ति क्यों हुई और ये किससे बना है, इसका निर्माण कैसे हुआ, इसका उत्तर नहीं मिलेगा। मन की उत्पत्ति निरंतर बदलती रहती है, इसलिए कोई नहीं बता सकता कि ये कैसे अस्तित्व में आया। मन को ज्ञानेन्द्रियों और कर्मेन्द्रियों दोनों के बीच कड़ी यानी मध्यस्थ माना गया है। अंतःकरण के चार भाग, अंतःकरण के चार अंगों में से मन एक है। शेष तीन बुद्धि, चित्त और अहंकार। कार्य मन का मुख्य स्वभाव है, संकल्प विकल्प, चंचलता दुविधा और इच्छाएं पैदा करना। बहुत सुंदर। वही एक श्रोता लिखते हैं कि मन के अंदर भी एक रेगिस्तान होता है। बाहर भले हरियाली हो लेकिन अंदर सूखी और गर्म रेत। मन का रेगिस्तान पानी नहीं मांगता, वो मांगता है बस इतना कि कोई उसे समझे बिना, जज किए बिना उस उदास मन को बस वो जो थक गया है मुस्कुराते उसे मुस्कुरा कर देखे। उदास मन के भीतर भी एक कोना होता है जहां उम्मीद की एक बेल जिसे सींचना पड़ता है, खुद से बात करके, खुद को समझ के और बेवजह खुद को ही गले लगाकर। आपने बहुत सारे गानों का जिक्र किया है, जो इसमें से आपका एक गाना हमसे मिलता है, सूरज रे जलते रहना। तो आइए बढ़ते हैं अगले गीत की ओर। शब्द रे। सोना रे,

आशा भोसले मोहम्मद रफी को आपने सुना। फिल्म का नाम था तीसरी मंजिल। गीतकार मजरूह सुल्तानपुरी थे और संगीतकार थे राहुल देव बर्मन। कितनी प्यारी इल्तजा कर रही है महबूबा अपने महबूब से, ओ मेरे सोनारे। जी तो आज के दो सवाल नोट कर लीजिए। वैसे तो आपने अपनी टिप्पणियों में बहुत सारे गीत लिखे हैं जो हमारी गीतों से मेल भी खा रहे हैं और उसके अलावा भी गीत लिखे गए हैं, तो वही हमारा सवाल है कि रे का ये प्रयोग किन किन गीतों में हुआ है, आप बताइए। जैसे ही आप बताएंगे हो सकता है आपकी पसंद हमारी पसंद से और मेल खा जाए और इसके अलावा कुछ अन्य गीत भी हमारी नजर में आ जाए। तो रे का प्रयोग यहाँ और फिल्मों में किन किन गीतों में किया गया है इसका उल्लेख आपको करना है, कम से कम चार या पांच गीत। और दूसरा सवाल ये है कि रे का ये काव्यात्मक रूप कब कब गीतों में इस्तेमाल किया जाता है, यानी गीतकार जब लिखता है जैसे सो नारे सूरज रे, ये क्यों और कब? जैसा कि मैंने पहले कहा भी था, आप अपनी कल्पना से बताइए, अपने भावना से बताइए कि रे का ये काव्यात्मक रूप गीतकार कब कब गीतों में किस रूप में इस्तेमाल करता है। अगर वो कहता है सूरज रे चंदा रे मन रे तो क्यों, आप क्या सोचते हैं इसके बारे में बताइएगा कम से कम शब्दों में।

हमारे श्रोता ने लिखा है कि आज की इबारत आधुनिक अंधी दौड़ की मरीचिका का उल्लेख करते हुए जीवन के दर्शन को बयां कर रही है। अंततः इस मृत तृष्णा का सुखांत सूर्य की उपमा संग प्रदान कर सुखद उपसंहार में समापन किया गया है। विषय पूर्णतः तथ्यपूर्ण और दार्शनिक है। अभिनव गीत चयन भी प्रशंसनीय है। अल्पकालीन सूचना पर भी आशा है कि यह संक्षिप्त इबारत सफर की गरिमा बरकरार रखेगा। बिल्कुल, ये आप सभी श्रोताओं पर है। हो सकता है आज का ये सफर थोड़ा छोटा हो जाए।

आप सभी लोग कम से कम टिप्पणियां कर पाए क्योंकि आपको वक्त कम मिला, लेकिन जितना भी मिला उसी में हम इस सफर का आनंद उठाएंगे, क्यों, है ना? वही एक श्रोता लिखते हैं कि आज गद्यांश में जीवन में छाई उदासी या ग्लानि को एक तरस या प्यास की उपमा के साथ उभारने की कोशिश हुई है और एक शब्द को खास कर प्रयोग में लाया गया है गीतों के जरिए, वो भी खास है रे, यानी मन वो उदास हो या धीर कैसे धरे या हो, या सूरज जो जीवन की शक्ति के लिए अपने को जलाता रहे, यही जीवन की सच्चाई को उजागर करते हुए गाने होंगे। आपने भी कुछ गीतों का चयन किया है तो देखिएगा आपके गीत हमारी पसंद से मेल खा रहे हैं या नहीं। वही एक श्रोता लिखते हैं कि आज आपकी ये पंक्तियां जीवन के एक बहुत ही गहरे और कड़वे सच को बेहद खूबसूरती से बयां कर रही है। मंदाकिनी जी, भागदौड़ भरी इस जिंदगी में अक्सर हम दूसरों की उम्मीदों को पूरा करते करते अंदर से पूरी तरह रीते और थकावा महसूस करते हैं। ये ठहराव जिसे हम प्यास या खालीपन समझ रहे हैं वास्तव में खुद को भीतर से सींचने और एक नई ऊर्जा के साथ खिलने का अवसर है। हमें किसी बड़े चमत्कार की नहीं बल्कि अपनेपन और सांत्वना की एक छोटी सी मीठी बूंद की तलाश है। बिल्कुल सही कहा आपने। और इसी मीठी बूंद की तलाश में हम पूरी जिंदगी भटकते रहते हैं, वो मिलती है कि नहीं ये हमारे अपने अपने सोच और कहना चाहिए अनुभव पर निर्भर करता है। वही एक श्रोता लिखते हैं कि आज तो आपने श्रोताओं के मन को रेगिस्तान बना दिया। पोस्ट लगभग सिर्फ 45 मिनट पहले आई है। मेरे ख्याल से सभी उत्सुकता से आपकी राह देख रहे थे कि कब सुरीला सफर की रेल आए, हम उसमें सवार हों, इबारत को देख अपनी जिज्ञासा की प्यास बुझाएं। तो अब तो आप रेल में सवार हो गए हैं ना, चलिए करते हैं यात्रा शुरू। और हो गई है यात्रा शुरू, देखिए रेल हमारी चल पड़ी है फटाफट। एक श्रोता लिखते हैं कि अपने मन की उदासी को कोसने के बजाय खुद पर हौसला रखें और उगते सूरज की तरह चारों तरफ प्रकाश फैलाएं, अर्थात परिश्रम करें, आगे बढ़ें। मन रे तू काहे न धीर धरे, आपने इस गीत का चयन किया है और वाकई हमारा अगला गीत यही है। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी को, बधाई जिन्होंने ये गीत पसंद किया है या अपनी पसंद में ये गीत शामिल किया है।

0: रोशन की संगीत निर्देशन में आप सुन रहे थे साहिर लुधियानवी का लिखा गीत। मोहम्मद रफी की आवाज थी और फिल्म का नाम था चित्रलेखा। कितना खूबसूरत गीत, गहरा और सुंदर। दार्शनिक प्रयोग यहाँ पर रे का, देखा आपने, रे का अर्थ यानी यहाँ मन या आत्मा से है। और यहाँ गीतकार जो साहिर लुधियानवी हैं, अंतरात्मा को एक दार्शनिक उपदेश दे रहे हैं। जो मन अशांत है उन्हें धैर्य रखने की सीख दे रहे हैं। कह रहे हैं कि रे मन, तू धीरज क्यों नहीं धरता, इस जीवन की धूप छांव को किसने बांधा है, इसलिए व्यर्थ की चिंताओं को छोड़ दे रे मन। मन को समझा, अपने आप को समझा, कितना गहरा गीत। और इस गीत को सुनकर तो मन को शांति मिलती ही है, आपको भी निश्चित रूप से बहुत गहरी शांति मिली होगी। और आप मन को समझा सकते हैं इस गीत को सुनकर कि इधर उधर व्यर्थ की दौड़ भाग में कुछ नहीं रखा, मन को शांत और सौम्य रखा जाए, वही जीवन का सार है। हमारे श्रोता ने लिखा है कि आज के सुरीला सफर प्रोग्राम में आपका स्वागत है। आप इस रेगिस्तानी सफर में गर्मी में आज सुरीले गानों से मन की प्यास बुझाएंगी, मन को शीतलता मिलेगी, बहुत सुंदर। वहीं गीत एक श्रोता लिखते हैं कि इंतहा हो गई इंतजार की, नमस्कार, क्या बात है, आज सुरीला सफर बहुत ज्यादा इंतजार करना पड़ा पोस्ट के लिए। अरे आप तो फिर भी इस सफर में शामिल हो गए हैं, और क्या चाहिए। एक श्रोता लिखते हैं कि विविध भारती रे, मंदाकिनी बहन रे, आप ही बताओ आज की पोस्ट इतनी देरी से क्यों आई, वैसे रोज सुबह आ जाती है मगर इतनी छोटी सी इबारत भी नहीं होती है। सुरीला सफर में जुड़ रहे सभी के संग आपको मैं स्वागत करता हूं, नमस्कार करता हूं, बहुत बहुत शुक्रिया, आभार आपका कि आप हमारे साथ हैं। वहीं एक श्रोता लिखते हैं कि आज तो आप पानी की बूंदे लेकर आई हैं, तो कहीं ना कहीं गर्मी से राहत मिलेगी, बाकी तो जब प्रोग्राम चलेगा तब पता चल जाएगा कि कितनी ठंडक मिलेगी, मिली ठंडक आपको। वहीं एक श्रोता ने कहा है कि सूरज हमें जीवन दर्शन भी सिखाता है, सूरज हर दिन बिना थके अपना काम करता है, ये सिखाता है कि जीवन में परिस्थिति कैसी भी हो अपने कर्तव्य से नहीं डिगना है, नहीं हटना है, रात कितनी भी लंबी हो और सवेरा जरूर आएगा। और इसी तरह हमारे जीवन में दुख के बाद सुख जरूर आता है, सूरज स्वयं जलकर भी संसार में प्रकाश बिखेर कर परोपकारी बनना सिखाता है, बहुत सुंदर। वहीं एक श्रोता लिखते हैं कि इबारत अनुरूप संभावित गाने, समय कम है इसलिए ज्यों ज्यों याद आएंगे जोड़ते जाएंगे, सूरज रे जलते रहना, फिल्म हरिश्चंद्र तारामती, मन रे तू काहे नधीर धरे, और आपने और भी गानों का बारे में लिखा है। तो हमारी जो आज की सवाल है, हमारा जो आज का सवाल है, उसमें हम आपके गीतों को शामिल करेंगे जो आपने रे के प्रयोग वाले गीत लिखे हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं और सुनते हैं फिल्म नागमणि का गीत। इसे आवाज दी है प्रदीप ने, गीत को कवि प्रदीप ने ही लिखा है और धुन बनाई है अविनाश व्यास ने।
1: पिंजरे के पंछी
0: रे,

जी, तो सुना आपने कि कवि प्रदीप ने कितने दार्शनिक तरीके से ये बात कही है कि पिंजरे में बंद पक्षी और शरीर यानी दुनिया में फंसी मानव आत्मा की जो उन्होंने तुलना की है। आप देखिए कि वो कहते हैं कि जिस प्रकार पिंजरे में कैद पक्षी अपने पंखों के कटने और अपनी स्वतंत्रता यानी अपनी आजादी छिन जाने का दर्द किसी को नहीं बता सकता, ठीक उसी तरह मानव शरीर में कैद आत्मा सांसारिक बंधनों और दुखों के कारण मौन रहकर भीतर ही भीतर तड़पती रहती है। तभी तो उन्होंने कहा, पिंजरे के पंछी रे तेरा दर्द न जाने कोई। हमारे श्रोता लगातार अपनी बात कह रहे हैं और बहुत ही शानदार तरीके से अपनी बात रख रखे हैं और मुझे लगता है बहुत गहराई में चले गए हैं। हमारे श्रोता लिखते हैं कि कहीं उलझ गए हैं हम मंदाकिनी जी शब्द जाल में। जब आप होती हैं तो कुछ नया होता है। 1 बजे का बस इंतजार है, हम नहीं उलझेंगे। बिल्कुल मत उलझिए, बस आप हमारे साथ बिल्कुल आराम से सफर में रहिए और आरामदेह सफर का मजा लीजिए। एक श्रोता लिखते हैं कि कभी कभी मन इतना सूख जाता है कि आंखों में आंसू होते हुए भी प्यास नहीं बुझती। भीड़ के शोर में चलते चलते अपनी ही आवाज कहीं खो जाती है। हर चेहरा मुस्कुराता दिखता है पर भीतर कोई चुपचाप टूट रहा होता है। कोई रोटी का प्यासा है, कोई मोहब्बत का, कोई बस एक अपने का। मन ढूंढता एक मीठी सी बूंद जो माथे पर हाथ रखकर कह दे, मैं हूँ, तुम अकेले नहीं हो। मगर अक्सर शाम ढल जाती है और वो बूंद नहीं आती। बिल्कुल सही कहा। फिर नजर उठती है आसमान की ओर, जहाँ सूरज रोज जलता है, अपने हिस्से की आग सहकर दुनिया को उजाला देता है। तब दिल रो पड़ता है कि शायद जीवन का अर्थ यही है, अपने दर्द को सीने में रखकर भी किसी और के अंधेरे में दीपक बन जाना। और सबसे दर्दनाक बात यह है कि सबसे ज्यादा रोशनी बांटते हैं जो अक्सर उनकी तन्हाइयों का हाल कोई नहीं पूछता। क्या बात कह दी आपने, मेरी आंखें नम हो गई हैं, गला रुंध गया है। सचमुच यही होता है कि जो दूसरों की चिंता और फिक्र करता है उसके लिए आप समझ गए हैं मैं क्या कहना चाहती हूँ, वो आपने कह दिया है। एक श्रोता लिख रही है कि आज सुरीला सफर प्रोग्राम की पोस्ट 12 बजे के बाद आई है। रोज की तरह हम तो पोस्ट का सुबह 10 बजे से इंतजार कर रहे हैं और इस प्रोग्राम को पोस्ट 10 बजे के करीब आ जाती है, आज बहुत देर कर दी। वहीं एक श्रोता लिखते हैं कि आज सुरीला सफर के अंदर दर्द भरे उदासी के सॉन्ग शायद सुनने को मिलने वाले हैं। ऐसी बात नहीं, आज हम कुछ दर्शन पर बात कर रहे हैं, जिंदगी का दर्शन जिसे आप भी पसंद करते हैं, है ना। वहीं एक श्रोता लिखते हैं कि सूर्य केवल आकाशीय पिंड नहीं है बल्कि अनंत ऊर्जा, प्रकाश, जीवन और त्याग का सकारात्मक प्रतीक है। सूर्य निरंतर गतिमान और कर्मशील है, इसे आलस्य त्याग कर निरंतर कर्म करने और ऊर्जावान बने रहने की प्रेरणा का स्रोत माना जाता है। ये निराशा के काले बादलों को चीर कर रोशनी और प्रकाश रूपी किरणों को विस्तारित कर आशा का संचार कर देता है। जी बिल्कुल, आशा का संचार तो आपने भी कर दिया है। इतने कम समय में लगातार हमारे साथ बने हुए हैं, हर सफर में हमारे साथ हैं, और क्या चाहिए। आपका ये जो है ना, मैं हूं ना, ये हमारे लिए बहुत बड़ा काम करता है, दवा का। और जब हमारे श्रोता हमारे साथ हैं तो रे का प्रयोग भी तो श्रोता रे बने रहना है ना। चलिए तो हमारे सवालों का जवाब दीजिए फटाफट कि रे

का प्रयोग और किन किन गीतों में हुआ है? हमारे बहुत सारे श्रोताओं ने लिख भेजा है, हम पढ़ेंगे जल्द ही। वहीं हमारा दूसरा सवाल है कि रे का ये काव्यात्मक रूप कब कब गीतों में इस्तेमाल किया जाता है? आप अपने हिसाब से जवाब दीजिए। आप क्या सोचते हैं गीतकार कब रे का प्रयोग करता है? जैसे मैंने कहा, श्रोता रे। आइए सुनते हैं कार्यक्रम का ये अगला गीत।

लता मंगेशकर को आपने सुना, फिल्म का नाम था दिल ने फिर याद किया। जी एल रावल के बोल थे और सोनिक ओमी का संगीत। कितना गहरा और दर्द भरा गीत था। जब हम किसी को पुकारते हैं और कोई नहीं आता तो जी जान से हम पुकार लगा देते हैं, आ जा रे आ जा रे आ जा रे, है ना। बस यही है रे का प्रयोग जो आपको बताना है कि गीतकार ने किन किन अर्थों में किया है। एक श्रोता लिखते हैं कि आज की इबारत में किसी भी शब्द का चयन नहीं करना है क्योंकि रे जैसे संबोधन परक शब्दों से ही संबंधित गीत बजाए जाएंगे, लेकिन रेगिस्तान तो अपने आप में ही सूखा होता है और इसीलिए उसे मरुस्थल कहा जाता है। ऐसे में सहारा का रेगिस्तान, थार रेगिस्तान जैसे रेगिस्तानी इलाकों का नाम सुना है, किंतु मन का रेगिस्तान प्यासा हो यह तो संभव है। लेकिन एक तो रेगिस्तान वैसे ही सूखा, दूसरे सूखे में और सूखा। बात कुछ समझ में नहीं आई भाई, जहां सूखा होता है वहां भूख प्यास के लिए धरती ही नहीं। अभी तो हर जीव ही एक

के लिए तरसते हैं, लेकिन अब भी ये तो कहावत प्रचलित है कि जहाँ कोई नहीं वहाँ रेड़ का ही पेड़ प्रधान हो जाया करता है। फिर भी क्या बात है, बहुत गहरे में चले गए आप तो। देखिए, हम जब हमारा मन रेगिस्तान हो जाता है यानी सूखा हो जाता है, तो हम मिठास को तरसते हैं, एक बूंद मिल जाए, प्यार की एक बूंद, पानी की एक बूंद जिसे हम कह सकते हैं, और वो बूंद हमें सुरीला सफर में मिल रही है ना। हम भले ही हमारा मन रेगिस्तान है, लेकिन आपके प्यार की बूंद, या यूं कहें कि हमारी तरफ से जो आपको प्यार मिल रहा है।

मिल रही है ना। हम भले ही हमारा मन रेगिस्तान है, लेकिन आपकी प्यार की बूंद, या यूं कहे कि हमारी तरफ से जो आपको प्यार मिल रहा है, वो बूंद काफी नहीं है क्या हमारे जीने के लिए? सोचिएगा। एक श्रोता लिखते हैं कि देर लगी आने में तुमको, शुक्र है फिर भी आए तो। अरे आना तो था ही, आप कहें और हम ना आए, ऐसे तो हालात नहीं। मैं एक श्रोता लिखते हैं कि बहुत ही सुंदर पोस्ट है आपकी, और एक श्रोता लिखते हैं कि विशेष रूप से ये कहना है मुझे कि कल शाम को 5:30 बजे से रात 9:30 बजे तक आपने बहुत मस्त गीत सुनवाए। अच्छा, कल आप सुन रही थी? बहुत आभार और शुक्रिया आप सबकी अथक मेहनत को सलाम। बहुत शुक्रिया आपको भी कि आप भी तन मन धन लगाकर हमें सुनते हैं। वहीं एक श्रोता लिखते हैं कि आज छोटी सी इबारत और अच्छा अंदाज आपने दे दिया रे शब्द के गाने, अब ये सोचने में ज्यादा मेहनत ना करनी पड़े शायद, पर आप हैं तो हम लोग तुक्का लगाना बेकार ही मानेंगे। आप कहां कहां से अनसुने गाने खोज खोज के लाती हैं, हम लोग अवाक रह जाते हैं। आपको पसंद है यही हमारे लिए काफी है। वहीं एक श्रोता लिखते हैं कि आज का ये कार्यक्रम तो दिलचस्प पहेली जैसा लग रहा है। आपके संकेत के अनुसार आज के सभी गीतों में रे शब्द का प्रयोग हुआ है। हिंदी गीतों में रे बहुत ही आम है, इसलिए कई संभावनाएं हो सकती हैं। आपने बहुत सारे गीत लिखे हैं, मन रे तू काहे न पिए, धीर धरे ओरे पिया, रे कबीरा, नैना रे, सजन रे, चलत मुसाफिर मोहलिया रे। क्या बात है, बहुत खूब। मुझे लगता है कि आपकी इबारत का मुख्य संदेश गीतों से भी ज्यादा महत्वपूर्ण है। जब मन उदास हो, जीवन में आशा की छोटी सी किरण तलाशनी हो, सूरज का उदाहरण देकर आपने ही बताया कि जीवन का सार संघर्ष के बावजूद प्रकाश बांटना है। बिल्कुल। आप लोगों के विचार लगातार हम तक पहुंच रहे हैं, लेकिन क्या करें, समय का ध्यान भी हमें रखना होता है। बहुत सुंदर विचार आपने लिखे हैं। मन का रेगिस्तान भी एक दिन खिल जाएगा, सब्र की बारिश से हर जख्म सिल जाएगा, तो खुद को कमजोर समझना छोड़ दे, तेरे भीतर का सूरज भी एक दिन मिल जाएगा। क्या बात है। वहीं एक श्रोता लिखते हैं कि पीतल की मोरी गागरी, दिल्ली से मोल मंगाई रे, 2 बूंद पानी का। अच्छा, इस गीत में रेगिस्तान है, पानी के लिए कश्मकश भी है, प्यास भी है, और रे शब्द भी आ रहा है, तो पूर्ण रूप से ये गीत शामिल होना चाहिए। आपकी लिस्ट में गीत शामिल हो गया है, और क्या चाहिए। देखिए ना, आप कितना गहरा उतर कर इस गीत को उठा लाए हैं कहीं से। और एक श्रोता लिखते हैं कि आज थोड़े समय के लिए मन उदास हो गया था, क्योंकि रोजाना सुरीला सफर की पोस्ट 8 से 10 घंटे पहले आ जाती है। आज 12 बजे के बाद सुहाना सफर की पोस्ट आई, जो पढ़कर मन प्रफुल्लित तो हो गया। मेरा मन अगर उदास हो जाता है तो मैं हमारे घर से नजदीक लाखोटा तालाब के पार्क में खुली हवा में टहलने चला जाता हूँ। वहाँ रेडियो बजता रहता है, एफएम रेडियो बजता रहता है, और मैं मधुर गाने सुनता हूँ, मन को शांति मिलती है, मन प्रफुल्लित हो जाता है।

वाणिज्य राम को आपने सुना, फिल्म का नाम था गुड्डी और गुलजार साहब के बोल थे, वसंत देसाई का संगीत था। हमारे श्रोता लिख रहे हैं कि आपकी आवाज में एक खनक है, आप मुस्कुराते हुए गीतों को लेकर आती हैं तो हमें अच्छा लगता है। आज की इबारत कुछ अलग सी बड़ी प्यारी लग रही है, बस हम थोड़े बिजी हैं पर आपके साथ रहेंगे, बिल्कुल रहिएगा। और वही एक श्रोता लिखते हैं कि सुरीला सफर की पोस्ट के इंतजार का मन प्यासा बन गया था, मानो दिल का रेगिस्तान बन गया था, अब पोस्ट आ गई है तो आपने कुछ गाने लिखे हैं जो हमने पूछे थे। मन रे बिल्कुल बूझ मेरा क्या नाव रे, क्या बात है, मेघा रे बदरा छाई रे, खाई है रे हमने कसम, जा जा रे वाह और बोले रे पपीहरा, तो आपकी पसंद हमसे मिल गई है। आजा रे प्यार पुकारे, ये अगला गीत अभी थोड़ी देर पहले आपने सुना ही था। दिल पुकारे आ रे ओ माझी रे पंछी रे, क्या बात है, ओ साथी रे तेरे बिना क्या जीना, ऐसे करके सखीरी सुन बोले पपिया उस पार। आपने बहुत सारे गीत लिखे हैं, बहुत शानदार आपने गीत मालिका तैयार की है जो रे पर आधारित है। वहीं एक श्रोता लिखते हैं कि आज मेरे मन से जुड़ा हुआ टॉपिक है और आपने लिखा है कि बहुत सारे गाने हैं जो रे पर आधारित है। मेरे मन से जुड़ा टॉपिक है, आज तो रेगिस्तान कभी मन हो जाता है लेकिन जीना है तो हंस के जीना है, इसी फंडे पर मैं हमेशा जीती हूँ चाहे कितनी भी प्रॉब्लम आ जाए और मैं मुश्किलों का सामना करती हूँ। वही एक श्रोता लिखते हैं कि मन रे तू काहे न धीर धीरे, ये गाना आपकी लिस्ट में है बिल्कुल। एक श्रोता ने लिखा है कि वाह आज के कार्यक्रम का शीर्षक ही दिल को छू गया है, जहां आपने रे का संबोधन वाले गीत चुने हैं। एक श्रोता लिखते हैं कि आज चंदा रे कभी तो जमी पे आ बैठेंगे बात करेंगे, बिल्कुल आपने ए हरिहरन की आवाज में ये गीत पसंद किया है, नई फिल्म से गीत है, बहुत सुंदर गीत आपने चुना है चंदा रे चंदा रे। वही एक श्रोता लिखते हैं ओ माझी रे अपना किनारा नदिया करे धरा, अच्छा ओ साथी रे तेरे बिना क्या जीना, चंदा रे दिल से रे, बिल्कुल सही आपका चुनाव भी बहुत सही है। वही एक श्रोता लिखते हैं कि सूरज रे जलते रहना, चंदा रे मेरी मोरी पतियां ले जा, वाह जा जा रे जा बालम वाह, ओ बसंती पवन पागल ना जा रे ना जा, जरा सा झूम लू मैं ना रे बाबा ना, क्या बात है, बहुत नया गाना आपने चुना है, बहुत सुंदर। वही एक श्रोता लिखते हैं कि मैम आपकी स्माइल कितनी प्यारी है, अरे वाह आपको दिख रही हूँ मैं हंसते हुए शुक्रिया मेहरबानी। वही एक श्रोता लिखते हैं कि ओ मेरे सोना रे ये गाना तो मेरी लिस्ट में नहीं था, क्यों भाई क्यों नहीं था, ये गाना तो बहुत ही पॉपुलर है और सभी को पसंद आता है। चलिए कोई बात नहीं, आपकी लिस्ट में जो गाने थे वो तो लिखिए जनाब। एक श्रोता लिखते हैं माई री चंदा रे आओ रे ओरे पिया, ये गाने नदिया चले चले रे धारा, रात का समा झूमे चंद्रमा मन मेरा नाचे रे, वाह क्या बात है, कहाँ पकड़ा है आपने रे को, बहुत सुंदर। और वहीं और भी श्रोताओं ने बहुत सारी चीजें लिखी है, रे मन सुर में गा ओरे ताल मिले नदी के जल में, यह तो हमने भी गीत चुना था फिर हमने इसे हटाया। पिया तो से नैना लागे रे, क्या बात है, रे माँ तेरे मेरे नैना सावन भादो। और वहीं आप लिखते हैं तेरी राहों में खड़े हैं दिल थाम के रे, अच्छा इसमें भी आप सुन रहे हैं, और यानी आज आपने रे जिनमें रे है और मन की प्यास उदासी उम्मीद की बात है, मंदाकिनी जी आज आपने वो गाने सुनकर हमें बहुत आनंदित किया है, ऐसा हमारे श्रोता लिख रहे हैं। अब आपने हमारे पहले सवाल का जवाब तो दे दिया, और भी बहुत सारे श्रोता अपनी पसंद के गीत लिख रहे हैं जहां रे का प्रयोग हुआ है, लेकिन आपने इस सवाल का जवाब अभी तक नहीं दिया कि रे का ये

0: काव्यात्मक रूप कब कब किन किन गीतों में इस्तेमाल किया गया है? गीतों का नाम तो आपने लिख दिया है, लेकिन कब इस्तेमाल किया गया, क्यों इस्तेमाल किया गया, इसका छोटा सा बताइए ना बात। अगला गीत हमने चुना है सलील चौधरी के संगीत निर्देशन में, शैलेंद्र का लिखा हुआ, आवाज लता मंगेशकर की है और ये फिल्म है पूनम की रात। साथी रे, सुनिए आप।
1: साथी रे,
0: ये वे हमारी जान ले लेता है ना।

हमारे श्रोता लिख रहे हैं कि आपको हार्दिक नमस्कार और अक्षर रे का जो आज स्पेशल प्रोग्राम है वो बहुत ही शानदार लग रहा है। आपने फिल्म आ का गीत आजा रे अब मेरा दिल पुकारा, रो रो के गम भी हारा ये गीत पसंद किया है और लिखा है कि इसमें रे का इस्तेमाल बहुत ही सुंदर तरीके से किया गया है। वहीं एक श्रोता लिखते हैं कि तू ही रे तेरे बिना मैं कैसे जीऊं, ये गाना भी बहुत सुंदर है, बहुत सुंदर नया गाना है। आप एक श्रोता हमारे सवाल का जवाब देते हैं दूसरे सवाल का कि रे शब्द का काव्यात्मक आविष्करण खुशी उदासी आशा निराशा चैतन्य वैराग्य अभिमान प्यार स्नेह के अनुभव में अपने आप बखूबी हो जाता है गीतों के माध्यम से गीतकारों के माध्यम से, क्या बात है, बहुत सुंदर। वहीं एक श्रोता लिखते हैं कि मेघा रे मेघा रे ये गाना आ जाए तो इतनी

गर्मी में थोड़ी ठंडक मिल जाए। हाँ, आज तो आपको ये गाना नहीं मिलेगा, लेकिन हो सकता है अगले किसी और कार्यक्रम में हम आपके लिए गाना लेकर आएं। तो हमारे दूसरे सवाल का जवाब भी आपने दिया कि रे का ये काव्यात्मक रूप कब कब गीतों में इस्तेमाल किया जाता है। बिल्कुल सही बात है दोस्तों कि जब कोई गीतकार किसी अमूर्त भावना जैसे कि मन है, सूरज है, चांद है को व्यक्ति के रूप में, अपने खास प्रेमी के रूप में, महबूब के रूप में, अपनेपन के रूप में देखता है, तब वो रे लगाकर उसे संबोधित करता है, ताकि वो जो बात, वो जो प्रार्थना, वो जो इल्तजा, वो जो प्रेम की बौछार, वो जो भी संदेश देना चाहता है, वो रे के माध्यम से और मजबूत रूप से उस व्यक्ति तक, उस इंसान तक पहुंच जाता है। जैसे सूरज रे जलते रहना है ना, रे का प्रयोग। तो हमारे दूसरे सवाल का जवाब भी आपने बहुत अच्छा दिया है, बहुत बहुत शुक्रिया। और कार्यक्रम का आखिरी गीत आपके लिए हम लेकर आए हैं, रविंद्र जैन के संगीत निर्देशन में अनजान का लिखा हुआ, जसपाल सिंह की आवाज, फिल्म का नाम श्याम तेरे कितने नाम।

0: मन से मन का बंधन सच्चा, मन से मन का बंधन सच्चा, बाकी बंधन झूठे कभी अपना साथ न छूटे।
1: जी हाँ, कभी अपना साथ न छूटे। प्यारे श्रोताओं रे, बने रहना इस सुरीले सफर में हमारे साथ, कभी अपना साथ न छूटे। लेकिन अब वक्त हमें इजाजत नहीं दे रहा है इस सफर को और लंबा करने का, तो बस यही थम जाते हैं इस कार्यक्रम से, यानी सुरीला सफर से। अब मंदाकिनी जोशी को दे दें इजाजत, फिर मिलूंगी किसी और कार्यक्रम में। नमस्कार।

दोस्तों आइए विचार करें कि पर्यावरण को बचाने की मुहिम किस तरह से चलाई जाए। पर्यावरण प्रदूषण के दूरगामी दुष्प्रभाव बहुत ही घातक हैं। वायुमंडल का ताप बढ़ रहा है, ओजोन परत क्षतिग्रस्त हो रहा है, हवा प्रदूषित हो रही है, वनस्पतियां नष्ट हो रही हैं, हवा में विषैले कण घुल रहे हैं, जल प्रदूषित हो रहा है, इंसान तमाम बीमारियों से ग्रस्त हो रहा है। क्या अब भी हमें सचेत नहीं होना चाहिए? अगर पर्यावरण सुरक्षा के प्रति अभी भी हम सजग नहीं हुए तो ऐसी धरती सिर्फ इतिहास के पन्नों में अंकित रह जाए।

दोस्तों, जिस तरह हमारा जनजीवन पर्यावरण से प्रभावित होता है, उसी तरह हमारे कार्यकलापों से पर्यावरण प्रभावित होता है। लकड़ी के लिए जब हम पेड़ काटते हैं तो भूल जाते हैं कि धीरे धीरे पूरे जंगल समाप्त हो रहे हैं। जंगल समाप्त होने से वन्य प्राणी कम हो रहे हैं, जलाशय सूख रहे हैं, कुछ जंगली जीवों की तो पूरी की पूरी प्रजाति ही नष्ट हो रही है। गाँव के भीतर कई शहरों में भी वन्य प्राणियों के प्रवेश का ये बहुत बड़ा कारण है। इसलिए सबसे पहले पेड़ों की कटाई पर रोक लगाई जाए, नए नए पौधे लगाए जाएं।

प्रदूषण और ध्वनि प्रदूषण शामिल हैं। नदियों में गंदगी फेंकना, घर के कचरे को खुले में फेंकना, तेज आवाज में लाउडस्पीकर का प्रयोग करना, कारखानों का धुआं, इसके अलावा बहुत सारा ई कचरा, ये सब जिम्मेदार हैं पर्यावरण प्रदूषण को बढ़ाने में। आइए त्रिवेणी तट पर विचार करें, जितना संभव हो प्रदूषण न फैलाएं, पर्यावरण को बचाने के लिए हरियाली के बीज रोपें। लहलहाएंगे जब आपके रोपे पेड़ पौधे, तो आपका मन भी खुशियों से झूम उठेगा।

0: ये विविध भारती है, राष्ट्रीय सेवा, देश की सुरीली धड़कन। थोड़ी ही देर में आप सुनेंगे समाचार।
1: नमस्कार, आकाशवाणी से दोपहर समाचार के साथ मैं लवलीन निगम। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आर्थिक सलाहकार परिषद के सदस्यों के साथ देश की आर्थिक वृद्धि को गति देने के उपायों

0: पर चर्चा की। रिजर्व बैंक ने भारत में निवेश को आसान बनाने के लिए विदेशी निवेशकों के सरकारी प्रतिभूतियों से जुड़े नियमों को सरल बनाया। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर आज शाम नई दिल्ली में नेपाल के विदेश मंत्री शिशिर खनाल से बातचीत करेंगे। सीबीएसई ने अंकों के सत्यापन और पुनर्मूल्यांकन के लिए आवेदन जमा करने की अंतिम तिथि कल तक बढ़ाई। पंजाब में आज सुबह फिरोजपुर फाजिल्का मार्ग पर एक ट्रक से वाहन की टक्कर में 9 लोगों की मौत। केरलम और माहे में कल तक मूसलाधार वर्षा का रेड अलर्ट जारी। श्रेयस अय्यर सूर्यकांत यादव की जगह T20 अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट टीम के कप्तान बने वैभव सूर्यवंशी पहली बार टीम में शामिल। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज आर्थिक सलाहकार परिषद के सदस्यों के साथ बैठक की अध्यक्षता की। प्रधानमंत्री और परिषद ने वैश्विक उथल पुथल के दौर में भारत की आर्थिक वृद्धि को और बढ़ावा देने के लिए विभिन्न विचारों और उपायों पर चर्चा की। जीवन स्तर और व्यापार में सुगमता लाने के लिए विभिन्न सुधारों पर भी विचार विमर्श किया गया। सदस्यों ने पश्चिम एशिया संघर्ष के भारत और विश्व पर पड़ने वाले प्रभाव का भी आकलन प्रस्तुत किया। प्रधानमंत्री ने कहा है कि वैश्विक आर्थिक संकट के बावजूद भारतीय अर्थव्यवस्था की नींव असाधारण रूप से मजबूत बनी हुई है। श्री मोदी ने दमण में कल लगभग 2,970 करोड़ रुपए की विकास परियोजनाओं का शुभारंभ किया। इस अवसर पर प्रधानमंत्री ने एक जनसभा में कहा कि भारत विश्व की सबसे तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्थाओं में से एक है।
1: वर्ष 2025-26 में भारत ने 7.7% की ग्रोथ रेट हासिल की है और पिछला क्वार्टर जो 31 मार्च को खत्म हुआ उसमें भी भारत की ग्रोथ 7.8% रही है और ये दुनिया में तेज गति से आगे बढ़ने वाली बड़ी इकोनॉमी है।
0: रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा है कि ऐसे समय में जब कई देश आर्थिक अनिश्चितताओं का सामना कर रहे हैं, भारत विश्व की सबसे तेजी से बढ़ती प्रमुख अर्थव्यवस्था बनी हुई है। एक रिपोर्ट।
2: वित्त वर्ष 2025-26 में दर्ज 7.7% की सकल घरेलू उत्पाद वृद्धि दर का जिक्र करते हुए श्री राजनाथ सिंह ने कहा कि ये उपलब्धि पिछले 12 वर्ष में भारतीय अर्थव्यवस्था की दृढ़ता और मजबूती का संकेत है। रक्षा मंत्री ने कहा कि राष्ट्र निर्माण के प्रति श्री मोदी की अटूट प्रतिबद्धता, नवाचार, बुनियादी ढांचा और उद्यमिता तथा वैश्विक चुनौतियों से देश को उबारने की उनकी क्षमता ने भारत को एक आत्मविश्वासपूर्ण, दृढ़ और वैश्विक स्तर पर सम्मानित आर्थिक शक्ति में बदल दिया है। उन्होंने कहा कि ये उल्लेखनीय वृद्धि नए अवसर पैदा कर रही है और 14 करोड़ भारतीयों की आकांक्षाओं को मजबूत कर रही है। समर्थ की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से सरफिरोजी।
0: रिजर्व बैंक ने विदेशी निवेशकों के सरकारी प्रतिभूतियों में निवेश से जुड़े नियमों में महत्वपूर्ण बदलाव किए हैं। नए प्रावधानों के अंतर्गत सामान्य निवेश करने वाले विदेशी निवेशकों को अब कई तरह की निवेश सीमाओं से छूट दी गई है। आरबीआई ने केंद्र और राज्य सरकार की प्रतिभूतियों के लिए पहले से लागू सामान्य और दीर्घकालिक निवेश सीमाओं को भी एक कर दिया है। नए दिशा निर्देश तत्काल प्रभाव से लागू हो गए हैं। राज्य वित्त आयोगों के लिए डाटा सेट संबंधी समिति की रिपोर्ट 8 जून को जारी की जाएगी। केंद्र सरकार के मुख्य आर्थिक सलाहकार डॉक्टर वी अनंता नागेश्वरन ने इस रिपोर्ट को जारी करेंगे। पंचायती राज मंत्रालय ने कहा है कि इस रिपोर्ट का जारी होना राजकोषीय विकेंद्रीकरण के लिए प्रमाण आधार को मजबूत करने की दिशा में सरकार की निरंतर प्रतिबद्धता में एक महत्वपूर्ण प्रयास है। मंत्रालय के अनुसार यह रिपोर्ट राज्य वित्त आयोगों के लिए आवश्यक प्रमुख डाटा सेट का एक सुव्यवस्थित और व्यापक विवरण प्रस्तुत करती है। विदेश मंत्री डॉक्टर सुब्रमण्यम जयशंकर आज शाम नई दिल्ली में नेपाल के विदेश मंत्री शिशिर खनाल से बातचीत करेंगे। नेपाल के विदेश मंत्रालय ने बताया है कि बैठक में व्यापार, निवेश, संपर्क, ऊर्जा और जन संबंधी सहित प्रमुख क्षेत्रों में सहयोग बढ़ाने के उद्देश्यों से आपसी हित के मुद्दों पर चर्चा होगी। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा कि यह दौरा भारत और नेपाल के बीच विशेष साझेदारी को और मजबूत करेगा।
3: With Nepal, we have an expansive agenda.
4: नेपाल के साथ हमारा एजेंडा बहुत व्यापक है। इसमें विकास के लिए सहयोग से लेकर लोगों के बीच आपसी संबंध और व्यापार तथा निवेश शामिल हैं। इसलिए जब दोनों देशों के विदेश मंत्री मिलेंगे तो इन सभी संबंधों पर चर्चा होगी। हम नेपाल के साथ अपनी इस बहुआयामी साझेदारी को और मजबूत करने

0: के इच्छुक हैं।
1: पार्टनरशिप दैट वी हैव विद नेपाल।
2: भारत के 3 दिन के दौरे पर आए नेपाल के विदेश मंत्री शिशिर खनाल ने कल नई दिल्ली में राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल से मुलाकात की। भारत लैटिन अमेरिका और कैरेबियन व्यापार तथा निवेश मंच का आयोजन आज मध्य प्रदेश के इंदौर में किया जा रहा है। इसमें 15 लैटिन अमेरिकी और कैरेबियन देशों के राजदूत और राजनयिक प्रतिनिधि भाग लेंगे। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newzoneair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन एआईआर ऐप पर भी उपलब्ध हैं। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड सीबीएसई ने अंक सत्यापन और पुनर्मूल्यांकन के लिए आवेदन जमा करने की अंतिम तिथि बढ़ाकर 7 जून कर दी है। सीबीएसई ने सोशल मीडिया पोस्ट में बताया कि छात्र अब कल मध्यरात्रि तक अपने आवेदन जमा कर सकेंगे। इससे पहले आवेदन जमा करने की अंतिम तिथि 6 जून निर्धारित थी। सीबीएसई ने सभी पात्र छात्रों से बढ़ी हुई समय सीमा का ध्यान रखते हुए निर्धारित अवधि के भीतर आवेदन प्रक्रिया पूरी करने की अपील की है। पंजाब में आज सुबह फिरोजपुर फाजिलका सड़क पर एक ट्रक से वाहन की टक्कर में 9 लोगों की मौत हो गई और 22 अन्य घायल हो गए। सभी पीड़ित एक ही परिवार के सदस्य थे और ब्यास नदी में अपने रिश्तेदार की अस्थियों को विसर्जित करने जा रहे थे। वरिष्ठ पुलिस अधिकारी दुर्घटनास्थल पर पहुंचे और स्थानीय लोगों की मदद से बचाव अभियान चलाया गया। दिल्ली पुलिस ने मालवीय नगर होटल अग्निकांड मामले में रसोइये को गिरफ्तार किया है। इस होटल में 3 जून को आग लगने से 21 लोगों की मौत हो गई और 40 अन्य घायल हो गए। इससे पहले पुलिस ने होटल मालिक को भी गैर इरादतन हत्या और अन्य संबंधित धाराओं के अंतर्गत गिरफ्तार किया था। जांच जारी है। संस्कृति और पर्यटन मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने कहा है कि पिछले 12 वर्ष में भारत की सौर ऊर्जा क्षमता 2.8 गीगावाट से बढ़कर 155 गीगावाट हो गई है। श्री शेखावत ने आज सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि 40 लाख से अधिक घरों में सौर ऊर्जा का उपयोग हो रहा है। कृषि क्षेत्र में सौर ऊर्जा क्षमता का दोगुना होना पर्यावरण संरक्षण के साथ साथ प्रगति का भी प्रमाण है। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा है कि पश्चिम बंगाल में लंबे समय से लंबित रेलवे परियोजनाओं का समाधान होने से राज्य में रेलवे अवसंरचना विकास के एक नए युग की शुरुआत होगी। श्री वैष्णव ने पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी के साथ कोलकाता के नबन्ना में आयोजित एक संयुक्त प्रेस वार्ता के दौरान बताया कि वर्ष 2026-27 के रेल बजट में पश्चिम बंगाल के लिए 14,205 करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं। उन्होंने कहा कि राज्य में 10 अमृत भारत स्टेशन पहले ही पूरे हो चुके हैं, जबकि 9 वंदे भारत एक्सप्रेस और कई अमृत भारत रेलगाड़ियां चल रही हैं। रेल मंत्री ने अगले 5 वर्ष में कोलकाता मेट्रो के लिए 60 नई रेलगाड़ियों को शुरू करने की भी घोषणा की।
3: मेट्रो के लिए 60 न्यू ट्रेन्स, नई जनरेशन की ट्रेन्स अगले 5 वर्षों में इंडक्ट करेंगे। नई जनरेशन की ट्रेन्स आने से कोलकाता के निवासियों को बहुत अच्छी फैसिलिटी मिलेगी, वो भी एक बहुत बड़ा आगे स्टेप लिया जाएगा।
2: मुख्यमंत्री शिवेंदु अधिकारी ने कहा कि केंद्र और राज्य सरकार मिलकर 1 लाख करोड़ रुपए से अधिक लागत की रेलवे अवसंरचना परियोजनाओं को लागू करेंगे। स्वास्थ्य मंत्री और भाजपा के पूर्व अध्यक्ष जेपी नड्डा ने आज राष्ट्रीय परिवार सर्वेक्षण स्वास्थ्य सर्वेक्षण 6 के निष्कर्षों पर कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे की टिप्पणियों का खंडन किया। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री नड्डा ने कहा कि जन स्वास्थ्य इतना महत्वपूर्ण है कि इस पर राजनीतिक बयानबाजी नहीं करनी चाहिए। श्री नड्डा ने बताया कि पूर्ण टीकाकरण कवरेज बढ़कर 87.1% हो गया है, जबकि स्वास्थ्य बीमा कवरेज 4.9% से बढ़कर 60.2% हो गया है। स्वास्थ्य मंत्री ने कहा कि ये प्रगति स्वास्थ्य सेवा, पोषण, स्वच्छता, वित्तीय समावेशन और अंतिम छोर तक सेवा पहुंचाने में निरंतर निवेश का परिणाम है। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं। ईरान के सर्वोच्च नेता मुज्तबा खामेनेई के सैन्य सलाहकार मोहसिन रेजाई ने अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप से इसराइल से स्वतंत्र होकर निर्णय लेने, होर्मुज जल टमरू मध्य में नाकाबंदी समाप्त करने और ईरान की जब्त संपत्तियों को छोड़ने का आह्वान किया है। रेजाई ने एक टेलीविजन चैनल के साथ साक्षात्कार में कहा कि दोनों पक्षों के बीच वार्ता गतिरोध में है और ट्रंप को इस गतिरोध को तोड़ना होगा। भारत ने कहा है कि पाकिस्तान संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की अपनी अस्थायी सदस्यता का दुरुपयोग जम्मू कश्मीर के बारे में झूठे दावे फैलाने के लिए

0: कर रहा है। भारत के स्थायी प्रतिनिधि पी हरीश ने चेतावनी दी कि पाकिस्तान को अपनी जिम्मेदारियों का ध्यान रखना चाहिए।
1: मैं पाकिस्तान को याद दिलाना चाहता हूं कि संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद का सदस्य होना एक बड़ी जिम्मेदारी है। ये पक्षपाती और झूठी बातें फैलाने का मंच नहीं है। मैं ये बात साफ साफ कहना चाहता हूं। जम्मू कश्मीर भारत का अभिन्न और अटूट हिस्सा था, है और हमेशा रहेगा। पाकिस्तान की खोखली बयानबाजी और झूठे दावों से ये बुनियादी सच्चाई नहीं बदलेगी।
0: मॉरिशस ने पिछले 21 दिनों में कांगो, युगांडा और दक्षिण सूडान की यात्रा करने वाले या वहां से गुजरने वाले विदेशी नागरिकों के प्रवेश पर अस्थायी प्रतिबंध लगा दिया है। ये कदम इबोला वायरस के प्रकोप को देखते हुए उठाया गया है। मौसम विभाग ने केरलम और माहे में कल तक मूसलाधार वर्षा का रेड अलर्ट जारी किया है। पूर्वोत्तर भारत, कर्नाटक, तमिलनाडु, पुदुचेरी और कारायकाल में अगले दो दिन में तेज वर्षा हो सकती है। पश्चिम बंगाल के तराई वाले क्षेत्रों, तेलंगाना, कोंकण, गोवा, मध्य महाराष्ट्र, रायलसीमा, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह तथा लक्षद्वीप में भी आज ऐसी ही स्थिति का अनुमान है। दिल्ली, हरियाणा, चंडीगढ़, पंजाब, उत्तराखंड, पूर्वी उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, झारखंड, जम्मू कश्मीर में बिजली चमकने और तेज हवाओं का अनुमान है। भारत हिमाचल प्रदेश के अधिकांश क्षेत्रों में आज मौसम साफ बना हुआ है। हमारे संवाददाता ने बताया है कि बीते दिनों की गर्मी के बाद सुहावने मौसम से जनजीवन को काफी राहत मिली है।
2: हिमाचल प्रदेश में जनजातीय जिला लाहौल स्पीति के रोहतांग और कुंजम दर्रों पर बीते रोज हल्का हिमपात तथा कुछ क्षेत्रों में हल्की वर्षा दर्ज की गई, जिससे मौसम सुहावना हो गया है। बड़ी संख्या में पर्यटक हिमाचल के विभिन्न पर्यटन स्थलों की ओर रुख कर रहे हैं। इस बीच मौसम विभाग ने आज चंबा, कांगड़ा और कुल्लू जिलों के लिए अंधड़, ओलावृष्टि, वर्षा और बिजली गिरने की संभावना को लेकर येलो अलर्ट जारी किया है। रितेश कपूर, आकाशवाणी समाचार, शिमला।
0: भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड बीसीसीआई ने इंग्लैंड और आयरलैंड के साथ होने वाली टी20 श्रृंखला के लिए भारतीय टीम की घोषणा कर दी है। श्रेयस अय्यर को सूर्य कुमार यादव की जगह टीम का कप्तान बनाया गया है। तिलक वर्मा उप कप्तान होंगे। वैभव सूर्यवंशी को पहली बार टीम में शामिल किया गया है। वैभव ने आईपीएल 2026 में सर्वोच्च रन बनाए थे। प्रिंस यादव को भी टीम में जगह मिली है। भारत और अफगानिस्तान के बीच एकमात्र क्रिकेट टेस्ट मैच न्यू चंडीगढ़ के मुल्तानपुर में खेला जा रहा है। भारतीय कप्तान शुभमन गिल ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी का फैसला किया। चायकाल तक भारत ने 2 विकेट के नुकसान पर 209 रन बना लिए थे। भारत आज पुरुष अंडर 18 एशिया कप हॉकी टूर्नामेंट के फाइनल में मेजबान जापान से खेलेगा। ये मुकाबला जापान के काकामिगाहारा में भारतीय समयानुसार दोपहर 3:30 बजे से शुरू होगा। युवा कार्य और खेल मंत्री डॉक्टर मनसुख मांडविया ने कहा है कि युवा राष्ट्र की सच्ची शक्ति है और विकसित भारत के सपने को साकार करने वाली प्रेरक शक्ति है। नई दिल्ली में आयोजित मेरा भारत युवा सम्मेलन में डॉक्टर मांडविया ने ये बात कही। अमेरिका के सिएटल में मैंगो मैजिक फेस्टिवल भारतीय आम का प्रचार और स्वाद परीक्षण के दूसरे चरण का आज आयोजन किया गया। अमेरिका की सीनेटर मंका ढींगरा ने कहा कि खाद्य पदार्थों का आदान प्रदान देशों के बीच केवल पोषण की जरूरतें ही नहीं करता, बल्कि ये मजबूत व्यापारिक, आर्थिक और सांस्कृतिक संबंधों की नींव भी रखता है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आर्थिक सलाहकार परिषद के सदस्यों के साथ देश की आर्थिक वृद्धि को गति देने के उपायों पर चर्चा की। रिजर्व बैंक ने भारत में निवेश को आसान बनाने के लिए विदेशी निवेशकों के सरकारी प्रतिभूतियों से जुड़े नियमों को सरल बनाया। विदेश मंत्री डॉ एस जयशंकर आज शाम नई दिल्ली में नेपाल के विदेश मंत्री शिशिर खनाल से बातचीत करेंगे। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड CBSE ने अंकों के सत्यापन और पुनर्मूल्यांकन के लिए आवेदन जमा करने की अंतिम तिथि कल तक बढ़ाई। पंजाब में आज सुबह फिरोजपुर फाजिलका मार्ग पर एक ट्रक से वाहन की टक्कर में 9 लोगों की मौत। केरलम और माहे में कल तक मूसलाधार वर्षा का रेड अलर्ट जारी। और श्रेयस अय्यर सूर्यकांत यादव की जगह टी20 अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट टीम के कप्तान बने। वैभव सूर्यवंशी पहली बार टीम में शामिल। इसके साथ ही दोपहर समाचार का यह अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
3: हम विविध भारती से बोल रहे हैं, ये है राष्ट्रीय सेवा, देश की सुरीली धड़कन।

निवालों का तहे दिल से स्वागत है। कार्यक्रम का पहला गीत सी रामचंद्र के संगीत निर्देशन में राजेंद्र कृष्ण का लिखा हुआ, आवाज लता मंगेशकर की, और ये फिल्म है बारिश।

कार्यक्रम का अगला गीत, फिल्म का नाम है चंगेज खां, आवाज लता मंगेशकर की, गीत के बोल कमर जलालाबादी ने लिखे हैं और

लता मंगेशकर को अभी आपने सुना, फिल्म का नाम था चंगेज खां। आइए सुनते हैं एस एन त्रिपाठी के संगीत निर्देशन में पंडित भरत व्यास के बोल, आवाजें हैं गीता दत्त और मन्ना डे की। फिल्म का नाम है जन्म जन्म के फेरे।

राम के भजन में बजाऊं मैं तो तालियां, राधा संग सांभा का रास जहां चला रे, इस झूठी दुनिया को छोड़ वहां

0: पता है, अब हम आपकी चिट्ठियों के इंतजार में हैं।
1: क्यों?
0: क्योंकि वो जमाना वापस आ रहा है जब आपकी फरमाइशी चिट्ठियाँ आती थी विविध भारती में।
2: चिट्ठी आई है चिट्ठी आई है,
0: और हम सुनवाते थे आपके मनचाहे गीत।
2: पल पल दिल के
0: विविध भारती पर वापस आ रहा है आपका पसंदीदा कार्यक्रम मनचाहे गीत। 2 मई से हर शनिवार और रविवार दोपहर 3 बजे
1: हम इंतजार करेंगे।
0: तो फटाफट पोस्ट कार्ड लीजिए, लिखिए अपनी फरमाइश और भेज दीजिए इस पते पर। मनचाहे गीत कार्यक्रम विविध भारती राष्ट्रीय सेवा, पोस्ट बॉक्स नंबर 19750, मुंबई 400091। मनचाहे गीत विविध भारती राष्ट्रीय सेवा, पोस्ट बॉक्स नंबर 19750, मुंबई 400091। आपकी चिट्ठियों का हमें इंतजार है।
1: खत लिख दे, दिल उनको दे आए।
3: यह आवाज आशा भोंसले की और फिल्म का नाम है मेरा सलाम। शिवान रिज़वी की रचना है और हाफिज खान का संगीत।

किशोर कुमार की आवाज में हम आपको फिल्म पेइंग गेस्ट का गीत सुनवा रहे हैं। शब्दकार मजरूह सुल्तानपुरी हैं और संगीतकार सचिन देव बर्मन हैं।

माशा अल्लाह कहना तो माना, बन गया बिगड़ा जमाना, माशा अल्लाह कहना तो

और आइए अब सुनते हैं दत्ताराम का संगीत, हजरत जयपुरी की रचना, लता मंगेशकर और मन्ना डे की युगल स्वर। फिल्म का नाम है कैदी नंबर 911।

लीजिए, अब सुनिए कार्यक्रम का अगला गीत। फिल्म का नाम है हिल स्टेशन, गायिका हैं लता मंगेशकर, बोल हैं SH बिहारी के और धुन बनाई है हेमंत कुमार ने।

0: समझ जाएगी।
1: मन चाहेगी।
0: मन चाहेगी।

0: मनचाहे गीत कार्यक्रम सुनने वाले सभी श्रोताओं को मंदाकिनी जोशी की ओर से प्यार भरा नमस्कार।
1: कार्यक्रम शुरू करने से पहले कुछ जरूरी बातें।
0: एक व्यक्ति या परिवार की चिट्ठियां एक महीने में एक बार ही शामिल की जाएंगी।
1: एक चिट्ठी में केवल अपने परिवार के नाम लिखें, दूसरे शहर के

0: दूसरे व्यक्तियों के अपने दोस्तों के नाम नहीं लिखे, इन्हें शामिल नहीं किया जाएगा।
1: हम अपने हर श्रोता की चिट्ठियों को शामिल करने की पूरी कोशिश करेंगे, पर इसमें समय लग सकता है। कृपया धैर्य बनाए रखें।
2: और हाँ, हस्तलिखित चिट्ठियों को प्राथमिकता दी जाएगी। कृपया सील ठप्पे वाले और छपे हुए पोस्टकार्ड ना भेजें। अंतरदेशीय नहीं, केवल पोस्टकार्ड भेजें। और ये चिट्ठियां आपको भेजनी कहाँ है?
0: कार्यक्रम मन चाहेगी,
1: विविध भारती राष्ट्रीय सेवा,
2: पोस्ट बॉक्स नंबर 19750, मुंबई 400091।
1: प्रस्तुत है फरमाइशी फिल्मी गानों का कार्यक्रम मन चाहे गीत। इस कार्यक्रम में सबसे पहले हमें खत लिखा है, आप हैं अस्पताल रोड विश्वविद्यालय सागर मध्य प्रदेश से चंद्रेश गौहर, वंदना गौहर, मयंक गौहर और तन्वी गौहर। ये खत हमें मिला है अमरावती कल्याण नगर से रमेश किल्लेकर, शकुंतला किल्लेकर, आराध्या किल्लेकर और माही किल्लेकर का। और ये खत हरियाणा से सेक्टर 18 जगाधरी से लिखा है विनय मोहन खारवन, मीनाक्षी प्लोमा और डॉक्टर ईशानी ने। आप सभी सुनना चाहते हैं लता मंगेशकर की आवाज में फिल्म महबूब की मेहंदी का गीत। गीतकार आनंद बख्शी, संगीतकार लक्ष्मीकांत प्यारेलाल।

कार्यक्रम का अगला गीत सुनना चाहते हैं शिक्षक नगर दुर्ग छत्तीसगढ़ से राकेश वर्मा, सचिन वर्मा, वाणी वर्मा। ये खत हमें मिला है ऑक्सीजन ऑक्सीजन पार्क राहुल नगर अमरावती से सिद्धार्थ गोंडाने, अर्चना गोंडाने, प्रणय प्रसिद्धि प्रतिभा गोंडाने का, और कोटवा नारायणपुर से आप हैं ओम प्रकाश राय, श्रीमती उषा राय, अमित कुमार राय और हैप्पी राय। आप सभी सुनना चाहते हैं अपनी पसंद का गीत। किशोर कुमार की आवाज है, फिल्म का नाम है अभिमान, गीत रचना मजरूह सुल्तानपुरी की और संगीत एसडी बर्मन का।

विविध भारती से इस समय आप सुन रहे हैं आप सबकी पसंद पर आधारित कार्यक्रम मन चाहे गीत। आइए सुनते हैं अगला गाना। फिल्म का नाम है अमरदीप। गाने वाले कलाकार मोहम्मद रफी और आशा भोंसले, गीतकार हैं राजेंद्र कृष्ण और संगीत दिया है सी रामचंद्र ने। सुनने की ख्वाहिशमंद है आप सभी। शाहू नगर यवतमाल से राहुल मनवर, सरला मनवर, विशाल, चेतन मनवर, रोशनी मनवर, बेबी प्रियांशी इसी गीत को सुनना चाहते हैं। इंद्रप्रस्थ सदन रुद्री, जिला धमतरी छत्तीसगढ़ से चंद्रकांत, सीमा साहू, सूर्यकांत, राकेश साहू, शुभम, सावित्री साहू ने, और दत्तरेंगी भाटापारा से ये हैं हीरामणि वर्मा। आप सभी सुनिए अपनी पसंद का ये दो गाना।

आइए सुनते हैं कार्यक्रम का ये अगला गीत। सुनने के लिए आप सभी ने हमें खत लिखे हैं। वरुण जौलका से महेंद्र सरकते, विजया सरकते, मिलिंद सरकते, और ये खत है आपने लिखा है गुजरात से नूर मोहम्मद लखाणी, जुबैदा खातून लखाणी, विहान लखाणी ने। भामेश्वर से सुनना चाहते हैं सिराज, हिना, रुबीना और इनके परिवार वाले। इसी गाने को सुनना चाहते हैं महेंद्र सरकटे और उनके परिवार वाले। आप सभी सुनिए लता मंगेशकर की आवाज में फिल्म कटी पतंग का गीत। गीत रचना आनंद बख्शी की है और तर्ज राहुल देव बर्मन की।

लता मंगेशकर को आपने सुना, फिल्म का नाम था कटी पतंग। और अब आप सुनना चाहते हैं रवि के संगीत निर्देशन में हसन कमाल का लिखा गीत, आवाज सलमा आगा की और फिल्म का नाम निकाहा। सुनने के लिए आप सभी ने हमें खत लिखे हैं। ककराला बदायूं से डॉक्टर मसरूर खान, मुसर्रफ राज खान, अमजद अंसारी, दीपक वाल्मीकि और इनके परिवार वाले इसी गाने को सुनना चाहते हैं। शेगांव बुलडाणा महाराष्ट्र से संतोष एस काले, तेजस एस काले, लोकेश एस काले और इनके परिवार वाले। ये खत हमें मिला है अंबेडकर सागर मध्य प्रदेश से रामसखी परमानंद, सौरभ गौरव, किशोरी बोस, एलपी रोहित, ललूराम, पूरन रोहित, छोटू, टुनटुन और इनके परिवार वालों का। और आप हैं ग्राम पंचायत कालेगांव जाफाबाद से श्री सुधाकर राजे जाधव, डॉक्टर प्रशांत राजे जाधव, संचित वायाल, मोताला से कुमार प्रथमेश देशमुख, प्रणाली देशमुख, कलड़ा रिसोर्ट से आप हैं सानवी सरवत और इनके परिवार वाले। आप सभी सुनिए अपनी पसंद का ये गीत, आवाज सलमा आगा की और ये फिल्म है निकाह।

0: रवि के संगीत निर्देशन में अभी आपने हसल कमाल का लिखा ये गीत सुना। आवाज सलमा आगा की थी और फिल्म का नाम था निकाह। इस गाने के साथ ही आज का फरमाइशी फिल्मी गानों का कार्यक्रम मनचाहे गीत अब समाप्त होता है।
1: मनचाहे गीत
2: मनचाहेगी
0: और अब इस कार्यक्रम से मंदाकिनी जोशी को दें इजाजत। नमस्कार।

0: प्रस्तुत है कार्यक्रम नाट्य तरंग। श्रोताओं, नाट्य तरंग में आइए आज सुनते हैं नाटक गुलाब की पंखुड़ियां। लेखक सुरेंद्र कांत, निर्देशक मुमताज शकेब। आज आप इस नाटक का पहला भाग सुनेंगे।
1: नाचो।
2: नहीं, नहीं।
1: मैं कहता हूं तुम्हें आज भरे दरबार में नाचना होगा।
2: खुदा के लिए
1: कोई रहम नहीं, नाचो।
2: नहीं, नहीं, नहीं। इन मुगल शहजादियों से भला ये कैसे हो सकता कि ये आज लाल के लिए किस भरे दरबार में नाचे।
1: अब दिल्ली के तख्त पर मेरा कब्जा है, बादशाह मैं हूं।

0: रोहिला का मुगल शहजादियों और बेगमात पर कितना जुल्म है। आलम शाह सानी ने इन्हें पाला पोसा और ये उसी की आंखें फोड़कर आज हरम की बेगमात को दरबार में नचा रहा है।
1: ये सब मंसूर अली की दगा और अंग्रेजों की साजिश से हुआ है।
0: अंग्रेज जब हिंदुस्तान को हड़पना चाहते हैं।
1: नहीं, जब तक हिंदू मुस्लिम सिख और मराठे बादशाह के साथ हैं ऐसा नहीं होगा।
0: तुम ठीक कहते हो, आज ये सब गुलाब की ऐसी पंखुड़ियां हैं जो गुलाब के इस फूल की हिफाजत के लिए मैदान जंग में आ गए हैं।
1: हाँ, ये गुलाब की पंखुड़ियां नहीं बल्कि तलवार की धार है जो विदेशी ताकत को काट कर रख देंगी।

0: ये क्या अल्फाज बोलती हो तुम? योर
1: जी, योर मैजिस्ट्री।
0: हाँ हाँ, ये हमें अच्छा नहीं लगता। तुम हमें जहां पनाह या आलम पनाह कहो।
1: आलम पनाह, आलम पनाह।
0: बिल्कुल ठीक, तुम तो हिंदुस्तानी जुबान अच्छी तरह जानती हो।
1: जी जी हाँ, जा पाना हा। यहाँ बचपन से रहे हूँ। तो आलम पनाह, आपने हमें पसंद किया या नहीं?
0: जरूर जरूर, हमने तुम्हें बहुत पसंद किया है।
1: ओह, हमारा अच्छा किस्मत है, हमने भी आलम पनाह को बहुत पसंद किया। आप बहुत रहम दिल है। हम यहाँ आपकी आपकी पनाह में रहने चाहता है।
0: ठीक है अमली, तुम यहाँ रह सकती हो।
1: ओह थैंक यू। नहीं नहीं, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा।
0: तुम्हें हमारे हरम में सब बेगमों के साथ रहना पड़ेगा। बाहर जाओगी तो पर्दे में जाना होगा।
1: ओह नो, नहीं नहीं, हम पर्दे में नहीं रह सकते। हम तो आजाद घूमने चाहते, हमारे कोई पर्दा नहीं करता।
0: तो तुम कभी कभी इधर उधर घूम सकती हो, यहां जब तक चाहो रह सकती हो।
1: ओ जय पाना, आप कितने अच्छे हैं, कितना खूबसूरत है आप।
0: हाँ, हमें भी तुम अच्छी लगती हो। तुम जब चाहो आ जा सकती हो, लेकिन सिर्फ हमें बताकर।
1: ओ, ओ शुक्रिया आलिम पिना, कितना अच्छा है, कितना ग्रेट है, बहुत बहुत बड़ा दिल है आपका।
0: नवाब शुजा, अब तो नवाब मीर कासिम अली भी हमारे साथ शरीक हो गए हैं।
2: जी हां जहांपनाह, इन चालबाज अंग्रेजों से किसी भी नवाब की नहीं पट सकती। ये तो बंगाल में भी ऐसा नवाब चाहते हैं जो इनके इशारों पे नाचे।
0: अब मीर जाफर को फिर मसनद नशी कर दिया और कासिम को बंगाल से खदेड़ दिया।
2: जी हां आलमपनाह, अंग्रेज तो बंगाल, बिहार और उड़ीसा पर पूरी तौर से हावी हो जाना चाहते हैं।
0: यही नहीं शुजा, इनके मंसूबे तो पूरे हिंद को हड़प लेने के मालूम होते हैं। लेकिन लेकिन हम इन्हें कामयाब नहीं होने देंगे। हमारी फौज में गोसाई हिम्मत बहादुर और उमराव गोसाई तो हैं ही, इनायत खान रोहिला भी शामिल हो गया है, मीर कासिम मई सिपाही आन पहुंचा है।
2: जी हां जहांपनाह, और बनारस के राजा बलवंत सिंह भी मैं अपनी पलटन के हमारी इमदाद के लिए आ गए हैं। जर्मन कप्तान सैमरे भी अपने तोपखाने को एकदम मुस्तैदी से तैयार कर रहा है।
0: नवाब
2: जहांपनाह,
0: अगरचे शिकस्त दर शिकस्त होती रही है, ताहम हमारे फर्माबरदार सिपहदारान का अभी भी हौसला बुलंद है। हमारी सिपह वाकई दुनिया के लिए एक मिसाल है। देखो देखो, जिस तरह ये गुलाब का फूल पंखुड़ियों की वजह से इतना दिलकश बना है, उसी तरह हमारी फौजों में भी हर कौम और मजहब के बहादुर मिलकर एक कुल की शक्ल में काम करते हैं। इसी पर हिंदुस्तान को फख्र है।
2: जी हां आली मकाम, इसमें कोई शक नहीं है।
0: पंखुड़ियां गिरती हैं, मुरझाती हैं, लेकिन नए गुल और भी खूबसूरती से जहूर में आते हैं। चंद गद्दार मुरझाई पंखुड़ियों की तरह भटक जाते हैं, यही बदनसीबी है। इसके बावजूद कई राजा, नवाब और अमीर नई पंखुड़ियों की तरह हमारी इमदाद के लिए आन पहुंचे हैं। इस दफा अंग्रेजों पर पूरी ताकत से हमला करना है, ताकि हिंदुस्तान से इनका नामो निशान हमेशा के लिए मिट जाए।
2: जी हां आलमपनाह, हुजूर के इकबाल से इस दफा हमारे जासूस भी बहुत मुस्तैदी से काम कर रहे हैं। नवाब मुनरुद्दौला का जासूसी दस्ता खबर लाया है कि मेजर हेक्टर मुनरो की फौज में कुल 6-7 हजार सिपाही हैं और सिर्फ 20 तोपें।
0: फिर तो हमारी

0: इतनी बड़ी फौज और 100 से ज्यादा तोपों के मुकाबले में उनका ठहर पाना नामुमकिन है। हम जल्द से जल्द इन सरकशों को सबक सिखाना चाहते हैं, हिंदुस्तान से इनका नामो निशान मिटाना चाहते हैं।
1: जी आदिकद्र, हमें कप्तान सैमरे ने बताया है कि हमारी 133 तोपें बिल्कुल सही हालत में हैं, और उधर मीर कासिम और उमराव गोसाई के जासूसों ने भी काबिले तारीफ इंतजाम किया है। उन्होंने अंग्रेजी फौज में कुछ ऐसे लोग छोड़

0: और उमराव गोसाई के जासूसों ने भी काबिले तारीफ इंतजाम किया है। उन्होंने अंग्रेजी फौज में कुछ ऐसे लोग छोड़ रखे हैं जो ऐन वक्त पर वहां के अफसरों और सिपाहियों को हमारी तरफ मिल जाने को उकसा रहे हैं।
1: वाह, बहुत खूब, कुछ कामयाबी हासिल हुई।
0: जी हां सरकार, हमें पुख्ता खबर मिली है कि करीब 70-80 छोटे बड़े अफसर और नायक और करीब 1000 सिपाहियों की पलटन ऐन वक्त पर हमसे आन मिलेंगी।
1: वाह वाह, ये तो अहम खुशखबरी है। अब हम शर्तिया फतेयाब होंगे, इन 5-7 अंग्रेजों को मुल्क से निकाल बाहर करेंगे।
0: बेशक आलमपना, बेशक इस बार हम यकीनन कामयाब होंगे और इन 5-7 अंग्रेजों को मुल्क से बाहर निकाल देंगे। लेकिन जहांपना, अगर इजाजत हो तो एक अहम मामला और हुजूर के इल्म में।
1: जरूर नवाब, बोलो बोलो।
0: अली कद्र, वो अंग्रेज लड़की जिसको हुजूर ने पनाह दी थी, उसका रवैया इन दिनों कुछ अजीब सा नजर आ रहा है।
1: तुम्हारा मतलब एमली से है? क्या हुआ
0: हुजूर? वो शुरू के कुछ महीनों में तो काफी संजीदगी और बुर्दवारी से।
1: और अब क्या हुआ उसको?
0: हुजूर आला, पिछले एक माह से उसकी हरकतें काफी हैरत अंगेज हो चली हैं। वो शाही फौज के खेमों में मुख्तलिफ सिपादारान हुक्काम वगैरह से अक्सर बड़ी बेतकल्लुफी से मिलती रहती है।
1: नवाब शुजा, वो भोली लड़की जरा चुलबुली जरूर है, फिर इन अंग्रेजों की तहजीब में औरतों को काफी आजादी है।
0: वो तो वजह है जहां पना, लेकिन हाल ही में मेरे कुछ खास हरकारों ने खबर दी है कि ये खेमों से दूर जाकर अंग्रेज घुड़सवारों से भी गुफ्तगू करने लगी है।
1: ये तो बहुत संगीन मामला है।
0: जी हां अली मकाम, जब से हम लोग बक्सर के नजदीक पहुंचे हैं उसकी सरगर्मियां और भी बढ़ गई हैं।
1: इस वक्त वो कहां है?
0: वो इस वक्त शाही हरम के खेमे में है, यहां से तकरीबन 4-5 कोस।
1: उफ नवाब शुजा, इधर सामने मेजर मुनरो अंग्रेजी सिपह के साथ आगे बढ़ रहा है, उधर ये लड़की न जाने क्या क्या गुल खिला रही होगी।
0: आलमपना, मैंने ख्वाजा सराओं और कुछ चुनिंदा नायकों को ताकीद कर दी है कि उस लड़की पे कड़ी नजर रखें, मगर हुजूर पता नहीं कि इससे पेशतर क्या किया हो उसने।
1: मगर हमें इसकी खबर पहले क्यों नहीं दी गई?
0: जब तक कुछ पुख्ता सबूत न मिले, आलमपना को जहमत देना मुनासिब न होता। और इसके अलावा हुजूर इस जगह के लिए कूच भी कर चुके थे।
1: शुजा, ऐसे मशकूक शख्स को फौरन गिरफ्तार कर लेना चाहिए था, बाद तफ्तीश असलियत का पता लग जाता।
0: हुजूर, मैंने आपके खौफ के मारे ये जुर्रत करना मुनासिब न समझा।
2: हुजूर, बेगम साहिबा बारियाबी की इजाजत चाहती हैं।
1: कौन? सकीना बेगम? यहां? अब फौरन भेजो।
2: जी जहांपना।
3: आलमपना, गुस्ताखी मुआफ फरमाए।
1: हाँ हाँ, बोलो बेगम, यहाँ क्यों कर आना हुआ हरम से मैदान जंग में?
3: आलीजा, मैंने एमिली को गिरफ्तार करने की जुर्रत की है। वो कुछ गोरे घुड़सवारों से गुफ्तगू कर रही थी, कुछ कागजात भी।
1: उफ सकीना, घुड़सवारों को भी गिरफ्तार कराया या नहीं?
3: पहले सिर्फ दो थे, भागते भागते एक को गिरफ्तार कर लिया, दूसरा कुछ कागजात लेकर भाग रहा था तो हमारे जवानों ने उसका पीछा किया, मगर आगे जाकर 20-25 गोरे सवार और मिले और बंदूकों की फायर करते हुए सब भाग निकले। वक्त की नजाकत देखकर मैं खुद चली आई।
1: दूसरा सवार पकड़ा नहीं जा सका?
3: जी नहीं आलमपना।
1: हो, वो कमीनी कहाँ है?
3: जी, बराबर वाले खेमे में ख्वाजा सरा मंजूर अली की हिरासत में है।
1: नवाब शुजाउद्दौला को बुलाओ।
0: जहांपना, जहांपना ने याद फरमाया।
1: हाँ नवाब शुजा, तुम्हारा शुबा ठीक मालूम होता है। उस बदसात को सकीना बेगम ने गिरफ्तार तो कर लिया है, एक आध कागज भी बरामद हुआ है, मगर दो में से एक घुड़सवार भाग निकला, कुछ कागजात भी ले भागा। अब उस हराम खोर एमिली को कोड़े मार मार कर

0: कुल तफसील मालूम करो और हमें बताओ। बराबर के खेमे में है वो बदसात।
1: जी अलीजा, हुक्म की तामील होगी।
0: बेगम, तुम बहुत थक गई हो, आराम कर लो। इस मामले की तहकीकात हो जाए तो अपने खेमे की तरफ वापस चली जाना। यहां ठहरना खतरे से खाली नहीं।
2: जी नहीं आलमपना, मुझे आराम की कतई जरूरत नहीं। फिर जहां हुजूर का कयाम हो वहां मुझे भला क्या खतरा हो सकता है?
0: नहीं बेगम, तुम्हारी जल्द से जल्द वापसी ही लाजिम है।
2: जैसी आलमपना की मर्जी।
1: आलमपना, मैंने तहकीकात कर ली है। अफसोस है कि बहुत खौफनाक सूरत बन गई है। एमिली ने बामुश्किल तमाम कबूल किया कि वो अंग्रेजी जासूस है। उस कागज में अंग्रेजी सिपाही के कुछ लोगों के नाम हैं जो हमसे मिल जाने के लिए तैयार थे, मगर इससे पेशतर वो हजारों नामों की फहरिश्ते मेजर मुंडो को भेज चुकी है। कोड़ों के मार से वो लहूलुहान हो गई, तब कहीं उसने जाकर।
0: उस कमबख्त कमीनी को हाथियों से कुचलवा दो। सुजा, ये हाँ। ये क्या है?
1: ओह, जहां बना, ये तो अंग्रेजों की तोपें हैं। पता नहीं एक एक धमाके में कितने लोगों को मौत के घाट उतारा जा रहा होगा।
0: उफ नवाब, तो क्या हमारे जासूसों की कुल मेहनत बेकार गई? क्या वो हजारों को मार डालेंगे?
1: हुजूर, मालूम तो ऐसा ही होता है। धमाके पे धमाके हो रहे हैं, हजारों की मौत के पैगाम हैं ये धमाके। हुजूर, हमारे सिपाह में न जाने कौन कौन गद्दारी पे आमादा होगा।
0: शुजा, फिर भी हमें पस्त हिम्मत नहीं होना चाहिए। सकीना बेगम की वापसी का इंतजाम कर दो और फौरन जंग के लिए कूच का ऐलान किया जाए, और उससे पेशतर उस अंग्रेज जादी को हाथियों से कुचलवा दिया जाए।

0: नवाब मुनीरुद्दौला, समझ में नहीं आता कि अभी भी हमारी गर्दिश और दुश्वारियों का दौर क्यों खत्म नहीं होता।
1: आलमपना, वक्त सबका बदलता है।
0: बक्सर की शिकस्त का कुछ और जायजा मिला?
1: जी हाँ, वही तफसील अर्ज करना चाहता था। आलमपना, हमारे करीब 2000 बहादुर मारे गए। हमारी तमाम तोपों पर मुनरों ने कब्जा कर लिया। सिपाहियों में मुर्तजा खां, मियाँ ईसा, यासीन वगैरह मारे गए।
0: ओह, ये मैं क्या सुन रहा हूं?
1: नवाब शुजाउद्दौला पूरे खानदान के साथ बरेली की तरफ चले गए हैं, और नवाब मीर कासिम रोहेलखंड, हमारी बहुत सी सिपाह घायल हो गई है और बाकी भाग निकली है।
0: नवाब मुनीर, इस बक्सर की जंग ने तो हमारे हौसले पस्त कर दिए। अब कोई सूरत नहीं अंग्रेजों से लोहा लेने की। इतनी मुकम्मल तैयारी के बाद ऐसी शिकस्त फाश। सुना है कप्तान सेमरे भी बरेली की तरफ भाग गया है।
1: जी हाँ अली मकाम, सबको अपनी अपनी जान की पड़ी है। अवध का इंतजाम तो अंग्रेज कप्तानों ने संभाल लिया है, वो भी बड़ा जुल्म ढा रहे हैं रियाया पर।
0: तो फिर हमारी हालत बहुत ही नाजुक है इस वक्त। ताहम ये समझ में नहीं आता कि जनरल कार्निक ने हमसे मुलाकात की दरख्वास्त क्यों की है। अंग्रेज कंपनी का गवर्नर हमसे सुलह चाहता है। हमने उसे मुलाकात के लिए इजाजत का परवाना भिजवा दिया है।
1: सुना है हुजूरे वाला, ये अंग्रेज नवाब शुजाउद्दौला से भी सुलह की कोशिश कर रहा है।
0: अंग्रेजों की चालबाजियां समझ में नहीं आती नवाब मुनीर।
1: बेशक आलीजा,

0: कंपनी का गवर्नर क्लाइव साहब ने आपके हुजूर में पेश होने का हुक्म दिया है। हम आपसे सुलह करना चाहते हैं, ये नजर कबूल करें।
1: शुक्रिया। अंग्रेज कंपनी क्या उम्मीद रखती है हमसे?
0: उम्मीद? नहीं कुछ नहीं, सिर्फ हुजूर को इलाहाबाद और खोड़ा के जिले देना चाहती है। जयपनाह का हिफाजत करना हमारा काम होगा और आपकी वफादार अंग्रेजिया की तरफ से एक अफसर आपके पास रहेगा।
1: अफसर? वो अफसर क्या करेगा?
0: वो आपका खिदमत करेगा। अगर कोई दुश्मन आपको नुकसान पहुंचाएगा तो अंग्रेजी फौज बुला लेगा और योर मैजेस्टी का मदद करेगा।
1: अच्छा अच्छा, इसके बदले में हमारी वफादार रियाया अंग्रेज कंपनी क्या चाहती है?
0: योर मैजेस्टी कुछ नहीं, बस एक फरमान, ओनली वन शाही फरमान।
1: फरमान? कैसा फरमान?
0: जापना बंगाल की दीवानी का फरमान।
1: बंगाल की दीवानी का फरमान? लेकिन बंगाल में तो तुमने मीर जाफर को नवाब बनाया है, फिर हमारे फरमान से क्या मकसद है?
0: योर मैजेस्टी, नवाब और शहंशाह में जमीन आसमान का फर्क होता है। सारा मुल्क का असली मालिक तो आप ही है। आपका फरमान हमारे लिए बहुत इज्जत का बायस होगा। इसके लिए हुजूर का रियाया कंपनी हुजूर को 26 लाख रुपया सालाना खिराज अदा करती रहेगी।
1: लेकिन अंग्रेज कंपनी हमें दिल्ली पहुंचाकर तख्त नशीनी में भी मदद करेगी या नहीं?
0: जरूर योर मैजेस्टी, लॉर्ड क्लाइव साहब ने भी यही कहला के भेजा है, वो जरूर मदद करेंगे।
1: ठीक है ठीक है, हमें मंजूर है। तुम अपनी तरफ से दस्तावेज तैयार कर लो, हम भी दीवानी का फरमान बहुत जल्द जारी कर देंगे।
0: शुक्रिया योर मैजेस्टी, कुल हमको इजाजत बख्शे।
1: इजाजत दी जाती है।

0: लो नवाब मुनीर, ये क्लाइव का जवाब भी आ गया। वो हमें दिल्ली पहुंचाकर तख्त नशीनी में मदद करने के वायदे से फिर गया है। यही तो एक अहम शर्त थी सुलह की, आज 5 साल बाद भी पूरी नहीं हुई।
1: जी आलमपना, इधर इस अंग्रेज कमांडर बारकर के दिनों दिन दिमाग बिगड़ते जा रहे हैं। हमारे मुलाजिमों से बदसलूकी से पेश आता है, कहता है हम तुम्हारे बादशाह को 26 लाख रुपए वजीफा देते हैं।
0: अच्छा कमांडर तैनात किया हमारी हिफाजत को, एहसान फरामोशों ने 26 लाख सालाना देकर हमें खरीद लिया है। बंगाल की दीवानी से करोड़ों रुपए हासिल कर रहे हैं, उसका कोई एहसान नहीं।
1: हुजूर, वो कहता है कि हमारी इजाजत के बगैर कोई शाही मुलाजिम इलाहाबाद से बाहर नहीं जाएगा।
0: गोया हम शहनशाह नहीं, इस कमीने कमांडर के कैदी हो गए।
1: लेकिन जब आलम पना के हुजूर में पेश होता है तो वो मेमना बन जाता है, जमी बोस करेगा, योर मैजेस्टी की रट लगाया जाता है।
0: मगर ये कमबख्त मेमने की खाल में भेड़िया है, भेड़िया।
1: अलीजा, अब तो मराठों के जवाब का इंतजार है। सैफुद्दीन खां को कई महीने हो गए माधोजी सिंधिया के पास गए हुए।
0: देखो क्या होता है, अब तो हमें जल्द से जल्द दिल्ली पहुंचने की तमन्ना है। साबता खां किले पर काबिज है और उसका रवैया दिनों दिन बिगड़ता जा रहा है।
1: जी आले कद्र, वो
2: आलम पना, सैफुद्दीन ने पैगाम भिजवाया है कि मराठों ने हुजूर के शरीक दौलत होकर मदद की रजामंदी दे दी है। सिंधिया की फौजें रवाना हो चुकी हैं और यहां पहुंचने ही वाली हैं। उन्हीं की मदद से सैफुद्दीन मोहम्मद खान ने दिल्ली पहुंचकर जामा मस्जिद से हुजूर के शहंशाह होने का ऐलान भी कर दिया है।
0: वाह वाह वाह, ये तो अहम खुशखबरी है। मंजूर, सब सरदारान और उमरा से कह दो कि कूच की तैयारी करें।

0: जहां पना अब दिल्ली दूर नहीं।
1: ये कौन सा मुकाम है मंजूर?
0: आलम पना ये मौजा धनौली है, यहां से शाहदरा करीब 4 मील है।
1: ओहो, तब तो दिल्ली आन पहुंचे। अरे ये इतनी शानो शौकत से किसका जुलूस चला आता है? मंजूर जरा पता लगाओ।
0: आलम पना ये आली जा वली है, शाहजादे और बुजुर्ग बेगमें हुजूर के इस्तकबाल को आते हैं। जाब्ता खां हुजूर के खौफ से किला छोड़कर भाग गया है और उसकी सिपह भी सिर पर पैर रखकर भाग रही है।
1: वाह वाह, बहुत खूब।
0: और आलम पना सारा इंतजाम मुकम्मल है। अब हुजूर का जुलूस शाहदरा से दिल्ली दरवाजे होकर लाल किले में दाखिल होगा।
1: लगता है मंजूर आज हमारी मुरादें पूरी हुई और उम्मीदें बराई।
0: हुजूर, वली अहद ने बताया है कि जाब्ता खां फौजें जमा कर रहा है।
1: वो है कहां? कहां तैयारी कर रहा है?
0: जी वो नजीबाबाद है।
1: ठीक है, दिल्ली में तख्त नशीनी के फौरन बाद हम उस पर चढ़ाई करेंगे और बगावत की सजा देंगे। हमने माधोजी सिंधिया से भी मशवरा कर लिया है, वो भी हमें पूरी इमदाद देने को रजामंद है।

गुलाब की पंखुड़ियां। अभी आप सुरेंद्र कांत के लिखे इस नाटक का पहला भाग सुन रहे थे। निर्देशक मुमताज शकेब। आपको बता दें कि इस नाटक का दूसरा और अंतिम भाग आप सुन सकेंगे कल नाट्य तरंग कार्यक्रम में। अब आज का नाट्य तरंग कार्यक्रम समाप्त होता है।

0: साउंड कैमरा एक्शन।
1: बॉम्बे टॉकीज में आइए आज सुनते हैं कोरियोग्राफर टेरेंस लुविस से अमरकांत दुबे की फिल्मी गपशप। आज सुनिए पहला भाग।
2: दोस्तों नमस्ते, स्वागत है आप सभी का बॉम्बे टॉकीज में। आज फिर एक बार डांस से जुड़े एक बेहद मकबूल फनकार हमारे बीच हैं, डांस रियलिटी शोज के जज, डांस गुरु और कोरियोग्राफर, जिनके साथ होगी फिल्मी गपशप। टेरेंस लुविस। टेरेंस जब सिर्फ 6 साल के थे तभी लहू उनके मुंह लग गया। जी हाँ, और डांस उनकी नस नस में लहू के साथ दौड़ने लगा।
3: होया था नस नस में अब ये जग गया, लहू मुलक गया।
2: डांस के स्टेज

0: मेरे डैडी तो मजदूर हैं, वो पढ़े लिखे भी नहीं।
1: तो पिताजी ने हम सभी भाई बहनों को बोला था कि मैं सिर्फ 15 साल की उम्र तक पढ़ाऊंगा, उसके आगे आपको गैराज में काम करना है या नहीं पढ़ना है वो आपकी मर्जी, ओके। मेरी जिम्मेदारी है आपको पाल पोस कर 15 साल तक पढ़ा करना, उसके बाद जो करना है करो। तो मैंने देखा था कि मेरे सभी जो 7 भाई बहन थे वो सब ट्यूशन देते थे मैथ साइंस इंग्लिश, तो मैंने भी ट्यूशन दिया। 14 साल की उम्र से मैं मैथ साइंस इंग्लिश ट्यूशन देता था क्योंकि मैं पढ़ाई में भी होशियार था। हमारे परिवार में डांस एक लग्जरी है, ये अमीर लोगों के लिए शौक है, शौक के लिए कर सकते हो, करियर नहीं बना सकते इसमें।
2: इतनी कठिनाइयों के बावजूद जिंदगी के साथ लड़ाई में आप आगे बढ़ते गए, जीतते गए।
1: मैं जीता नहीं हर बार, मैं कई बार हारा।
2: आप जब कभी हारते थे तो जिंदगी से शिकायत नहीं होती थी? तो फिर क्या किया आपने?

जिंदगी ने टेरेंस को गले लगाया, टेरेंस ने जिंदगी का साथ खूब निभाया। बहुत सी बातें, बहुत से गाने, बहुत सी यादों के साथ आज टेरेंस हैं हमारे बीच।

0: बहुत शुक्रिया अमरकांत जी, आपने बहुत प्यार और बहुत सहज रूप में बहुत कुछ कह दिया, बहुत बहुत शुक्रिया।
1: टेरेंस, ये स्वागत मैं सिर्फ नहीं कर रहा हूँ, हमारे वो तमाम लाखों करोड़ों सुनने वाले कर रहे हैं जो आपके फैन भी हैं। कितने लोग आपके ऐसे लोग दीवाने हैं जिनको डांस का डी भी नहीं मालूम है, लेकिन वो टेरेंस के दीवाने हैं।
0: बहुत बहुत शुक्रिया। और हमारे जो श्रोताओं हैं और जो यहाँ पर जो काम कर रहे हैं, जो इस संस्था से जुड़े हुए हैं, मैं उनका शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ, क्योंकि मैं कभी कभी सोचता हूँ कि मैंने क्या किया, क्या किया कि इतना प्यार मुझे मिला है। मैं बहुत शुक्रगुजार अपने अपने आप को फील करवाता हूँ, और बहुत ही बहुत मैं कभी कभी ओवरवेल्म हो जाता हूँ कि यार ये कैसे हो गया और क्यों हो रहा है। मैंने कोई ऐसा बड़ा काम किया नहीं कि मैं इस प्यार का हकदार बनूं। सो
1: मैं आपको बताऊं, ये बात मैं जानता हूँ कि क्यों है आप इसके हकदार। उसका कारण सिर्फ आपका डांस नहीं है, आपकी शख्सियत है, आपका स्वभाव है, आपकी विनम्रता है, आपका प्यार बांटने का सलीका है।
0: शुक्रिया।
1: ये इंसान को बहुत लोकप्रिय भी बनाता है, प्यारा भी बनाता है, और जिंदगी में काफी ऊंचाई तक ले जाता है। और अभी तो आपके लिए बहुत से आसमान बाकी हैं, बहुत से आसमान छूने हैं आपको।
0: वो तो जरूर है। और अगर दर्शक और श्रोताओं का अगर प्यार ऐसा मिला तो जरूर बहुत सारे जो मकाम जो मैं अपने लिए बनाए रखा हूं इस उम्र में भी शायद वो मुकम्मल हो जाए।
1: जी, तो चलिए, आपने उम्र की बात की है तो श्रोताओं तक ये बात पहुंचा देते हैं कि आपकी उम्र कितनी है, और ये पहुंचेगी आपकी जन्म तारीख से।
0: हाँ।
1: जन्म तारीख मैं आपकी जानना चाहूंगा, और वो भी इस बात के साथ कि आपका जन्म कब कहाँ हुआ।
0: मेरा जन्म हुआ मुंबई में, और मैं आठवां बच्चा हूँ मेरे माँ बाप का। मेरे माँ बाप का नाम है जेवियर और मीडिया लुइस। डैडी मैंगलोर से हैं ओरिजिनली, लेकिन मुंबई में वो 10 साल की उम्र में आए और काम करने लगे, और मम्मी मुंबई से ही हैं। तो हम सभी आठ भाई बहन मुंबई में ही पले पड़े हैं। मेरा जन्म हुआ 10 तारीख को, 10 अप्रैल 1975। तो मेरी उम्र उसके हिसाब से आज 20 20 में 45 साल की हो जाती है।
1: तो देखिए साहब,

0: 45 साल के जवान, या यूं कह लीजिए नौजवान युवा डांसर के साथ मैं इस समय बैठा बात कर रहा हूं। तो टेरेंस, आप मुझे ये बताएं कि जो बचपन का ये वक्त था मुंबई में, जब आपका जन्म हुआ, मुंबई में कहाँ हुआ, कैसे आपका बचपन बीता, और ये डांस का जो एक जुनून आपके अंदर है, ये आपको कब महसूस हुआ कि मेरे अंदर ये चीज पैदा हो रही है?
1: तो ये बहुत ही एक इंटरेस्टिंग किस्सा है। मेरा जन्म हुआ मुंबई में। एक हम रहते थे एक छोटे से बस्ती में, चौल में, हरिनिवास चौल था, पठान चौल भी था, दो दो नाम थे उसके, और बड़ी बसी बस्ती थी। हमारे घर के दरवाजे नहीं हुआ करते थे, सिर्फ पर्दे हुआ करते थे।
0: अच्छा,
1: तो बहुत प्यार मिला, और इट वाज वेरी कॉस्मोपॉलिटन। हिंदूज भी थे, मुसलमान भी थे, ईसाई सिर्फ एक थे नेबर्स, अदरवाइज इट वेरी कॉस्मोपॉलिटन, जो ऐसा वाला फील था। किसी के भी घर में आना जाना, टीवी नहीं हुआ करता था तभी, सिर्फ
0: हाँ,
1: रेडियो हुआ करता था,
0: उस जमाने में तो था
1: ना
0: नहीं।
1: था नहीं। और लोग बोलते भी हैं कि यार आपने इतने मतलब इतने इतनी चीजें सही हैं, आप कहाँ थे और कहाँ आए हैं। लेकिन मुझे पता ही नहीं चला, क्योंकि मैं उस परिस्थिति में जन्म लिया था मैंने, तो मुझे पता ही नहीं कि इससे अच्छा भी हो सकता है। मुझे माँ बाप का प्यार बहुत बेशुमार मिला, और लोगों का प्यार बहुत जबरदस्त मिला, और यही वजह थी, ये प्यार जो मुझे मिला ये मेरे डांस की वजह से मिला। और जब मुझे वो मिला, वो बेशुमार मिला, मेरे इर्द गिर्द जो नेबर्स थे, या जो मेरे समाज के जो लोग थे, वो मुझे बहुत ही एक ऊंची नजर से देखते, क्योंकि मैं गाता था, एक्टिंग करता था, कॉपी करता था जो भी दिखता था टीवी पे, फिल्मों में, या डांस करता था। तो किसी की भी शादी होती तो मुझे बुला कहते, आजा बुला बुला उसको, बुला उसको बुला, ये नाचेगा हमारे लिए।
0: तो क्यों ना अभी मैं भी कहूं कि आज टेरेंस आए, अभी टेरेंस गए, नाचेंगे तो नहीं लेकिन गाना तो सुना सकते हैं।
1: अरे वो जरूरत नहीं, क्योंकि मैं ट्रेंड सिंगर नहीं हूं, लेकिन बस मुझे स्टेज पर का बहुत बड़ा लगाव हुआ था, क्योंकि मैं 6 साल का था जब मैं अपने पहले स्कूल में मेरी भर्ती हुई थी। नया स्कूल था मेरा, बांद्रा में मेरा स्कूल था, सेंट टीजर्स हाई स्कूल। तो मैं रहता था अंधेरी में, लेकिन क्योंकि मेरी माँ बांद्रा में रहती थी पहले, शादी होने के पहले, तो हमें भर्ती किया गया था एक कॉन्वेंट स्कूल में, सेंट टीजर्स हाई स्कूल। हम 4 भाई वहीं पर पढ़े। तो वो स्कूल में 6 साल की उम्र में मैं फर्स्ट स्टैंडर्ड में था, और आई थिंक सीनियर केजी में, नॉट इवन फर्स्ट स्टैंडर्ड, 5 साल का था। तो टीचर आई और उन्होंने कहा कि अच्छा बच्चे लोग, कौन हिस्सा लेना चाहेगा सिंगिंग कंपटीशन में। किसी का हाथ नहीं उठा, मेरा हाथ उठा, और मेरे में बचपन से वो ऑलवेज थिंक कि पार्टिसिपेट करना है, सब कुछ करना है, क्योंकि मैं एक खुश एनवायरनमेंट में पला पड़ा। बहुत सारा तनाव था, आर्थिक स्थिति बहुत बहुत कठिन थी, डैडी के पास इतने पैसे नहीं थे, लेकिन प्यार बहुत था, लोगों का प्यार बहुत था। और कभी कभी बच्चों के लिए उनको कुछ पता नहीं कि कितना क्या अमीर है क्या गरीब है उनके, आई थिंक आई डिडंट रियलाइज दैट, आई वॉज जस्ट हैप्पी, और मैं हर एक चीज में पार्टिसिपेट करना चाहता था। फिर दूसरी टीचर आई, बोला कि डांसिंग में कौन पार्टिसिपेट करना चाहता, मेरा हाथ उठ गया। तो ऐसे करते करते मैंने 8 जो भी कॉन्टेस्ट थे, ड्रॉइंग, सिंगिंग, एलिक्यूशन, पार्टिसिपेट कर दिया। बड़ी बहन जो थी वो मेरी देखभाल करती थी, मैंने उनको बता दिया कि मैंने ये कर दिया। उन्होंने बोला अच्छा, लेकिन अभी अभी मैं कैसे सिखाऊं, मुझे तो ये सब आता नहीं है। तो मैंने कहा मैं कुछ भी कर लूंगा, तो मैंने कुछ भी कर लिया जो मुझे आता था, लेकिन कॉन्फिडेंस के साथ शायद कर लिया, तो मुझे पहला नंबर लग गया। ऐसा नहीं कि मैं बहुत अच्छा था, लेकिन क्योंकि वो पहली बार मैंने वो कोशिश की और वो सफल हुआ, और फिर जो तालियों की गड़गड़ाहट मैंने सुनी, और जो मुझे पुरस्कार मिले, जब 2 महीने बाद प्रिंसिपल ने सर्टिफिकेट सब साथ में इकट्ठा, एक एनुअल डे होता है, तो सब ही सर्टिफिकेट साथ में मिलते हैं उस दिन पर, तो मेरा नाम बार बार लिया जा रहा था। तो एलिक्यूशन, इंग्लिश प्रोफिशिएंसी, सब में मैंने भाग लिया था, मैथमेटिक्स में सब में लिया था। तो वो जो खुशी, वो जो हाई, जो नशा मैंने फील किया, वो मेरे जहन से आज तक उतरा नहीं है। तो मैं मौका ढूंढता हूं कि कब मुझे स्टेज पर कोई बुलाएगा, कि मैं अपना फन या जो भी मेरा टैलेंट है मैं दिखाऊंगा, लोग मुझे वाहवाही देंगे। तो शायद उसकी लालच में मैं स्टेज का दीवाना हो गया।
0: अरे इतनी चीजें याद हैं आपको बचपन
1: हाँ
0: की, तो वो गाना भी याद होगा जो आपने गाया था उस समय। चलिए गाइए, तो गाना तो बताइए।
1: तो वो अंग्रेजी गाना था, बोनियम,
0: बोनियम का,
1: हाँ
0: ओके। हाँ
1: बोनियम, 1975 में।
0: हाँ
1: तो एक गाना था, ब्राउन गर्ल इन द रिंग, ट्रा ला ला ला ला, सो वो वाला गाना था, उसके लिए मुझे फर्स्ट प्राइज मिला था। फिर हिंदी गाना जो गाया था, जो गाना गाया था मैंने, वो पिक्चर थी एक हिंदी फिल्म की थी, जो शायद

0: मेरे शादी का ख्याल,
1: सौतन।
0: सौतन। तो वो पिक्चर मैंने, वो रेडियो पे चल रहा था 80s में, तो मैंने वो गा दिया तो वो मुझे फर्स्ट प्राइज मिल गया। तो ऐसे यू नो, फिर अजीब दास्तां है,
1: हाँ
0: अजीब दास। मेरी बहनें रेडियो पे सुन के वो पुस्तक में लिखती थी, क्योंकि लिरिक्स सब उनको चाहिए था, तो वो
1: जी
0: लिखती थी। तो मेरी बहन की राइटिंग बहुत अच्छी थी, तो मैं वो दोनों, वो हर गाना जो आता था, वो हमारे पास टेप रिकॉर्डर भी था, सिर्फ रेडियो, तो वो हम 2-3 बार सुनते थे रात, ताकि वो यू नो, वो लफ्ज जो है बोले गए हैं वो सही सुने हैं क्या नहीं। तो वो भी गाते थे, हम भी गाते थे, तो हमारा टाइम पास ऐसे ही होता था घर में। तो वही
1: गाने
0: चीज
1: याद भी हो
0: अरे
1: जाते
0: याद हो जाते थे।
1: थे।
0: तो ऐसे बोलते बोलते मैं अजीब दास्तान के लिए मैंने बहुत बार यू नो पुरस्कार बहुत बार मिला है, और वो गाना ऐसा है कि सबको बहुत प्यारा लगता है। तब मेरी आवाज यू नो एक छोटे बालक की तरह था, बहुत ही स्वीट, बहुत ही पतली, एंड वॉज सूटिंग दैट सॉन्ग। फिर बाकी जाके आगे बहुत अलग अलग गाने गाए, बट कभी ट्रेंड नहीं हुआ था। और डांस का शौक बहुत कभूत चढ़ गया था, और बहुत यू नो वाहवाही मिल रही थी, तो मैं उस लाइन में घुस गया, डांस की लाइन में।

0: ये दास्तान तो मैं ये नहीं कहूंगा कि आपकी अजीब है,
1: लेकिन मेरी माँ की नजर से बहुत ही अजीब हूँ।
0: लेकिन हमारे
1: मैंने कुछ भी, मैंने कोई भी चीज जिंदगी में जो जो नो जो रेगुलर चीज होती है जो सब बच्चे करते हैं, मैंने कभी नहीं किया। जो चीज लोग नहीं कर रहे मुझे वही करना है।
0: लेकिन हमारे लिए अजीब नहीं, हमारे लिए बड़ी दिलचस्प है,
1: क्योंकि आप आर्टिस्ट वाले लोग हैं ना।
0: हाँ।
1: आप हमारे जैसे लोग हैं, आप समझते हैं, लेकिन हमारे जो माँ बाप है वो मिडिल क्लास है, सिंपल पढ़ाई करो, जाओ गवर्नमेंट की नौकरी लेके आओ और यू नो सुखी रहो। तो उनके लिए ये सब चीजें अमीरों का शौक है, सिंगिंग डांसिंग। मुझे बहुत मारनी पड़ती थी, लेकिन मेरी माँ बोलती थी मत कर, चाहे तुम फर्स्ट भी, मुझे नहीं चाहिए ये सब, तुम सिर्फ पढ़ाई में ध्यान दो। और पढ़ाई में भी मैं होशियार था, तो फिर मैंने बोला कि ये क्या बात हुई। तो मैं बहुत झगड़ता था कि नहीं, मैं ये भी करूंगा वो भी करूंगा, और मैं आपको लिख के देता हूं कि मैं अपना नंबर जो पहला आया है उससे ज्यादा लेकर आऊंगा। लेकिन आप मुझे रोक नहीं सकती। तो मैं बहुत थोड़ा यू नो जिद्दी भी था, तो और रिजल्ट भी लेकर आता था, पढ़ाई में मेरा बहुत बहुत होशियार था। फिर मेरी टीचरों ने मेरी माँ को डांटा एक बार कि आप क्यों ना बोल रही हैं, पढ़ाई में भी अच्छा करता है वो और हमारी स्कूल की शान है ये। तो फिर मेरी माँ चुप हो गई वहां से। फिर मतलब अगर तू कुछ भी हुआ फिर मेरे पर नहीं आना चाहिए। अच्छा ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है।
0: बाकी के भाई बहन कोई शौक नहीं था डांस या म्यूजिक का?
1: आई थिंक शायद होता भी तो आई थिंक वो इतने यू नो आई थिंक उनमें शायद कॉन्फिडेंस नहीं था, या मुझ में ना बचपन से लेके क्योंकि मैं वो जीत गया तो वो नशा चढ़ गया, तो मैं बहुत कॉन्फिडेंट था।
0: फिर
1: तो इसकी वजह से वो आगे बढ़ गया। तो मैं कहूंगा कि मैं थोड़ा लक्की हो गया, वो एक तुक्का ना एक लॉटरी पहले ही लग गई, तो उसकी वजह से वो ना एक कॉन्फिडेंस बहुत बड़ी चीज होती है, जब अपने आप पर विश्वास होता है कि हाँ मैं कर सकता हूँ, चाहे आप लड़खड़ाएं और चाहे आप दूसरी बार हार भी जाए, कई बार हारा भी उसके बाद, लेकिन वो एक फील होता है कि हाँ मैंने ये कर लिया है। एक बार आपने स्टेज पर चढ़ गए ना आप, तो वो डर जो होता है ना
0: वो निकल जाता है।
1: तो मैं जीता नहीं हर बार, मैं कई बार हारा, लेकिन जो डर होता है यू नो स्टेज पर चढ़कर बात करना या एलिक्यूशन देना या डिबेट करना है, तो ये चीजें बहुत लोगों को डर की वजह से लोग आते नहीं है सामने। बहुत सारे अरमान है लेकिन वो लोगों से डरते हैं। वो डर मेरा चला गया, तो वो स्टेज पर जो डर होता है ऊपर चढ़ के लोगों को देखकर, वो अपने आप को यू नो एकदम यू नो जो भी है आपके अंदर जो टैलेंट जो फन है वो बताना, कभी कभी लोगों में बहुत कुछ टैलेंट है लेकिन वो डर जाते हैं लोगों को देखकर कि उनके विचार क्या होगा, वो जजमेंट क्या होगा, अगर वो सेल्फ जो नेगेटिव सेल्फ टॉक है वो बहुत होता है। तो मैं शायद उसमें बच गया तो।

0: पेरेंट्स, अब थोड़ी सी हमें एक लीप लेनी पड़ेगी, एक थोड़ी सी छलांग लेनी पड़ेगी और हम उस जगह पे पहुंचना चाहते हैं कि जहां पर आपने ये तय कर लिया कि अब मुझे डांस को ही अपना करियर बनाना है। जब आपने ये तय किया तो घर वालों का क्या रिएक्शन था और आपकी अपनी क्या कोशिश थी इस फील्ड में जाने के लिए?
1: हम मध्यम वर्ग के लोग थे, तो पिताजी ने हम सभी भाई बहन को बोला था कि मैं सिर्फ 15 साल की उम्र तक पढ़ाऊंगा, उसके आगे आपको गैराज में काम करना है या नहीं पढ़ना है वो आपकी मर्जी, ओके, मेरी जिम्मेदारी है आपको पाल पोस कर 15 साल तक पढ़ा करना, उसके बाद जो करना है करो, मेरी जिम्मेदारी निकल जाती है। मेरे डैडी बहुत क्लियर थे क्योंकि उनके डैडी ने उन

0: को आई थिंक 10 साल की उम्र में बोला था कि अब मेरा काम हो गया है, तो मेरी डैडी ने 5 साल और बढ़ा दी और बोला कि 15 साल 10वीं तक पढ़ाऊंगा, उसके बाद पढ़ना है नहीं पढ़ना है आपकी मर्जी, मैं पैसे नहीं दे सकता तुम्हारे कॉलेज के फीस के लिए कुछ भी लिए, अब अपना अपना करो। तो मैंने देखा था कि मेरे सभी जो 7 भाई बहन थे उन सब ट्यूशन देते थे मैथ साइंस इंग्लिश, तो मैंने भी ट्यूशन दिया और कहीं ना कहीं बीच में मुझे डांस का, क्योंकि मेरा डांस का लगाव बहुत ज्यादा ज्यादा था, लोग जानते थे कि मैं डांस करता हूँ, तो मेरे एक दोस्त ने, उसकी 2-3 बच्चे थे जो ट्यूशन देती थी उनको डांस सीखना था, तो उनको मैंने डांस सिखाना शुरू किया, बहुत पैसे मिलने लगे और वो पैसे मेरे कॉलेज फीस को, कॉलेज फीस और सभी जो चाहिए जिंदगी को गुजारने के लिए, उससे ज्यादा मैंने बहुत कुछ पाया, तो मेरी लॉटरी लग गई।
1: यानी ये उस समय आपकी उम्र कुछ 16-17 साल
0: सत्रह
1: होगी,
0: साल की थी,
1: यानी उस
0: सत्रह
1: उम्र से
0: साल
1: आप डांस सिखा रहे
0: हाँ,
1: हैं।
0: और 14 साल की उम्र से मैं मैथ साइंस इंग्लिश ट्यूशन देता था क्योंकि मैं पढ़ाई में भी होशियार था, तो 10वीं में ही मैंने मैथ साइंस इंग्लिश ट्यूशन का देना चालू कर दिया था।
1: वाह वाह वाह।
0: तो हमारे घर में हमारी बहनें थी, मेरी 4 बहनें थी, मेरे 3 भाई थे, वो भी ट्यूशन दिया करते थे, तो जब भी उनका उनके पास टाइम नहीं होता था तो उन लोगों ने मुझे बच्चे जो उनका एक्सेस थे उन्हें कि आप ले लो, ये आप पढ़ा दो और ये आपकी जो भी फीस है ये आपके लिए।
1: अब जैसे मैं कह रहा था आपकी
0: हाँ
1: दास्तान के बारे में
0: हाँ
1: दिलचस्प, मुझे यहाँ कहना पड़ेगा कि बड़ी प्रेरक दास्तान है।
0: अच्छा
1: इससे जो प्रेरणा हमारे सुनने वालों को मिलेगी कि जीवन संघर्ष का नाम है, और संघर्ष कब शुरू होता है और कब खत्म होता है ये ना आप जानते हैं ना
0: करेक्ट
1: कोई और जानता है, लेकिन उस संघर्ष का जो फल मिलता है उसको कहते हैं टेरेंस लुइस।
0: बहुत बहुत
1: तो
0: शुक्रिया
1: टेरेंस, मैं यहाँ ये जरूर जानना चाहूंगा कि ये जो दौर था आपका, जो
0: हाँ
1: संघर्ष का जो दौर था, इस समय आप, चलो आप डांस सिखा रहे थे, लेकिन उस समय अपने आप को भी तैयार कर रहे थे आप? सोचा था आपने कि मुझे क्या करना है?
0: एग्जैक्टली क्यों, देखो मैं पढ़ाई में होशियार था तो मैं साइंस, मैंने साइंस लिया था, मुझे डॉक्टर बनना था, तो मेरा 88% निकल गया था, फिर मैं 3 मार्क्स की वजह से मुझे मेडिकल कॉलेज में भर्ती नहीं मिली, मुझे डोनेशन देना पड़ा था और मेरे पास उतने पैसे नहीं थे, तो फिर मैंने माइक्रोबायो और बायोकेमिस्ट्री किया ग्रेजुएशन के लिए, फिर वहाँ से छोड़ के मैं होटल मैनेजमेंट किया और मेरी डांस की ट्यूशन मैं देता गया क्योंकि पैसे अच्छे मिल रहे थे। जब मैंने सब फिनिश कर दिया, मेरा ग्रेजुएशन फिनिश कर दिया और फिर मैंने होटल मैनेजमेंट भी फिनिश किया 3 साल का और मुझे नौकरी भी मिल गई थी कैंपस इंटरव्यू से, लेकिन तब तक मेरा इतना बड़ा मतलब मैं घर घर जाके इतना कमा रहा था कि जो पैसे मिल रहे थे कैंपस इंटरव्यूज के द्वारा, मतलब जो नौकरी लगने के बाद जो पैसे मिलने वाले थे उससे मुझे 10 गुना और पैसे ऑलरेडी मिल रहे थे घर घर जाके सिखाने हैं।
1: ओह
0: मैंने अपने परिवार वालों को बोला कि मैं ये काम नहीं करूंगा क्योंकि मुझे लगता है कि अगर मैं इसमें और अच्छा मेहनत करूं तो मैं शायद सफल हो जाऊंगा। मेरे माँ बाप को डर था कि ये जो नौकरी है घर घर जाके, ये इसमें कोई मैं हम लोग क्या बोलेंगे समाज को, तू इतना पढ़ा लिखा है, तू इतना होशियार बच्चा था, तू डॉक्टर बनने वाला था और फिर तू माइक्रोबायो बायोस्ट्रीमिया, फिर तुमने होटल मैनेजमेंट किया है, इतनी बड़ी बड़ी डिग्री लेके तुम अभी डांसर बन रहे हो, तो वो उनके लिए तौहीन की बात थी क्योंकि हमारे परिवार में डांस के एक एक लग्जरी है, ये अमीर लोगों के लिए शौक है, शौक के लिए कर सकते हो, करियर नहीं बना सकते हैं इसमें, तो वो मेरे पेरेंट्स का मानना था, मेरे पिता और माता का, और मेरे भाई बहन भी जो साथ हैं वो सभी एक मतलब इधर टीचर है या फार्मेसी में है या इंजीनियर है मेरे भाई या बैंकर है, तो वो सभी एक बहुत ही स्ट्रीमलाइंड जॉब में है, मैं थोड़ा हटके सोच रहा हूँ, तो उन्होंने सब ने ना कर दी, मैंने बोला कि नहीं आपकी मर्जी नहीं चलेगी, मुझे जो करना है करना है, वैसे भी मैं आपसे ज्यादा कमा रहा तो मैंने ठान लिया है कि मैं ये नौकरी नहीं लूंगा, तो सब लोग मेरे दो मेरे भाई बहन थे कि तू गिरेगा, तू तू तू समझ नहीं पा रहा है कि ये फिक्स नहीं है, आज तुम्हारे जो लोग तुमको काम दे रहे हैं घर घर में वो बच्चे बड़े हो जाएंगे, बोलेंगे अभी खत्म तो तुम क्या करोगे, ऐसे क्यों दूसरे आएंगे, ऐसे अगर तुम्हारी बॉडी को इंजर हो गया तो तुम क्या करोगे, ये सब बहुत ही सेंसिबल सवाल
1: जाहिर है
0: थे
1: कि हर तरह से
0: हर तरह से,
1: तोड़ने की
0: मतलब
1: कोशिश थी।
0: और मेरे सर के ऊपर मंडरा रहे थे 10 लोग कि नहीं ये मत करना, ये होगा तो क्या होगा, ये होगा तो क्या होगा, क्योंकि वो सब बहुत ही सुलझे हुए इंसान है, उनके पास एक फिक्स्ड करियर है।
1: देखिए एक बात होती है टेरेंस, मैं बताऊं, मिडिल क्लास आदमी बड़ा डरपोक होता है, वो हर चीज से डरता है
0: हाँ
1: क्योंकि वो रिस्क लेना नहीं चाहता, उसके पास जो रहता है वो खोने
0: करेक्ट
1: के लिए,
0: हाँ
1: वो इतना होता है कि अगर वो खो गया तो वो सर्वाइवल का सवाल खड़ा हो
0: हाँ अगर
1: जाएगा,
0: आप कलाकार फैमिली में बॉर्न हुए हैं तो फिर कोई प्रॉब्लम
1: कोई
0: नहीं है
1: प्रॉब्लम
0: क्योंकि
1: नहीं।
0: लोग सपोर्ट मिलता है, लेकिन
1: हाँ
0: हमारे मेरे डैडी तो मजदूर हैं, उनको सिर्फ वो पढ़े लिखे भी नहीं है, तो उनके लिए सिर्फ ये पढ़ा लिख के मेरा बच्चा आगे जाए वो ही खुशी
1: ये
0: है।
1: बहुत
0: हाँ
1: बड़ी बात है ना। और देखिए हर माँ बाप चाहते हैं कि उनका बच्चा उनका नाम रोशन करे,
0: करेक्ट
1: आगे बढ़े, हर बाप
0: करेक्ट
1: की सबसे बड़ी खुशी ये होती है कि
0: हाँ
1: उसका बेटा उससे आगे जाए,
0: बढ़े हाँ
1: बस आपने 2 कदम भी आगे बढ़ा दिए तो आपके पिताजी तो खुश हो गए,
0: खुश
1: उनको
0: हो
1: तो
0: गए।
1: खुशी मिल गई,
0: हाँ लेकिन उनको वही
1: लेकिन
0: वही चिंता थी कि अरे तू तो डॉक्टर बनने वाला था।

0: फिर तूने माइक्रोबायोलॉजिस्ट में किया, फिर तूने होटल मैनेजमेंट किया, तू फर्स्ट भी आया यहाँ पर, तो फायदा क्या इतना पढ़ के, तू इतना पढ़ता है, तू फर्स्ट लेके आता है, नौकरी भी तुझे हाथ में मिल गया, लेकिन
1: चलिए
0: तू ये नहीं करना चाहता है, ये क्या बात हुई? तो मेरे डैडी को समझ में नहीं आता कि मैं ऐसा कैसा इंसान हूं, और वो
1: फाइनली
0: बोलिए
1: फिर आपके मदर फादर खुश
0: अग्री
1: हुए कि नहीं?
0: नहीं, वो बाद में बहुत सालों के बाद खुश हुए, बहुत सालों के बाद जब उन्होंने देखा कि वो भी, मतलब 7-8 साल बहुत, जब फिर मैं जब एक्चुअली मैंने इंस्टीट्यूट खोला, फिर मैंने बोला कि मैं घर घर नहीं जाऊंगा, मैं अपना खुद का क्लास शुरू करूंगा, लोगों को मेरे पास आना चाहिए, मैं क्यों जाऊं घर घर? तो वो भी था ना कि अगर मुझे अपने आप का एक नाम बनाना है तो मैं घर घर नहीं जाऊंगा, लोग मेरे पास आना चाहिए। तो मैंने एक स्टूडियो लिया, पैसे खर्च किए, जो भी इकट्ठा किए थे, पूरा मेरी मेरी पूरी जवानी जो मुझे पता नहीं कहाँ गई, मैंने दोस्तों के साथ कभी वक्त ही नहीं बिठाया, मैं सिर्फ काम करता गया और जो भी पैसा है अपने करियर में लगा दिया, और वो फिर ठप हो गया क्योंकि लोग आए नहीं, क्योंकि मैंने ये सोचा ही नहीं था कि लोगों को, अगर मैं किसी के घर पे जा रहा हूँ तो वो उनकी सहूलियत होती है ना कि मैं उनके घर पे आ रहा हूँ, तो उनके लिए बहुत कन्वीनियंट हो जाता है,
1: एक और
0: लेकिन
1: बात होती है टेरेंस, कलाकार जो होता है वो कलाकार होता है, बिजनेसमैन नहीं
0: नहीं
1: होता।
0: होता। तो वो अकल बाद में फिर
1: वो
0: जब जमीन
1: सीखना
0: पर उतरा, मैं
1: पड़ता
0: उड़ रहा था कि मेरा ऐसा
1: है।
0: होगा,
1: और
0: मैं सच में ना, जो मैं 21-22 साल का था, मैं मेरे सपने, हाँ मैं ये करूंगा, मैं वो करूंगा, ये होगा, फिर मैं बड़ा शो करूंगा, फिर लोग मेरे मेरे पास आएंगे, देखें कि मैंने कितना अच्छा काम किया है, और तो ये बड़े बड़े मेरे ख्याली पुलाव चलते रहते थे मेरे दिमाग में, फिर मेरी एक बड़ी फिल्म आएगी, लोग मेरे पास आएंगे और बोले कि मेरी फिल्म करो, तो मेरा दिमाग सपनों में रहता था।

0: के लिए क्या करते थे? रेडियो पे जो गाने बचपन में
1: गाने
0: सुना करते थे, वो गाने कब तक आपका पीछा करते रहे? मैं मुझे तो ऐसा लगता है कि अभी भी वो गाने जरूर होंगे कहीं ना कहीं आपके
1: जरूर
0: जहन में,
1: जरूर।
0: लेकिन जब भी रिलैक्स करने का मूड होता रहा होगा तो किस तरह के गाने सुना करते थे? गानों की जो अगर आपसे फेहरिस्त पूछी
1: हाँ
0: जाए तो
1: हाँ
0: किस तरह के गाने होते
1: अभी
0: थे,
1: मेरे
0: किस
1: प्लेलिस्ट
0: मूड
1: में
0: में किस तरह का गाना आप सुना करते थे? जहां अभी मान लीजिए कि घर में बैठे हैं और माँ और पिताजी से बहस हुई है कि नहीं नहीं तुम्हें ये नहीं करना है, वो नहीं करना है, तुम हम इतना पढ़े लिखे हो, और उसके बाद अल्टीमेटली कहीं ना कहीं थोड़ा सा नाराज होके या थोड़ी
1: हाँ
0: सी उदासी में घर से निकले, तो कहीं कोई गाना पीछा करता था विविध भारती
1: बहुत
0: का?
1: सारे गाने थे सर, क्योंकि मैं ट्रेन से ट्रैवल करता था,
0: हाँ, लोकल ट्रेन।
1: लोकल ट्रेन, और मुझे सॉरी ये कहना नहीं चाहिए रेडियो पे, लेकिन मुझे
0: हैंडल पकड़ के, हाँ
1: हैंड हेल्प पकड़ के, मुझे गर्मी बहुत जल्दी होती है तो मुझे हवा चाहिए, तो वो हवा यू नो, और मेरे बाल लंबे हुआ करते
0: हाँ
1: थे, तो मुझे बहुत मजा आता था कि मैं एक हाथ, मैं
0: पकड़
1: कई
0: के दरवाजे पे
1: बार,
0: लटक
1: आई एम
0: जाऊं।
1: टेलिंग यू, मैं सच कह रहा हूं कि कई बार पता नहीं किसने मुझे बचाया है, फिसलते फिसलते मैं बचा हूं। तो ये मेरे 5 साल ऐसे ही गवाए हैं, और मैं उसके बाद भी ट्रेन में ही ट्रैवल करता था क्योंकि वो फटाफट हुआ करता
0: दोस्तों, ये जो टेरेंस जो कुछ कह रहे हैं ये सिर्फ सुनिए, इसे सिर्फ सुनना है और दूसरे कान से निकाल देना
1: निकाल
0: है, इस
1: देना
0: पर अमल बिल्कुल नहीं
1: नहीं
0: करना है
1: करना
0: आपको,
1: है।
0: ये मैं आपको बता दूं,
1: हाँ,
0: क्योंकि ये बहुत खतरनाक
1: खतरनाक
0: है।
1: चीज है,
0: मुंबई में हर दिन कई कई बच्चों की
1: जान
0: जान इससे जाती है, कई अपने जीवन में अपाहिज हो जाते हैं, तो इसको सिर्फ सुनिए
1: मत
0: और
1: कीजिए।
0: कान दूसरे कान से निकाल दीजिए। अब आगे
1: एब्सोल्युट
0: बढ़ते
1: नहीं,
0: हैं।
1: सही कहा आपने। तो क्या है कि मैं गाने सुनता था, और मेरा जरिया था कि जब भी मैं उदास या जब भी मैं अपने आप को खुश करना चाहता था, या मैं जनरली मैं उदास नहीं रहता हूं, मैं ऑलवेज हसमुख रह करता था, मैं वो गाने सुनता था या वो गाने गाता था, सुनता भी नहीं था, गाता था, जो मेरे दिल को हल्का करे। मैं बताऊं कि एक गाना है देवानंद सर का, मैं जिंदगी का साथ निभाता चला गया और फिक्र को धुएं में उड़ा, ये ऐसा गाना मुझे दिल के बहुत करीब है।
2: मैं

0: गीत तो हमने सुन लिया,
1: हाँ
0: जिंदगी के जो कश्मकश रहती हैं उनको किस तरह से आपने दूर किया। मैं जानता हूँ सिगरेट विगरेट तो आप नहीं पीते हैं और पीना भी नहीं चाहिए किसी तरह के नशे से, बिल्कुल अपने आप को बचा के रखना चाहिए।
1: नहीं, ऑल्सो अगर आपने लाइफ का नशा पिया है ना, और जो लाइफ में मजा है और जो जिज्ञासा में मजा है, लाइफ को खोजने में मजा है, वो कभी आपने अगर चख लिया तो सब नशे फीके पड़ जाते हैं।
0: और फिर आप तो पहले ही से वो स्टेज वाले नशे में धुत थे, आज भी है।
1: तो ऐसा मैं ये भी कहूंगा कि मैंने 35 साल की उम्र में, 35 की उम्र में मैंने बिना शराब की बूंद चख ली। फिर मैंने लोग सिगरेट पीते थे, मुझे क्या है, तब तक तो मुझे कोई थे ही नहीं, मतलब मन पूरा मेरा ध्यान डांस में था। और देखा क्या, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, मुझे तो कुछ फर्क ही नहीं महसूस पड़ रहा है। लेकिन कि जो नशा लाइफ में है और जीने में है, उससे ये बहुत कम है, तो कभी वो लत या लगाव लगाई नहीं।

0: अच्छा टेरेसा, अब हम उस पर आते हैं जब आपका जो काम था वो टोटली कमर्शियल हो गया, अदर देन इंस्टीट्यूट डांसिंग
1: करेक्ट.
0: क्लासेस के अलावा
1: हाँ
0: फिल्मों में कहीं ना कहीं अंदर आपकी इच्छा तो रही होगी
1: करेक्ट.
0: कि मैं भी बड़े पर्दे पे नजर आऊं, मैं भी डांस करूं। अब अगर मैं सच्ची बात करूं, ईमानदारी की बात करूं, तो आप चेहरा मोहरा फिजिक हर तरह से एक अच्छा खासा हीरो मटेरियल आप रहे हैं, आज भी हैं, आज भी है ना।
1: शुक्रिया.
0: तो ऐसा नहीं सोचा आपने कभी कि मैं हीरो ट्राई करूं?
1: देखिए, आज की तारीख में बहुत सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाती है बच्चों को, क्या कहाँ जाना है, कास्टिंग कहाँ होती है. मेरे ज़माने में मुझे कोई समझ नहीं थी, और कोई गॉडफादर नहीं है, या कोई समझाने वाला नहीं है कि अच्छा ऐसा ऐसा करो. तो कई हद तक मैं सोचा रहा कि ये शायद मुझे कौन लेगा, मुझे कौन काम देगा.
0: लेकिन आप चाहते थे हीरो बनना?
1: हीरो नहीं, मुझे थिएटर का बहुत शौक था और
0: अच्छा।
1: मुझे एक्टिंग का बहुत शौक था. लेकिन और कुछ म्यूजिक वीडियोस भी मिले, जैसे शान का एक गाना रीमिक्स, तभी रीमिक्स का गाना बहुत चलता था. शान ने गाया था, माना जनाब ने पुकारा
0: वाह
1: नहीं,
0: वाह।
1: उन्होंने एक गाना रीमिक्स किया था.
0: हाँ
1: उसके मेन किरदार, जो मेन मॉडल, जो मॉडलिंग, जो
0: हाँ
1: मेन कैरेक्टर है, वो मैं प्ले कर रहा था. तो ऐसे बहुत सारे म्यूजिक वीडियोज मैंने किए बड़े बड़े जाने माने डायरेक्टर के साथ. लेकिन कभी वो ब्रेक कैसे मिलना चाहिए, किसके साथ बात करना चाहिए, कहाँ जाऊं, वो मुझे समझ नहीं थी. और भागदौड़ थी कि पैसे जमा करने हैं और अपने परिस्थिति, आर्थिक स्थिति जो है उसको कैसे मैं अच्छा बनाऊं, वो इसी में लगा पड़ा रहता था. और ऑलवेज अपने आप को प्रूव करना था कि अगर मैं इसमें ध्यान नहीं दूंगा तो कोई और अच्छा करके जाएगा, और ये जो हाथ में है वो भी चला जाएगा. तो कभी कोई सपोर्ट ना कोई बनाने वाला कि अच्छा ठीक है तू इसमें अभी थोड़ा ट्राई कर ले, कोई था नहीं. तो कोई नाराजगी भी नहीं है, कोई शिकवा नहीं है, कोई गिले नहीं है. जो था सही था, अगर होना था तो हो जाता. अब जाके मैं समझता हूँ कि मेरी स्थिति जो है अच्छी है. तो अब जाके मैं बहुत सारे ऐसे काम कर रहा हूँ, और जो ऐसे काम मिल रहे हैं जो एक्टिंग के माध्यम में है, और मुझे बहुत खुशी मिल रही है कि मैं मुझे एक जरिया मिल रहा है फिर से उस उमंग को जीने का. लेकिन उस वक्त में मुझे कोई दिशा दिखाने वाला नहीं था, और ना ही मेरे जहन में ये था कि मैं बन जाऊंगा. मुझे लगा कि यार, जो फैमिलीज आती थी, ट्रेडिशनल फैमिलीज आती थी, उन्हीं के बच्चे सपूत जो है वो आगे बढ़ते थे. तो वो कभी वो जो अरमा भी था वो वहीं की वगैरह. तो मैंने बोला कि ये शायद इससे ज्यादा नहीं होगा. तो मैंने अपने आप को सीमित किया, किसी की गलती नहीं है.
0: फिर
1: मैंने
0: आपको एक कोरियोग्राफर की हैसियत से काम कैसे मिला? क्या आपने किसी को असिस्ट किया? बड़े बड़े कोरियोग्राफर्स के नाम रहे हैं।
1: तो ये बड़ी दिलचस्प कहानी है. मैंने कभी किसी को असिस्ट नहीं किया, क्योंकि 17 साल की उम्र में मैंने डांस सिखाना शुरू कर दिया. और जब आप डांस सिखाना शुरू करते हैं, और फिर 18 या 19 साल में मैं कॉलेज के फंक्शंस में कोरियोग्राफ भी करने लगा, तो मेरा नाम लोगों में सुनने में आया था कि हाँ, ये कोरियोग्राफ करता है. स्कूल, कॉलेज, फंक्शन, सब दूसरे कॉलेजेस को भी कोरियोग्राफ करता है. तो जो दूसरे कोरियोग्राफर्स थे वो मुखर जाते थे मुझे यूज करने, क्योंकि ये तो कोरियोग्राफर है, ये तो अपना काम देख के निकल जाएगा कहीं. तो वो डर जाते थे. मैं अगर चाहूं भी तो उनके साथ काम करूं, बोलते नहीं, क्योंकि तुम तो कोरियोग्राफर हो, तुम नहीं कर सकते हैं. क्योंकि डर होता है ना कि कहीं वो टेरिटोरियल हो जाता है. तो फिर मैं कभी गया नहीं किसी के साथ, किसी के अंडर काम नहीं किया. और फिल्म भी जो मुझे मिली, पहली फिल्म जो थी, छोटा सा कोरियोग्राफी का सेक्शन था लगान में, वॉल्स का सेक्शन था. वो भी मेरे नसीब में ऐसा हुआ कि रीना दत्ता, जो आमिर की पहली बीवी थी, वो प्रोड्यूसर थी उस फिल्म की. तो उनको चाहिए था एक ऐसा कोरियोग्राफर जो वॉल्स, जो टेक्निकल वॉल्स है, वो कोरियोग्राफ करके दिखाए.
0: वो जो अंग्रेज लड़की डांस
1: अंग्रेज
0: करती
1: लड़की
0: है
1: नाचती
0: वो
1: है,
0: वाला
1: माय
0: डांस
1: हार्ट इज, हाँ
0: सेक्शन?
1: वो वाला. हाँ, तो मैं रीना को बोला कि वो मेरी स्टूडेंट रहती थी, क्योंकि वो आती थी सीखने के लिए. मैं अभी फिटनेस में भी चला गया था, कि डांस और फिटनेस का दौर चल रहा था, तो मैंने अपना हाथ फिटनेस में भी डाल दिया, और मैं औरतों को वेट लॉस करवाता था.
0: उस पे हम बात करेंगे, लेकिन अभी
1: हाँ,
0: पहले
1: इसको.
0: इसको।
1: हाँ,
0: हाँ
1: तो रीना मेरी वेट लॉस वाली स्टूडेंट थी. वो मेरे पास आई थी वेट लॉस करने के लिए. मैं उसका पर्सनल ट्रेनर बना, और उन्हें मुझे ये प्रस्ताव पेश किया कि मैं चाहती हूँ कि आप ये गाना कोरियोग्राफ करें, ये जो थोड़ा सेक्शन है, और बस वॉल्स करना है, आपको तो आता ही होगा, आप तो ईसाई धर्म के हो. तो मैंने कहा कि ईसाई धर्म का ये मतलब नहीं कि मुझे वॉल्स आता हो.

0: ये तो तुम करते हो, तुम्हारे मतलब यू नो पार्टीज
1: हाँ
0: में से, नहीं मुझे नहीं आता ये सब, ये तो एक अलग स्टाइल है। नहीं, ये तुम पाना चाहिए क्योंकि हमारे फिल्मी कोरियोग्राफर्स नहीं कर पाएंगे, और जिस तरीके से तुम चलते हो, जो तुम्हारी ट्रेनिंग है, लगता है कि तुम कर पाओगे ऐसे, लेकिन मुझे कुछ नहीं पता। फिर एक बार तुम आमिर से मिल लो। मैं आमिर से मिला, आशुतोषी से मिला, और उन्होंने मुझे और भी डरा दिया कि उन्होंने कि नहीं वॉल्स तो हमें चाहिए, लेकिन हमें ना वो 18th सेंचुरी, क्योंकि हमारी फिल्म 18वीं सदी में यू नो
1: का कहानी है।
0: कहानी है, तो 18वीं सदी की जो वॉल्स हुआ करती थी, वियनीज वॉल्स, वो हमें चाहिए।
1: बताइए।
0: तो मैं तो वहीं पर मेरे हाथ पैर कांपने लगे। पहले तो मुझे कुछ भी मालूम नहीं कि मैं कैसे शूट करते हैं, मुझे मुझे कोई एक्सपीरियंस नहीं है।
1: मैं यही जानना चाह रहा था आपसे, माफ
0: हाँ
1: कीजिए बीच में रोक रहा हूं, कि आप कोरियोग्राफी करते
0: हाँ
1: थे
0: लेकिन
1: स्कूल्स
0: स्टेज,
1: में
0: हाँ
1: और
0: फिल्मों में
1: कॉलेजेस
0: नहीं,
1: में, लेकिन फिल्मी कोरियोग्राफी अलग होती है,
0: अलग
1: उसके
0: होती है,
1: नुएंसेस अलग होते
0: एकदम
1: हैं,
0: अलग सर,
1: उसकी ट्रिक्स अलग होती हैं, वो
0: एब्सोल्युटली
1: तो आप जानते नहीं थे। फिर
0: एब्सोल्युटली नहीं।
1: आपने इसमें कैसे अपने आप को मैनेज किया, ये सवाल पे मैं आने वाला था, आप खुद ही आ गए, तो आप
0: हाँ
1: दोनों चीजों को जोड़ के
0: साथ में
1: बताइएगा।
0: जरूर। तो फिर मैंने मेरा एक उसूल है कि जो चीज आपको नहीं पता वो सीधा सामने बोल दो, सच बोलो, क्योंकि सच बोलोगे तो सब कुछ ना कुछ हल मिलेगा। तो मैंने सीधा रीना को बता दिया कि मुझे कुछ नहीं आता, और ना ही मुझे फिल्म, मैंने कभी फिल्म यू नो कोरियोग्राफ किया है। तो मैंने रीना को यू नो रूम में बता दिया कि ऐसा ऐसा है। रीना ने मुझे फिर से रूम में बैठा दिया आमिर और आशुतोष के साथ, और उन्होंने बोला कि देखो इसको कुछ भी नहीं आता, आप लोगों को हेल्प करना पड़ेगा, करेंगे। तो आशुतोष ने बोला क्या है अब बताओ। आशुतोष सर वॉज सो नाइस टू मी, ही सेज डरने की बात नहीं है, तुम बहुत डरे हुए हो, अब डरो मत। इट वॉज सो स्वीट, क्योंकि मैं बहुत आई थिंक वॉज ओनली 24 ईयर्स। सर मैं नहीं करना, मैं बोल रहा हूँ मुझे नहीं करना, मुझे नहीं करना है। सर क्यों डरे हो, आपको आता है, मैं सीख लूंगा, लेकिन सर मुझे मुझे पता ही नहीं फिल्मों में कैसे शूट किया जाता है ऐसे, वो हमारी जिम्मेदारी। और हमारे पास अनिल जी है, अनिल मेहता जी है, वो कैमरा मैन है सबसे सीनियर्स, हम संभाल लेंगे, आप हमें कोरियोग्राफी और डांस दिखाओ, कैसे इसको शूट करना है वो हमारी जिम्मेदारी। अरे ठीक है, आमिर ने भी बोला कि आप डरो मत, आप करो, यू बी फाइन। तो फिर मैंने वो स्टाइल सीखा। मैं एक सलोमी रॉय कपूर की एक मोहतरमा थी जो सिद्धार्थ रॉय कपूर की माँ है,
1: ओहो
0: हाँ, तो वो सिर्फ वो जानती थी वो पर्टिकुलर स्टाइल। तो मैं उनके घर गया, नेपिन सी रोड का घर था मलबा हिल में, मैं गया, उनको बोला कि मुझे सीखना है, और उन्होंने ठीक है मैं सिखाऊंगी। तो मैंने भर्ती किया अपने आप को, सीखा, फिर मैंने वही चीज़ कोरियोग्राफी में डाली। गाना ARMM का गाना था, वो मैंने लिया, कोरियोग्राफ किया, फिर बुझ गया वहां पे। उन्होंने मुझे अनिल मेहता सर के साथ ही कमरे में बिठा दिया, और अनिल मेहता को मैंने साफ साफ कहा, सर मुझे कुछ नहीं आता कैमरा के बारे में, मैं क्या करूं, मैं क्या करूंगा सेट पे, मैं क्या, मुझे एक्शन भी बोलना नहीं आता कि कब एक्शन बोलूं कब नहीं, कब यू नो नगाड़े को बोलूं कि रोल साउंड, ये मैंने सुना है लेकिन एक्सपीरियंस नहीं है। सिंह कोई बात नहीं, मैं समझाता हूँ। फिर उन्होंने मुझे 2 दिन के बाद एक बुक दिया, इट्स कॉल्ड द 5 C's ऑफ कैमरा। अगर कोई भी डांस के दीवाने हैं या कोरियोग्राफर बनना चाहते हैं तो ये बहुत इंपॉर्टेंट बुक है। ये एक्चुअली कोरियोग्राफी के बारे में नहीं बताता, लेकिन कैमरा के बारे में बताता है, और ये क्या बोलते हैं ना, ग्रंथ है। अगर आपको कैमरा के बारे में सीखना है, दिस इज द बुक फॉर टू गो फॉर, द 5 C's ऑफ कैमरा। तो अभी मुझे पढ़ाई लिखने में बहुत शौक है, तो मैं वो बुक को रातों रात खा गया सब कुछ, और मैंने नोट्स लिख दिए कि जो मुझे समझ में नहीं आया मैंने नोट्स कर दिए। मैंने अनिल मेहता सर को बता दिया कि ये मैं समझ गया, ये नहीं समझा, आप मुझे बताइए, ऐसे आप 2 दिन मेरे साथ आइए और देखिए क्या हो रहा है। मैंने देखा, समझ गया, और मैं बहुत फटाफट समझ जाता हूँ। तो वो मेरी मतलब, मैं समझता हूँ कि मैं अगर मुझे कोई दिखाया तो मैं फटाफट समझ जाता हूँ। तो मैं सेट पे रह के मैं सीख गया, और फिर मेरी 3रे दिन मेरी शूट लग गई, और मैं बहुत नर्वस था क्योंकि पहली बार मैं
1: एक तो और
0: बड़े
1: इतनी बड़ी
0: कलाकार
1: कला, बड़ी फिल्म थी,
0: को
1: बड़ी महत्वाकांक्षी फिल्म थी आमिर
0: हाँ
1: की और आशुतोष की भी, और
0: करेक्ट।
1: फिर हिस्ट्री भी बनी।
0: तब हमें नहीं पता था कि ये हिस्ट्री बनने वाली है, तब हमें लगा कि अच्छा नॉर्मल फिल्म
1: हाँ,
0: फिल्म बन रही है।
1: लेकिन उसके बाद जब वो फिल्म रिलीज हुई होगी और जब उससे टेरेंस का नाम जोड़ा, तो एक खुशी जो आपको मिलनी चाहिए, वो तो खैर जाहिर सी बात है, उसका तो हम अंदाजा लगा सकते हैं, लेकिन कमर्शियली आपको फिर उससे कोई फायदे हुए होंगे?
0: एक्चुअली मैं कहूंगा कि यू नो मेरा बहुत, मैंने कुछ उस फिल्म में बहुत छोटा काम किया है सर, लेकिन बहुत इज्जत मिली। तो ये भी ऊपर वाले की मेहरबानी है कि लोग मेरा नाम जोड़ने लगे बड़े बड़े हस्तियों से, जैसे सरोज खान जी ने कोरियोग्राफ किया था, राजू खान ने कोरियोग्राफ किया था, वैभवी मोचन ने, उनका बहुत ज्यादा काम था सर, मेरा बहुत छोटा, लेकिन कोरियोग्राफर के नाम में मेरा भी नाम जोड़ा गया
1: वो
0: था।
1: जाहिर सी बात है ना।
0: लेकिन एक्चुअली बोलूं वो बहुत दिग्गज कोरियोग्राफर्स है, मेरी कोई औकात नहीं है उनके सामने, मैं तो अभी अभी पैदा भी नहीं हुआ वैसा वाला कोरियोग्राफर हूं, लेकिन शायद कोरियोग्राफर्स के नाम साथ में जुड़ गए थे, तो वो लोगों के नजर में अरे हाँ ये बड़े लोगों के साथ में जुड़ गया है, ये मेरी

खुशनसीबी थी, लेकिन ये सत्य नहीं है। और ये मैं इसका खुलासा करना चाहता हूँ कि ये मेरा सत्य है कि मैंने कोई बड़ा काम नहीं किया लगान में, कोई बड़ा गाना नहीं किया, छोटा सा एक पोर्शन था वही किया।

आज के बॉम्बे टॉकीज में आप सुन रहे थे जाने माने कोरियोग्राफर टेरेंस लुविस से अमरकांत दुबे के फिल्मी गपशप। ये था इस फिल्मी गपशप का पहला भाग। तकनीकी सहयोग HR पाटले, प्रस्तुति सहयोग आकांक्षा सिंह, विविध भारती की ओर से इस कार्यक्रम की प्रस्तुतकर्ता रेणु चतुर्वेदी।

अभी हम रिले कर रहे थे विविध भारती प्रसारण सेवा के कार्यक्रम। आकाशवाणी का ये बिलासपुर केंद्र है FM बैंड 103.2 मेगाहर्ट्ज पर। इस समय शाम के 5 बजे हैं। लीजिए सुनिए CF1 विभाग सरगुजा द्वारा प्रायोजित कार्यक्रम हमार हाथी हमार गोठ।

नमस्कार, स्वागत है हमर हाथी हमर गोठ कार्यक्रम में। मैं अमलेंदु मिश्र। साथियों, हाथियों का दल भोजन और पानी की तलाश में गांव की ओर आने लगा है। आइए जानते हैं हाथियों के आज के विचरण क्षेत्रों के बारे में। एलिफेंट रिजर्व सरगुजा के तमोर पिंगला में हाथियों की कुल संख्या 75 है। ये धूरिया, अरचोका, भेलकक्ष, पेंडारी, बोदरई, शाही डांड के वन क्षेत्रों में विचरण कर रहे हैं। सूरजपुर मंडल के प्रतापपुर और सूरजपुर में हाथियों की कुल संख्या 6 है। ये गर्जंडी, सिंघरा, भरदा, पलहड़ा, धर्मपुर, गौरा, गणेशपुर, कल्याणपुर, कोटबहरा, घाघी, टिकरा के वन क्षेत्रों में विचरण कर रहे हैं। बलरामपुर वन मंडल के वाड्रफनगर और राजपुर में हाथियों की कुल संख्या 4 है। ये करमडीहा, मेंढारी, गोवर्धनपुर, भगवानपुर, कुंदीकला, जामदोहर, अखोरा, बदौली, जवा खाण के वन क्षेत्रों में विचरण कर रहे हैं। सरगुजा वनमंडल के अंबिकापुर, लुंड्रा, उदयपुर, सीतापुर और मैनपाट में हाथियों की कुल संख्या 30 है। ये सकालो, किशुनपुर, गंगरी, कुल्हाड़ी, कंचनपुर, पड़ोली, जमीरा, मसगा, डांडपारा, सायर, कुमडेवा, लक्ष्मणगढ़, उदरबसवार, केदमा, जगन्नाथपुर, ढोढ़ा गांव, कठबुड़ा,

0: नाथपुर, घासीडी, दातीढाप, गढ़गांव, बरडाण, चोरकी पानी, कंडराजा, पेंट के वन क्षेत्रों में विचरण कर रहे हैं। जसपुर वनमंडल के कुनकुरी, पत्थलगांव और कांसाबेल में हाथियों की कुल संख्या 34 है। ये नारायणपुर, जामचुआ, बिलासपुर, चरईमारा, रानी कोम्बो, खड़ामाचा, पीठा आमा, राजा आमा, झिमकी, चट्टान पारा, कुदरा झरिया, साजा पानी, सुनार पहरी, तीता पाकेर के वन क्षेत्रों में विचरण कर रहे हैं। धर्मजयगढ़ वन मंडल के छाल, धर्मजयगढ़, बाकारुमा, बोरो और कापू में हाथियों की कुल संख्या 75 है। ये सामहर सिंघा, नागदरहा, सोखा मुड़ा, बोजिया, पुरुंगा, बनहर, औरानारा, बेहरामार, लोटान के वन क्षेत्रों में विचरण कर रहे हैं। गढ़घोरा वन मंडल के एतमानगर, जडगा और केंदई में हाथियों की कुल संख्या 50 है। ये कुदवारी, सलिहा भाटा, बांधापारा, लालडी, झुनकीडी, जुनवानी, कुकरी कादर, फुलसर के वन क्षेत्रों में विचरण कर रहे हैं। कोरबा वनमंडल के करतला में हाथियों की कुल संख्या 8 है। ये चारमार, मधवानी, जोगीपाली, बड़मार के वन क्षेत्रों में विचरण कर रहे हैं। रायगढ़ वनमंडल के रायगढ़ और घरघोड़ा में हाथियों की कुल संख्या 53 है। ये छर्रा टांगर, बंगूरसिया, जुनवानी, कशडोल के वन क्षेत्रों में विचरण कर रहे हैं। अचानकमार टाइगर रिजर्व के अचानकमार में हाथियों की कुल संख्या 4 है। ये सरई पानी के वन क्षेत्रों में विचरण कर रहे हैं। बलौदा बाजार वन मंडल के कोठारी में हाथियों की कुल संख्या 30 है। ये ताल दादर, पकरीद, नवागांव, कोठारी के वन क्षेत्रों में विचरण कर रहे हैं। उदंती सीता नदी टाइगर रिजर्व के कुल्हाड़ी घाट में हाथियों की कुल संख्या 28 है। ये ओड़, अमलोर, ताराजह, डडई पानी, बुडार, सिहार, छिंदौला, लूठापारा, नारी पानी, डूमर घाट, कोदोमाली, मासूल खोई के वन क्षेत्रों में विचरण कर रहे हैं। दोस्तों, गांव के बाहर या वन क्षेत्रों से लगे एकल कच्चे मिट्टी के मकानों में रात्रि विश्राम बिल्कुल ना करें। आइए सुनते हैं प्रसिद्ध क्रिकेटर और ब्रांड एम्बेसडर अनिल कुंबले जी का ये संदेश।
1: नमस्कार दोस्तों, मैं अनिल कुंबले बोल रहा हूँ। यदि हाथी गांव के आसपास दिखे तो तत्काल वन विभाग को सूचना दे। जंगल के किनारे एकांत घरों में रहने वाले लोग पक्के स्कूल या पक्के घरों में चले जाएं। हाथियों के लिए जंगल का रास्ता खुला छोड़ दे। हाथियों की जानकारी के लिए सुनते रहे हमर हाथी हमर गोट।
2: अभी आप सुन रहे थे सीएफ वन विभाग सरगुजा द्वारा प्रायोजित कार्यक्रम हमर हाथी हमर गोट। आकाशवाणी का ये बिलासपुर केंद्र है। लीजिए अब सुनिए प्रायोजित कार्यक्रम किसान वाणी। किसान वाड़ी सुनैया जम्मो संगवारी भाई बहनी मल्ला फुलुआ बहनी के माया भरे राम राम जय जोहार। औ संगी हुआ, का हाल चाल है? देखते देखत जून के महीना आगे संगी हुआ। सूरज देवता के तपनहार बहुते जनावत हवय मनखे मन बर, और यही तपनहार धरती दाई मा दर रहन देहे है। यही भूइया के जोताई हमार चतुरा किसान भाई बहनी मन जोताई करके छोड़ देते भुइया ला, और जम्मो जीवाड़ी जन कीटाणु है इन मन घाम मा जर के नष्ट हो जाते मर जाते। ए प्रकार ले खरी फसल के तैयारी हमर किसान भाई बहनी मन करते। मानसून आए के पहली खेत मन मा गोबर के सड़े खातू ल घलौ बगरा देना चाहिए। अब ओ दिन ज़्यादा दूरिया नहीं है संगी हुआ जेखर अगोरा रहीस। अब आप मन कहिया काखर अगोरा रहीस, तो आप मन जम्मो झन जाना थावा 15 जून के मानसून आए के समय रही थे। और मानसून आए के पहली हमर किसान भाई बहनी मन अपन खेत खार के बढ़िया तैयारी करके रखते। खेत के बुआई के समय ओखर पहली संगी हुआ खेत के बुआई के पहली हमन यही घेरी बेरी बात करथन के बीजा ला उपचारित करके बुआ उपचार

0: उपचारित करे बीजा ह बढ़िया रथे। उपचारित हो जा रथे तो ओमा रोग राई नहीं संचराय। उपचारित करे के कैठन विधि संगी हुआ, रासायनिक विधि, जैविक विधि, प्राकृतिक दवाई ले बीजा मन ला उपचारित करके आप मन कर सकत हा, जेखर ले फसल म शुरुआत म रोग राई कीट व्याधि ले बचाव होते, पौधा के अंकुरण म बढ़वार और फसल के पैदावार में बढ़ोतरी हो जाते। बीजा उपचार के महत्व ल बहुत अकन है और एखर ले बहुत लाभ घलोक है। बीज मन ल फफूंद और बैक्टीरिया जनित रोग ले सुरक्षा होते। उपचार करे में अंकुरण और पौधा के शक्ति घलोक बढ़ते और बढ़िया ढंग ले फसल में सुधार होते। शुरुआत में फसल ल हानि के जोखिम कम रही थे, जेखर ले कीटनाशक के उपयोग कम होते संगी हुआ। और बीज उपचार कई प्रकार के होते संगी हुआ, जैसे भौतिक उपचार, सूखा बीजा ला गरम करना, गरम पानी के उपचार, गरम हवा के उपचार, रासायनिक उपचार, राइजोबियम कल्चर ले उपचार, पीएसबी कल्चर ले घलोक उपचार करके आप मन बीजा ला बढ़िया रख सका था। भौतिक उपचार के बात करबो त संगी हुआ, बीज ल कम समय पर उचित भंडारण करें। कोनो कोनो बीजा जनित रोग के जीवन चक्र छोटे होते, अगर बीजा ल उचित वायुमंडल, उचित दशा, कम तापक्रम, कम नमी और थोड़कन समय कम समय पर भंडारण करके बोए में रोग पैदा करैया कारक स्वयं अपन नष्ट हो जाते, समाप्त हो जाते। जैसन के बाजरा है, आगट है, मतलब 5 ले 8 माह में बुआई के समय पहली समाप्त हो जाते। यही पाए के ए बीजा ल बीजा के उचित भंडारण अवैया बच्छर में निश्चिंत हो के हमार किसान भाई बहनी मन कर सकत ही। सूखा बीजा के बात करबो त कोनो कोनो जैसे सूखा बीजा गरम करके, कोनो कोनो बीजा थोड़कीन समय में उच्च ज़्यादा ताप में रखे ले बहुत रोग कारक जीव ह मर जाते। ओमा पताल के मोजेक रोग 70 डिग्री तापमान में 3 दिन रखे में रोग ह खत्म हो जाते, समाप्त हो जाते। ए प्रकार ले संगी हुआ ह आप मन ह बीजा उपचारित करा। और पीएसबी कल्चर ले जैसे उपचार करिया तो 5 ग्राम पीएसबी कल्चर प्रति किलो बीज के दर ले प्रयोग करें। ए उपचारित बीजा ला बोए ले पैदावार बढ़ते, उर्वरक के लागत घलौ कम हो जाते। बीज अंकुरण क्षमता हमारे किसान भाई बहनी मन ला पता होना चाहिए के बीज अंकुरण के क्षमता कामा ज़्यादा है कामा नहीं है। आप मतलब देख के जान डरना चाहिए संगी हुआ के ए बीजा है बढ़िया जल्दी अंकुरण होते, तो क्षमता जाने के बाद ही बीजा के निर्धारण करना चाहिए संगी हुआ। और हमारे किसान भाई मन ला तो अनुभव रहबे करते, तो जेन बीजा अच्छा है और वही बीजा ला आप मन हा बीजा उपचारित करके बढ़िया आप मन हा बुआई करिया। और संगी हुआ देखा खेत बचाओ, हमर किसान भाई बहनी मन हा जम्मो झन जानत हवा बछर म बरसों हो गए है रसायन के उपयोग करत और करत करत भुइयां हर पठरी आ गए है, जेन उपजाऊ क्षमता है वो हर कम हो गए है। त अब आप मन ला सचेत हो के भुइयां के उर्वरा शक्ति ला बनाए रखे बर, माटी के सुधार करे बर जैविक और प्राकृतिक खेती ला अपना के आगू बढ़ना चाहिए। हमार देश के मुखिया घलाव हा के यही कहना है परंपरागत प्राकृतिक खेती ला करो, ए प्रकार ले भुइयां के सुधार हो है और लागत घलाव हर कम हो है आपन के। तसंगी हुआ खचित रूप ले आप मन हा खेत ला बचावा और भुइयां के सुधार करो। अब कार्यक्रम में आगू बढ़बो संगी हुआ, बात करबो देखा बहुवर्षीय सब्जी फसल के उन्नत खेती आज के भेंटवार्ता में है। तो एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, बहुत बछर तक ये सब्जी फसल के उन्नत खेती कर सकत हैं। और जानकारी देते हैं श्री सतीश वर्मा, वरिष्ठ वैज्ञानिक एवं प्रमुख कृषि विज्ञान केंद्र मुंगेली के। अब इकलंग बढ़िया गोट बात करत है हमार नंदू भैया है, तो आवा सुनिन ये भेंट वार्ता ला।
1: संगवारी हो आज के भेंट वार्ता क्रम में आप मन भर बढ़िया जानकारी लेके आए हवन, जेकर विषय हवे बहुवर्षी फसल के उन्नत खेती के बारे में हवे। और हमार बीच में पहुना मन हवाओ आप मन श्री सतीश वर्मा जी, वरिष्ठ वैज्ञानिक एवं प्रमुख हो कृषि विज्ञान केंद्र मुंगेली ले। तो सर जी आप मन के जय जोहार, राम राम, स्वागत हवे।
2: जय जोहार।

0: गोठ बात हमन शुरू करबो सर, जउन बहुवर्षीय साग सब्जी होते तो कोन कोन फसल में आते एला संगवारी मन ला बताओ।
1: बहुवर्षीय में दो ही सब्जी है, कद्दू वर्गी कुल की है, एक कुंदरू है
0: जी
1: और दूसरा परवल। छत्तीसगढ़ में बहुतायत मात्रा में या व्यवहारिक रूप में या व्यावसायिक उपयोग में कुंदरू की बहुत अच्छी खेती करते हैं। छत्तीसगढ़ का मौसम कुंदरू और परवल की खेती के लिए बहुत ही उपयुक्त है
0: जी। बढ़िया जानकारी बताया हो सर जी। आओ जानबो के जलवायु और भूमि जौन हवे तो कौन प्रकार ले एहर उपयुक्त होते हमार बहुवर्षीय फसल बर, यहुल बताओ सर।
1: हाँ, इसके लिए हमारा जो छत्तीसगढ़ है, बिलासपुर संभाग है, जहाँ गर्म और आर्द्र जलवायु का मौसम होता है
0: जी,
1: इस फसल की खेती के लिए बहुत ही उपयुक्त है
0: जी,
1: क्योंकि हमारे यहाँ बहुत ज्यादा ठंड और पाले नहीं पड़ते हैं, इसलिए इसकी खेती हमारे संभाग में बहुत अच्छे तरीके से कर सकते हैं
0: जी।
1: बहुत ठंड के समय दिक्कत होती है कि फल में, मतलब पौधों में फल नहीं आता, बाकी हम 10 से 12 महीने तक फल ले सकते हैं
0: जी। बहुत बढ़िया जानकारी बताते सर जी मन। आओ हमन जानबो सर, कुंदरू की बात निकली से तो कुंदरू ला हमन तेलपरहा अमटहा भुंजिया बना के खाए में उपयोग करथन, जौन हमर शरीर पर अब बड़े सुघर माने जाते। तो संगवारी मने कर फसल के जौन प्रजाति हवाए तो कौन कौन प्रजाति ला लगावे तो बढ़िया होते, तो यू ला बताओ सर।
1: देखिए, कुंदरू की दो ही प्रजातियां छत्तीसगढ़ में इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय रायपुर के द्वारा निकाली गई है, उसमें एक है इंदिरा कुंदरू 5।
0: अच्छा।
1: और एक है इंदिरा कुंदरू 35। इंदिरा कुंदरू 5 जो फल है
0: जी,
1: उसका आकार छोटा होता है, गोलाकार होता है
0: जी,
1: और लगभग 4 से 4.5 सेंटीमीटर लंबा होता है। और एक पौधों में कम से कम 23 से 25 किलो तक इससे उत्पादन ले सकते हैं
0: जी।
1: मतलब जो गोलाकार किस्म है या जो छोटा फलदार फल वाली फसल है, किस्म है, उससे ज्यादा उत्पादन ले सकते हैं
0: जी।
1: और दूसरा जो किस्म है इंदिरा कुंदरू 35, इसका जो फल होता है लंबा होता है, उसका 4.5 सेंटीमीटर था, इसका 6 से 6.5 सेंटीमीटर लंबा होता है
0: जी,
1: है ना। ये भी गहरे हरे रंग का होता है, लेकिन इसमें सफेद धारियां होती है, और इससे कम से कम 20 से 23 किलो तक फल आसानी से प्राप्त कर सकते हैं। और पूरे देश में भी ये दो किस्मों का ही चलन है
0: जी। बहुत बढ़िया जानकारी बताया हो कुंदरू के बारे में। परवल सब्जी के गोट बात निकली से सर, तो कौन किस्म हर उपयुक्त हवा एला बताओ।
1: परवल भी व्यवसायिक रूप से आजकल किसान भाई कर रहे हैं हमारे यहाँ
0: जी,
1: तो इसमें जो 3 किस्में हैं छत्तीसगढ़ के लिए उपयुक्त है, एक राजेंद्र परवल 1 नंबर है, और दूसरा राजेंद्र परवल 2, और तीसरा एक किस्म है स्वर्ण रेखा। स्वर्ण रेखा और स्वर्ण अलौकिक, ये 4 किस्मों का चयन किसान भाई व्यावसायिक रूप से अगर परवल की खेती करना चाहते हैं तो इसका उपयोग कर सकते हैं। इसमें से जो 2 किस्म है, राजेंद्र परवल, ये उत्तर प्रदेश से निकाली गई है, और स्वर्ण रेखा और स्वर्ण अलौकिक जो किस्म है बिहार से निकली गई है
0: जी। बढ़िया जानकारी बताया हो। एकर प्रबंधन कैसे करे संगवारी मन और काबर जरूरत पड़ते तेनोला बताओ सर।
1: दोनों जो किस्में हैं, दोनों जो फसल है, उसका प्रवर्धन हमेशा ध्यान रखे किसान भाई, बीज के द्वारा नहीं करना है अपने को, इसका प्रवर्धन करना है तने की कटिंग या कंदी जड़ जो होते हैं, जड़ की कटिंग से इसका प्रवर्धन आप आसानी से कर सकते हैं।
0: अच्छा।
1: कुंदरू का जहां तक अपन बात करें तो कुंदरू का जो तना होता है काफी मोटा होता है, तो उसके लिए कम से कम आपको 25 से 30 सेंटीमीटर लंबा तना की जरूरत पड़ेगी
0: जी,
1: जिसकी मोटाई 1 से 1.5 सेंटीमीटर के आसपास होती है
0: जी।
1: किसान भाई ध्यान ये रखें कि हर तने में, मतलब जो भी तना आप ले रहे हैं 25 से 3 सेंटीमीटर लंबा कुंदरू के लिए, तो उसमें कम से कम 3 से 4 गठान हो, है ना, और गठान का ऊपरी सिरा हमेशा जमीन से ऊपर होना चाहिए
0: जी।
1: अगर आप 2 गठान को जमीन के अंदर लगा रहे हैं तो बाकी जो 2 सिरा है वो ऊपर की ओर हो
0: जी,
1: अगर आप सीधे खेत में रोपित कर रहे हैं तो।

0: अगर कुछ किसान भाई क्या करते हैं कि इसको पॉलिथीन के पैकेट में लगाते हैं,
1: जी
0: है ना, क्योंकि इसमें कम से कम 6 से 7 सप्ताह लग जाता है नया पौध का तना आने में।
1: अच्छा
0: तो आप चाहें तो पॉलिथीन की सीट होती है, उसमें पॉलिथीन बैग जिसको बोलते हैं,
1: जी
0: बैग में भी आप लगा सकते हैं। बैग में गोबर की खाद और मिट्टी को अच्छी तरीके से भर दें। ध्यान ये रखें कि बैग के जो निचला हिस्सा है या साइड में पानी निकलने का रास्ता हो।
1: जी
0: अगर ज्यादा पानी हो रहे तो आपका पानी आसानी से निकल जाए, तो
1: जी
0: आप ऐसा करके भी लगा सकते हैं। तो उसमें 6 से 7 सप्ताह में नए जो पौध हैं या तना जिसको बोलेंगे वो तैयार हो जाता है। तो
1: जी
0: आपका कम से कम 1 से 1.5 महीने बच जाएगा। आप इसको सीधे रोपित करेंगे खेत में तो आपको 2 महीने बाद फल देना चालू हो जाएगा।
1: बढ़िया।
0: और सीधे खेत में आप लगाएंगे तो 3 से 3.5 महीने लगते हैं नया फल प्राप्त करने के लिए।
1: जी
0: और परवल की जहां तक बात है प्रवर्धन की, परवल का भी प्रवर्धन तने के कटिंग के माध्यम से किया जाता है,
1: अच्छा।
0: लेकिन इनकी जो तने हैं वो काफी पतली होती है ना, और कम से कम 90 से 100 सेंटीमीटर 1 मीटर लंबा तना का उपयोग करते हैं।
1: जी
0: और उसमें ध्यान ये रखते हैं, तने को गोल के आकार में मोड़ लेते हैं। उसके बाद जो दोनों सिरा है
1: जी
0: उसको भी जमीन से ऊपर की ओर रखते हैं।
1: जी
0: तो जमीन के अंदर जितने भी गोलाई में मुड़ा हुआ रहेगा तना, उसमें से नया पौध तैयार होते हैं।
1: जी
0: उसको भी आप पौधों को सीधे खेत में रोप सकते हैं। ये एक तरीका है, ये आसान तरीका है। अगर
1: जी
0: आप ज्यादा क्षेत्र में लगाना चाहते हैं तो ये तरीका सबसे व्यावसायिक या व्यावहारिक है। और दूसरा ये है कि आप सीधे खेत में रोपित कर दें, जैसे कुंदरू का हमने बताया है।
1: जी बढ़िया जानकारी बताया हो सर जी। संगवारी हो, आप मन सुना था बहुवर्षीय सब्जी के उन्नत खेती के बारे में डॉक्टर सतीश वर्मा जी से। वरिष्ठ वैज्ञानिक एवं प्रमुख हवाई कृषि विज्ञान केंद्र मुंगेली ले आप मन से गोट होवत थे। आओ जानबो आगू हमन सर के जौन रोपाई करे के विधि हवे, रोपण विधि, ये फसल में हमर संगवारी मन कैसे अपनावाए, इहू ला बताहू सर।
0: जैसा अपना चर्चा हो रही है कि ये बहुवर्षीय सब्जी है,
1: जी
0: आप एक बार आप लगा देंगे तो कम से कम 4 से 5 साल तक फल इसका आसानी से प्राप्त कर सकते हैं। तो रोपण के समय किसान भाई हमेशा ध्यान रखें कि रोपण की गड्ढा हमको तैयार करना है।
1: जी
0: गड्ढा की जो लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई है वो 1 फिट लंबा, 1 फिट चौड़ा और 1 फिट गहरा होना चाहिए, है
1: जी
0: ना। ये हमेशा किसान भाई ध्यान रखें। सीधे खेत में आप रोपेंगे तो जो जड़ है, जड़ का विकास काफी कम हो पाता
1: जी
0: है ना। तो आपको गड्ढे का जो हमने आकार बताया है उस आकार में कोशिश करें किसान भाई ग्रीष्म ऋतु में गड्ढे को तैयार कर लें। और ध्यान ये रखें, उस गड्ढे में 2 से 3 किलो गोबर की खाद, 250 ग्राम नीम की खली, ये आप डालेंगे तो उसमें जो दीमक होता है, चींटी है, इसका प्रकोप नहीं होता। और किसान भाई ये भी ध्यान रखें, रोपण के समय कम से कम 200 ग्राम DAP और 100 ग्राम पोटास प्रति गड्ढा एक बार डाल दें,
1: जी
0: तो ये आपको साल भर और कुछ डालने की जरूरत नहीं होगी, सिर्फ आपको यूरिया की जरूरत पड़ेगी।
1: जी
0: रोपण हमेशा ग्रीष्मकालीन है, गर्मी में करें, बारिश में आप गड्ढा नहीं कर पाएंगे,
1: जी
0: गड्ढा करने में दिक्कत होगी, तो ऐसा ही रोपण करें। और किसान भाई परवल का भी रोपण इसी तरीके से करना है। रोपण की दूरी दोनों की अलग अलग होती
1: अच्छा
0: है ना। कुंदरू बहुत ज्यादा फैलता है इसलिए रोपण की दूरी 3 मीटर बाई 3 मीटर में करते हैं, और परवल कम फैलता है, उसकी दूरी 2 मीटर कतार से कतार और पौध से पौध की दूरी 1.5 मीटर रखते हैं।
1: जी
0: किसान भाई हमेशा ध्यान रखें रोपण के समय परवल में खासकर, कि परवल की जो पौध है उसमें नर फूल वाले पौधे और मादा फूल वाले पौधे अलग अलग होते हैं।
1: जी
0: तो किसान भाई हमेशा ध्यान रखेंगे परवल में कि प्रति 9 से 10 परवल का जो मादा पौध आपने चयन किया है उसके बाद एक पौधा नर का जरूर लगाएं,
1: जी
0: जिससे उसमें परागण बहुत अच्छे से होता है और फल बहुत ज्यादा आता है। तो किसान भाई हमेशा ध्यान रखें परवल में कि जो भी आप कटिंग तैयार करें वो मादा पौधे का अलग हो और नर का अलग हो,
1: जी
0: है ना। नहीं तो अगर बीज से आप करेंगे परवल का, बीज से भी नया

0: पौधे तैयार कर सकते हैं, लेकिन उसमें नर पौधों की संख्या बहुत ज्यादा होती है।
1: जी
0: तो हमेशा कटिंग का उपयोग करें, तने की कटिंग का उपयोग करें और मादा पौधों का चयन करें।
1: जी बढ़िया बढ़िया जानकारी बताते सर जी मन। आओ आगू जानबो हमन सर, ढेखरा हवे के मंडप हवे के मचान है तो एकरो व्यवस्था कहो हमन कुंदरू लगाए हन तो के परवल लगाए हन तो करत हन तो बढ़िया रहते और जौन फसल के ओकर उत्पादन इतन हर ज्यादा बढ़ते। तो मचान के तैयारी बर कौन प्रकार की विधि ला अपनावे किसान भाई मन?
0: बहुत अच्छा प्रश्न है आपका, क्योंकि ये दोनों जो सब्जी है ये बेल वाली फसल है।
1: जी
0: बेल वाली फसल है तो आप जमीन के में कितना फैलाएंगे, आप फैलाएंगे तो आपका फल बहुत ज्यादा खराब होगा
1: जी,
0: है ना, मिट्टी से, पानी से, है ना, और चलने फिरने से। इसीलिए ये दोनों सब्जियों का व्यावसायिक उत्पादन हमेशा मंडप या मचान के माध्यम से किया जाता है, है ना, जिसमें हम उनके पौध को सहारा देते हैं
1: जी,
0: है ना। तो ये बहुत ही अच्छी विधि है और आपकी उपज 3 से 4 गुना बढ़ जाएगी
1: जी,
0: और आपका एक भी फल खराब नहीं होगा
1: जी।
0: तो किसान भाई मंडप का उपयोग करने के लिए जो अच्छे किसान हैं वो 35,000 से लेके 50,000 रुपए प्रति एकड़ खर्चा करते हैं मंडप बनाने के
1: अच्छा।
0: लिए, लेकिन एक बार आप मंडप बना लिए तो कम से कम 10 से 15 साल वो चलता है। तो किसान भाई कुंदरू और परवल की खेती मंडप के माध्यम से करें और दूसरा पानी के लिए ड्रिप सिंचाई का उपयोग करें
1: अच्छा।
0: तो आपका उत्पादन 3 से 4 गुना बढ़ जाएगा। मंडप के लिए ध्यान ये रखना है किसान भाई को, कम से कम 2 मीटर ऊंचाई के सीमेंट के खंबे या लोहे के खंबे का उपयोग किया जा सकता है
1: जी,
0: जिसका आधार जो होना चाहिए जो जमीन के अंदर रहेगा वो, अगर सीमेंट के खंबे का उपयोग कर रहे हैं तो 12-12.5 सेंटीमीटर लंबा और 12.5 सेंटीमीटर चौड़ा इस खंबे का उपयोग करेंगे, सीमेंट वाला अगर आप उपयोग कर रहे हैं तो
1: जी,
0: जिसका निचला हिस्सा ज्यादा हो और ऊपर जो है 10x10 सेंटीमीटर का हो। और ध्यान ये रखें किसान भाई कि सीमेंट वाले खंबे में या लोहे वाले खंबे में उसमें ऊपर की ओर एक लोहे का रॉड हो या छड़ हो
1: जी,
0: जिसमें आप एक दूसरे से मचान को तार के माध्यम से बांध सकें
1: जी,
0: है ना। तो ये 2-3 चीजों का ध्यान रखना पड़ता है किसान भाइयों को। तो ये मंडप का उपयोग करने से कम एक बार आपने मंडप का उपयोग कर लिया तो 10 से 15 साल उसमें आप खेती कर सकते हैं
1: जी। बढ़िया जानकारी बताया हो सर जी। सिंचाई की बात आते तो पानी के बड़े महत्व रहते हर फसल में, ड्रिप सिंचाई की विधि हवा के स्प्रिंकलर है ओकर द्वारा बढ़िया से सिंचाई कर सकते, तो एमा कैसे सिंचाई की व्यवस्था करे इहुला बताओ सर।
0: देखिए कुंदरू की फसल जो है ये 2 पौधों के बीच की दूरी या परवल में 2 पौधों के बीच की दूरी काफी ज्यादा होती है
1: जी,
0: इसलिए आप स्प्रिंकलर से सिंचाई करना तो शुरू की अवस्था में आप कर सकते हैं जब जैसे पौधे लगाए तो ये तो जैसे ही पौधे बढ़ेगा तो स्प्रिंकलर का उपयोग नहीं हो सकता, और हमारा अगर मंडप लगाए हैं तो भी नहीं कर सकते
1: जी।
0: इसका सबसे अच्छा उपयोग ड्रिप के माध्यम से सिंचित किया जा सकता है
1: जी,
0: और पौधों से पौधों की दूरी काफी ज्यादा होती है इसलिए आप जहां पौध हैं वहां पर आप ड्रिपर का उपयोग करें, और किसान भाई एक बार लगा देते हैं तो उसमें 10 से 15 साल तक चलता है। तो मैं तो सलाह दूंगा किसान भाई को ड्रिप के माध्यम से ही आपको सिंचाई करना पड़ेगा अगर व्यावसायिक खेती कर रहे हैं तो
1: जी। बहुत उपयोगी जानकारी बताया हो सर जी। रोग राय के घलाव फसल में देख रेख करे पर पड़ते, कीड़वा मकोड़ा हर आ जाते जेकर ले फसल नुकसान होते, तो कुंदरू और परवल के फसल में कौन प्रकार के चेत रखे किसान भाई मन एला बताओ सर।
0: इसके पहले मैं एक बार कटाई छटाई के बारे में भी बात करना चाहूंगा
1: जी,
0: क्योंकि ये बहुवर्षीय सब्जी है इसमें कटाई छटाई भी बहुत ज्यादा जरूरी है
1: जी।
0: तो कुंदरू की आप कटाई और छटाई तब करेंगे, कुंदरू कम से कम छत्तीसगढ़ में 9 से 10 महीने तक फल देता है
1: जी,
0: तो 10 महीने तक आपको फल लेना है तो आप हमेशा ध्यान रखें जब फलत स्थिति में होगी तब आपको कटाई छटाई नहीं करना है। परवल में भी ये यही करना है
1: अच्छा।

0: लेकिन इसमें 2 महीना कुंदरू और परवल में 2 महीना ऐसा होता है जब पौधा सुषुप्ता अवस्था में आ जाता है,
1: जी
0: उस समय फलन पूरा बंद हो जाता है,
1: जी
0: पौधा सुषुप्त हो जाता है, पत्तियां सब मुरझा के गिर जाती हैं, उस समय आपको कटाई करना है, छटाई
1: जी
0: करना है। तो हमेशा ध्यान ये रखें परवल या कुंदरू में कि आपकी जो मचान लगाए हैं वो 2 मीटर ऊंची लगाए हैं,
1: जी
0: तो आपका जो बेल है 2 मीटर ऊंचा चला गया है, मचान के पास चला गया है ना। तो मचान के पास जाने के बाद जो और शाखाएं निकलती है उसकी कटिंग करना है आपको, कटाई छटाई करना है। ध्यान ये रखना है कटाई छटाई करते समय चारों दिशाओं में तने को बढ़ने दे,
1: जी
0: जिससे जो फल होते हैं वो चारों दिशाओं में आएंगे, तो ये ध्यान रखना है। और ठंड के समय में छत्तीसगढ़ में और बिलासपुर संभाग में हमारे यहाँ दिसंबर और जनवरी 2 महीना होता है जब ठंड ज्यादा होती है,
1: जी
0: उसी समय आपको कटाई छटाई करना है।
1: बहुत बढ़िया जानकारी बताया हो सर जी। आज के हमर जोन विषय रहिज बहुवर्षीय फसल के उन्नत खेती के बारे में रहिज। संगवारी हो हमर बीच में पहुना में रहिज श्री सतीश वर्मा जी, वरिष्ठ वैज्ञानिक एवं प्रमुख हो कृषि विज्ञान केंद्र मुंगेली मा। आप मन अपन अमूल्य समय दियाओ और बढ़िया जानकारी बताया हो, एकर बार धन्यवाद। जय जोहार सर।
0: जय जोहार।
2: अभी सुनेन भेंट वार्ताला, विषय रही से बहुवर्षीय सब्जी फसलों की उन्नत खेती। जानकारी देत रहिन श्री सतीश वर्मा, वरिष्ठ वैज्ञानिक एवं प्रमुख कृषि विज्ञान केंद्र मुंगेली के। इनका लंग बढ़िया गोट बात करत रहिन है नंदू भैया। अब कार्यक्रम में आगू बढ़बो संगे हुआ, सुनबो ए संदेश ला।

0: मैंने 2015-16 से ऑयल पाम की खेती की है और इससे पर्यावरण को कुछ नुकसान है नहीं। और इनका जो पेड़ पौधा होता है इनसे हम मल्चिंग भी यूज करते हैं और इनका यूज से हम काफी सारा जमीन में नमी लेते हैं और इनके अंदर इंटरक्रॉप जो है जो कपास वगैरह लगाते हैं तो हम डबल गुण आय लेते हैं और अच्छा रहता है।
1: ऑयल पाम का खेती में धान और गन्ने से कम पानी लगता है। इसमें गवर्नमेंट का तरफ से ड्रिप सिंचाई के लिए पैसा भी दिया जाता है।
2: ऑयल पाम का खेती के लिए मुझे सरकार ने पौधे सीडलिंग देते हैं, वो जब बड़ा हो जाता है जो फल जो देता है हर महीने सरकार उसी फल खरीदने के लिए एक रेट बना कर देते हैं, वही रेट पे कंपनी खरीद लेते हैं। मैं काट के खट्टा कर देता हूँ, कंपनी उठा के लिए जाते हैं।
3: अरे सुन तो।
4: मुझे क्या सुनाना चाहते हो? जो सुनाओ मेरी सौतन को।
3: किसको?
4: अरे वही तुम्हारा मोबाइल फोन जिसे सुबह शाम दिन रात चिपके रहते थे और कहते थे किसान कॉल सेंटर से बातें हो रही हैं।
3: अच्छा ये बात है?
4: हाँ क्यों, क्या हुआ, अब बात नहीं होती क्या?
3: अब तो झट से बात हो जाती है।
4: ऐसा क्या?
3: हाँ अब तो ज्यादा लाइनें और खास तकनीक के कारण खेती के माहिरों से तुरंत बात हो जाती है। और अगर कभी लाइन व्यस्त हो तो अपनी समस्या फोन पर रिकॉर्ड करा दो, वहाँ से फोन आ जाता है और समस्या की हल्का मैसेज भी आ जाता है। ये देखो आ गया।
4: अरे वाह, इसका मतलब इंतजार की घड़ी अब खत्म।
3: हाँ।
4: तभी मैं सोचूं कि आजकल मुझ पर इतना प्यार क्यों आ रहा है।
5: कृषि संबंधी समस्याओं का अपनी भाषा में तुरंत हल पाने के लिए पूरे भारत में किसी भी फोन से हेल्पलाइन नंबर पर संपर्क करें, किसानों का दोस्त किसान कॉल सेंटर।
6: क्या कर रहा है इधर इधर इधर? हम बोल रहे हैं तेरे बिजू का।
7: पुतला बोल रहे?
6: पक्षियों से तो हम खेत को बचा लेते हैं पर इन घातक रसायनों से कैसे बचाएं?
7: मतलब?
6: देख बेटा, तू जो ये अंधाधुन रसायन मिलाता है ना, मिट्टी की सेहत बिगड़ने लगी है और जब माटी ही कमजोर पड़ जाएगी तो उपज कैसे सेहतमंद होगी? अरे पहले ऐसा नहीं था, पूछना अपने बड़े बुजुर्गों से कैसे फसल लहलहाती थी, शुद्धता झलकती थी, माटी भी तंदुरुस्त और लोग भी। अरे पहली वाली बात कहाँ,
7: परम तो सभी डाले हैं।
6: सब नहीं, आज भी लाखों जागरूक किसान परंपरागत विधि से फसल उगा रहे हैं, खर्चा कम और उपज की कीमत भी बेहतर पा रहे हैं।
7: सच है?
6: रे बेटे एक्सपीरियंस से बता रहे हैं, धूप में बाल सफेद नहीं किए हैं।
7: ठीक है भाई, मैं भी आज से जैविक खेती शुरू करूंगा।
8: माटी से प्रेम की परंपरा है। परंपरा

ए सुघ्घर गीत लगात रहिन भीम यादव नीलिमा जैन मन। और अधिकतम आज के अधिकतम तापमान रही से 41 डिग्री सेल्सियस और कम ले कम न्यूनतम 31 डिग्री सेल्सियस संगी हुआ। और मंडी भाव के बात करबो तो लिमाऊ 6,100 रुपया के भाव रही से कुंटल मा, कुंदरू 1200, रमकेरिया 3500। अब घर जाए के बेरा हो गए संगी हुआ। दया मैला अपन हृदय में राख के फुलवा बहनी ला देवा विदा। घर जाए के जम्मो कार्यक्रम सुनैया भाई बहनी मल्ला मया भरे राम राम।

अभी आप सुन रहे थे प्रायोजित कार्यक्रम किसानवाणी। आकाशवाणी का ये बिलासपुर केंद्र है। अब लीजिए सुनिए फरमाइशी फिल्मी गीतों का कार्यक्रम। ईमेल करें गीत सुने, ईमेल करें गीत सुने कार्यक्रम में आप सभी श्रोताओं का स्वागत है। स्वीकार कीजिए रत्ना का नमस्कार। चलिए कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं फिल्म नूरी के इस गीत से। आवाजें हैं लता मंगेशकर, नितिन मुकेश की, शब्द हैं जानिसार अख्तर के, संगीत है खयाम का और पसंद है आप सभी श्रोताओं की। बुचो कैचिया बठिंडा से हैं, परम सिंह जोड़ा, मनजीत कौर, करणवीर करण, दपिंदर वरिंदर, सिमरन एकम, दमन और अभिजोत। पथरिया भरेवा से चंदूलाल सिंगरौल, नारायणी नोमेश, नेहा वान्या। मोहाली चंडीगढ़ से टीडी मल्होत्रा, ऋतिक प्रतीक मल्होत्रा, अनिल शर्मा, जयवीर सिंह और अमनदीप। दिल्ली से अजीम वकार, माहिरा अजीम, जेबा अजीम। आकार हाइट्स बहादुरा नगर नागपुर से हैं वैशाली, शैलेश गवाड़कर, श्वेता, सुमित ध्वनिपरी। मेहरनगर उमरखेड़ महाराष्ट्र से हैं अभिजीत गवाड़कर, सरिता, प्रणीता, सिद्धांत, प्रिंस और एकांश। नरवेल महाराष्ट्र से पीएस नावकर, निर्मला और विशाल। ग्राम उच्च भट्टी से मुकेश गोस्वामी, मधु आशीष, शिवन्या गोस्वामी। गोगावा जिला खरगोन मध्य प्रदेश से उस्मान खत्री, रिजवान अब्दुल गफ्फार खत्री। दरियापुर बावली से गजननीयले, नवदीप, विश्वदीप और अशोक केले। रिंगनी से दिनेश वर्मा, करुणा वर्मा। बाड़ापारा से विष्णु साहू, पूरब वीरा, हर्ष कुमकुम, योगेश्वरी। गुजरात से हैं प्रवीण सोनी, पूजा पायल और जगदीश जौहरी। चलिए सुनते हैं आप सभी की पसंद पर फिल्म नूरी का ये गीत।

फिल्म नूरी के इस गीत के बाद आइए सुनते हैं, ईमेल करें गीत सुने कार्यक्रम में अगला गीत पसंद है आप सभी श्रोताओं की। सौंगा मगलोड से हैं फनेश कुमार चंदन, सावित्री देवी, मोहित देवी।

देविका रानी, गजेंद्र कुमार, पार्थ और हेयांश चंदन। पलारी से हैं नितेश कुमार देवांगन, दुर्गा प्रसाद, पराग टेलर, पुनाराम और कृष्णा देवांगन। धनौरी तेलीवाला से हैं निसार सलमानी, नौशाद आलिया आयान। कोयलारी कवर्धा से कैलाश चंद्राकर, मुकुंद पूर्णेंद्र, साहिल। खंडवा से अब्दुल हगडावर, अब्दुल गफ्फार और उनका पूरा परिवार। नेपानगर

खंडवा से अब्दुल हक डावर, अब्दुल गफ्फार और उनका पूरा परिवार। नेपानगर मध्य प्रदेश से हैं सुदर्शन शाह, पल्लवी, प्रखर, कुशल, नीति, सुरभि, अश्विन, मंगलाबेन, राजेंद्र शाह। पटियाला से मुकेश बत्ता, नीलम बत्ता। भिलाई से मुकेश शर्मा, सरिता शर्मा, गौरव और गरिमा। हांसी से राजू मिगलानी, बब्बू डब्बू, बबीता, सुभाष योगी। बिलाईगढ़ से खिकराम देवांगन, रेनू, रजनी, प्रियंका। पाकुड़ झारखंड से उत्तम कुमार भगत, श्वेता, किसु, तासु, अर्णव आनंद, सत्यमानंद। मामूलवाड़ी महाराष्ट्र से सोपान तायडे, वसंतराव भोजने, निवृत्ति आडोकर। मदनपुर से श्रवण कुमार साहू, योगेश और राहुल। चंडीगढ़ से टीडी मल्होत्रा, ऋतिक, प्रतीक, अनिल, अमनदीप, जयवीर। लोरमी चचेड़ी से शंकर कोलाम, संतोषी, संजय, संध्या, शिवम। चलिए सुनते हैं आप सभी की फरमाइश पर फिल्म हाथी मेरे साथी का गीत। आवाजें लता मंगेशकर, किशोर कुमार की, आनंद बख्शी के लिखे इस गीत को संगीतबद्ध किया है लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने।

0: अरे गोपाल, जा तो सब्जी बाजार से नींबू और मिर्ची लेकर आना।
1: क्या बात है मालिक, आज आप नींबू और मिर्ची क्यों खा रहे हैं?
0: अरे पगले, खाने के लिए नहीं, दुकान में लगाने के लिए मंगवा रहा हूँ। तू तो देख रहा है, दिन भर बैठकर मक्खी मारता हूँ, 10 ग्राहक भी दुकान में नहीं आते।
1: आएंगे कैसे मालिक, हमारी दुकान का ठीक से प्रचार भी तो नहीं हो रहा है। मेरी मानिए तो आप भी अपनी दुकान का प्रचार आकाशवाणी से करवाइए, फिर देखिए हमारी दुकान में भी ग्राहकों की भीड़ लगेगी।
0: गोपाल, आज पहली बार तूने अक्लमंदी की बात की है रे।
1: क्यों नहीं मालिक, रेडियो जो सुनता हूँ।
2: अपनी दुकान, व्यापार या सेवा का प्रचार रेडियो से करवाइए। विज्ञापन बुक करने आकाशवाणी आइए। ऑडियो विजुअल और मीडिया में रुचि रखने वालों के लिए एक अच्छी खबर, अब मोबाइल और टीवी में डाउनलोड करें वेव्स ऐप। मुंबई में विगत दिनों संपन्न वर्ल्ड ऑडियो एंड विजुअल समिट वेव्स के बाद सूचना और प्रसारण मंत्रालय भारत सरकार द्वारा 26 भाषाओं में जारी किया गया है वेव्स ऐप, जिसमें उपलब्ध हैं फिल्में, भारतीय संस्कृति की जानकारी, संगीत, गेम्स, एनिमेशन, समाचार, स्टोरी टेलिंग, बच्चों के कार्यक्रम सोप ओपेरास, सीरियल जैसे अनेक कार्यक्रम उपलब्ध हैं वेव्स ऐप। आज ही डाउनलोड करें वेव्स ऐप और बढ़ाइए मीडिया से संबंधित अपना ज्ञान। ज्ञान का भंडार है, संभावनाएं अपार हैं। मोबाइल और टीवी में डाउनलोड करें वेव्स ऐप।

मिलकर साथ में सबको, हर किसी को साथ लाना है, सभी अपराधों को खत्म करने को, बस हमें चेतना जगाना है। महिलाओं पर अत्याचार और बाल मजदूरी, ये सब बस बन जाए इतिहास। नशे की लत और सड़क दुर्घटनाओं से ना हो अब किसी जीवन का नाश।

इन संदेशों के बाद आइए आगे बढ़ते हैं, ईमेल करें गीत सुनी कार्यक्रम में और सुनते हैं अगला गीत आप सभी की पसंद पर। जगरां से हैं सुनील पाठक, कमल पाठक, दीपिका मल्होत्रा, गव्या सुच्चा सिंह पाठक। बीकानेर से ही हैं सुरेंद्र सुराणा, कांतिलाल, शरद मयंक, विमल अभाड़ी, लालेंद्र, होलेंद्र, आचार्य रोनी जैन, प्रमोद दम्भाड़ी। पदमपुर श्री गंगानगर राजस्थान से मेहर अरोड़ा, कीर्ति भूमिका और ममता। चिरमिरी कुरासिया कालरी से इंद्रभान सिंह, अनुभव ऋषभ, राम सहोदर, नारायण प्रसाद लहरे, दिनेश प्रसाद कालिंद्री। सावतपुर से हैं ऋषि सेन, रितेश, कंचन और माही। दिल्ली से सुमित्रा देवी, सोनिया, आयशा रानी। दिल्ली से दिलावर खान, हसीना बानो, एलिजा नायाब। राजकोट से जूली, जगदीश गुजराती, प्राची, प्रवीण पुजारी। हिंगोली महाराष्ट्र से हैं शाहजी बोर्ड के नंदा हनुमान, उत्तम जमदाड़े। वाशिम महाराष्ट्र से विठल सुरोशे, सुषमा परिधि, मायरा। यवतमाल से पंजाब रामटेके, यशोधरा, श्राव्या। महाराष्ट्र से रुपेश संघई, महेश, प्रज्ञेश, प्रितेश। बड़ीखेड़ा पंजाब से मिंटू थॉमस, पिंकी लवली, आरती अरोड़ा। भलारी से प्रकाश वर्मा, निखिल, प्रिंस यशस्वी। सनावद मध्य प्रदेश से हैं दिलीप मालाकार, सुनीता, मुस्कान और योगेश मालाकार। चलिए सुनते हैं आप सभी की पसंद पर फिल्म दुश्मन का ये गीत। आवाजें हैं किशोर कुमार, लता मंगेशकर की, आनंद बख्शी की रचना है, लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का संगीत।

आइए अब सुनते हैं, ईमेल करें गीत सुने कार्यक्रम में अगला गीत पसंद है आप सभी श्रोताओं की। दिल्ली से हैं सोनम सना अदीबा, महाराष्ट्र से सिद्धार्थ गुरनानी अर्चना प्रणय प्रसिद्धि महेश राम टेके, तखतपुर से मिश्रीलाल विश्वकर्मा मीरा देवी विशाल मानस और गंगा देवी, गुमला झारखंड से नजमुल होदा एस एम जावेद शगुप्ता अंजुम, देवरी भाटापारा से हैं के आर साहू आकाश कमलेश मुरली छत्री, ओंकारेश्वर से हैं सपना अंबिका अनीता चिंकी मिंकी पिंकी सैनी, देवरी भाटापारा से गनुलाल रजक अश्विनी वर्मा गणेश राम मिस्त्री, राजकोट से राजेश कृष्णा स्वाति और ख्याति कुमारी, बागबाहरा भदरसी से पन्नालाल सेन खुशबू तारा कौशल, पिपरिया से कमलकांत गुप्ता दीपा रिमझिम, नई दिल्ली से रविंद्र सिंह छाबड़ा इंद्रजीत कौर स्वीटी, दिल्ली से तुलसी मस्किन वीना आशीष राजा चैतन्य, डोंगरगांव से राष्ट्रपाल गजभिये राधिका अनिष्का तन्मय, बुलढाणा वटशिंगी महाराष्ट्र से हैं अमोल मानकर शोभाताई दीपाली और श्लोक, भिवानी से हैं कृष्ण मेहरा कोमल किरण कपिल कुणाल मेहरा। चलिए सुनते हैं आप सभी की पसंद पर लता मंगेशकर और मनहर की आवाजों में फिल्म अभिमान का ये गीत। मजरूह सुल्तानपुरी के लिखे इस गीत को संगीतबद्ध किया है एच डी बर्मन ने।

0: फिल्म अभिमान के इस गीत के साथ ही ईमेल करें गीत सुने कार्यक्रम बस यहीं तक। इस कार्यक्रम का आनंद आप ले सकते हैं 6:20 पर और शाम 7 बजे भी। आकाशवाणी का ये बिलासपुर केंद्र है। 6:05 हो चुके हैं, लीजिए सुनिए कार्यक्रम विवरण। कार्यक्रम विवरण में पहले हम जानकारी देंगे आज के शेष कार्यक्रमों के बारे में। 7:10 पर हम आज आकाशवाणी दिल्ली से रिले करेंगे केंद्र सरकार के 12 साल पूरे होने के उपलक्ष्य में विशेष श्रृंखला, विषय होगा युवा शक्ति। फरमाइशी फिल्मी गीतों का कार्यक्रम ईमेल करें गीत सुने का प्रसारण किया जाएगा 6:20 पर और शाम 7 बजे। रात 8 बजे पेश किया जाएगा सुगम संगीत जिसमें आज की कलाकार होंगी राधिका चोपड़ा। 8:15 पर आप आनंद ले सकते हैं कार्यक्रम रजनीकंधा का। विविध भारती के कार्यक्रम हम रिले करेंगे रात 9:15 पर। कार्यक्रम विवरण में आगे बढ़ने से पहले लीजिए सुनिए ये संदेश।
1: हेलो
2: राजेश जी, मैं पुलिस थाने से बोल रहा हूँ।
1: फिर से
3: आप डिजिटल अरेस्ट में हो, दूसरे कमरे में जाइए अकेले। आपके पार्सल में ड्रग्स मिले हैं, लंबे जाएंगे।
4: 10 लाख दीजिए, बच जाएंगे।
1: सर इतने कहाँ से?
4: एक लिंक भेजा है अभी प्रोसेसिंग के लिए।
3: 2 लाख भेजिए, बाकी बाद में।
1: 2 लाख
5: क्या हुआ पापा?
1: बेटा ये कह रहे हैं कि मेरे पार्सल में से ड्रग्स मिले हैं। काट दिया।
5: पैनिक मत कीजिए पापा, डिजिटल अरेस्ट जैसा कुछ नहीं होता है, ये सब फ्रॉड है।
1: फ्रॉड?
5: पुलिस, बैंक, RBI इत्यादि के नाम से आने वाले साइबर अपराधियों के फोन या वीडियो कॉल से सावधान रहें, उन्हें कोई पैसे ना भेजें और तुरंत पुलिस में रिपोर्ट करें। अगर समझदारी नहीं दिखाओगे
1: तो पैसे गवाओगे,
6: RBI कहता है।
7: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
0: कार्यक्रम विवरण में आगे बढ़ते हैं और अब डालते हैं नजर कल के प्रमुख कार्यक्रमों पर भी। कल सुबह 6:30 पर खेती की बात कार्यक्रम में जानकारी का विषय होगा पशुओं और एवं मुर्गियों में विटामिन ए का महत्व। सुबह 6:45 पर कल चिंतन का विषय

0: होगा, सत्य बोलो असत्य से बचो। सुबह 7:10 पर हम आकाशवाणी से रिले करेंगे आकाशवाणी की 90 वर्ष की स्वर्णिम यात्रा पर कार्यक्रम। 7:30 पर आप सुनेंगे प्रायोजित कार्यक्रम सेहत की बात डॉक्टर के साथ, संदर्भ होगा त्वचा रोग। इसके बाद 7:40 पर आनंद लिया जा सकता है सदाबहार नगमे कार्यक्रम का। सुबह 8:30 पर छत्तीसगढ़ी गीतों का फरमाइशी कार्यक्रम माटी के स्वर का प्रसारण किया जाएगा। कल सुबह 10:00 नन्हे श्रोता सुनेंगे अपना कार्यक्रम आओ बच्चों, इसमें सामूहिक चर्चा का विषय होगा अच्छे स्वास्थ्य की कुंजी सुरक्षित भोजन, और दूसरा विषय होगा महासागर पृथ्वी के सबसे बड़े प्राकृतिक खजाने। नए तराने कार्यक्रम आप सुनेंगे सुबह 10:30 पर। कल शाम 5:00 होगा प्रायोजित कार्यक्रम हमर हाथी हमर गोठ। कल शाम 5:05 पर ग्राम सभा कार्यक्रम में बेरा के गोठ का विषय होगा स्वस्थ अन्न के उत्पादन करबो। और आप मन के गीत कार्यक्रम में आप सुनेंगे फरमाइशी लोकगीतों का कार्यक्रम, ये क्रम होगा आप मन के गीत। ईमेल करें ये सुने कार्यक्रम का प्रसारण किया जाएगा कल शाम 5:35 पर, 6:20 पर और शाम 7:00। कार्यक्रम विवरण समाप्त हुआ। आकाशवाणी का ये बिलासपुर केंद्र है, 6:10 होने को है। छत्तीसगढ़ी में प्रादेशिक समाचार अब हम आकाशवाणी रायपुर से रिले करेंगे।
1: ये आकाशवाणी रायपुर है, अब आप छत्तीसगढ़ी में प्रादेशिक समाचार सुनेंगे।
2: ये आकाशवाणी रायपुर है, छत्तीसगढ़ी समाचार बुलेटिन के संग अभिषेक के जय जोहार। अब सुनाओ आज के प्रमुख समाचार। सुशासन तिहार में मुख्यमंत्री आज गौरेला पेंड्रा मरवाही जिला के निमधा गांव और शक्ति जिला के ठठारी गांव में लगाई जन चौपाल। राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग के अध्यक्ष साध्वी निरंजन ज्योति काली 7 जून के एक दिनी प्रवास में रही और भारतीय जनता पार्टी डहर ले पूरा प्रदेश में 21 लाख पौधा रोपे के बड़का अभियान शुरू करेगे है। अब समाचार विस्तार ले। सुशासन तिहार में मुख्यमंत्री व्यवसाय आज गौरेला पेंड्रा मरवाही जिला के निमधा गांव पहुंचिन और ग्रामीण मन ले भेंट करेन। ओमन ले बिजली राशन रद्दा दवाई पानी शिक्षा और आवास जैसन जरूरी सुविधा के बारे में विस्तार ले चर्चा करें। ए मौका में मुख्यमंत्री ग्रामीण मन के मांग ऊपर जिला में नर्सिंग कॉलेज निमधा गांव में मिनी स्टेडियम और मंगल भवन पर राशि स्वीकृत करे के घोषणा करें। यही गोट बात के दौरान राजस्व विभाग ले जुड़े एक शिकायत सामने आई जेमा मुख्यमंत्री संबंधित राजस्व निरीक्षक ला कड़ा चेतावनी देवत हुए साफ कहिन कि जनता के समस्या ला बेरा में निराकृत करो, नहीं तो कड़ा कार्रवाई पर तैयार रहो। मुख्यमंत्री बताइन जल्दी सीएम हेल्पलाइन शुरू करे जाही जेखर माध्यम ले लोगन मन टोल फ्री नंबर गाँव में घलो जन चौपाल लगाइन। ए गाँव में ग्रामीण मन के मांग ऊपर मुख्यमंत्री सहकारी बैंक खोले के घोषणा करेन। लोक निर्माण मंत्री अरुण साव रायपुर जगदलपुर रद्दा में केसकाल घाट 4 लेन बाईपास रूट के निरीक्षण करें। ओमन निर्माण एजेंसी ला बेरा में गुणवत्ता के संग काम ला पूरा करे के निर्देश दिन। 11 किलोमीटर ले ज्यादा लंबा ये रद्दा ला 308 करोड़ रुपया के लागत ले बनाए जावत है। ये बाईपास में 2 ठीन बड़का और 2 ठीन मध्यम पुल घलो बनी। श्री साव केसकाल ले सलना तक रद्दा ला मजबूत करे बर चलत काम के निरीक्षण घलो करें। श्री साव अपन कोंडा गांव प्रवास के दौरान जिला मुख्यालय में विभागीय अधिकारी मनसक बैठका करें और आने आने विकास काम के समीक्षा करें। बैठका में ओमन जिला के 3 नगरी निकाय कोंडा गांव केसकाल और फरस गांव में वर्षा ले पहली सबो तैयारी पूरा करने के निर्देश दिन और पिए के पानी के गुणवत्ता ल बनाए रखे बर सरलग जाँच करे बर घलो कहिन। श्री साव आज अपन जगदलपुर प्रवास के दौरान निर्माणाधीन नालंदा परिसर के संगे संग आने आने विकास काम के निरीक्षण करें और अधिकारी मन ले सबो कामला बेरा में पूरा करे के निर्देश दें। राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग के अध्यक्ष साध्वी निरंजन ज्योति काली

0: जून के रायपुर के एक दिनी प्रवास में रही। ओहा रायपुर में राखे गए पिछड़ा वर्ग संगठन के सामाजिक प्रगति चिंतन सम्मेलन में शामिल होई। एकर अलावा अधिकारी मन के एक ठिन बैठका में घलो शामिल होई। ए बैठका में मुख्य सचिव के संग राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग के प्रमुख सचिव घलो मौजूद रही। अपन प्रवास के दौरान ओमन राज्यपाल रमेन डेका और मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय संग शिष्टाचार भेंट करी। उन्हें भारतीय जनता पार्टी के पिछड़ा वर्ग मोर्चा के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष कृष्णा गौर हघलो रायपुर पहुंचे थे। पिछड़ा वर्ग मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष अशोक साहू बताएं कि श्रीमती गौर ह प्रदेश पदाधिकारी मन संग बैठका करी और संगठन पिछड़ा वर्ग के समाज के सशक्तिकरण और अवैया कार्यक्रम मन के बारे में मार्गदर्शन देही। भारतीय जनता पार्टी डहर ले पर्यावरण ल बचाए और संवारे बर एक बड़का पौधारोपण अभियान के शुरुआत करे गए है। एकर तहत पूरा प्रदेश में 21,00,000 पौधा रोपे के लक्ष्य रखे गए है। भाजपा प्रदेश महामंत्री अखिलेश सोनी है बताएं कि प्रदेश के सबो बूथ में खचित पौधा रोपे के काम करे जाही। आकाशवाणी रायपुर के प्रादेशिक समाचार एकांश डहल ले प्रस्तुत कार्यक्रम जिले की चिट्ठी के प्रसारण काली संजा 6:05 ले 6:10 तक करे जाही। एक कार्यक्रम ला छत्तीसगढ़ के सबो आकाशवाणी केंद्र एके संग रिले करी। एदारी के अंक में आप मन बिलासपुर जिला के बारे में जानकारी सुनिया। छत्तीसगढ़ी समाचार बुलेटिन आप मन आकाशवाणी रायपुर ले सुना था।
1: छत्तीसगढ़ के खबर ले है आपके वास्ता और खबर के विश्वसनीयता ले है हमार वास्ता। आकाशवाणी समाचार रायपुर के प्रादेशिक समाचार बुलेटिन के संगे संग हमार समसामयिक कार्यक्रम आप रेडियो के संग अपन मोबाइल में घलो सुन सकत हो। आकाशवाणी समाचार फेसबुक ट्विटर और यूट्यूब में घलो हावे। हमार फेसबुक पेज हरे छत्तीसगढ़ न्यूज ऑन AIR, ट्विटर हैंडल CGAIR न्यूज और हमार यूट्यूब चैनल हरे छत्तीसगढ़ AIR न्यूज। तो अब रेडियो के संगे संग आपके मोबाइल के माध्यम ले हम आप तक पहुंचा था। छत्तीसगढ़ के हर खबर पर सुनत रहो आकाशवाणी समाचार।
0: अब आगु बढ़वो बाचे समाचार कोती। छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग यानी CGPSC के मुख्य लिखित परीक्षा आज ले शुरू हो गए है। ये परीक्षा 9 जून तक चली। परीक्षा 2 पाली में हुआ थे। पहली पाली बिहनिया 9 बजे ले मझनिया 12 बजे तक और दूसरिया पाली मझनिया 2 बजे ले संझा 5 बजे तक होही। परीक्षा बर 5 ठन केंद्र बनाए गए है। रायपुर, बिलासपुर, दुर्ग, अंबिकापुर और जगदलपुर। छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग के सदस्य डॉक्टर प्रवीण वर्मा और कलेक्टर गौरव सिंह है रायपुर में परीक्षा केंद्र के निरीक्षण करें और व्यवस्था के जायजा लेन। सुनैया मल्ला बता दें कि CGPSC के प्रारंभिक परीक्षा 22 फरवरी के आयोजित करेगे रहीस। धमतरी जिला में भारतीय सहकारी उपभोक्ता महासंघ लिमिटेड यानी NCCF और छत्तीसगढ़ राज्य भंडारण गृह निगम को तिले 30,000 मीट्रिक टन के अतकहा अनाज भंडारण क्षमता विकसित करे जावत है। केंद्र सरकार के विश्व के सबले बड़े अनाज भंडारण योजना और रेलवे माल गोदाम के तहत जिला में बड़का स्तर में अब्बड़ अकन गोदाम बनाए जावत है। एकर बर धमतरी जिला के 4 ठन प्राथमिक कृषि साग सहकारी समिति ल चुने गए है। एमा अवरी, कोसमर्रा, पोटियाडी आमदी और कोलियारी है शामिल है। ये चारों समिति मन में 2,500 मीट्रिक टन क्षमता के नवा आधुनिक गोदाम बना थे। एकरे संग राज्य भंडारण निगम कोतिले धमतरी और कुरुद में 10,000 मीट्रिक टन क्षमता के 2 बड़का गोदाम के निर्माण चलत है। एकर अलावा कुर्रा स्थित समिति में घलो नवा गोदाम बने के काम चालू हो गए है। उहे धमतरी केंद्रीय बड़ी रेल लाइन परियोजना में रेलवे स्टेशन के संगे संग माल गोदाम के निर्माण के काम घलो तेजी ले चलत है। सुनिया मल्ला बता दन कि सरकार है ए रबी मौसम में जिला के किसनहा मल्ले 60,54,00,000 रुपया के चना बिसाए है। छत्तीसगढ़ रियल एस्टेट विनियामक प्राधिकरण यानी रेरा है प्रोजेक्ट के कामन एरिया ला रहैया या उहां के समिति ला नई सौंपे के मामला में 595 बिल्डर मन ला कारण बताओ नोटिस जारी करे है। रेरा अधिनियम के तहत घर के कब्जा दे के बाद या ओ प्रोजेक्ट में एक निश्चित संख्या में घर बुक होए के बाद वहां के कॉमन एरिया ला हस्तांतरित करना जरूरी है। रेरा 15 दिन में ये नोटिस के जवाब मांगे है। जवाब नहीं दे के स्थिति में बिल्डर मन ऊपर रेरा अधिनियम में मामला दर्ज करके कानूनी कार्रवाई करे जाही। पद्म पुरस्कार पर नामांकन की प्रक्रिया जुलाई तक जारी रही। गृह मंत्रालय है बताई से कि पद्म पुरस्कार बर नामांकन और अनुशंसा जेन ह 15 मार्च ले शुरू हो रहीस एमा केवल राष्ट्रीय पुरस्कार पोर्टल ऊपर ऑनलाइन ही स्वीकार करे जाही। सुनिया मल्ल बता दें कि पद्म पुरस्कार

ईमेल करेंगे सुने कार्यक्रम में। आइए सुनते हैं पहले दुल्हन वही जो पिया मन भाए फिल्म का गीत। स्वर है हेमलता का, गीत और संगीत है रविंद्र जैन का। पसंद है आप सभी श्रोताओं की इस गीत के लिए। चंडीगढ़ से हैं राहुल खुराना, रचिता केशु, रिधान खुराना। नाईवाला जिला हनुमानगढ़ राजस्थान से हैं वेद मिठा, अलका मिठा। ग्राम उच्च भट्टी से मुकेश गोस्वामी, मधु आशीष, शिवन्या। पलारी से नीतीश कुमार, लखनलाल, सावित्री बाई, ईशांत, तनुजा देवांगन। आमाखोड्रा रिंगाखार से हैं देवी सिंह नेताम, राजेंद्र सिंह, दक्ष प्रिया, गीत सरगम नेताम। पीपलोड सरगांव जिला मुंगेली से दीपेश वर्मा, पूनम ज्योति, शिवांश। बिलाईगढ़ से हैं रोशनलाल देवांगन, कौशल्या, हेमलता, डिंपल। बुलंदशहर से मोहम्मद सईद अब्बासी, निगहत परवीन, शाहनवाज, सोहान, सरफराज, फरदीन, अरजान, अबान अब्बासी। छत्रपति संभाजी नगर से हैं राजेश साबले पाटिल, राजदीप, राशि, शीतल। बीड शहर से हैं किशन सपकाल, आशा, सोनिया, विशाल। जलालाबाद वेस्ट से सुरेश गगनेजा, पूनम, विशाल, प्रिया दिशानी, निमित आहुजा। हरहरपुर मटकली जिला बरेली से शाहरुन नूर अंसारी, मोइन तस्लीम, सर्वेश सैनी और डीजे प्रधान। रायगढ़ से हैं नरेंद्र कुमार तिवारी, महेंद्र कुमार, जोई, यामिनी, उमा तिवारी। पुतकी कला कवर्धा से राधेश्याम पांडे, वीणा, विनय शंकर। दतरंगी से भागवत वर्मा, शांति देवी, लीलावती, विनीता, रुद्र। लच्छनपुर जिला बलौदाबाजार से हैं विश्वनाथ साहू, पंकज तिरुपति। नरगोड़ा से कीर्तनपुरी गोस्वामी, लक्ष्मी देवी, जोगेशपुरी, ट्विंकल, डिंपल, मीनाक्षी, निशा, तुलसी। दिल्ली से बोधराज खोरवाल, कमला रानी, गीतिका, भानु प्रकाश, निशु। लच्छनपुर से रामजी साहू, जीवनलाल रजक, निम्मी, शिवम, सतीश, मुकेश कुमार। कोल सिटी बरकाकना से हैं अफजालता, शाहीन सुल्ताना, सोनू तस्नीम, निप्पी साहनी, मोहम्मद अफजल मल्लिक। अड़ान ननघाट से माखन वर्मा, चांदनी, राहुल, गोपी। भिलाई तीन चरौदा से हैं नौशाद अहमद सिद्दीकी, हमीदुन जीशान अहमद, शाहनवाज और उनका पूरा परिवार। जमशेदपुर से हरजिंदर सिंह भाटिया, एंजल, सोनू।

पप्पी पजौनिया जिला जालौन उत्तर प्रदेश से सत्येंद्र कुमार चौसलिया आदर्श सारथा का लौकिक बोरी खुर्द से सुधाकर राजे जाधव प्रशांत जगुताई साक्षी गांव कुम्हारहेड़ा सहारनपुर से हैं सैयद मसरूर शाइना हसन नाजिया इब्राहिम जालंधर से रोशन जहां नुसरत जहां और मन्नत जहां। चलिए सुनते हैं आप सभी की फरमाइश पर फिल्म दुल्हन वही जो पिया मन भाई का ये गीत हेमलता की आवाज़ में।

आइए आगे बढ़ते हैं ईमेल कार्यक्रम में और सुनते हैं अब अगला गीत आप सभी की फरमाइश पर। झज्जर हरियाणा से हैं बिट्टू भाटिया, रीटा रजत, मयंक भाटिया, धरदेई सरगांव से चंदूलाल पटवा, सुनीता हर्ष, विनीत क्रिस्टी, भानबेड़ा मुंगवाल से भारत राम पटौटी, जयंती हेमंत उमंग और मोक्ष पटौटी, अमलेश्वर से हैं ढुमन ठाकुर, सुमन मिथिलेश तारणी, दतरंगी भाटापारा से द्वारिका प्रसाद वर्मा, किशोर वर्मा, दतरंगी भाटापारा से ही हैं हीरामणि वर्मा, पारसमणि, पुष्पेंद्र मणि, नोखेलाल वर्मा, बहादुरा नागपुर से शैलेश गवाड़कर, वैशाली, श्वेता, सुमित, ध्वनि और परी सब।

जबलपुर से हैं कांकेर से फागुराम यादव, ज्योति ओजस्वी, रसेड़ा से मुरलीधर साहू, लक्ष्मी देवी, योगेश, संध्या कीर्ति, डीकेश, वासु, डाली, पूर्वेश, दिल्ली से मालती शर्मा, माया, दिव्या, सीमा शर्मा, दुराबांधा भाटापारा से प्रमोद साहू, देव सानित राम और भूपेंद्र साहू, नलगोंदा तेलंगाना से हैं मोहम्मद अमजद, सलमा, मुनीर, आयशा, तबस्सुम और परिवार के सभी सदस्य, भाटापारा से बचकामल, मोतीलाल यादव, सियाराम, चोवराम वर्मा, सूरज बारेकर, नारायण यदु, लगान पंडरिया से उत्तम कुमार, बघेल, रुक्मणी, साहिल और भारती, लुत्रा खमरिया से अक्रम, अमीन, अर्श, आतिका, बुड़सरा नेला से प्रमोद कुमार साहू, बीमा, वैभवी, विनोद विभूति, अंश, बबली, प्रियांशु, बाड़ापारा से हिमकेश्वर साहू, करण, राहुल, चंपा, दिल्ली से हैं सुखविंदर सिंह जौड़ा और सेठी दीवाना, नेला बुड़सरा जांजगीर से हेमदेव तिवारी, दुर्गा प्रसाद, अमन, मीनाक्षी, उमा, विष्णु प्रसाद तिवारी, लुत्रा खमरिया से नकुल श्याम, मोहम्मद अकरम, मोहम्मद अशीष, मोंगेर से हैं मोहम्मद बुरहानुद्दीन, किशनगंज बिहार से रविंद्र मोहनदास, आशा देवी, राघव कुमार, भानुप्रिया, निकिता, दिल्ली से नीरज अग्रवाल, सहज, श्लोक, प्रियांश, श्रेयांश, अनुभूति अग्रवाल, बठेना पाटन जिला दुर्ग से बलकरण वर्मा, अंजनी, ज्योति, रेखा, पार्थ कश्यप, मिथिलेश, टोमिन बछोर, यश, प्रयाण और शिवम, नागपुर महाराष्ट्र से कमल साहनी, पिंकी, अफजल मलिक, करजत मुंबई से अहमद दुखमना सदफ, इमरान अहमद, जूही, इकबाल, आमना, नसरीन, आसमा, परी, राबिया और आशो अहमद, गिरडीह झारखंड से साइमा नवाज, मोहम्मद यासीन अनजान, हसन अहद, मिफ्रानाथ, चाहत और सादिया। चलिए सुनते हैं आप सभी की पसंद पर फिल्म कारवां का गीत। आवाजें हैं लता मंगेशकर, मोहम्मद रफ़ी की, मजरूह सुल्तानपुरी के लिखे इस गीत को संगीत से सजाया है आर डी बर्मन ने।

ईमेल करें गीत सुने कार्यक्रम में आगे बढ़ने से पहले श्रोताओं, हम आपको याद दिला दें कल शाम 7:10 पर हम आकाशवाणी दिल्ली से रिले करेंगे केंद्र सरकार के 12 साल पूरे होने के उपलक्ष्य में विशेष श्रृंखला, विषय होगा वंचितों को वरीयता। कल शाम 6:30 पर हम आकाशवाणी रायपुर से रिले करेंगे संपत्ति विवाद के संबंध में कानून की बात, जानकारी देंगे श्री आशुतोष द्विवेदी अधिवक्ता जगदलपुर। जिले की चिट्ठी कल शाम 6:05 पर हम आकाशवाणी रायपुर से ही रिले करेंगे, जिसके कारण कार्यक्रम विवरण का समय होगा कल शाम 6:00। कल रात 8:00 आप सुनेंगे आकाशवाणी के 90 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में विशेष कार्यक्रम हर दिल की आवाज आकाशवाणी। इसमें आप सुनेंगे आकाशवाणी के पूर्व सहायक ग्रंथालय एवं सूचना अधिकारी श्री विशोक कुमार पांडेय से सुनील चिपड़े की बातचीत। प्रस्तुति होगी डॉक्टर सुप्रिया भारतीयन की और प्रस्तुति सहयोग होगा सुनील चिपड़े का। कल रात 8:20 पर प्रस्तुत किया जाएगा कार्यक्रम रजनीगंधा और चित्रपट संगीत कार्यक्रम आप सुनेंगे कल शाम 7:45 पर। अब आइए ईमेल करें गीत सुने कार्यक्रम में आगे बढ़ते हैं और सुनते हैं आप सभी की फरमाइश पर कार्यक्रम का अगला गीत। फिल्म का नाम है राजकुमार, आवाजें हैं मोहम्मद रफी सुमन कल्याणपुर के। लिखा है इस गीत को हसरत जयपुरी ने, संगीतबद्ध किया है शंकर जयकिशन ने और इस गीत को सुनने के ख्वाहिशमंद हैं आप सभी श्रोता। अम्बागढ़ चौकी से रिजवान खान, आयशा सबीहा, अनस रेहान, जैन मंदिर वाली गली कुरावली से हैं राशिद हुसैन अंसारी, नसरीन नौरीन, आसना मोहम्मद कैफ अंसारी, मुरादाबाद ग्राम दुल्हापुर उत्तर प्रदेश से हैं मुकेश कश्यप, सोनू सुरेश, राजपाल पंकज, काजल सीमा, मानवी तन्वी, लक्ष्य सोनी, मोहिनी ऋतिक और बलवीर सिंह। गांव लोहगढ़ ठाकुरावाला से स्वर्ण सिंह गिल, दलजीत, राजदीप, गुरलाल, अविराज।

गुरनूर शुभदीप सिंह, मढ़ी डब्वाली से हैं राजेंद्र नारंग, अंजू मोहित तानिया, पंढरपुर सिटी से प्रशांत शिंदे, सुनीता यशराज, ऋषि और कृष्णा घोटके, मैसौल सीतामढ़ी से हैं अकरम हुसैन, प्रिंस इशरत, अकरम वसीम, रुबीना आरिज, वसीम नदीम, शमीम अकरम, ममता रानी शर्मा, पूनम शर्मा, लसूटिया पाता जिला राजगढ़ मध्य प्रदेश से गोविंद वैष्णव, दिव्या सुमन, कोमल कृतिका परी, रमेश चंद्र, श्रीरामपुर महाराष्ट्र से नासिर शेख, नाजिया नासिर, साजिश शाहिद, ग्राम बगबुड़वा पथरिया छत्तीसगढ़ से नरेन नेताम, कुसुम नेताम, पैठण से हैं सुरेश यादव, अनीता, आरती, पूजा प्रसाद, सोनल, कोयका भिलाई से उत्तम सिंह, जंघेल मोरा, अनिल, अजीत, आयुष और नंदिनी, दुर्ग से आरसी कामड़े, करुणा, मीना, अश्विनी, विपुल, डोंडी लोहारा, बालोद छत्तीसगढ़ से देवशंकर तामुरिया, अजय देव, तुषार, डॉली, पूजा, आरती, प्रभा देवी, कैदी मुड़ा, रायगढ़ से पुरुषोत्तम सिंह, उषा, ऋषभ, प्रियंका, पूजा, लिलू, ऋतु, भाटापारा से दान सिंह रावत, दानू, पद्मिनी, शुभम, सौरभ, सहारनपुर से सोनाली नारंग, आशा, सुरेश, पथिक और कृषि, अकोला से हैं रमेश कटनकर, वैशाली, धनंजय कटनकर, राज पैलेस मौना भंजन, उत्तर प्रदेश से हैं राजेश कुमार वर्मा, प्रीति, कार्तिक, आर्यन वर्मा, जमानिया गाजीपुर उत्तर प्रदेश से सुरेश जायसवाल और मिला दीपक, स्वाति, तेलंगाना निजामाबाद से शेख अलाबख्श, राबिया शेख, शेख रहीम मुन्ना, भूतकछा लोरमी से दुर्गेश मरकाम, निर्मला, दीपक, प्रीतम, धनराज मरकाम, मलौट पंजाब से राज शर्मा, योगेश, मीना, निवान, सौरभ, शायना, मंडिया, रोपण पंजाब से हैं हरदेव, मिका, जयते, विर्क, बलविंदर और परिवार के सभी सदस्य, नवागढ़ कटई से हैं नारायण प्रसाद वर्मा, चंद्रकांत वर्मा, खंडवासी दुर्गा प्रसाद सैनी, अनीता गौरव, बठेना पाटन से हैं परमेश्वर साहू, राजवती, काजल, पूर्वी, हेजल, राजेश, रेशमा, पोड़ी भाटा अकलतरा से हैं दिलीप चंदन, चोबा राम, यदु, निखिल, वसुंधरा और प्रांजल चंदन। चलिए सुनते हैं आप सभी की पसंद पर फिल्म राजकुमार का ये गीत, आवाजें हैं मोहम्मद रफ़ी, सुमन कल्याणपुर की।

0: इस गीत के साथ ही ईमेल करें गीत सुने कार्यक्रम बस यहीं तक। आकाशवाणी का ये बिलासपुर केंद्र है, 6:45 होने को हैं। कुछ ही देर में प्रादेशिक समाचार हम आकाशवाणी रायपुर से रिले करेंगे।
1: आकाशवाणी रायपुर है, अब आप प्रादेशिक समाचार सुनेंगे।
2: अरे रीमा, सोलर पैनल लगवा ले।
3: कब से मुझे सारे दोस्त बोलते थे, पर मैंने माना जब प्रधानमंत्री जी ने कहा
4: भारत सरकार का लक्ष्य सोलर पावर से बिजली बिल जीरो करने का भी है।
3: मैंने प्रधानमंत्री जी के कहने पर सोलर पैनल लगवाया और मेरा बिजली बिल जीरो आया। आप भी लगवा लो।
5: पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना आज ही रजिस्टर करें pmsuryaghar.gov.in पर। सूर्य घर
6: क्या बात है उमेश, आजकल खूब छाए हो अखबार में नई नई रिपोर्टिंग के साथ।
7: हाँ यार, पत्रकार जो हूँ।
6: तो अब अगली रिपोर्टिंग किस पर कर रहे हो?
7: सुधीर, मुझे एक ऐसी 11 साल की लड़की के बारे में पता चला है जिससे एक परिवार वाले घर का सारा काम करवाते हैं और ऊपर से उस पर ज्यादती करते हैं। उसी पर एक स्टोरी बना रहा हूँ।
6: उमेश, स्टोरी बनाते समय इस बात का ध्यान रखना कि पीड़ित बालिका का नाम, पता, फोटो या स्कूल का पता या ऐसी कोई भी जानकारी सामने ना आए जिससे उसकी पहचान होती हो।
7: क्यों?
6: क्योंकि ऐसा करना बाल न्याय तथा बच्चों की देखभाल और उनके संरक्षण संबंधी संवैधानिक अधिनियम 21A का उल्लंघन है और इस बात का ध्यान हमारे सभी प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के पत्रकारों को भी रखना है।
8: बाल अधिकार हनन से पीड़ित बच्चों की पहचान उजागर करने वाली जानकारी का प्रकाशन या प्रसारण न करें, क्योंकि इससे पीड़ित बच्चों के सामाजिक और मानसिक स्वास्थ्य पर बुरा असर पड़ सकता है।
9: अरे गोपाल, जा तो सब्जी बाजार से नींबू और मिर्ची लेकर आना।
10: क्या बात है मालिक, आज आप नींबू और मिर्ची क्यों खा रहे हैं?
9: अरे पगले, खाने के लिए नहीं, दुकान में लगाने के लिए मंगवा रहा हूँ। तू तो देख रहा है, दिन भर बैठ कर मक्खी मारता हूँ, 10 ग्राहक भी दुकान में नहीं आते।
10: आएंगे कैसे मालिक, हमारी दुकान का ठीक से प्रचार भी तो नहीं हो रहा है। मेरी मानिए तो आप भी अपनी दुकान का प्रचार आकाशवाणी से करवाइए, फिर देखिए हमारी दुकान में भी ग्राहकों की भीड़ लगेगी।
9: गोपाल, आज पहली बार तूने अक्लमंदी की बात की है रे।
10: क्यों नहीं मालिक, रेडियो जो सुनता हूँ।
8: अपनी दुकान, व्यापार या सेवा का प्रचार रेडियो से करवाइए, विज्ञापन बुक करने आकाशवाणी आइए।
11: बधाई हो सेठ जी, आपकी कंपनी की इस नई अगरबत्ती की खुशबू तो लाजवाब है।
10: अरे भाई साहब, आप देखते जाइए, अब तो ये अगरबत्ती घर घर में महकेगी। मैंने पूरे शहर में इसके विज्ञापन बंटवाए हैं।
11: क्यों भाई, सिर्फ शहर में? अरे गांव में नहीं महकेगी क्या?
10: महकना तो गांव में भी चाहिए, मगर गांव के लोगों को हमारी नई अगरबत्ती के बारे में पता कैसे चलेगा?
11: आकाशवाणी से।
8: गांव हो या शहर, अपनी दुकान या उत्पाद की जानकारी पहुंचाइए घर घर, आकाशवाणी आइए और विज्ञापन बुक करवाइए।
0: ये आकाशवाणी रायपुर है, प्रादेशिक समाचार बुलेटिन के साथ मैं शुभ्रा भट्टाचार्य। और अब पेश है आज के मुख्य समाचार। सुशासन तिहार के तहत मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने आज गौरेला पिंडरा मरवाही जिले के ग्राम निमधा और

सक्ती जिले के ठेठारी गांव में जन चौपाल लगाई। राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग के अध्यक्ष साध्वी निरंजन ज्योति कल रायपुर में सामाजिक प्रगति चिंतन सम्मेलन में शामिल होंगी। सीबीएसई ने अंक सत्यापन और पुनर्मूल्यांकन के लिए आवेदन जमा करने की अंतिम तिथि बढ़ाकर 7 जून कर दी है और प्रदेश के विभिन्न स्थानों में अगले 5 दिनों तक आंधी तूफान और गरज चमक के साथ हल्की बारिश होने की संभावना। अब समाचार विस्तार से। सुशासन तिहार के तहत मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय आज गौरेला पेण्ड्रा मरवाही जिले के ग्राम निमधा पहुंचे और ग्रामीणों से रूबरू हुए। उन्होंने ग्रामीणों से बिजली, पानी, राशन, सड़क, स्वास्थ्य, शिक्षा और आवास जैसी मूलभूत सुविधाओं के संबंध में विस्तार से चर्चा की। इस मौके पर मुख्यमंत्री ने ग्रामीणों की मांग पर जिले में नर्सिंग कॉलेज, ग्राम निमधा में मिनी स्टेडियम और मंगल भवन के लिए राशि स्वीकृत करने की घोषणा की। जनसंवाद के दौरान राजस्व विभाग से जुड़ी शिकायत सामने आने पर मुख्यमंत्री ने संबंधित राजस्व निरीक्षकों को कड़ी चेतावनी देते हुए स्पष्ट कहा कि जनता की समस्याओं का समय पर निराकरण करें, अन्यथा कठोर कार्रवाई के लिए तैयार रहें। मुख्यमंत्री ने बताया कि प्रदेश में जल्द ही सीएम हेल्पलाइन शुरू की जाएगी, जिसके माध्यम से नागरिक टोल फ्री नंबर, ईमेल और व्हाट्सएप के जरिए अपनी शिकायत दर्ज करा सकेंगे। मुख्यमंत्री ने आज सक्ती जिले के ठेठारी गांव में भी जन चौपाल लगाई। इस गांव में ग्रामीणों की मांग पर मुख्यमंत्री ने सहकारी बैंक खोलने का ऐलान किया। लोक निर्माण मंत्री अरुण साव ने रायपुर जगदलपुर मार्ग पर केशकाल घाट फोरलेन बाईपास रूट का निरीक्षण किया। उन्होंने निर्माण एजेंसी को समय सीमा में गुणवत्ता के साथ काम पूरा करने के निर्देश दिए। 11 किलोमीटर से अधिक लंबे इस मार्ग का निर्माण 308 करोड़ रुपए की लागत से किया जा रहा है। इस बाईपास में 2 बड़े और 2 मध्यम पुल भी बनाए जाएंगे। श्री साव ने अपने कोंडागांव प्रवास के दौरान जिला मुख्यालय में विभागीय अधिकारियों की बैठक ली और विभिन्न विकास कार्यों की समीक्षा की। श्री साव ने आज अपने जगदलपुर प्रवास के दौरान विभिन्न विकास कार्यों का निरीक्षण किया। उन्होंने अधिकारियों को सभी कार्य समय सीमा में पूरा करने के निर्देश दिए। राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग के अध्यक्ष साध्वी निरंजन ज्योति कल 7 जून को रायपुर के एक दिवसीय प्रवास पर रहेंगी। वे रायपुर में आयोजित पिछड़ा वर्ग संगठन के सामाजिक प्रगति चिंतन सम्मेलन में शामिल होंगी। इसके अलावा अधिकारियों की एक समीक्षा बैठक भी लेंगी। इस बैठक में मुख्य सचिव के अलावा राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग के प्रमुख सचिव भी मौजूद रहेंगे। साध्वी निरंजन ज्योति अपने प्रवास के दौरान रायपुर में राज्यपाल रमन डेका और मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय से शिष्टाचार भेंट भी करेंगी। वहीं भारतीय जनता पार्टी पिछड़ा वर्ग मोर्चा की राष्ट्रीय उपाध्यक्ष कृष्णा गौर भी कल रायपुर पहुंच रही हैं। भाजपा पिछड़ा वर्ग मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष अशोक साहू ने बताया कि श्रीमती गौर भाजपा पिछड़ा वर्ग मोर्चा के प्रदेश पदाधिकारियों की बैठक में शामिल होंगी और संगठनात्मक विषयों, पिछड़ा वर्ग समाज के सशक्तिकरण और आगामी कार्यक्रमों के संबंध में मार्गदर्शन करेंगी। भारतीय जनता पार्टी द्वारा पर्यावरण संरक्षण और संवर्धन के लिए एक वृहद पौधारोपण अभियान की शुरुआत की जा रही है। इसके तहत पूरे प्रदेश में 21 लाख पौधे रोपने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। भाजपा प्रदेश महामंत्री अखिलेश सोनी ने बताया कि प्रदेश के सभी बूथों में अनिवार्य रूप से पौधारोपण का कार्य किया जाएगा। छत्तीसगढ़ की जल प्रबंधन पहल को राष्ट्रीय स्तर पर सराहना मिली है। भारत सरकार के जल शक्ति मंत्रालय ने सिंचाई दक्षता बढ़ाने और जल संसाधनों के बेहतर उपयोग के लिए राज्य में लागू कमान क्षेत्र विकास और जल प्रबंधन आधुनिकीकरण यानी MCAD मॉडल की प्रशंसा की है। मंत्रालय ने अन्य राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को भी छत्तीसगढ़ की तर्ज पर इस मॉडल को अपनाने की सलाह दी है। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने इसे किसानों, जल संसाधन विभाग और सुशासन के प्रति राज्य की प्रतिबद्धता का सम्मान बताया है। छत्तीसगढ़ के 7 जिलों में ग्रामीण परिवारों की आय बढ़ाने के लिए एकीकृत आजीविका कार्यक्रम शुरू किया जाएगा। मुख्य सचिव विकासशील ने इस संबंध में अधिकारियों को विस्तृत कार्य योजना तैयार करने के निर्देश दिए हैं। ये कार्यक्रम बस्तर, कांकेर, दंतेवाड़ा, सुकमा, बीजापुर, नारायणपुर और मोहला मानपुर, अंबागढ़, चौकी जिलों में शुरू किया जाएगा।
विश्व पर्यावरण दिवस पर आयोजित कार्यक्रम में आवास और पर्यावरण मंत्री ओपी चौधरी ने पर्यावरण संरक्षण को जन आंदोलन बनाने का आह्वान किया। उन्होंने कहा कि प्रकृति का संरक्षण भारतीय संस्कृति का मूल मंत्र है और पर्यावरण की रक्षा सभी की जिम्मेदारी है। श्री चौधरी ने बताया कि प्रदूषण नियंत्रण के लिए औद्योगिक उत्सर्जन की ऑनलाइन निगरानी और फ्लाई ऐश प्रबंधन की व्यवस्था को मजबूत किया गया है।

0: उन्होंने बताया कि नवा रायपुर में 20,000 से अधिक पीपल के पेड़ लगाकर इसे पीपल सिटी के रूप में विकसित करने का लक्ष्य रखा गया है। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रायपुर से सुन रहे हैं।
1: छत्तीसगढ़ की खबरों से है आपका वास्ता और खबरों की विश्वसनीयता से है हमारा वास्ता। आकाशवाणी समाचार रायपुर के प्रादेशिक समाचार बुलेटिन के साथ ही हमारे समसामयिक कार्यक्रम आप रेडियो के अलावा अपने मोबाइल पर भी सुन सकते हैं। आकाशवाणी समाचार फेसबुक, ट्विटर और यूट्यूब पर भी उपलब्ध है। हमारा फेसबुक पेज छत्तीसगढ़ न्यूज ऑन AIR, ट्विटर हैंडल CGAIR न्यूज और हमारा यूट्यूब चैनल है छत्तीसगढ़ AIR न्यूज। तो अब रेडियो के साथ ही आपके मोबाइल के जरिए भी हम पहुंच रहे हैं आप तक। छत्तीसगढ़ की हर खबर के लिए सुनते रहिए आकाशवाणी समाचार।
0: और अब आगे बढ़ते हैं बाकी के समाचारों की ओर। छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग की मुख्य परीक्षा आज से शुरू हो गई है। ये परीक्षा 9 जून तक चलेगी। परीक्षा दो पालियों में हो रही है। पहली पाली सुबह 9 बजे से दोपहर 12 बजे तक और दूसरी पाली दोपहर 2 बजे से शाम 5 बजे तक होगी। परीक्षा के लिए प्रदेश में 5 केंद्र बनाए गए हैं। इनमें रायपुर, बिलासपुर, दुर्ग, अंबिकापुर और जगदलपुर शामिल हैं। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड CBSE ने अंक सत्यापन और पुनर्मूल्यांकन के लिए आवेदन जमा करने की अंतिम तिथि बढ़ाकर 7 जून कर दी है। CBSE ने सोशल मीडिया पोस्ट में बताया कि छात्र अब कल मध्यरात्रि तक अपने आवेदन जमा कर सकेंगे। CBSE ने सभी पात्र छात्रों से बढ़ी हुई समय सीमा का ध्यान रखते हुए निर्धारित अवधि के भीतर आवेदन प्रक्रिया पूरी करने की अपील की है। पद्म पुरस्कारों के लिए नामांकन की प्रक्रिया जुलाई तक जारी रहेगी। गृह मंत्रालय ने बताया है कि पद्म पुरस्कारों के लिए नामांकन और अनुशंसाएं जो 15 मार्च से शुरू हुई हैं केवल राष्ट्रीय पुरस्कार पोर्टल पर ऑनलाइन ही स्वीकार की जाएंगी। पद्म पुरस्कार जिनमें पद्म विभूषण, पद्म भूषण और पद्मश्री शामिल हैं देश के सर्वोच्च नागरिक पुरस्कारों में से हैं। उत्तराखंड के हल्द्वानी में हुई नेशनल यूथ म्यूथाई चैंपियनशिप में छत्तीसगढ़ ने 7 स्वर्ण पदक सहित 17 मेडल जीते हैं। इस चैंपियनशिप में 26 राज्यों और 5 केंद्र शासित प्रदेशों के लगभग 900 खिलाड़ियों ने हिस्सा लिया। छत्तीसगढ़ से 36 सदस्यीय दल इस चैंपियनशिप में शामिल हुआ। प्रादेशिक समाचार एकांश आकाशवाणी रायपुर द्वारा प्रस्तुत कार्यक्रम जिले की चिट्ठी का प्रसारण कल शाम 6:05 से 6:10 तक किया जाएगा। इस कार्यक्रम को छत्तीसगढ़ स्थित आकाशवाणी के सभी केंद्र रिले करेंगे। इस बार के अंक में बिलासपुर जिले की गतिविधियों के बारे में जानकारी दी जाएगी। और अब पेश है मौसम का हाल। प्रदेश में आगामी कुछ दिनों में प्री मानसून गतिविधियों के कारण मौसम में बदलाव देखने को मिलेगा। मौसम विभाग के अनुसार उत्तर प्रदेश और आंध्र प्रदेश के ऊपर बने चक्रवाती परिसंचरण के कारण प्रदेश के कई हिस्सों में आगामी 3 से 5 दिनों तक आंधी तूफान और गरज चमक के साथ हल्की बारिश हो सकती है। राज्य में 12 से 18 जून के बीच मानसून के दस्तक देने की संभावना है। और अब कुछ समाचार संक्षेप में। उप मुख्यमंत्री विजय शर्मा ने आज कवर्धा के नए हाईटेक बस स्टैंड का शुभारंभ किया। इस बस स्टैंड में पुलिस सहायता केंद्र भी स्थापित किया गया है। दुर्ग पुलिस ने अंतर्राज्यीय ऑनलाइन सट्टा गिरोह का पर्दाफाश करते हुए 9 आरोपियों को नागपुर से गिरफ्तार किया है। मौके से मोबाइल, लैपटॉप, आईपैड, सिम कार्ड सहित भारी मात्रा में इलेक्ट्रॉनिक उपकरण और करीब 23 लाख रूपये के आभूषण जब्त किए गए हैं। दुर्ग जिले के नंदनी थाना क्षेत्र के कोड़िया धान खरीदी केंद्र में आज आग लग गई। इस घटना में 100 क्विंटल से अधिक धान जलकर नष्ट हो गया है। घटना की सूचना मिलते ही कलेक्टर अभिजीत सिंह मौके पर पहुंचे और जांच के निर्देश दिए। रायपुर के जय स्तंभ चौक स्थित सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया के जोनल ऑफिस में आज आग लगने से अफरा तफरी मच गई। घटना की सूचना मिलते ही दमकल और प्रशासन की टीम मौके पर पहुंची और आग पर काबू पा लिया गया। कलेक्टर डॉ. गौरव सिंह ने बताया कि घटना में किसी प्रकार की जनहानि नहीं हुई है। और विश्व साइकिल दिवस के उपलक्ष्य में महासमुंद में कल संडे ऑन साइकिल रैली का आयोजन किया जाएगा। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। सुशासन तिहार के तहत मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने आज गौरेला पेंड्रा मरवाही जिले के ग्राम निमधा और सक्ती जिले के ठेटारी गांव में जन चौपाल लगाई। राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग के अध्यक्ष साध्वी निरंजन ज्योति कल रायपुर में सामाजिक प्रगति चिंतन सम्मेलन में शामिल होंगी। CBSE ने अंक सत्यापन और पुनर्मूल्यांकन के लिए आवेदन जमा करने की अंतिम तिथि बढ़ाकर 7 जून कर दी है। और प्रदेश के विभिन्न स्थानों में अगले 5 दिनों तक आंधी तूफान और गरज चमक के साथ हल्की बारिश होने की संभावना। इसी के साथ प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। हमारा अगला प्रादेशिक समाचार बुलेटिन हिंदी में कल सुबह 9:55 पर सुना जा सकता है।

0: है। नमस्कार।
1: थोड़ी देर में हमारा अगला कार्यक्रम होगा।

प्रादेशिक समाचार अभी हम आकाशवाणी रायपुर से रिले कर रहे थे। ये आकाशवाणी का बिलासपुर केंद्र है, एफएम बैंड 103.2 मेगाहर्ट्ज़ पर। लीजिए सुनिए, ईमेल करें गीत सुने कार्यक्रम का शेष भाग। ईमेल करें गीत सुने कार्यक्रम में एक बार फिर आपका स्वागत है। सुनते हैं फिल्म दीवाना का गीत, स्वर है कुमार सानू का, लिखा है समीर ने, संगीत है नदीम श्रवण का और फरमाइश है आप सभी श्रोताओं की। जोधपुर राजस्थान से हैं रमेश चंद्र चौहान, मोहिनी कल्पित गर्वी चौहान। गांव जाखोत राजस्थान से शंभुदयाल खटक, विमला देवी, अमरजीत, सुंदरलाल, योगेश कुमार, दीपक कुमार, पूजा खटक। बिलासपुर से हैं छनूलाल श्रीवास, अनीता, पुष्पा, अंजू, योगिता श्रीवास, रजन साहू, हेमंत नामदेव, धर्मदास वाधवानी। अकोला से सुशीला देवी मंदूरकर, सदानंद गौरव मंदूरकर। यवतमाल महाराष्ट्र से हैं राहुल मनवर, सरला, विशाल, चेतन, रोशनी, प्रियांशी। देगलूर जिला नांदेड़ महाराष्ट्र से हैं संतोष भाकरे, स्नेहा, सुकन्या, सविता। इंदौर मध्य प्रदेश से हैं नारायण खर्चे, ललिता, गणेश, कार्तिक, परी, खुशी, वंदना, स्वाति, प्रयाग चौधरी। पांठर कवड़ा से हैं अनिल, उषा, अंशी, धनश्री। हरियाणा से अंकित कागड़ा, मोनी, प्रिंस बोत, सीताराम कागड़ा और साहिल कांगड़ा। कोलगांव से पांडुचंदन, उषा, प्रतीक्षा, प्रथमेश, पांडुरंग कुमार। धाड़ी नांद्रा महाराष्ट्र से श्री कृष्ण बाठे, संदीप, अमूल्य बाठे। रोहतक से हैं सीताराम कागड़ा, बबीता, निखिल, तन्वी। जूना बिलासपुर से सुशील देवांगन, अखिलेश, लोकेश, आशीष, रवि, मोनू, सोनू, कान्हा, आदित्य। बुड़गहन से हैं रामदुलारी प्रजापति, रामशरण, चंद्रेश कुमार, चंद्रकांता, शशिकांता और चंद्रकला। फजिलका पंजाब से भूषण खेरा, विष्णु, विशाल, आरबी, तिवांशी, शालिनी खेरा, जीवन और उनका पूरा परिवार। गंडई पंडरिया से पवन कुमार सेन, प्रभा देवी, लक्की, विक्की, नानू, रविंद्र और रौनक सेन। साधुल शहर राजस्थान से हैं रामकुमार रेवाड़, चंद्रकला रेवाड़। ओवरेटी पारा भाटापारा से अनीता साहू, वीणा, नेहा, मोनिशा। लालपुर मारो से कीर्ति कुमार, ध्रुव, संतोषी, निम्मी, पम्मी, निशांत। जनकपुरी सहारनपुर से जोंट कैस्ट्रो, रोजी, पर्ल, विलिस। भोपालगढ़ राजस्थान से धर्मेंद्र चिंपा, कपिल, पूजा परिहार। ग्राम खोंदला उदयपुर सरगुजा से जीवधन सिंह पैकरा, घुड़नी करिश्मा, सोमार साय, कलेश्वर सिंह, सुखराम, हीरामणि। निम्नाबाद जिला जींद हरियाणा से जसबीर सिंह अरोड़ा, जतिंदर कौर, गुरप्रीत, लवप्रीत, करमजीत कौर। ग्राम बाघामुड़ा कोमा खान से प्रज्ञानंद देवांगन, नंदिनी, प्रकाश, गायत्री, यशवर्धन, यशस्वी देवांगन। जालंधर से हैं रोशन जहां, नुसरत, मन्नत जहां। मस्तानपुरा पूर्ण जंक्शन से अनंता भगत, अरुणा, सुलोचना और चेतन भगत। चलिए सुनते हैं आप सभी की पसंद पर फिल्म दीवाना का ये गीत। स्वर है कुमार सानू का, समीर के लिखे इस गीत को संगीतबद्ध किया है नदीम श्रवण ने।

फिल्म दीवाना के इस गीत के साथ ही ईमेल करें गीत सुने कार्यक्रम से अब हमें दीजिए अनुमति। आकाशवाणी का ये बिलासपुर केंद्र है, 7:10 होने को हैं। केंद्र सरकार के 12 साल पूरे होने के उपलक्ष में विशेष श्रृंखला। अब हम आकाशवाणी दिल्ली से रिले करेंगे, विषय है युवा शक्ति।

0: This is Akashvani. In the special series, now we bring you a discussion on 12 years of the Modi government, from women empowerment to women-led development. Participants are Professor Sushma Yadav and Aditi Tandon, senior journalist. Moderator is Sonu Sood. Ye Akashvani hai. Prastut hai Vishesh Shrinkla. इसके अंतर्गत आज सुनिए मोदी सरकार के 12 साल महिला सशक्तिकरण का परिवर्तनकारी दशक. इसमें भाग ले रही हैं प्रोफेसर सुषमा यादव और वरिष्ठ पत्रकार अदिति टंडन. कार्यक्रम का संचालन कर रही हैं सोनू सूद.
1: In the 12 years of NDA government, Prime Minister Narendra Modi has consistently said women empowerment is one of the key priorities of this government, and the government's dream of upgrading women's development to women-led development has turned to reality thanks to the focused efforts of the government, be it education, health, financial inclusion, livelihood avenues, security, quality of life. The targeted schemes of the government have empowered and accorded respect and dignity to women as a powerful economic force, giving them confidence and opportunities to break new frontiers. To discuss this emergence of women as an integral and crucial part of nation building, we have with us two very special guests, Professor Sushma Yadav and senior journalist Aditi Tandon. So, Professor Sushma Yadav ji, we would like to start with you. Hum aap se jo aarthik sashaktikaran hua hai pichle 12 varshon mein NDA sarkar ke is karyakal mein, uske upar hum aap se discussion karna chahenge, chahe wo Pradhan Mantri Jan Dhan Yojana हो जिसमें 32 करोड़ महिलाओं से अधिक के बैंक अकाउंट खुले पहली बार, या फिर जो एक एस्पिरेशनल एंटरप्रेन्योरशिप का सपना पूरा करने वाला जो पीएम मुद्रा योजना थी, उसमें से 3 में से 2 जो लाभार्थी थी वो महिलाएं थी, और महिला एंटरप्रेन्योर्स को 16 लाख करोड़ रुपए से अधिक के लोन्स प्राप्त हुए. सो ये स्कीम्स तो अच्छी थी ही, लेकिन जो इनका इफेक्टिव इम्प्लीमेंटेशन हुआ है और जो महिलाओं के फेवर में इम्प्लीमेंटेशन हुआ है, क्या इसे आप एक बड़ी उपलब्धि मानती हैं? कैसे देखती हैं आप इनके महत्व को?
2: बहुत बड़ी उपलब्धि मानती हूँ. प्रधानमंत्री मोदी जी के लिए विकसित भारत महिलाओं के बिना हो ही नहीं सकता. मैं ये बात याद दिलाना चाहती हूँ यहाँ. और विकसित भारत का मतलब उनके लिए है एक सशक्त, सक्षम और स्वावलंबी नारी समूह और नारी शक्ति. उनका मानना है कि जब तक महिलाएं इस विकास की यात्रा का हिस्सा नहीं बनेंगी, तब तक भारत विकसित नहीं बन सकता. और आप जानते हैं कि उनका इस समय सबसे बड़ा ध्येय, उद्देश्य और स्वप्न वो सब विकसित भारत @2047 है जी. उस यात्रा के लिए उन्होंने, और आप जानते हैं कि जो शक्ति है वो शक्ति मानसिक तो होती है, बौद्धिक तो होती है, पर आर्थिक सबसे अधिक होती है जो दिखाई देती है. मानसिक और बौद्धिक शक्ति दिखाई नहीं देती है, लेकिन आर्थिक शक्ति तो स्पष्ट दिखाई देती है. इसलिए सबसे पहले वित्तीय समावेश की बात उन्होंने की है, और वित्तीय समावेश में जनधन खाते सबसे पहली योजना है, जिससे उन्होंने पूरे देश को ये अवसर दिया कि वह बैंकों के साथ जुड़ सके और बैंकों की जो वित्तीय सहायता है वो सबको उपलब्ध हो सके. और इसमें सबसे पीछे रहने वाली महिलाएं थी, इसलिए महिलाओं को उसमें शामिल किया. और ये आश्चर्य की, सुखद आश्चर्य की बात है कि अब

0: वो 50% से अधिक खाते जो हैं वो महिलाओं के खुले हैं, क्योंकि शायद उन्हें ही बैंक तक जाने की झिझक भी थी
1: जी
0: और बैंक तक जाने के लिए सुरक्षा चाहिए थी। तो जो लगभग 30 करोड़ से ज्यादा खाते खुले हैं उसमें अब तो 61%, लेटेस्ट डाटा इज इट्स मोर
1: जी
0: देन 61% वुमेन। सो सबसे पहला जो मैं बात कर रही थी, जनधन खातों की सफलता, लेकिन वो वहीं नहीं रुके, क्योंकि सिर्फ जनधन खाते खुल जाएं वही नारी को सशक्त नहीं करेंगे। लखपति दीदी का सपना दिखाया, उसको पूरा किया, क्योंकि कितनी सारी जो लखपति दीदी बनी स्वयं सहायता समूहों के माध्यम से, 3 करोड़ की पहले बात की थी लेकिन 10 करोड़ महिलाएं उसमें जुड़ चुकी हैं। मात्र काशी 1.25 करोड़ महिलाएं हैं, तो सालाना 1 लाख रुपया। देखिए पहले जमाने में हम सपना देखते थे कि लखपति बन जाएंगे तो क्या क्या करेंगे,
1: जी
0: और शहरों में चाहे वो अब उतना बड़ा सपना नहीं है, लेकिन ग्रामीण क्षेत्रों में, दूर दराज के क्षेत्रों में जहाँ कैश नहीं है उतना, लखपति बनना अपने आप एक बड़ी उपलब्धि है। और वो महिला बन जाए तो
1: जी
0: लखपति दीदी का जो कंसेप्ट दिया, जो योजना दी, वह महिलाओं को करने वाली योजना है। और कि ये सिर्फ लखपति दीदी नहीं है, वह कमाने वाली बनती है। हुनर हाट की बात उन्होंने की है, और मुद्रा योजना जो पीएम मुद्रा योजना है उससे महिला उद्यमियों को जो लगभग 16 लाख करोड़ रुपए का लोन मिला है, इट्स ए ह्यूज अमाउंट। और जिन महिलाओं को ये मिला है वो धीरे धीरे एमएसएमई के माध्यम से, लघु उद्योगों के माध्यम से, स्वयं सहायता समूह के माध्यम से, अपने उद्यमों के माध्यम से, सबके माध्यम से कारोबार करने लगी हैं। और उन कारोबारों से आगे चलना, मात्र इतना नहीं है कि वो कारोबार प्रारंभ किया है, वो लखपति से आगे भी जाएंगी, ये मेरा पूरा विश्वास है। ये प्रारंभ है लखपति योजना। नमो ड्रोन दीदी, जो ड्रोन बनाई है उन्होंने, वह भी सशक्तिकरण का एक और स्वरूप है। और इनमें जो आंकड़े हैं, विशेष तौर पर आर्थिक सशक्तिकरण के, 3 करोड़ से अधिक महिलाएं लीड कर रही है उन एमएसएमई को जो इस समय देश की प्रगति में अपना योगदान दे रहे हैं। और पी महिला श्रम भागीदारी वृद्धि में भी भारत ब्रिक्स देशों में अग्रणी देश हुआ है। पहले हम बहुत पीछे थे, अभी भी देखिए बहुत आगे तो नहीं आ पाए हैं, वी हैव नॉट क्रॉस 50, पर पहले हम बहुत कहीं भी नहीं थे लगभग। वो 40% है वर्ल्ड बैंक के अनुसार ही। और हम ये मानते हैं कि यदि हमारे यहाँ गणना ठीक से की, जो यह सरकार अवश्य कराएगी और प्रधानमंत्री जी का क्योंकि उस पर विशेष बल है, तो यह भागीदारी और निकल कर आएगी, क्योंकि भारत का बहुत सा श्रम हम काउंट ही नहीं करते हैं। हमारा जो माता की सेवा है, पत्नी की सेवा है, बहन की सेवा, हम उन सबको काउंट नहीं करते कभी भी, बट दे आर ऑल वर्क्स। तो वो
1: एब्सोल्युटली
0: काम भी हो रहे हैं
1: जी
0: जी।
1: जी
0: और जो लखपति दीदी के साथ किसान पीएम, जो पीएम किसान योजना है, एग्रीकल्चर फील्ड में भी मोदी जी ने दृष्टि डाली है। और जो महिलाएं कृषि कर सकती हैं, और आप जानते हो भारत बहुत वर्षों से कृषि इसका एक मेन आयाम रहा है, इसकी अर्थव्यवस्था का, तो पीएम किसान योजना जो बनाई है और विशेष तौर पर उसमें महिलाओं को सशक्त करने के लिए, लगभग वह भी 3 करोड़ से अधिक महिलाओं तक पहुंच चुकी है। इतना ही नहीं, जेंडर बजटिंग तो चल ही रही थी पहले से, उसमें एलोकेशन बढ़ा है। शी मार्ट्स एक आधुनिक व्यापार और अर्थव्यवस्था से जोड़ने का प्रयास है, कि महिला उद्यमों के लिए बाजार ही मुश्किल था। महिला उद्यमी है इसमें कहीं कोई शक नहीं है, लेकिन वो अपना सामान लेकर कहाँ जाएं? तो शी मार्ट्स का कंसेप्ट लाए हैं। और अगर इन सबको हम जोड़ देते हैं तो आप देखें कि महिलाओं के लिए आर्थिक क्षेत्र में आर्थिक मजबूती के, आर्थिक स्वावलंबन के मार्ग खुले हैं। और हम ये मानते हैं, वन हु कंट्रोल्स द पर्स कंट्रोल्स द डिसीजन मेकिंग ऑल्सो। तो
1: एब्सोल्युटली
0: ये
1: एब्सोल्युटली
0: सशक्तिकरण मात्र नहीं है
1: जी
0: जी, ये आजीविका के मुकले हैं
1: यस
0: जी।
1: अदिति जी, सुषमा जी हैज सो ब्यूटीफुली डिस्क्राइब्ड यू नो द वेरियस वेज इन विच फाइनेंशियल एम्पावरमेंट हैज बीन मेड अवेलेबल फॉर वुमेन। इनफैक्ट वी वर टॉकिंग अबाउट द फाइनेंशियल इंक्लूजन एंड द प्रधानमंत्री मुद्रा योजना, एंटरप्रेन्योरियल इंक्लूजन इन विच वुमेन हैव बीन मेजर बेनिफिशियरीज, एंड इंडिया लीडिंग इन इंक्रीजिंग फीमेल लेबर पार्टिसिपेशन अमंग ब्रिक्स कंट्रीज, 3 करोड़ प्लस वुमेन लेड MSMEs are contributing to the country's progress, and 45% of DPIIT recognized startups have female directors. How do you see this inclusion of women in a big way in the economic mainstream of the country?
2: See, I think what you just described is the result of policy framework and policy intent of the government under Prime Minister Narendra Modi, who has clearly said that women are one of the four pillars of Viksit Bharat. If the country has to attain the developed country status by 2047, it is imperative that women are given conditions and, you know, where women are handheld to achieve their true potential. So what we are seeing today is that, driven by several life cycle based approaches through the policy framework.

0: encouraging families to have girl children. So everything is going into their bank accounts. Through the JAM Trinity, which is the Jan Dhan account, Aadhaar, and mobile, you are actually empowering women to become participants in the financial scheme of the country. And the sakhis that you mentioned, bank sakhis, Pashu sakhis, these are women within the self-help groups who are more trained than their peers. And then they help the peers understand what a particular government scheme is like. Because you see, what is the problem? The problem is lack of awareness. The problem is nothing else, that you connect the women who have to benefit from government schemes to the government system. And you decode and demystify all the complex rules of the financial inclusion schemes. So that's where the sakhis fit in. And you have sakhis in different sectors, like you said, Pashu sakhis in the agricultural sector. So these women are helping peers, their other women colleagues, understand what are the benefits available and avail them. Yeah, Sonam.
1: सुषमा जी, अदिति जी ने लाइफ साइकिल टारगेटेड स्कीम्स की बात करी और जो डॉटर्स हैं उनके एजुकेशन उनके बर्थ से ही उनके लिए आगे की उनकी जो फ्यूचर है उसको सिक्योर करना। अगर हम पीएम सुकन्या समृद्धि योजना की बात करें जिसका जिक्र अदिति कर रही थी, तो उसमें जिस तरह का विकास हुआ है, अगर हम देखें तो फाइनेंशियल ईयर 2014-15 में 4.2 लाख अकाउंट्स थे और फाइनेंशियल ईयर 2024-25 में ये संख्या बढ़कर 4,53,00,000 अकाउंट हो गई है। टोटल डिपॉजिट्स 0.001 लाख करोड़ थे FY15 में, जो बढ़कर 3.33 लाख करोड़ रुपीज हो गए हैं FY25 में। सो ये फिगर्स मैं इसलिए बता रही हूँ कि जो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, जो गर्ल चाइल्ड के लिए जो बात करी जाती है, उसको एक बहुत ही ऑन द ग्राउंड भी उसको इम्प्लीमेंट किया जा रहा है, जिस तरह की स्केलिंग हो रही है, ये आपको लगता है बहुत इंपॉर्टेंट है?
2: बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं आदित्य जी के साथ पूरी तरह सहमत हूँ कि जो लाइफ साइकिल अप्रोच हमको चाहिए थी ये वही है। और आपको याद दिलाना चाहती हूँ, जब मोदी जी प्रधानमंत्री बने थे उस समय महिलाओं का लिंगानुपात, द जेंडर रेशियो वुमेन वाज प्रिकेरियस, इट हैड गोन डाउन टू बिलो 900, विच हैज नाउ ऑफ कोर्स बिकम 929, एंड बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ वाज अ प्रोडक्ट ऑफ दैट और वाज बिकॉज ऑफ दैट। और उससे ये लाभ हुआ, ये लिंगानुपात तो बढ़ा ही बढ़ा। आप देखेंगे कि महिला नामांकन शिक्षा के क्षेत्र में, चाहे वह स्कूली शिक्षा हो चाहे वह उच्च शिक्षा हो, उच्च शिक्षा में भी महिला नामांकन 9.86 लाख से 34 लाख हो गया है, विच इज अ ह्यूज जंप। और मात्र इतना ही नहीं है, मैं फिर से याद दिलाऊंगी, जैसा अभी अदिति जी ने कहा कि आप जेईई देख लीजिए, आप सीबीएसई देख लीजिए, आप नीट देख लीजिए, आप बीए एमए पीएचडी यूनिवर्सिटी कन्वोकेशन एक बार देख लीजिए, स्पेशली ऑफ मेट्रोस, यू विल फाइंड वुमेन आउट नंबरिंग मेन in almost all achievements. They've yet to outnumber them in total enrollment, but they're outnumbering in success. And the STEM special, which is a special effort from the government, that we don't limit them to arts and humanities, science, technology, engineering, mathematics, management, and women in boards, they have to be there. And for digital empowerment of women, which I think is will empower them much more in the given times, वहाँ भी सरकार ने प्रयास किया है कि digital marketing, cyber security और सुरक्षा, नव्या योजना जो चलाई है 16 से 18 वर्ष की बच्चियों के लिए कि उनको ट्रेन किया जाए फॉर साइबर सिक्योरिटी एंड डिजिटल मार्केटिंग, दोनों उनको तैयार करती हैं आने वाले समय के लिए और इस समय जिस प्रकार का वातावरण प्रगति के लिए आवश्यक है उसके लिए भी।
1: बिल्कुल,
2: मैं ये भी याद दिलाना चाहूंगी यहाँ कि स्वास्थ्य सुरक्षा स्वच्छता ये साइकिल के पहले पहिए हैं जहां से आरंभ किया जा रहा है। प्रधानमंत्री जी ने बार बार उज्ज्वला योजना के माध्यम से, जो अब 11 करोड़ महिलाओं तक पहुंच चुके हैं एलपीजी कनेक्शन, फिर जनौषधि केंद्रों के माध्यम से महिलाओं की बेसिक फैसिलिटीज के लिए, सुरक्षित मातृत्व अभियान के तहत मोर एंड मोर वुमेन वर ब्रॉट टू हॉस्पिटल्स, इट्स मोर देन 7.3 करोड़ नाउ, फिर मातृवंदना योजना जो पीएम मातृवंदना योजना है, मोर देन 20,000 करोड़ वुमेन वर एक्सेस्ड, और फिर मिशन इंद्रधनुष के तहत जिसमें बच्चे भी हैं माताएं भी हैं, वुड बी मदर्स आर देयर
1: फॉर द यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम, ऑल्सो लॉट ऑफ एफर्ट्स हैव बीन मेड एज यू आर रेफरिंग, यू नो, टिल मार्च 2026 मोर देन 11.87 करोड़ चिल्ड्रन एंड 3.96 करोड़ प्रेग्नेंट वुमेन वर रजिस्टर्ड एंड 8.73 करोड़ वुमेन वर स्क्रीन फॉर सर्विकल कैंसर। एक और जो आपने बात करी मातृत्व सपोर्ट दी जा रही है, जी, सो मेटर्नल मोर्टेलिटी रेट्स बहुत नीचे आए हैं, इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट्स नीचे आए हैं और इंस्टीट्यूशनल डिलीवरीज प्रतिशत से बढ़कर 90% से अधिक हो गई है। जी 98 बिल्कुल 98% तो ये आपको लगता है कि एक तरह से एक माइंडसेट चेंज को भी रिफ्लेक्ट कर रहा है कि

0: लोगों का विश्वास बढ़ रहा है जो इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोवाइड किया जा रहा है गवर्नमेंट द्वारा?
1: लोगों का विश्वास बढ़ रहा है, महिलाओं का आत्मविश्वास बढ़ रहा है
0: जी,
1: ये दोनों चीजें साथ साथ चल रही हैं।
0: जी जी
1: क्योंकि जो इंस्टीट्यूशनल डिलीवरीज है, पहले तो ले जाते ही नहीं थे, सुविधाएं नहीं थी, असुरक्षा भी थी। फिर जो अभी शौचालय सुविधा बढ़ी है, जस्ट गॉन फ्रॉम 39% टू 100%। सो एवरी हाउस होल्ड हैज अ टॉयलेट और अ कवर्ड टॉयलेट एज वी से। सो ODF फ्री इंडिया, देन जो मातृ मृत्यु दर, मोर्टेलिटी एज यू सेड, which has really reduced from 130 to 80, which is a huge change.
0: Yes.
1: Not merely this, the maternal leave vacancies, leaves which were there granted before, they have increased from 12 weeks to 36 weeks, 26 weeks. And I think that has given the mother and child a leverage in terms of health and quality time spent together,
0: yes,
1: which will surely lead to healthier generations in coming times.
0: And also when
1: yes,
0: women are healthier and when, you know, they are freed from duties like fetching water from miles, you know, due to the Jal Jeevan Mission, you think they have more time to devote to, you know, economic activities?
1: More time to devote to economic activities, more time to devote to their capacity building, more time to devote to thinking about their future. Yes. You can see the women have dreams about their children now, and especially the daughters. I have come across, as a woman vice chancellor, literally, I met so many women who were very, very eager that their children, or especially girl children, come to higher education and go to fields which were unheard of before. So that kind of mindset, that kind of dreams, that kind of aspirations, it's aspirational India now, has come up.
0: Yes.
1: Aur Modi ji jo baar baar kehte hain, स्वस्थ नारी ही स्वस्थ राष्ट्र के जन्मदाता है और स्वस्थ राष्ट्र ही सशक्त राष्ट्र बन सकता है. दिस इज द लिंकेज बिटवीन वुमेन्स हेल्थ एंड द एम्पावर्ड और विकसित भारत, एज वी से आत्मनिर्भर भारत भी उसी में मिला हुआ है.
0: एब्सोल्युटली. आदित्य जी, कमिंग टू यू, अगर हम सेफ्टी की बात करें, एक डिग्निफाइड लाइफ की बात करें, तो जो मिशन शक्ति एक मिशन वो रहा है मुहिम सरकार का, जिसके तहत उन्होंने कई ऐसे इनिशिएटिव वो लाए हैं जिससे कि महिलाएं सुरक्षित महसूस करें, जिसमें अभी जो लेटेस्ट है शी बॉक्स पोर्टल, जो डिजिटल प्लेटफॉर्म है सेक्सुअल हैरेसमेंट कंप्लेंट्स का वर्क प्लेस पे, उनको रजिस्टर करने का, इसके बारे में आप थोड़ा सा बता सकती हैं कि इसका विस्तार 12 वर्षों में कितना हुआ है, ये सेफ्टी नेट का विमेन के लिए, और इसके कारण कितनी सशक्त महसूस कर रही हैं आज की महिलाएं?
2: देखिए, जो आपने प्रश्न पूछा है सेफ्टी का, जो इशू है महिलाओं का, मुझे लगता है सबसे इम्पोर्टेंट जो मुद्दा है इस वक्त वो यही है कि महिलाओं के लिए सेफ्टी और उनकी सिक्योरिटी जब वो अपने काम पर जाएं. जैसे हमें याद आता है RG कार का जो बड़ा इंसिडेंट हुआ था कलकत्ता में, उसके बाद कितना रोष था, उससे पहले निर्भया हुआ. ये बड़े बड़े इंसिडेंट्स जब हमारी सोसाइटी में हुए, उनसे क्रिमिनल लॉज को बदला गया. निर्भया के बाद आपको याद है कॉम्प्रिहेंसिव क्रिमिनल लॉज लाए गए. लेकिन आज भी दुख की बात यह है कि क्राइम्स अगेंस्ट वुमेन बढ़ रहे हैं, और इस मुद्दे पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने खुद 2-3 बार बोला है कि सबसे अर्जेंट क्राइसिस यही है और इसी को रिजॉल्व करने की जरूरत है. और इसी के मद्देनजर मुझे लगता है कि प्रधानमंत्री ने जब एक बहुत बड़ा वक्तव्य रेड फोर्ट से अपनी इंडिपेंडेंस डे स्पीच में दिया था, जब उन्होंने कहा था पेरेंट्स को कि आप अपने बेटों को कल्चरल वैल्यूज, एथिकल वैल्यूज समझाइए, उनको घर में ये प्रशिक्षण दीजिए, ये वैल्यू सिस्टम दीजिए, ये शिक्षा दीजिए कि महिलाओं की इज्जत करना ये जरूरी है और ये एक आम बात होनी चाहिए. मतलब ये सोसाइटी का कर्तव्य है, हर चीज सरकार नहीं कर सकती. हमने देखा है कि इस सरकार का भी एक बहुत बड़ा मुहिम रहता है जन भागीदारी का. जो बड़े बड़े चैलेंजेस सोसाइटी फेस करती है, जैसे हमने सदियों से देखा, जब कुरीतियों को हटाया गया, सती प्रथा को हटाया गया, पर्दा सिस्टम को हटाया गया, सोसाइटी ने अपने अंदर से रिफॉर्मर्स पैदा किए जिन्होंने इन कुरीतियों को हटाया. मुझे लगता है विमेन सेफ्टी को लेके वही मुहिम इस वक्त चाहिए. सोसाइटी को खुद बोलना होगा कि इनफ इज इनफ, क्योंकि ये जो बात है अपने हाथ में लोगों को लेनी होगी. एक पॉलिटिकल विल एक लीडर दिखा सकते हैं, जैसे प्रधानमंत्री अपनी पॉलिटिकल विल महिला सशक्तिकरण, महिला सेफ्टी के पीछे दिखा सकते हैं, लेकिन एक लिमिट के बाद सरकार के भी हाथ बंधे होते हैं. उसके बाद सबसे बड़ा जो एजेंट ऑफ चेंज है सोनू, वो समाज है, वो सरकार नहीं है. समाज सबसे बड़ा एजेंट ऑफ चेंज है. और जहां तक कि आपने जेंडर बजटिंग की बात की और आपने मिशन शक्ति की बात की, उसके तहत जेंडर फोकस्ड एलोकेशंस बहुत बढ़ाई गई हैं ओवर द इयर्स. जैसे अगर आप यही बजट उठा के देख लीजिए 26-27 का, उसमें सिग्निफिकेंट राइज किया गया है जेंडर बजटिंग के लिए, जिसका बहुत सारा

0: पोर्शन महिला सशक्तिकरण और महिला सेफ्टी की तरफ जाएगा। इस वक्त करीब 10% जो हमारे वित्त मंत्री जी ने दिया, 10% उसका जो टोटल बजट का हिस्सा है वो जेंडर बजटिंग है, जो एक बहुत बड़ा हिस्सा है। अगर उसको अच्छे से व्यय किया जाए तो कोई वजह नहीं है कि सिस्टम्स इन प्लेस ना हो, पर आप सीसीटीवीज लगा देंगे, आप वन स्टॉप सेंटर्स बना देंगे सोनू, लेकिन आप समाज का जो माइंडसेट है वो कैसे बदलेंगे? आप एक पुरुष का महिला की तरफ देखने का रवैया कैसे बदलेंगे? उसमें तो फैमिलीज का रोल आ जाता है ना, उसी में
1: जी
0: समाज का रोल आ
1: जी
0: जाता है।
1: बिल्कुल ही, पार्टिसिपेटिवली ही ये चेंज लाया जा सकता है। और जो भी व्यवस्था है, 15,000+ विमेन हेल्प डेस्क है सारे जो पुलिस स्टेशन है इंडिया में उनमें, और जैसा आपने वन स्टॉप सेंटर्स का जिक्र किया, 1,000 से ज्यादा है, 24/7 विमेन हेल्पलाइंस है, और 700+ फास्ट ट्रैक स्पेशल कोर्ट्स हैं जो विमेन को ही त्वरित जस्टिस प्रोवाइड करने के लिए हैं। लेकिन इन सबका भी इस्तेमाल, ऑफ कोर्स प्रिवेंशन इज द बेस्ट क्योर, बट अगर कुछ होता है तो ये हिम्मत होनी चाहिए, समाज का सपोर्ट होना चाहिए कि आप आगे आएं और इन फैसिलिटीज का फायदा उठाएं ताकि आगे से जो है इस तरह के हादसे ना हो, मिनिमाइज हो। सो एक प्रोएक्टिव रोल सबको प्ले करना जरूरी है इन सुविधाओं का फायदा उठाने के लिए भी।
0: बिल्कुल, ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि जो सिस्टम्स इन प्लेस हैं, पहली बार उसकी अवेयरनेस क्रिएट करनी जरूरी है, जिसकी तरफ बहुत काम हो रहा है। दूसरी बात ये है कि जुडिशरी और पुलिस सिस्टम, देखिए आप अगर पूरे विश्व में देखेंगे और आप अगर विश्लेषण करेंगे कौन सी सोसाइटी सबसे ज्यादा सेफ मानी जाती हैं, कौन सी सोसाइटी सबसे ज्यादा ट्रांसपेरेंट और करप्शन फ्री मानी जाती हैं, तो आप ये पाएंगे कि उन सोसाइटीज के लोग ये कहते हैं कि उनका विश्वास पुलिस सिस्टम में और जस्टिस सिस्टम में सबसे ज्यादा है, जजेस और कॉप्स में। तो हमारे देश के लिए ये भी एक बड़ा चैलेंज है कि जब महिला अपना कोई कंप्लेंट लेकर पुलिस के स्टेशन में जाती है तो उसे ये कन्विंस्ड होनी चाहिए उस वक्त कि मेरी बात वहां बैठा हुआ पुलिस पर्सोनल सुनेगा, मेरी बात को सेंसिटिविटी से लेगा, मेरे कैरेक्टर की जजमेंट में नहीं बैठेगा। वैसे ही जो जजेस हैं उनके लिए भी बहुत सारे प्रशिक्षण हुए हैं। देखिए जब जब सेक्सुअल असॉल्ट की बात हुई है, बहुत सारे पाथ ब्रेकिंग जजमेंट्स आए हैं और बहुत सारे ऐसे केसेस हुए हैं जिसकी वजह से लॉज बदले गए हैं। आपको पता है कि पहले जमाने में हम इसी बात से जूझते रहते थे कि जजेस भी महिलाओं के कैरेक्टर को जज करने, टू फिंगर टेस्ट बहुत आम होता था। आपका सबसे पहले आपके कैरेक्टर पर उंगली उठाई जाती थी अगर आप सेक्सुअल असॉल्ट का कोई कंप्लेन करें, लेकिन वो अब स्टैट्यूट बुक से हटा दिया गया है।
1: जी
0: अब
1: जी
0: अगर महिला कहती है उसके साथ यौन उत्पीड़न हुआ है तो पुलिस उसको मानेगी, उसकी सुओ मोटो स्टेटमेंट रिकॉर्ड
1: बिल्कुल
0: होगी, और ओनस टू प्रूव अदरवाइज वो परपेट्रेटर ऑफ द क्राइम पर है, ना कि महिला पर है जो पीड़ित है। सो ये भी एक बहुत बड़ी डिबेट है जिसकी तरफ भी अब सोसाइटी जा रही है, क्योंकि अब पूरा माहौल, पॉलिटिकल विल इस तरफ है कि
1: जी
0: महिलाओं के
1: बिल्कुल
0: साथ सरकार भी खड़ी है, पॉलिसी भी खड़ी है, और इस वक्त कुछ कुछ हद तक लगता है कि समाज भी खड़ा है।
1: सुषमा जी, आप अभी थोड़ी देर पहले डिजिटल एम्पावरमेंट की बात कर रही थी, स्वयं सहायता समूह की महिलाएं हैं या और जो एंटरप्रेन्योर्स हैं उनके लिए जो अपॉर्चुनिटीज क्रिएट की गई हैं, शी मार्ट जो इनिशिएटिव है या गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस के अंडर जो वुमनिया इनिशिएटिव है जिसमें 2 लाख से अधिक विमेन लेड एंटरप्राइजेस रजिस्टर्ड हैं और इसमें 28,000 करोड़ से अधिक का कॉन्ट्रैक्ट वैल्यू इन विमेन लेड एंटरप्राइजेस को पिछले वित्त वर्ष में बिक्री हुई इस माध्यम से, जो कि 27% ग्रोथ थी FY25 के मुकाबले। सो आपको लगता है कि ये जिस तरह का सशक्तिकरण डिजिटल माध्यमों से भी हो रहा है, चाहे वो ये मार्केटिंग अपॉर्चुनिटीज प्रोवाइड करना हो या जो हेल्थ सिस्टम में हेल्थ कार्ड्स हर फील्ड में या इम्यूनाइजेशन में ट्रैकिंग डाउन की किसको कितना क्या टीकाकरण हुआ है, डिजिटाइजेशन ने बहुत बड़ा रोल प्ले किया है विमेन एम्पावरमेंट में भी।
2: जी बिल्कुल, मैं मानती हूँ, क्योंकि जो डिजिटल एक्सेस है, विच इज इजिएस्ट फॉर वुमेन स्पेशली, इफ यू डोंट हैव टू गो एनीवेयर एंड यू कैन स्टिल एक्सेस मोस्ट ऑफ द फैसिलिटीज, नथिंग बेटर देन दैट, दैट इज ऑलमोस्ट बेस्ट, बिकॉज अपने आप में मूवमेंट या आवागमन जिसको कहते हैं, वो महिलाओं का समय भी लेता है, शक्ति भी लेता है और कई बार कुछ सीमाएं भी डालता है। इसलिए डिजिटल एम्पावरमेंट, डिजिटल ट्रेनिंग और डिजिटल कैपेसिटी बिल्डिंग, ये टारगेट रहा है सरकार का इन सभी क्षेत्रों में जो अभी आपने कहे हैं, मैं दोबारा रिपीट नहीं कर रही हूँ, लेकिन इनसे महिलाएं तैयार हुई हैं व्यापारी बनने के लिए, उद्यमी बनने के लिए और विकास के कार्यों में जुड़ने के लिए, क्योंकि सरकार का उद्देश्य था, मैं बार बार कह रही हूँ, मोदी जी कहते हैं हम क्या करेंगे, पहले उनको वित्तीय सहायता देंगे, फिर उनका कौशल विकास करेंगे और फिर उन्हें प्रशिक्षण भी देंगे। देर कांट बी बेटर

0: recipe. Because if you get some financial support, which women need usually, and maybe after some time they don't even need, they may have their own groups, they may
1: Yes.
0: have their own financiers also, like they're coming up now. But with that, you also need latest skills because skills keep changing. And the market needs different kinds of skills. At times, they may be digital skills in coming time. And you see, women are really very good at that because this is heart and hand, both going together. And then, if you really train them into the right kinds of skills and empowerment techniques, also, I would say, or fields, then they're ready for the world. और ये सरकार चाहती है, विमेन लेड डेवलपमेंट कब होगा? वो एक माध्यम तो यही है, पहला स्वास्थ्य, उसके बाद सुरक्षा, उसके बाद आर्थिक सहायता या आर्थिक स्वावलंबन, उसके बाद पॉलिटिकल एम्पावरमेंट। क्योंकि मैं ये बात जरूर करना चाहती हूँ यहाँ कि जिस प्रकार से महिलाओं ने प्रधानमंत्री जी का हर स्थान पर स्वागत किया है, उनका साथ दिया है, उनको सपोर्ट किया है, उसके पीछे ये सारे तो हैं ही, वो राजनीतिक सोच भी है, जहां नारी शक्ति वंदन अधिनियम उनकी प्रतीक्षा कर रहा है। 33% एट द लोकल रूट्स और द ग्रास रूट्स हैज कम टू 50% और मोर देन 50%। और यही 33% जब पार्लियामेंट्स और लेजिस्लेचर्स में आएगा, मुझे विश्वास है जो अभी योजनाएं चली हैं, ये 10 गुनी 100 गुनी होकर आगे आएंगी। और जो माहौल अभी आप बात कर रही थी, अदिति जी कह रही थी कि लगभग समाज भी तैयार है, राष्ट्र और समाज दोनों उसके लिए तैयार होंगे।
1: इनफैक्ट जो आप बोल रही हैं, अगर हम पॉलिटिकल कॉन्शियसनेस की बात करें तो महिलाएं 48.62% है इलेक्टोरेट का, और हमारा वोटर टर्नआउट जो है, मैं हमारा इसलिए कह रही हूँ कि हम तीनों महिलाएं हैं, 65%
0: जी
1: से अधिक है जो पुरुषों से कुछ ऊपर है, और 14.5 लाख महिलाएं पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस में इलेक्ट हुई हैं, जो कि 46% है टोटल वहां जितने भी अधिकारी हैं उनका। एंड ये पाया गया है कि जब से विमेन आई हैं एडमिनिस्ट्रेशन में, उन्होंने जो रोजमर्रा की लाइफ है उसको बेहतर करने का, एमिनिटीज डेवलप करने पर फोकस किया है। सो ये एक ट्राइड एंड टेस्टेड है उनका जो एडमिनिस्ट्रेटिव एक्यूमेन है वो भी।
0: बिल्कुल, आई विल से दैट, एंड आई हैव बीन पार्ट ऑफ पब्लिक पॉलिसी एंड गवर्नेंस इन इंडिया। आई हैव सीन इट फ्रॉम वेरी क्लोज। आई कैन से विमेन एडमिनिस्ट्रेटर्स, विमेन रिप्रेजेंटेटिव्स, फर्स्ट टाइमर, मे बी एडमिनिस्ट्रेशन में तो फर्स्ट टाइमर सभी होते हैं, सो इट रियली डजंट मैटर, दे लर्न। एंड आई हैव मेट एडमिनिस्ट्रेटर्स हु से दैट वी क्वेश्चन्ड अवर ऑफिस व्हेन दे से दिस कांट बी डन। तो हमने उनसे पूछा क्यों नहीं हो सकता है, व्हाई आर वी हियर? तो लिखे कानून ही सिर्फ चलेंगे या नागरिक सुविधाएं बढ़ेंगी? आपको याद है अभी प्रधानमंत्री जी जब काशी में बोल रहे थे तो उन्होंने कहा था नागरिक देवो भव, यानी पढ़ाई, कमाई, दवाई, सिंचाई, सुनवाई उन तक पहुंचे। और जो महिला प्रशासक हैं, विमेन एडमिनिस्ट्रेटर्स, स्पेशली इन ऑफ यंग वंस, दे हैव दिस इन देयर माइंड, तो गवर्नेंस का रूप बदलेगा। और फिर जब यही सीनियर होंगी तो नीतियों का रूप भी बदलेगा, क्योंकि नीतियां भी जब फर्स्ट एंड एक्सपीरियंस से बनेगी, केवल कंसल्टेंट्स नहीं बनाएंगे, प्रशासक और नागरिक मिलकर बनाएंगे, तो वो नीतियां भी अच्छी बनेगी।
1: अदिति जी, आपको लगता है कि जैसे जैसे महिलाओं का सशक्तिकरण होता है तो अपने आप ही उनका जो सम्मान है, जो एक दर्जा है समाज में, वो बढ़ जाता है और समाज का भी जो माइंडसेट है वो जेंडर इक्वालिटी की तरफ जाता है?
2: इनफैक्ट मुझे ऐसा लगता है कि जब आप महिला सशक्तिकरण की बात करते हैं, उसका सबसे इम्पोर्टेंट यार्डस्टिक ये होता है कि क्या कोई सिस्टम, क्या कोई सरकार इस चीज के लिए तैयार है कि एक साथ महिला और पुरुष लीडर्स एक ही टेबल पर बैठकर देश के भविष्य के लिए नीतियां बनाएं या
1: जी
2: लेजिस्लेशन बनाएं। तो नारी शक्ति वंदन अधिनियम का पास होना या उसके पीछे पॉलिटिकल इंटेंट का होना एक बहुत बड़ा माध्यम है इस चीज को जताने का कि हाँ, सरकार पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन के लिए अब तैयार है। अभी हम बात कर रहे थे कि पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस में, लोकल बॉडीज में महिलाओं का कितना बड़ा रोल अब हो चुका है। वो इसलिए संभव हुआ है सोनू, क्योंकि 1992 में कॉन्स्टिट्यूशन अमेंड कर दी गई थी और 33% सीट्स आरक्षित कर दी गई थी पंचायती लेवल पर महिलाओं के लिए। वो अब आते आते तमाम प्रदेशों ने 50% कर दी है। इतने साल लग गए हैं महिला लीडरशिप को तैयार करते करते। तो अब हम जब नारी शक्ति वंदन अधिनियम की बात करते हैं, तो जब अब ये एक आकार लेगा जब भी, जैसे प्रधानमंत्री ने कहा है कि 2029 का जो अगला इलेक्शन है वो 33% महिलाओं के साथ आरक्षण के साथ लड़ा जाएगा, अगर वो संभव हो पाया तो तब से लेकर फिर महिला सशक्तिकरण का असली दौर शुरू होगा, जब महिलाएं पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन में उनको अपना सही हिस्सा मिलेगा।
1: So as India moves towards the goal of Viksit Bharat by 2047, the role of women is increasing.

0: department. Participants were Professor Sushma Yadav and Aditi Tandon, senior journalist. Moderator was Sonu Sood. This program was produced and presented by the News Services Division of Akashvani. Vishesh Shrinkhala ke antargat abhi aap sun rahe the Modi Sarkar ke 12 saal Mahila Sashaktikaran ka Parivartankari Dashak. Isme bhag le rahi thi Professor Sushma Yadav aur varishth patrakar Aditi Tandon. Karyakram ka sanchalan kar rahi thi Sonu Sood. ये कार्यक्रम आकाशवाणी के समाचार सेवा प्रभाग द्वारा प्रस्तुत किया गया।
1: अभी हम आकाशवाणी दिल्ली से रिले कर रहे थे केंद्र सरकार के 12 साल पूरे होने के उपलक्ष्य में विशेष श्रृंखला, विषय था युवा शक्ति। एफएम बैंड पर ये आकाशवाणी का बिलासपुर केंद्र है। 7:45 हुए हैं। लीजिए सुनिए चित्रपट संगीत।

इस गीत को हमने लिया था लता मंगेशकर मोहम्मद रफी की आवाजों में। फिल्म का नाम था इंतकाम। रचना थी राजेंद्र कृष्ण की, संगीत था लक्ष्मीकांत प्यारे लाल का। अगला गीत सुनने से पहले लीजिए सुनिए एक सूचना। महिला एवं बाल विकास मंत्रालय भारत सरकार द्वारा प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार 2026 के लिए नामांकन आमंत्रित किया गया है। प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार प्रतिष्ठित राष्ट्रीय पुरस्कार है जो 18 वर्ष के कम उम्र के बालक और बालिकाओं को वीरता, समाज सेवा, पर्यावरण, खेल, कला एवं संस्कृति, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी में असाधारण उपलब्धियों के लिए प्रदान किया जाता है। नामांकन या अनुशंसा ऑनलाइन माध्यम से राष्ट्रीय पुरस्कार पोर्टल https://awards.gov.in पर 31 जुलाई 2026 तक जमा किया जा सकता है। विस्तृत विवरण राष्ट्रीय पुरस्कार पोर्टल पर जाकर प्राप्त किया जा सकता है। सूचना समाप्त हुई। चित्रपट संगीत कार्यक्रम में अब आगे बढ़ते हैं और सुनते हैं अगला गीत लता मंगेशकर और किशोर कुमार की आवाजों में। फिल्म का नाम है मन मंदिर। शब्द हैं राजेंद्र कृष्ण के, संगीत है लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का।

इस गीत के बाद लीजिए सुनिए चित्रपट संगीत कार्यक्रम का अंतिम गीत। स्वर है मोहम्मद रफी का, फिल्म का नाम है गंवार, शब्द हैं राजेंद्र कृष्ण के, संगीत है नौशाद का।

फिल्म गंवार के इस गीत के साथ ही चित्रपट संगीत का यह कार्यक्रम अब समाप्त होता है। आकाशवाणी के ये बिलासपुर केंद्र है, पेश है सुगम संगीत। आज की कलाकार हैं राधिका चोपड़ा।

इसके बाद लीजिए सुनिए सुगम संगीत कार्यक्रम की अगली पेशकश। इसमें आज की कलाकार हैं राधिका चोपड़ा।

आइए अब सुनते हैं सुगम संगीत कार्यक्रम की अंतिम पेशकश। कलाकार हैं राधिका चोपड़ा।

ये थी सुगम संगीत कार्यक्रम की आखिरी पेशकश। अभी आप सुन रहे थे सुगम संगीत, कलाकार थी राधिका चोपड़ा। आकाशवाणी का ये बिलासपुर केंद्र है। लीजिए अब सुनिए कार्यक्रम रजनीगंधा। रजनीगंधा कार्यक्रम सुनने वाले सभी श्रोताओं को रत्नाकर नमस्कार। आज के इस कार्यक्रम में हम लेकर आए हैं गीत शीर्षक पर कुछ मधुर फिल्मी गीतों को। श्रोताओं, गीत स्वर और ताल से बंधी हुई एक ऐसी मधुर शब्द रचना है जो सुनने वाले के मन को प्रफुल्लित कर देती है। यह किसी कविता का संगीतमय रूप होता है जिसे गाकर या किसी वाद्य यंत्र के साथ प्रस्तुत किया जाता है।

मन की भावनाओं को जब लय, ताल और तुक के संतुलित प्रयास के साथ प्रस्तुत किया जाता है तो वह गीत बन जाता है। गीत के बोल यानी शब्द जितने ज्यादा मनमोहक होते हैं और धुन जितनी ज्यादा मधुर होती है, गीत उतना ही अधिक मनमोहक लगने लगता है, जिसे सुनकर मन खींचा चला जाता है और अनायास ही होठों पर आ जाता है और हम गुनगुना उठते हैं।

0: एक पारंपरिक गीत में एक मुखड़ा और कुछ अंतरे होते हैं। हर एक अंतरे के बाद मुखड़े को दोहराया जाता है। यह प्रेम, भक्ति, विरह, उत्सव और देश प्रेम जैसी भावनाओं को व्यक्त करते हैं।
1: उठे सबके कदम, देखो रम पम पम।

0: पसंद प्यार के जहां में रजामंद जब हम तुम
1: हम बन गए हैं सनम बेधड़क मेरे घर आया करो कभी खुशी कभी गम तारा रम पम

गीत साहित्य की एक लोकप्रिय कला है। गीत रचनाएं प्राचीन काल से लिखी जा रही हैं, जो हमारा इतिहास भी बताती हैं। अलग अलग समय और परिस्थितियों के ऊपर भी गीत लिखे जाते हैं, जिसकी अपनी विशेषता होती है, अपने विषय होते हैं। हर दर्द को अपने आंसुओं में बहाया है मैंने, जिंदगी के हर गीत को खुशी से गुनगुनाया है मैंने।

किसी ने क्या खूब लिखा है, जब लफ्ज भी साथ छोड़ दें तन्हाइयों में, तब दिल के गीत गूंजते हैं परछाइयों में। जी हाँ, दिल की बातें, मन की भावनाएं कई बार एक गीत बनकर ही तो प्रस्तुत होते हैं, जो किसी के दिल को भी छू लेते हैं।

गीत किसी भी प्रकार के हों, किसी भी धुन में गाए जाएं, वे सुर और ताल के साथ मनमोहक बन ही जाते हैं। फिर चाहे वे प्यार भरे गीत हों, प्रकृति के गीत हों, ऋतु गीत हों, हास्य व्यंग वाले गीत, लोकगीत या फिर हों प्रेम गीत, हम तो यही कहेंगे कि तुम जो आए तो जिंदगी बनी एक हसीन गीत, पहले तो खामोशियों में सिर्फ गूंजता था संगीत।

और इस गीत के साथ ही आज के रजनीगंधा कार्यक्रम से अब रत्ना को दीजिए अनुमति। आज के इस कार्यक्रम में हम लेकर आए थे गीत शीर्षक पर कुछ मधुर फिल्मी गीतों को। आकाशवाणी का ये बिलासपुर केंद्र है, 8:45 होने को हैं समाचार। कुछ ही देर में हम

0: ये जाएंगे समाचार।
1: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार संध्या के साथ मैं आकर्षिता सिंह। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आर्थिक सलाहकार परिषद के साथ बैठक की, देश की आर्थिक परिवर्तन और दीर्घकालिक विकास प्राथमिकताओं की समीक्षा की। केंद्र ने खाद्य तेलों के लिए मानक पैकिंग साइज लागू किए, इसका उद्देश्य पारदर्शिता बढ़ाना और एक समान पैकेजिंग को बढ़ावा देना है। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने नई दिल्ली में नेपाल के विदेश मंत्री शिशिर खनाल से बातचीत की, कहा दोनों देश खुली सीमा पर सुरक्षा बनाए रखने के लिए निकट सहयोग कर रहे हैं। कुवैत और बहरीन में अमरीकी सैन्य ठिकानों पर ईरान के बैलिस्टिक मिसाइल हमले से पश्चिम एशिया में तनाव बढ़ा। जापान में भारतीय पुरुष हॉकी टीम ने जापान को हराकर अंडर 18 एशिया कप जीता, भारतीय महिला टीम ने कांस्य पदक हासिल किया। और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज प्रधानमंत्री आर्थिक सलाहकार परिषद के सदस्यों के साथ बैठक की अध्यक्षता की। प्रधानमंत्री और परिषद ने वैश्विक उथल पुथल के दौर में भारत की आर्थिक वृद्धि को और बढ़ावा देने के लिए कई विचारों और उपायों पर चर्चा की। जीवन यापन और व्यापार को सुगम बनाने के लिए विभिन्न सुधारों पर भी विचार विमर्श किया गया। सदस्यों ने भारत और विश्व पर पश्चिम एशिया संघर्ष से पड़ने वाले प्रभाव का भी आकलन प्रस्तुत किया। प्रधानमंत्री ने कहा कि उन्होंने भारत के आर्थिक परिवर्तन और दीर्घकालिक विकास प्राथमिकताओं से संबंधित व्यापक मुद्दों पर विचार विमर्श किया। सभी सदस्यों ने सुधार यात्रा को और गति देने तथा जीवन यापन और व्यापार में सुगमता सुनिश्चित करने के लिए अपने विचार साझा किए। आर्थिक सलाहकार परिषद एक स्वतंत्र निकाय है जो भारत सरकार विशेष रूप से प्रधानमंत्री को आर्थिक और संबंधित मुद्दों पर सलाह देती है। युवा कार्यक्रम और खेल मंत्री डॉ. मनसुख मांडविया ने कहा है कि युवा देश की सबसे बड़ी शक्ति है और वर्ष 2047 तक विकसित भारत का सपना पूरा करने में अग्रणी भूमिका निभाएंगे। नई दिल्ली में विकसित भारत के लिए युवा माई भारत यूथ कन्वेंशन में श्री मांडविया ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राष्ट्र निर्माण में युवाओं की आकांक्षाओं, विचारों और स्वैच्छिक योगदान की भावनाओं को साझा करने के लिए देश को ये मंच प्रदान किया है।
2: देश का 65 पॉपुलेशन बिलो 35 है, यानी कि देश युवा देश है। ये देश की युवा की शक्ति को विकसित भारत के राह पर ले जाने के लिए संयोजने का काम नरेंद्र मोदी जी ने करा है।
1: विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने कहा है कि भारत और नेपाल लंबी और खुली सीमा पर सुरक्षा बनाए रखने के लिए घनिष्ठ सहयोग कर रहे हैं और दोनों देश संकट के समय हमेशा एक दूसरे के साथ खड़े रहे हैं। नई दिल्ली में नेपाल के विदेश मंत्री शिशिर खनाल के साथ बैठक के दौरान डॉ. जयशंकर ने कहा कि दोनों देशों के बीच संबंध जीवंत, जनसंबंध, सीमा पार संपर्क तथा साझा सांस्कृतिक और धार्मिक परंपराओं की मजबूत नींव पर बना है।
3: Collaborate closely to maintain security along and uniquely open border.
4: सुरक्षा बनाए रखने के लिए मिलकर काम करना होगा। दोनों देश आवश्यकता के समय हमेशा एक दूसरे के साथ खड़े रहे हैं। पश्चिम एशिया और मध्य पूर्व में जारी संकट के बावजूद हमने नेपाल को ईंधन की सप्लाई बिना किसी रुकावट के जारी रखी है। दोनों पक्षों की ओर से इस रिश्ते को जो महत्व दिया जाता है वह हाल ही में सामने आया है।
3: Realize the full potential of our time.
1: श्री खनाल ने कहा कि भारत नेपाल का सबसे महत्वपूर्ण साझेदार है और नेपाल ने भारत को सर्वोच्च प्राथमिकता दी है। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने कहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में प्रतिबंधों की धमकी देकर भारत की संप्रभुता को कमजोर करने का कोई भी प्रयास उल्टा पड़ेगा। सेंट पीटर्सबर्ग में श्री पुतिन ने स्वतंत्र निर्णय लेने और राष्ट्रीय हितों की रक्षा के प्रति भारत की प्रतिबद्धता पर बल दिया। उन्होंने कहा कि भारत ने बाहरी दबाव की परवाह किए बिना हमेशा अपने हितों को ध्यान में रखते हुए निर्णय लिए हैं। श्री पुतिन ने कहा कि रूस और भारत के संबंध आपसी विश्वास पर आधारित हैं और व्यापार से कहीं आगे तक हैं। उन्होंने कहा कि दोनों देश ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल कार्यक्रम सहित संयुक्त अनुसंधान और विकास परियोजनाओं में सक्रिय रूप से शामिल हैं। ये समाचार

0: सुरक्षा स्कीम के टेलीलॉ न्याय बंधु कानूनी साक्षरता एवं जागरूकता कार्यक्रम से जुड़े कानूनी सहायता टेलीलॉ के टोल फ्री नंबर 1454 और वेबसाइट www.tele-law.in से प्राप्त की जा सकती है।
1: समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। केंद्र सरकार ने कानूनी माप प्रणाली के अंतर्गत खाद्य तेलों के लिए मानक पैकिंग लागू की है। इससे बाजार में अधिक पारदर्शिता और एक रूपता आएगी। उपभोक्ता कार्य विभाग ने खाद्य तेलों और घी की शुद्ध मात्रा तथा मानक पैक आकार निर्धारित करने संबंधी मानक संचालन प्रक्रिया में संशोधन किया है। स्वीकृत पैक आकार 200 ग्राम 500 ग्राम 1 से 5 किलो 15 और 20 किलो हैं। इस पहल का उद्देश्य बाजार में विभिन्न पैकेज आकारों की बढ़ती संख्या कम करना है। इससे उपभोक्ताओं के लिए कीमतों की तुलना और सोच समझकर खरीदारी करना आसान हो जाएगा। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा है कि पश्चिम बंगाल में लंबे समय से लंबित रेलवे परियोजनाओं का समाधान होने से राज्य में रेलवे अवसंरचना विकास के एक नए युग की शुरुआत होगी। कोलकाता के नबन्ना में श्री वैष्णव ने बताया कि वर्ष 2026-27 के रेल बजट में पश्चिम बंगाल के लिए 14,205 करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं। रेल मंत्री ने अगले 5 वर्षों में कोलकाता मेट्रो के लिए 60 नई रेलगाड़ियों को शुरू करने की भी घोषणा की।
2: मेट्रो के लिए इसकी न्यू ट्रेन्स, नई जनरेशन की ट्रेन्स अगले 5 वर्षों में इंडक्ट करेंगे। नई जनरेशन की ट्रेन्स आने से कोलकाता के निवासियों को बहुत अच्छी फैसिलिटी मिलेगी, वो भी एक बहुत बड़ा आगे स्टेप लिया जाएगा।
1: संचार और ग्रामीण विकास राज्य मंत्री पेम्मा सानी चंद्रशेखर ने आज आंध्र प्रदेश के गुंटूर जिले के नारको दुरु गांव में समृद्धि केंद्र का लोकार्पण किया। ये गांव को डिजिटल व्यवस्था में परिवर्तित करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। नारको दुरु एकीकृत ग्रामीण विकास मॉडल अपनाने वाला भारत का तीसरा और तेलुगु भाषी राज्यों का पहला गांव बन गया है। केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने जम्मू कश्मीर के डोडा जिले में 4th लेवेंडर महोत्सव का शुभारंभ किया। महोत्सव की थीम है लेवेंडर गोज ग्लोबल। 2 दिन के इस महोत्सव में बैगनी क्रांति की उपलब्धियों और क्षेत्र में बढ़ते लेवेंडर उद्योग को प्रदर्शित किया गया है। इससे लेवेंडर की खेती और उद्यमिता की बढ़ती सफलता का पता चलता है। राज्य के किसानों और युवा उद्यमियों के लिए लेवेंडर की खेती ने आजीविका के नए अवसर सृजित किए हैं। मध्य प्रदेश में राज्यसभा चुनाव के लिए भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव तरुण चुघ और रजनीश अग्रवाल ने आज नामांकन पत्र भोपाल में भरा। कांग्रेस ने पूर्व सांसद मीनाक्षी नटराजन को उम्मीदवार बनाया है। उधर आंध्र प्रदेश में जन सेना पार्टी के लिंग मनेनी रमेश ने अमरावती में नामांकन दाखिल किया। भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष नितिन नवीन झारखंड के 2 दिन के दौरे पर आज रांची पहुंचे। उन्होंने कहा कि झारखंड उनकी जन्मस्थली और दूसरा घर है। केंद्रीय मंत्री अन्नपूर्णा देवी और पार्टी के अन्य पदाधिकारियों तथा कार्यकर्ताओं ने श्री नवीन की यात्रा को संगठन के लिए महत्वपूर्ण बताया। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन एआईआर ऐप पर भी उपलब्ध हैं।
3: हर उड़ान से पहले एक फैसला होता है, हर फैसले से पहले एक सवाल, क्या मैं तैयार हूँ? अगर जवाब है हाँ, तो भारतीय वायुसेना आपका इंतजार कर रही है। AFCAT 1 of 2026 के आवेदन 10 नवंबर से 9 दिसंबर तक खुले हैं। अधिक जानकारी के लिए विजिट करें careerairforce.gov.in या afcat.edcil.co.in पर।
1: ये आकाशवाणी है। कुवैत और बहरीन में अमरीकी सैन्य ठिकानों पर ईरान के मिसाइल हमलों से पश्चिम एशिया में तनाव बढ़ गया है। एक रिपोर्ट।
4: खाड़ी देशों और अमरीका के एयर डिफेंस सिस्टम ने ज्यादातर मिसाइलों को हवा में ही नाकाम कर दिया। इससे जानमाल का कोई नुकसान नहीं हुआ। होर्मुज जलडमरू मध्य के पास ईरानी ड्रोन की गतिविधियों की खबरों के बाद अमरीकी सेना ने केशम द्वीप और गोरुक में ईरान के राडार और निगरानी ठिकानों को निशाना बनाया था, जिसके कुछ ही घंटों बाद ईरान ने ये हमले किए। अमरीका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने दावा किया है कि लगातार जारी अभियानों से ईरान की मिसाइल क्षमता काफी कम हो गई है। हालांकि ईरान ने इस दावे को खारिज कर दिया है। संघर्ष विराम पर बातचीत रुकी हुई है और क्षेत्र में तनाव लगातार बढ़ रहा है। दुबई से विनोद की रिपोर्ट।

0: के साथ समाचार कक्ष से विशाल शर्मा।
1: भारत ने कहा है कि पाकिस्तान संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की अपनी अस्थायी सदस्यता का दुरुपयोग जम्मू कश्मीर के बारे में झूठे दावे फैलाने के लिए कर रहा है। भारत के स्थायी प्रतिनिधि पी हरीश ने चेतावनी दी कि पाकिस्तान को अपनी जिम्मेदारियों का ध्यान रखना चाहिए।
2: मैं पाकिस्तान को याद दिलाना चाहता हूं कि संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद का सदस्य होना एक बड़ी जिम्मेदारी है। यह पक्षपाती और झूठी बातें फैलाने का मंच नहीं है। मैं ये बात साफ साफ कहना चाहता हूं। जम्मू कश्मीर भारत का अभिन्न और अटूट हिस्सा था, है और हमेशा रहेगा। पाकिस्तान की खोखली बयानबाजी और झूठे दावों से ये बुनियादी सच्चाई नहीं बदलेगी।
1: जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने कहा है कि मादक पदार्थ मुक्त जम्मू कश्मीर अभियान एक सशक्त जन आंदोलन के रूप में उभरा है। किश्तवाड़ में एक कार्यक्रम में उन्होंने कहा कि 19 जिलों में 56 दिनों से जारी इस अभियान ने बड़ी संख्या में लोगों को प्रभावित किया है। उपराज्यपाल ने कहा कि प्रशासन मादक पदार्थों के कारोबार के खिलाफ कड़ी कार्रवाई कर रहा है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पंजाब के फिरोजपुर जिले में हुई दुर्घटना पर गहरा दुख व्यक्त किया है। प्रधानमंत्री ने राष्ट्रीय राहत कोष से प्रत्येक मृतक के परिजनों को 2-2 लाख रुपए और घायलों को 50,000 रुपए की अनुग्रह राशि देने की घोषणा की है। आज सुबह फिरोजपुर फाजिलका सड़क पर एक ट्रक से वाहन की टक्कर में 9 लोगों की मौत हो गई और 22 लोग घायल हो गए। महाराष्ट्र में छत्रपति शिवाजी महाराज का 353वां राज्याभिषेक समारोह आज पूरे उत्साह के साथ मनाया गया। मुख्य कार्यक्रम रायगढ़ जिले के महाड तालुका में स्थित रायगढ़ किले में आयोजित किया गया। 6 जून 1674 को शिवाजी का ऐतिहासिक राज्याभिषेक हुआ था। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड सीबीएसई ने अंक सत्यापन और पुनर्मूल्यांकन के लिए आवेदन जमा करने की अंतिम तिथि बढ़ाकर 7 जून कर दी है। सीबीएसई ने बताया कि विद्यार्थी अब कल मध्यरात्रि तक अपने आवेदन जमा कर सकेंगे। इससे पहले आवेदन जमा करने की अंतिम तिथि आज तक ही निर्धारित थी। मौसम विभाग ने कल तटीय कर्नाटक, केरलम और माही में मूसलाधार बारिश का अनुमान व्यक्त किया है। पूर्वोत्तर राज्यों के अधिकांश हिस्सों, आंतरिक कर्नाटक, गोवा, तमिलनाडु, पुदुचेरी और अंडमान तथा निकोबार द्वीप समूह में अगले 2 दिनों तक तेज बारिश की संभावना है। इस बीच दक्षिण पश्चिम मॉनसून आज महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, गोवा, कर्नाटक, तमिलनाडु और पूर्वोत्तर में आगे बढ़ गया है। जापान में भारतीय अंडर 18 पुरुष टीम ने एशिया कप हॉकी टूर्नामेंट जीत लिया है। फाइनल में भारत ने जापान को 4-1 से हराया। आशीष तानीपुटी ने 3 और कप्तान केतन कुशवाहा ने 1 गोल किया। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारतीय हॉकी टीम को बधाई दी है। प्रधानमंत्री ने कहा कि टीम ने पूरे टूर्नामेंट में असाधारण कौशल और टीम वर्क का प्रदर्शन किया। उन्होंने अंडर 18 एशिया कप में कांस्य पदक जीतने पर भारतीय महिला हॉकी टीम को भी बधाई दी है। गोवा में भारत ने सैफ महिला फुटबॉल चैंपियनशिप का खिताब जीत लिया है। फाइनल में भारत ने बांग्लादेश को 3-0 से हराया। भारत ने 6वीं बार ये खिताब अपने नाम किया है। अहमदाबाद में विश्व योगासन खेल चैंपियनशिप में रोहन ताइडे ने सब जूनियर आर्टिस्टिक सिंगल स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीत लिया है। भारत अब तक 6 स्वर्ण पदक सहित कुल 7 पदक जीत चुका है। पदक तालिका में भारत शीर्ष पर बरकरार है। न्यू चंडीगढ़ में भारत और अफगानिस्तान के बीच एकमात्र टेस्ट मैच के पहले दिन का खेल समाप्त होने तक भारत ने 3 विकेट पर 368 रन बना लिए हैं। कप्तान शुभमन गिल 103 और ऋषभ पंत 50 रन बनाकर क्रीज पर मौजूद हैं। केएल राहुल ने 100 रन और साइन सुदर्शन ने 81 रन की पारी खेली। ये टेस्ट मैच विश्व टेस्ट चैंपियनशिप का हिस्सा नहीं है। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आर्थिक सलाहकार परिषद के साथ बैठक की। देश के आर्थिक परिवर्तन और दीर्घकालिक विकास प्राथमिकताओं की समीक्षा की। केंद्र ने खाद्य तेलों के लिए मानक पैकिंग साइज लागू किया। इसका उद्देश्य पारदर्शिता बढ़ाना और एक समान पैकेजिंग को बढ़ावा देना है। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने नई दिल्ली में नेपाल के विदेश मंत्री शिशिर खनाल से बातचीत की। कहा दोनों देश खुली सीमा पर सुरक्षा बनाए रखने के लिए निकट सहयोग कर रहे हैं। कुवैत और बहरीन में अमरीकी सैन्य ठिकानों पर ईरान के बैलिस्टिक मिसाइल हमले से पश्चिम एशिया में तनाव बढ़ा। जापान में भारतीय पुरुष हॉकी टीम ने जापान को हराकर अंडर 18 एशिया कप जीता। भारतीय महिला टीम ने कांस्य पदक

लता मंगेशकर को और सखियों को आप सुन रहे थे मधुमति फिल्म के इस गीत में। शैलेंद्र ने इस गीत को लिखा था और संगीतबद्ध किया था सलिल चौधरी ने।

0: प्रेम पर्वत इस फिल्म से ये गीत अभी आप सुन रहे थे मीनू पुरुषोत्तम की आवाज में, जानिसार अख्तर ने इसे लिखा था और जयदेव का संगीत।
1: से

0: आप सुन रहे हैं विविध भारती।
1: आज के फनकार, ये कार्यक्रम आप सुनेंगे थोड़ी ही देर में।

0: विविध भारती के पास है बेमिसाल हस्तियों का अनमोल खजाना। जरा सुनिए कैसे बना ये गाना।
1: घुंघरू की तरह बजता ही रहा।
2: यशोदन, एक लड़का आया है कलकत्ते से, गाना सुन लो उसका, अगर तुमको ठीक लगे तो गा ले।
0: संगीतकार रविंद्र जैन।
2: यशोदा ने कहा मैं गाना नहीं सुनूंगा, उसको बोला रिकॉर्डिंग रख लेगा। 9 बजे यशोदा आ गई सुबह सुबह, मुझे गाने का मुखड़ा सुना दे। पहले मैं कहता था, अब मेरे लिए कहते हैं लोग ये वही है कि जो बजता रहा घुंघरू की तरह।
3: कभी इस पग में

अनमोल यादें आपको मिलेंगी सिर्फ विविध भारती पर। विविध भारती, आपका जीवन संगीत।

राजेंद्र कृष्ण साहब का शुमार फिल्म जगत के बेहतरीन गीतकारों में होता है। उनकी कविता में नजाकत है, जज्बात की गहराई है और दिल को छू लेने वाला फन है।

वो चाहे अलसाई सी दोपहर हो, कोई हसीन शाम हो, या फिर कोई उदास अकेली रात। राजेंद्र कृष्ण के बोल उन पलों में कभी प्यार, कभी इकरार, कभी रुसवाई और कभी जिंदगी का कोई और दर्द इस तरह भर देते हैं कि उस दर्द से भी मोहब्बत हो जाए।

6 जून 1919 को शिमला में जन्म हुआ था अपने कलम से दिलकश नगमों को जन्म देने वाले इस गीतकार का। बहुत कम उम्र में ही राजेंद्र कृष्ण मोहित हो गए थे कविता पर। रोजी रोटी की जद्दोजहद में 1940 तक म्यूनिसिपल ऑफिस में क्लर्क की नौकरी की। उनकी इस नीरस नौकरी को रसीला बनाती रही फिराक गोरखपुरी, एहसान दानिश, सुमित्रा नंदन पंत और निराला जी की रचनाएं। 1940 के मध्य में राजेंद्र कृष्ण मुंबई आ गए। फिल्मों की दुनिया में बतौर लेखक और गीतकार अपनी प्रतिभा को आजमाने। संघर्ष की जंजीरें टूटी 1947 में जब फिल्म जंजीर के लिए उन्होंने लिखा अपना पहला गीत। 1947 में राजेंद्र कृष्ण ने लिखी फिल्म जनता की स्क्रिप्ट, लेकिन कामयाबी मिली 1948 में बनी फिल्म आज

1947 में जब फिल्म जंजीर के लिए उन्होंने लिखा अपना पहला गीत, 1947 में राजेंद्र कृष्ण ने लिखी फिल्म जनता की स्क्रिप्ट, लेकिन कामयाबी मिली 1948 में बनी फिल्म आज की रात से। निराशा भरी रातें ढल चुकी थीं और राजेंद्र कृष्ण लगातार काम पाने लगे। 1949 में श्याम सुंदर के संगीत से सजी फिल्म लाहौर में उनके गीतों को बहुत लोकप्रियता मिली। उन्हीं में से एक था ये गीत।

लगभग तभी एक और फिल्म आई, बड़ी बहन, जिसके संगीतकार थे हुस्नलाल भगतराम। राजेंद्र कृष्ण के गीत एक बार फिर संगीत रसिकों के होठों पर थे।

तमिल के जानकार राजेंद्र कृष्ण उन दिनों के मद्रास के मशहूर बैनर एवीएम की पहली पसंद बन गए। वहां के अन्य निर्माताओं ने भी राजेंद्र कृष्ण की रचनात्मक प्रतिभा की कद्र की। एवीएम की लगभग सभी हिंदी फिल्मों की स्क्रिप्ट के अलावा उनके गीत लिखे राजेंद्र कृष्ण ने।

राजेंद्र कृष्ण ने अपने समकालीन लगभग सभी नामचीन संगीतकारों के लिए गीतों की रचना की। राजेंद्र कृष्ण ने करीब 100 फिल्मों की पटकथाएं लिखी और कोई 300 फिल्मों के लिए लिखे अपने अनूठे अलबेले गीत। सर्वश्रेष्ठ गीतकार के रूप में उन्हें फिल्म फेयर अवार्ड बहुत देर बाद मिला 1965 में फिल्म खानदान के इस गीत के लिए।

सन 1988 में शब्दों का ये चितेरा हमारे होठों पर अपने गीतों की गुनगुनाहट छोड़कर शब्द ब्रह्म में ही विलीन हो गया।

0: अब अपने दोस्त कमल शर्मा को दीजिए इजाजत, नमस्कार।
1: आज के फनकार।

विविध भारती पर बहती है सुरों की सरिता। घोलती है आपके जीवन में शास्त्रीयता, बारीकियां रागों की। श्रृंगार सुरों का समय बीता, दौर बदले, कायम है संगीत की मधुर पाठशाला। हर रोज सुबह और शाम 6:45 पर संगीत सरिता, सिर्फ विविध भारती पर।

जंजीरे जुल्फ में जकड़ा हुआ हूँ मैं, अब कहाँ जाऊँगा भला। सोचता हूँ शाम और सहर अब यहीं गुजरेंगे।

मोहब्बत है क्या चीज, बस कुछ तैरते हुए साए, कुछ ख्वाबों के घरों दे और हवाओं पे लिखे हुए कुछ प्यार भरे पैगाम।

मेरा कोई अक्स नहीं पहचान तुम हो, जिस सांस से मेरी सांस चले वो सांस तुम हो। ये जान लो तुम मेरी जान हो और जहान भी तुम हो।

0: अंधेरे का इशारा समझो, अब तेरा दिल का जलाना होगा।
1: तुम बड़े को हो, मुझे जाने दो।
0: जा सकोगी?
1: मुझे जाना होगा।
0: जाओ।
1: छोड़ो।
0: नहीं
1: छोड़ो ना,
0: आज की रात तो दिल तोड़ो ना।

एक से दो हुए, दो से तीन, और फिर खुशियों का मेला। भला कौन नहीं याद करना चाहेगा ऐसे दिलकश सफर को।

0: अभी हम रिले कर रहे थे विविध भारती के कार्यक्रम आकाशवाणी का। ये बिलासपुर केंद्र है समाचार। अब हम आकाशवाणी दिल्ली से रिले करेंगे।
1: नमस्कार, समाचार के साथ मैं किरण शर्मा।
2: साथ बैठक की अध्यक्षता की प्रधानमंत्री और परिषद ने वैश्विक उथल पुथल के दौर में भारत की आर्थिक वृद्धि को और बढ़ावा देने के लिए कई विचारों और उपायों पर चर्चा की। जीवन यापन और व्यापार को सुगम बनाने के लिए विभिन्न सुधारों पर भी विचार विमर्श किया गया। सदस्यों ने भारत और विश्व पर पश्चिम एशिया संघर्ष से होने वाले प्रभाव का भी आकलन प्रस्तुत किया। प्रधानमंत्री ने कहा कि उन्होंने भारत के आर्थिक परिवर्तन और दीर्घकालिक विकास प्राथमिकताओं से संबंधित व्यापक मुद्दों पर विचार विमर्श किया। युवा कार्यक्रम और खेल मंत्री डॉ. मनसुख मांडविया ने कहा कि युवा देश की सबसे बड़ी शक्ति हैं और वर्ष 2047

0: तक विकसित भारत का सपना पूरा करने में अग्रणी भूमिका निभाएंगे। नई दिल्ली में विकसित भारत के लिए युवा माई भारत यूथ कन्वेंशन में श्री मांडविया ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राष्ट्र निर्माण में युवाओं की आकांक्षाओं, विचारों और स्वैच्छिक योगदान की भावनाओं को साझा करने के लिए देश को ये मंच प्रदान किया है।
1: देश का 65 पॉपुलेशन बिलो 35 है, यानी कि देश युवा देश है। ए देश की युवा की शक्ति को विकसित भारत के राह पर ले जाने के लिए संयोजने का काम नरेंद्र मोदी जी ने करा है।
0: विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने कहा है कि भारत और नेपाल लंबी और खुली सीमा पर सुरक्षा बनाए रखने के लिए घनिष्ठ सहयोग कर रहे हैं और दोनों देश संकट के समय हमेशा एक दूसरे के साथ खड़े रहे हैं। नई दिल्ली में नेपाल के विदेश मंत्री शिशिर खनाल के साथ बैठक के दौरान डॉ जयशंकर ने कहा कि दोनों देशों के बीच संबंध जीवंत, जनसंबंध, सीमा पार संपर्क तथा साझा सांस्कृतिक और धार्मिक परंपराओं की मजबूत नींव पर बना है।
2: Collaborate closely to maintain security along and uniquely open border.
3: सुरक्षा बनाए रखने के लिए मिलकर काम करना होगा। दोनों देश आवश्यकता के समय हमेशा एक दूसरे के साथ खड़े रहे हैं। पश्चिम एशिया और मध्य पूर्व में जारी संकट के बावजूद हमने नेपाल को ईंधन की सप्लाई बिना किसी रुकावट के जारी रखी है। दोनों पक्षों की ओर से इस रिश्ते को जो महत्व दिया जाता है वह हाल ही में सामने आया है।
0: रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने कहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में प्रतिबंधों की धमकी देकर भारत की संप्रभुता को कमजोर करने का कोई भी प्रयास उल्टा पड़ेगा। सेंट पीटर्सबर्ग में श्री पुतिन ने स्वतंत्र निर्णय लेने और राष्ट्रीय हितों की रक्षा के प्रति भारत की प्रतिबद्धता पर बल दिया। श्री पुतिन ने कहा कि रूस और भारत के संबंध आपसी विश्वास पर आधारित हैं। उन्होंने कहा कि दोनों देश ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल कार्यक्रम सहित संयुक्त अनुसंधान और विकास परियोजनाओं में सक्रिय रूप से शामिल हैं। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा है कि पश्चिम बंगाल में लंबे समय से लंबित रेलवे परियोजनाओं का समाधान होने से राज्य में रेलवे अवसंरचना विकास के एक नए युग की शुरुआत होगी। कोलकाता के नबन्ना में श्री वैष्णव ने बताया कि वर्ष 2026-27 के रेल बजट में पश्चिम बंगाल के लिए 14,205 करोड़ रूपये आवंटित किए गए हैं। रेल मंत्री ने अगले 5 वर्षो में कोलकाता मेट्रो के लिए 60 नई रेलगाड़ियों को शुरू की घोषणा की। केंद्र सरकार ने कानूनी माप प्रणाली के अंतर्गत खाद्य तेलों के लिए मानक पैकिंग लागू की है। इससे बाजार में अधिक पारदर्शिता और एकरूपता आएगी। उपभोक्ता कार्य विभाग ने खाद्य तेलों और घी की शुद्ध मात्रा तथा मानक पैक आकार निर्धारित करने संबंधी मानक संचालन प्रक्रिया में संशोधन किया है। स्वीकृत पैक आकार 200 ग्राम, 500 ग्राम, 1 से 5 किलो, 15 और 20 किलो हैं। इस पहल का उद्देश्य बाजार में विभिन्न पैकेज आकारों की बढ़ती संख्या कम करना है। जापान में भारतीय अंडर 18 पुरुष टीम ने एशिया कप हॉकी टूर्नामेंट जीत लिया है। फाइनल में भारत ने जापान को 4-1 से हराया। आशीष तानीपूर्ति ने 3 और कप्तान केतन कुशवाहा ने 1 गोल किया। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारतीय हॉकी टीम को बधाई दी है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
4: दिस इज आकाशवाणी द न्यूज रेड बाय रेणुका। Prime Minister Narendra Modi today chaired a meeting with members of the PM Economic Advisory Council. The Prime Minister and the EAC discussed various ideas and measures to further boost India's economic growth in times of global turmoil. In a social media post, the Prime Minister said they deliberated on a wide range of issues relating to India's economic transformation and long-term development priorities. They also shared perspectives on adding more momentum to the reforms journey and ensuring ease of living as well as ease of doing business. The Economic Advisory Council is an independent body that gives advice to the Government of India, specifically to the Prime Minister, on economic and related issues. Besides the EAC members, two principal secretaries to the Prime Minister, Dr. P.K. Mishra and Shaktikant Das also attended.